0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. just fast and reliable fiber-powered internet you can count on.

0: Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रुपए की पहली किश्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की होगी शुरुआत, सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रायल रन, लगभग 8.5 घंटे रह जाएंगे बेंगलुरु से मैंगलुरु की दूरी। महाराष्ट्र से राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम। भीषण गर्मी की मार झेल रहे परिंदों के लिए दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया आशियाना, ठंडक के लिए लगाया गया कूलिंग सिस्टम। एयरफोर्स के साथ DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना, हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की।
6: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी त्रेता युग में तो राम कथा के रसक हैं, ये चारों युगों में रसक हैं, लेकिन चारों युग परिताप में हनुमान जी के हम एक युग की कथा और बताते हैं। द्वापर युग की कथा सुनो। द्वापर युग में भी वीर बजरंग बली ने कथा सुनी भगवान कृष्ण से। लोग मानते हैं गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऐसी सुनी जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी को दिया। अच्छा, हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला। देखो कितनी अच्छी बात, राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी चरित्र पढ़ना तो भगवान कृष्ण का भी काम बिना हनुमान के नहीं चला, दोनों को जरूरत पड़ी। हनुमान जी महाराज की एक चरित्र की द्वापर युग की चर्चा हम आपको बता दें। द्वापर युग की चरित्र की एक चर्चा है। मन में

भाई एक समान है, जैसे अर्जुन को श्याम प्रिय है, हनुमान जी को राम प्रिय है। तो एक घटना घटी, एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, एक काम करो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, जाओ पूजा के लिए फूल ले आना। अर्जुन जी ने आज्ञा मान ली। तो एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन जी कहां गए फूल लेने, कहां गए? पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अरे पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी से कहा, जाओ पुष्प लेकर के आओ। फूल लेने के लिए अर्जुन गए, जहां कदली वन में वीर बजरंग बली विराजमान, उन्हीं हनुमान जी का जहां अवतार हुआ, उसी वन में अर्जुन जी आ गए। पुष्प लाने के लिए कदली वन में आए हनुमान जी, वहीं केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। द्वापर युग की घटना, हनुमान जी केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे, अजर अमर हैं हनुमान जी तो, और पत्तों के बीच में छुप कर बैठ कर के हनुमान जी

0: पेड़ के बीच में बैठकर सीताराम का कीर्तन कर रहे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में अर्जुन जी आए,
1: अर्जुन जी आए बाग में।

जहां पर हनुमान जी विराजमान थे वहीं पर अर्जुन जी गए और फूल तोड़ने लगे, और जैसे ही फूल तोड़ने लगे सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े, हे भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे क्या कर रहे हो? अर्जुन जी बोले फूल तोड़ रहे। अरे भाई फूल तोड़ रहे तो कम से कम पूंछ तो लेना चाहिए, बिना पूंछ करके फूल तोड़ रहे। अरे पूंछ करके फूल तोड़ते, हम यहीं तो थे, हमसे पूंछ लेते। अर्जुन जी ने कहा अब तोड़ लिया तो क्या बिगड़ गया? हनुमान जी बोले ऐसे कैसे क्या बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, जब हम यहां हैं हमसे पूछ लेना चाहिए, फूल तोड़ना है, काय के लिए तोड़े? अर्जुन जी बोले तो भाई नहीं पूछा, पूजा के लिए लेना था, अब पूजा के लिए पुष्प लेना था तोड़ लिया। हनुमान जी बोले ठीक है, अच्छा किसकी पूजा के लिए ले जा रहे, किसकी पूजा? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले तो ठीक है फिर, तो ठीक है। अर्जुन जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त का तो ठीक है, पर तो ठीक है, पर तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा अर्जुन जी को, बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले राम जी के। अर्जुन जी बोले तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते, अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है, दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले कितने भी बड़े बड़े बानर हो हम ऐसा पुल बना सकते हैं अपने बाणों से कि कोई भी निकल जाए टूट नहीं सकता। हनुमान जी बोले हम भी? अर्जुन जी बोले लगा लो सर देख लो। हनुमान जी बोले दिखा के बताओ। बोले ठीक है। अर्जुन जी बोले रुको एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हम पुल बनाएंगे बाणों से और तुम चल करके जाना, अगर पुल टूट जाएगा तो हम क्षत्रिय हैं, हम प्रण लेकर के कहते हैं तुरंत चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का है। हनुमान जी बोले तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। जब शर्त लगी अर्जुन जी हनुमान जी को देख कर कहे अभी बांध कर पुल दिखला दूं चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े भए अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया, बाण की बरसा की अर्जुन ने सागर बना समूचा। बाण की बरसा की अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानन में बाण का कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर अर्जुन जी ने जैसे ही पुल बनाया विशाल, और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है, अगर तुम्हारा पुल तैयार है राम जी का बंदर भी तैयार है तो अर्जुन जी बोले तो चढ़ के बताओ देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आमने हो ही जाए कि तुम में दम है कि हम में दम है, बाण में दम है कि तुम्हारे बानरों में दम है, राम जी के बंदर में दम है। हनुमान जी बोले तैयार, और लगा लो ताकत, थोड़ा कस लो। नहीं तैयार है, तैयार तैयार है, फुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी गए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए हजार योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के
दाता। हजार योजन बदन बढ़ाया, गधा धर लियो कांधे। इतना ही नहीं, 1000 योजन का शरीर बना लिया, मुगदर को रख लिया कंधे।

एक एक योजन के बड़े बड़े पर्वत के पत्थर अपने राम राम में बांध लिए। हनुमान जी बोले लो बंदर तैयार है। सूर्य ढक गया, अंधेरा सा छा

सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी सो, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच, बैर बांधो आज बजरंग बलधारी सो, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो, कांपत शरीर, अर्जुन जी का शरीर कांपने लगा हनुमान जी की देख करके, कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो, ब्रज पे संकट देख आप बने एक गिरधारी, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आहा, आंखों में आंसू भर के अर्जुन जी कहने लगे, हे भगवान, ब्रिज पे संकट आया था, आपने पर्वत उठा लिया था, अब बचाओ ये हजार पर्वत लेके ही चल रहे साथ में, इनसे बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक पैर जैसे ही पुल पे रखा सो चले हूं सो गा पाताल तुरंता, एक ही बार में टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा, पुल नहीं दिख रहा, कहां गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत, ये बात तो हमें और तुम्हें पर पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले, नहीं नहीं हम नहीं, चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा, बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी है गिरधारी, अब बचा लो, कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले, महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन देकर के उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले, ले ओ, थोड़ी देर ये बचते ही से पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे, ये तो प्राण लेकर के ही मानेंगे भगवान। हनुमान जी बोले, हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? तो अर्जुन जी बोले, महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़े करके जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं, हम ही दो लोग थे। तो बोले, देखो भाई, निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, एक काम करो, फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशाल काय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा, कहीं सच में ना टूट जाए तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है, तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया, अब पुल बच गया। सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले, आप जीत गए। ब्राह्मण देवता बोले, हनुमान जी जीत गए, अब जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। और अर्जुन जी से बोले, इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले कब? महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए?
ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नर ये बानर, हम नर ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है, है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले हमारे सिर पे बैठ जाओ, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यहीं रहो। हनुमान जी बोले हमारी तो आदत है हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए और अर्जुन के रथ का नाम ही कपित ध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है, है? तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया, हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था, अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को ये कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली

0: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: And talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की ₹3,000 की पहली किश्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की होगी शुरुआत, सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रायल रन, लगभग 8.5 घंटे रह जाएगी बेंगलुरु से मैंगलुरु की दूरी। महाराष्ट्र से राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम। भीषण गर्मी की मार झेल रहे परिंदों के लिए दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया आशियाना, ठंडक के लिए लगाया गया कूलिंग सिस्टम। तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, संतान रोगों से मुक्ति और नागदोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रूपए की पहली किश्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, आज मल्टी स्पेशलिटी ललिता पीवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होगी शुरुआत। कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच जल्द शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रेन का ट्रायल रन, करीब 8.5 घंटे में बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचेगी ट्रेन। आज कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई में आज से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, 5 जून को बैठक के अंतिम दिन फैसले का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत को इस हफ्ते गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली में कल सामान्य से 2.3 डिग्री कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। देहरादून में आंधी के साथ हुई बारिश, कई जगह पर गिरे पेड़, लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के बीड़ में गर्मी से राहत लेकर आई बरसात, आंधी के साथ हुई बारिश, ओले भी पड़े। तमिलनाडु के मदुरई में हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट। कोयंबटूर में हुई मूसलाधार बारिश, वलपराई इलाके में छाया कोहरा। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुजरात के पाटन जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के बनासकांठा में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। हिमाचल के चंबा में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी। पारंपरिक हिमाचली पोशाकों में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट के आने से स्थानीय कारोबारी भी खुश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पर्यटकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजदान दर्रा इलाके में हुई जमकर बर्फबारी। देश के कई इलाकों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का मौसम, बांदीपुरा में बर्फबारी से खुश हुए सैलानी, कैमरों में कैद किए नजारे। हेमकुंड साहिब में लगा भक्तों का तांता, अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, सुहाना मौसम भी बढ़ा रहा है भक्तों का उत्साह। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में बीच बीच में हो रही है हल्की बर्फबारी, कुदरत की चुनौतियों के बावजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों में जबरदस्त जोश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, यात्रियों ने भागकर बचाई जान, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से किश्तवाड़ डोडा हाईवे पर यातायात पर असर, कई जगह रास्ता बंद। बादल फटने के बाद रास्ते पर आया मलबा, बीच रास्ते में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के भलेसा में मूसलाधार बारिश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी रहने की सलाह दी। पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, लगभग 4 साल बाद फिर पटरी पर लौटी कांगड़ा हेरिटेज ट्रेन, 2023 की आपदा में बह गया था पुल, करीब 70 करोड़ में फिर से हुआ तैयार। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, आज से ठीक 1 महीने बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही है तैयारियां, अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू यात्री निवास में की जा रही है साफ सफाई और रंग रोगन। अमरनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने जम्मू के भगवती नगर में की बैठक, सुरक्षा समेत यात्रा से जुड़े तमाम इंतजामों पर की चर्चा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 670 कंपनीज की होगी तैनाती, गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां जेएम के पहुंचना शुरू। जम्मू कश्मीर के लखनपुर एंट्री पॉइंट से लेकर श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर तक होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। पठानकोट जम्मू हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू में यात्री निवास भवन और अन्य जगहों पर भी केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। बाबा महाकाल को चांदी के मुकुट और कुंडल का चढ़ावा। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं ने चढ़ाया चांदी का मुकुट। चंडीगढ़ के रहने वाले भक्त शिवम ने उज्जैन में महाकाल मंदिर को अर्पित किए चांदी के मुकुट और कुंडल। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने स्वीकार किया भगवान महाकाल को अर्पित चढ़ावा। मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालु और उनके परिवार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बाबा महाकाल के भक्त शिवम ने बताया कि बाबा की कृपा से पूरी हुई मनोकामना मन्नत पूरी होने पर महाकाल को चढ़ाए चांदी के मुकुट और कुंडल। श्रद्धालुओं के अर्पित करने के बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल को पहनाया चांदी का मुकुट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल और बैग नहीं ले जा सकेंगे श्रद्धालु। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में मोबाइल और सामान ले जाने पर रहेगी रोक। श्रावणी मेले के दौरान साधारण शुल्क देकर नवनिर्मित क्लॉक रूम में अपने सामान रख सकेंगे श्रद्धालु। सामान रखने के लिए मंदिर में बनाए जा रहे हैं अमानत घर। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर बोर्ड संभालेगा क्लॉक रूम के संचालन और देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा। अतिरिक्त स्टाफ और पुलिस की भी होगी तैनाती। देवघर श्रावणी मेला शुरू होने से पहले दिखा डाक कावड़ यात्रा का अनोखा नजारा। बाबा बैद्यनाथ धाम जाते दिखे जंजीरों से जकड़े पूर्व सैनिक राम उदय सिंह। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर रवाना हुए राम उदय सिंह। विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ कर रहे हैं यात्रा। आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। आश्रम से बाहर निकलते वक्त विराट के माथे पर दिखा चंदन और त्रिपुंड। गले में नजर आई तुलसी की माला। भक्ति के रंग में रंगे किंग कोहली। महाराज से मुलाकात के बाद हाथ में दिखी आध्यात्मिक किताब। अनुष्का का भी सर दुपट्टे से ढका हुआ था। मैदान पर अपने आक्रामक तेवर के लिए मशहूर विराट कोहली वृंदावन में दिखे पूरी तरह शांत और भक्ति में सराबोर। हर बड़े टूर्नामेंट जीतने पर प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करते हैं विराट अनुष्का। अब तक 7 बार प्रेमानंद जी से मिल चुके हैं विराट और अनुष्का। तमिलनाडु के महिला दुतुराई के परिमाला रंगनाथन मंदिर में वसंतोत्सव की धूम। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। वसंतोत्सव के दौरान देवता को सुगंधित द्रव्यों से कराया गया स्नान। विशेष पूजा अर्चना के साथ दिव्य आभूषणों और फूलों से सजाया गया। सऊदी अरब से हज यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटे हज यात्रियों का समूह। केंद्रीय मंत्री रिजिजू और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पड़ने वाले फाजिल नगर का बदलेगा नाम। सीएम योगी ने नाम बदलकर पावागढ़ रखने का किया ऐलान। भगवान महावीर से जुड़ी है ये जगह। इतिहासकारों का दावा है कि भगवान महावीर ने पावागढ़ में बिताया था कुछ समय। यहां 1971 में बनवाया गया था महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर। भारत ने किया सुपर किलर मिसाइल रुद्रायम सेकेंड का सफल परीक्षण। हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है रुद्रायम 2। परीक्षण के दौरान लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI-1 MKI से लॉन्च की गई मिसाइल रुद्रायम 2 6,791 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है रुद्रायम सेकेंड की स्पीड। एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रायम 2। दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी सतह के संचार सिस्टम की पकड़ में नहीं आएगी ये मिसाइल। 300 किलोमीटर है रुद्रायम 2 की रेंज। अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है ये मिसाइल। रक्षा निर्माण क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है ये मिसाइल। हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने किया है इस मिसाइल का विकास। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बड़ी भारतीय हथियारों की मांग। ब्रह्मोस, आकाश, लॉयट्रिंग म्यूनिशंस और नेत्रा जैसे हथियार प्रणालियों की मांग में है बढ़ोतरी। साल 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंचा देश का रक्षा निर्यात। पिछले साल के मुकाबले 62% की हुई बढ़ोतरी। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ऑपरेशन शेरुवाली की समीक्षा की। जमीनी स्तर पर ऑपरेशनल स्थिति का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में दिया गया ऑपरेशन शेरुवाली का नाम। गंभीर मुगला से डोरीमल तक के घने जंगलों में जारी अभियान। विपुल होंगे सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत, फिलहाल कतर में हैं भारत के एम्बेसडर। गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित चिलुआ ताल पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण परियोजना का किया लोकार्पण। ताल के किनारे होंगे आकर्षक घाट, पैदल चलने के लिए पाथवे, बोटिंग की सुविधा और बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क। टूरिज्म को बढ़ावा देना है उद्देश्य। सीएम ने तालाबों के संरक्षण, इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, सोलर प्लांट और स्वच्छता पर दिया जोर। चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। कुशीनगर भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। लगभग 450 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहा है विश्वविद्यालय, पूर्वी यूपी के किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। हैदराबाद के मियापुर में बेकार पड़े ओवरहेड पानी टैंक का बेहतरीन इस्तेमाल, यहां गरीब बच्चों की पढ़ाई के छत का काम कर रहा है बेकार पड़ा ये ओवरहेड पानी का टैंक। पी श्रीनिवास ने की शुरू की थी ये पहल, कॉरपोरेट नौकरी छोड़ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित किया जीवन। वाराणसी में अब ट्रैफिक पुलिस को नहीं सताएगी गर्मी, पुलिस कर्मियों को बांटे गए 100 एसी हेलमेट। रिचार्जेबल बैटरी से लेस इस हेलमेट के अंदर इनबिल्ट है कूलिंग फैन जो सर को रखता है ठंडा, हीट स्ट्रोक, चक्कर और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से लोगों को रखता है सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में आज सहयोग शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़, शौचालय और आवास योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का हो रहा है ऑन द स्पॉट निपटारा। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में देश भर में आदर्श बनी हिमाचल प्रदेश के मंडे जिला की ग्राम पंचायत लोहारड़ी, देश भर में मिला तीसरा स्थान। पंचायत को 3 जून को दिल्ली में दिया जाएगा ये पुरस्कार, सम्मान के रूप में मिलने वाली 25 लाख की धनराशि को विकास कार्यों पर किया जाएगा खर्च। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक ई रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हुई शामिल। सीएम फडणवीस की पत्नी का दिखा अनोखा अंदाज, अमृता ने चलाया ऑटो रिक्शा। अमृता फडणवीस ने ई रिक्शा महिला चालकों को किया सम्मानित, कहा सरकार महिलाओं के हित में कर रही है काम। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने कुत्ते और एआई की मदद से शरीर में कैंसर का पता लगाने की तकनीक विकसित करने का दावा किया। स्टार्टअप ने कुत्ते की सूंघने की शक्ति और एआई का होता है इस्तेमाल, कैंसर की पहचान के लिए प्रशिक्षित कुत्ते का होता है इस्तेमाल। पीठ, रीढ़ और जोड़ों के दर्द के मुफ्त इलाज के लिए मुंबई में लगा 3 दिवसीय शिविर, कार्यक्रम में भारत के साथ साथ कई दूसरे देशों के डॉक्टर भी हुए शामिल। मरीजों को पीठ और जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत आयोजन, कार्यक्रम में पुराने दर्द के इलाज की नई तकनीकों पर हुई चर्चा। मरीजों को दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हुए शामिल। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर आउट, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। शाहिद, कृति और अश्मिका की मच अवेटेड फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, करीब 14 साल बाद आ रहा है कॉकटेल का सीक्वल। रामचरण की आगामी फिल्म पेरी का नया गाना मासा मासा रिलीज, जिसमें उनके पहलवान अवतार की दिख रही है झलक। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग हुई पूरी, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। थ्री इडियट्स की कहानी से उठ गया पर्दा, सेकंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि होने वाले हैं 4 इडियट्स, राजकुमार हिरानी जल्द फाइनल कर लेंगे स्क्रिप्ट। पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे अभिनेता रणदीप हुड्डा, बेटी को कहानी सुनाते हुए आए नजर, शेयर की क्यूट फैमिली फोटो। सैयारा के बाद फिर लौटेगी आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी, मोहित सूरी की नई लव स्टोरी में करेंगे काम, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी शूटिंग। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका, 4 दिन में कमाए 28 करोड़ का प्रॉफिट, इंडिया नेट कलेक्शन 9.75 करोड़। सुपरस्टार यश का दिल छू लेने वाला अंदाज आया सामने, यश ने कैंसर से जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को किया वीडियो कॉल, उसकी ख्वाहिश की पूरी। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागो सील निर्माण में नियम के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। बीसीसीआई ने साईराज बहुदुले को भारत का स्पिन बॉलिंग कोच किया नियुक्त। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले टीम इंडिया कैंप से जुड़े जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या को साबित करनी होगी अपनी फिटनेस, बीसीसीआई का निर्देश। आईसीसी ने पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के स्केड्यूल में एक बड़ा बदलाव किया। अब जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 तक होगा टूर्नामेंट। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंची स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। थाईलैंड की खिलाड़ी को 25-23, 21-16 से हराया। लाखों ड्रोन्स के साथ जगमगा उठा दक्षिणी चीन के गुइलिन का आसमान। एक बेहद खूबसूरत और खास थीम पर आधारित ड्रोन शो का हुआ आयोजन। चीन के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों के साथ जैकी चैन की क्लासिक फिल्मों के दृश्य किए गए प्रस्तुत। जगमगा उठा गुइलिन का रात का आसमान। आसमान में नजर आए ड्रंकन मास्टर, प्रोजेक्ट ए, पुलिस स्टोरी, हु एम आई, रश आवर जैसी फिल्मों के दृश्य। इन फिल्मों के साथ जीवंत हुए चीन के मनमोहक प्राकृतिक नजारे। इस मौके पर ग्लोबल स्टार जैकी चैन भी रहे मौजूद। बोले, चीन की फिल्मों को वैश्विक मंच देना मेरा लक्ष्य। इस शानदार ड्रोन शो को देखने इकट्ठा हुए हजारों लोग। ड्रोन से चमगाते आसमान ने सबको किया मंत्रमुग्ध।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें
8: क्या जाने अनजाने आपकी वाणी खराब हो जाती है? क्या अचानक से आप कड़वा बोल देते हैं? क्या अचानक से वाणी का प्रभाव बिगड़ जाता है? मधुर वाणी का क्या है रहस्य और क्या है वाणी को बेहतरीन बनाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: If teaching is what you're meant to do, WGU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
14: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। पूजा उपासना में चंदन कितना मूल्यवान है, चंदन लगाना कितना अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि चंदन की विशिष्टताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और ग्रहों के मामले में चंदन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं सैंडलवुड की, यानी चंदन की। चंदन को मूल्यवान क्यों समझा जाता है, इसका महत्व क्या है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध जितनी पवित्र है, उतनी ज्यादा पवित्र कोई सुगंध नहीं मानी जाती। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन, और दोनों का खूब प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके से लाल और सफेद चंदन का प्रयोग पूजा उपासना में भी होता है। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में अन्य सुगंधों का भी प्रयोग होता है, लेकिन जो बात चंदन की है वो बात किसी और सुगंध की नहीं है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाकर चारों तरफ से उसमें चंदन लगाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार, विशेषकर भगवान कृष्ण के लिए सफेद चंदन का लेपन किया जाता है और इसको बहुत महत्वपूर्ण

हो जाएंगी। चंदन इतना शक्तिशाली माना जाता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि चंदन के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, अगर आप नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं चंदन का लेप, चाहे लंबा तिलक लगाएं, इससे आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा। चंदन का नियमित तिलक लगाने से क्रोध कम होता है और तनाव की स्थिति में सुधार होता है। चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर अगर गले में पहना जाए या भुजाओं में बांधा जाए तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है। चंदन की सुगंध अगर आप नियमित रूप से लगाएं और लगाकर कहीं जाएं तो नजर नहीं लगेगी, नजर दोष से और डिप्रेशन की समस्या से आप बचेंगे। चंदन की माला से अगर आप मंत्र जप करें, खास तौर से श्री कृष्ण के मंत्र का जप अगर चंदन की माला से किया जाए तो आकर्षण में वृद्धि होती है। देखिए, जिनको बहुत तनाव होता है या जो बहुत चिंता करते हैं, उन्हें रोज स्नान के बाद मस्तक पर और कंठ पर सफेद चंदन लगाना चाहिए। जिनको ये शिकायत है कि मुझे बार बार नजर लग जाती है, मैं बार बार शादी पार्टी में जाने के बाद बीमार पड़ जाता हूँ, ऐसे लोग चंदन की सुगंध लगा करके जाएं, अच्छा होगा। और जीवन में अगर बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, या तो चंदन की माला अपने गले में धारण करें, चंदन के दानों की बनी हुई माला, या चंदन की लकड़ी नीले धागे में डालकर अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की चंदन के महत्व की और उसके विशेष प्रयोग की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, निरंतर नियमित रूप से करते जाएं, आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: हेल्थ का सच।
1: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज। आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रुपए की पहली किश्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात। गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की होगी शुरुआत। सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा। आज शुरू होगा ट्रायल रन। लगभग 8.5 घंटे रह जाएगी बेंगलुरु से मैंगलुरु की दूरी। महाराष्ट्र के राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम। भीषण गर्मी की मार झेल रहे परिंदों के लिए दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया आशियाना। ठंडक के लिए लगाया गया कूलिंग सिस्टम। तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम। कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। संतान रोगों से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है
6: नमस्कार। गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार।
6: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो का चर्चा का विषय क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीठी वाणी के बारे में। ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार से मीठी वाणी का वरदान आपको मिलेगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार ऐसे हालात होते हैं जीवन में कि आप किसी को कड़वा बोल देते हैं, लेकिन उस कड़वाहट में यह भी होता है कि आप सामने वाले की भावनाओं को आहत कर देते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि मीठी वाणी कैसे बोलें और इसका वरदान आपको ज्योतिष के हिसाब से कैसे मिलेगा। तमाम उपायों के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुडलक मंत्र के साथ।
8: अगर आप नृत्य या कला के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो जहां पर आप अभ्यास करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर नटराज की मूर्ति स्थापित करिए और अपना अभ्यास शुरू करने के पहले इनकी पूजा करिए, आपके लिए बेहतर होगा।
6: और चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय हमने आपको बता दिया, उसी पर आते हैं। पहला सवाल पंडित जी से ये कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों के साथ संबंध होता है, वाणी को सुधारते कैसे हैं पंडित जी?
8: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि आप अपनी वाणी को प्रभावशाली और मधुर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी आपकी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। जिन भाव से आप व्यक्ति की वाणी देखते हैं, उन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि और बुध, इन दोनों का सीधा संबंध आपकी वाणी से होता है, इन दोनों का सीधा कनेक्शन आपके बोलने से होता है। ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं और ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुंडली का दूसरा भाव वृषभ राशि और बुध, ये सब मिलकर के आपकी वाणी को कंट्रोल करते हैं, आपकी वाणी पर असर डालते हैं।
6: और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली तीन राशियों का वक्त जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। मेष, वृष और मिथुन, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
8: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
6: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है, ये आदत पड़ती कैसे है, व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती, तो उसको सुधारने के लिए ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं।
8: कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है। व्यक्ति खराब बोलता है, जिसकी वाणी सुनकर कष्ट होता है, कब ऐसा होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य या मंगल का प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसे लोग खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कड़वा बोलता है, व्यक्ति सामान्यतः खराब बोलता है। कुंडली के दूसरे भाव पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का, राहु का, केतु का, अगर कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव हो तो आदमी खराब बोलता है, आदमी कड़वा बोलता है। अगर किसी व्यक्ति की अग्नि तत्व की राशि है, मेष है, सिंह है या धनु है, तो उसके खराब बोलने की संभावना होती है। और अगर जल तत्व की राशि है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो ऐसे लोग जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो बहुत कड़वा या बहुत खराब बोलने लगते हैं। जिनका खान पान ठीक नहीं होता, जिनकी जीवनचर्या ठीक नहीं होती, ऐसे लोग भी कड़वा बोलते हैं, खराब बोलते हैं। ऐसे लोगों के वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गलत या अशुद्ध मंत्र का जप करता है तो उसकी वाणी दूषित हो जाती है, और ऐसे लोग सामान्यतः खराब या कड़वा बोलने लगते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर वाणी के भाव से या वाणी के स्वामी से पाप ग्रहों का संबंध जीवन में बन जाए तो आदमी खराब बोलने लगता है, आदमी कड़वा बोलने लगता है, उसकी वाणी उसकी बोली खराब हो जाती है।
6: देखिए और भी सवाल पंडित जी से पूछेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बारी आती है फिर से राशिफल पर आने की, और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है वो आपको जानकारी दे देते हैं।
8: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट और

0: सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, घर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए उस सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं जिसका आप सबको इंतजार रहता है, आपके भेजे हुए सवाल और पंडित जी के जवाब। उससे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको जानकारी दे देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपकी परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो आप अपने तमाम सवाल ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, कौन से दर्शक का है आपके पास पहला सवाल?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें भावना जी ने लिखा है और भावना जी हमें ऋषिकेश उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 16 सितंबर 1995, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है ऋषिकेश। ये कह रही हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मैं विवाह के बाद भी अपना स्थान परिवर्तन करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह ऋषिकेश या इसके आसपास हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? भावना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय साल 2027 के आरंभ में बन रहा है। साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है और विवाह का मामला आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह के बाद आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग नहीं बनते हैं। ज्यादातर संभावना है कि ऋषिकेश या उसके आसपास ही आपका विवाह हो जाएगा। आने वाला समय आपका बेहतर है, करियर और वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी आपके पास आई है।
0: जी अगला प्रश्न हमें अनिरुद्ध जी ने लिखा है और अनिरुद्ध जी हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 14 अक्टूबर 1973। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूँ और नौकरी के साथ स्थान भी बदलना चाहता हूँ, कब तक नौकरी मेरी बदल पाएगी? अनिरुद्ध जी, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने की संभावना अभी नहीं है। अप्रैल 2027 तक आपको इंतजार करना चाहिए। अप्रैल 2027 के बाद आप नौकरी भी बदल सकेंगे और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकेगा। तो अप्रैल 27 के बाद नौकरी और स्थान बदलने का प्रयास करें। आप गुजरात से निकलकर उत्तर दिशा में दिल्ली की तरफ या चंडीगढ़ पंजाब की तरफ जा सकते हैं। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका करियर अच्छा रहे, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी ये बताइए कि वो कौन से हालात होते हैं या कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोलता है, कब व्यक्ति की वाणी मधुर होती है?
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़ी अच्छी होती है। कब होता है ऐसा? अगर किसी कुंडली में बुध प्रबल हो जाए, बुध मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है, व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है। अगर कुंडली में बुध भी मजबूत हो और बृहस्पति भी मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत अद्भुत बोलता है। उसके बोलने का, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया होता है। शनि अगर वाणी भाव में हो तो भी अच्छी वाणी सामान्यता मिलती है, लेकिन शनि पर और पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी शनि का प्रभाव वाणी पर होने से व्यक्ति टॉन्ट करता है, व्यंग बोलता है, व्यंगात्मक बोलता है, तीखा बोलता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह कुंडली में बैठे हों, लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम, अगर इनमें केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की वाणी बेहतर होती है। सामान्यतः जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, वृषभ, कन्या और मकर, और वायु तत्व के लोग होते हैं मिथुन, तुला और कुंभ, इनकी वाणी सामान्यतः अच्छी होती है। वाणी के स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति बेहतर हो, वाणी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, आदमी का आचरण बेहतर हो, तो ऐसे लोग जीवन में सामान्यतः अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोगों की वाणी सामान्यतः अच्छी होती है।
1: चलिए सवाल बहुत सारे हैं पंडित जी से पूछने के लिए, लेकिन राशिफल के बारे में फिर से आपको बता देते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्य फल में क्या लिखा है वो जानकारी आपको देते हैं।
0: तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, वो ये कि वाणी या जो भी हम बोलते हैं, वाणी को मधुर बनने और बनाने के लिए और किस्मत को चमकाने के लिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं?
0: अब अगर आप अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करिए, कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, या 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र जप करने से वाणी, दिल, दिमाग, बुद्धि बेहतर होगी। खान पान को अपने शुद्ध रखें। अगर आपका खान पान पवित्र होगा, खान पान अगर शुद्ध होगा तो वाणी को शक्ति मिलेगी। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखें। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिएगा, इससे भी वाणी को शक्ति मिलेगी। आपके मुंह से अपशब्द निकल गया, आप चिल्ला करके बोल दिए, गलत वाणी का प्रयोग हो गया, तुरंत कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राम राम कुछ कहिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि गलत वाणी का प्रभाव आपके जीवन और आपके भाग्य पर ना पड़े। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, जो लोग निरंतर भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे लोगों की वाणी पवित्र हो जाती है, वाणी शुद्ध हो जाती है। ऐसे लोगों की वाणी से अपराध नहीं होता, अपशब्द नहीं निकलते और धीरे धीरे उनकी वाणी मधुर हो जाती है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं कि कोई भी प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं इस शो में ईमेल के माध्यम से। अपने तमाम सवाल इस शो में आप भेज सकते हैं। पंडित जी, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
0: जी। अगला प्रश्न शैल बाला जी ने हमें लिखा है और शैल बाला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 मई 1989, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी विदेश में नौकरी कर रहा है और वो विवाह नहीं करना चाहता है, तो क्या मेरे पुत्र का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शैलबाला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से साल 2027 में इनके विवाह के योग बनते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2027 का समय एक बेहतर समय है, इसमें आपके पुत्र का विवाह होगा उनकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। आपके पुत्र का विवाह किसी विदेशी बालिका से भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र का शीघ्र विवाह हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने पुत्र के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आप दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में ले लेते हैं। पंडित जी, अंतिम सवाल कौन से दर्शक का आप तक आया है?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1961, रात में 10:25, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? कृष्ण कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कर्ज से मुक्ति 2026 और 27 में मिलेगी। उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है, लेकिन इन 2 सालों में आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपका आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा है। भविष्य में पैसे रुपए को लेकर या जीवन को लेकर कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, आज के ही विषय से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करती हूँ, वो ये कि घर के हालात बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं कि बच्चे की वाणी कैसी होगी। घर में बच्चे होते हैं हर किसी के, तो घर में ऐसा क्या किया जाए और अपने लिए ऐसा क्या कुछ किया जाए कि बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़े कि उसकी वाणी अच्छी हो?
0: जी देखिए, घर का जो माहौल है, बच्चे का जो खान पान है, बच्चे की जो आदतें हैं, वो बच्चे की वाणी पर असर डालती हैं, उसका प्रभाव बच्चे की वाणी पर पड़ता है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो 3 बातों पर ध्यान दीजिए ताकि बच्चे की वाणी बिगड़ने ना पाए, वाणी खराब ना होने पाए। पहला, घर में अपशब्दों का, चीख चिल्लाहट का माहौल मत बनाइए। दूसरे नंबर पर बच्चे को बचपन से ही, शुरुआत में 1 बार 3 बार, उसके बाद 9 बार 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत डलवाइए। या तो बच्चा गायत्री मंत्र पढ़े या सुने बचपन से ही, और हनुमान चालीसा या तो पढ़े या तो सुने। अगर छोटी उम्र से ही बच्चा गायत्री मंत्र सुनेगा या पढ़ेगा या हनुमान चालीसा सुनेगा या पढ़ेगा तो बच्चे की वाणी में पवित्रता आ जाएगी और ग्रह खराब होने के बावजूद बच्चे की वाणी अच्छी रहेगी। बच्चा अपशब्द नहीं बोलेगा, खराब वाणी का प्रयोग नहीं करेगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा में एक साथ कई सारी आरती की जा सकती है? बहुत सारे लोग पूजा के बाद कई सारी आरती करते हैं, क्या ऐसा उचित है? देखिए, आरती पूजा का समापन है, इसलिए एक साथ ढेर सारी आरती नहीं करनी चाहिए। पूजा के अंत में एक मुख्य आरती करिएगा, वही आरती करना उचित होगा। और जैसे ही आप पूजा के अंत में आरती करेंगे, आरती के बाद पूजा का समापन हो जाएगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि शुभ पहर क्या है?
0: दिनांक 23 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी।
1: चलिए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि, आपकी राशि कौन सी है, वो भी आपको जानकारी देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह का कौन सा दिन शुभ है। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। इनके लिए सोमवार, बृहस्पतिवार और रविवार का दिन अच्छा रहता है। इनको बुधवार को और शुक्रवार को महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है विस्तार से। अब बारी आती है खास उपाय, यानी महा उपाय जिसको हम कहते हैं। तो पंडित जी, आज का विशेष उपाय महा उपाय क्या है?
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर त्वचा की समस्या से आपको परेशानी है तो क्या करें। एक हरे रंग की बोतल ले लें, उसमें नारियल का तेल भरें, ऊपर तक मत भरिएगा, थोड़ी सी जगह खाली छोड़िएगा। इस तेल को लगातार 2-3 दिन धूप में रहने दीजिएगा। 3 दिन में ये तेल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जहां जहां त्वचा की समस्या है वहां वहां इसको लगाइएगा, त्वचा की समस्या में आपके सुधार होगा।
1: तो पंडित जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए, उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffeehouse, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: और चलिए अब बात मासूम बच्चों की कर लेते हैं। बच्चों के साथ ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जब वो देर रात तक जागते हैं तो मम्मी पापा उन्हें डांट देते हैं, जिस पर वो मजबूरी से सो भी जाते हैं। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के बच्चों की किस्मत शायद इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छी है। दरअसल वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने खुद एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर एनबीए फाइनल देखने की इजाजत दी गई है। वजह है, 27 साल बाद न्यूयॉर्क की टीम फाइनल में पहुंची है और पूरा शहर जश्न के मूड में है।
8: Who's ready to watch the next? Executive order is signed. Okay, quick.
9: That's amazing.
8: Let's go, Knicks. Let's go, Knicks.
9: Two, three.
10: Hey guys.
11: How are you doing? जुनून में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन न्यूयॉर्क में तो मेयर ही बच्चों के साथ फैन बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक मजेदार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर एनबीए फाइनल्स देखने की अनुमति दी गई। हालांकि ये कोई असली सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि बास्केटबॉल के प्रति दीवानगी दिखाने का एक अनोखा तरीका था।
8: For the next finals run. Are we ready? Who here was alive in 1999? No, you were not. You were? Okay, we're going to talk about that later.
12: I don't know when I was born.
8: All right, here we go. We're signing it.
12: I don't know.
8: Okay, my friends. Executive order is signed.
12: I don't know when I was.
8: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
11: कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भी खास मेहमान बनाया गया। मेयर ने बच्चों को उस दस्तावेज पर अपने हाथों के निशान लगाने के लिए आमंत्रित किया और फिर सबने मिलकर न्यूयॉर्क निक्स के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। पूरा माहौल किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसा नजर आया।
8: ओके, क्विक,
13: यस गर्ल,
8: डिसाइसिव।
11: इस उत्साह की वजह भी खास है। न्यूयॉर्क निक्स 1999 के बाद पहली बार एनबीए फाइनल्स में पहुंची है, यानी लगभग 3 दशक बाद टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।
8: Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks!
11: फाइनल में उसका मुकाबला सैन एंटोनियो स्पर्स से होगा और पहला मैच बुधवार रात खेला जाएगा। टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया है।
8: Okay.
11: अब तो फैंस की लिस्ट में खुद मेयर भी खुलकर सामने आ गए हैं। वैसे आदेश कानूनी रूप से भले लागू ना हो, लेकिन न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए इससे बेहतर बहाना शायद ही कोई हो सकता है। अगर मम्मी पापा सोने के लिए कहें तो जवाब तैयार है, वो ये कि मेयर ने खुद इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुड न्यूज टुडे आपसे ऐसे कुछ वीडियो शेयर करने की अपील कर रहा है जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, खासकर ऑफ बीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाए। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं ले। सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन जहां एक्टर रणवीर सिंह और गौरव गेरा का नमक की चाय पीते शूट जो है वो एक सीक्वेंस शूट हुआ। सोशल मीडिया पर इस खास चाय की दुकान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन यहां बैठकर चुस्की लेने से पहले एक शर्त आपको माननी होगी, वो ये कि हर शख्स को

0: की याद में डूबने को लेकर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है।
1: लास्ट ईयर जब शूटिंग हुआ था तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा रहता है, कम लोग, कोई अपने लोकल लोग से काम था, कुछ थोड़ी साल के रिलीज के बाद काफी लोग आए, कुछ स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स आए, कुछ जिन्होंने रील्स डाली है, तो उसके वजह से सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास लोग आने शुरू हुए हैं, तो जितना रश हो रहा है, जितना भीड़ हो रहा है, जितना लोग आ रहे हैं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ।
0: जरा धुरंधर के उस सीन को याद कीजिए जब इस सीट पर फिल्म में आलम भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा हीरो रणवीर सिंह के साथ बैठकर नमक चाय पीते हैं, और यहीं से धुरंधर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। बस ये समझ लीजिए कि अब ये दुकान कोई मामूली टपरी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक फैन जोन बन गई है। दीवारों पर धुरंधर फिल्म के पोस्टर्स लगे हैं और माहौल लोगों को एकदम फिल्मी बना दे रहा है।
2: यहाँ आके हम लोग एक घंटा वेट किया, तब जाके हमें यहाँ पे ये जगह मिली है, तब जाके हम लोग ये कैरेक्टर में बैठ पाए। वो हमारा एक प्राउड है कि इंडिया के ऊपर ये मूवी बना है और इतना फेमस हुआ है कि इसके कारण ये कैफे भी फेमस हो गया। इसका मेन सीन यही शूट हुआ है, इसके कारण जो भी क्लाइंट है उसका पहले यही फरमाइश रहता है कि हमें धुरंधर कैफे ही देखना है, हम कुछ नहीं देखना, पहले धुरंधर कैफे देख लिया, हमारे ले पूरा हो गया।
0: दुकान की मशहूरियत देख दुकान मालिक भी खुश है, तो वहीं आप अकेले जाएं, दोस्तों संग यहाँ बैठें, इस टेबल पर दो कप चाय पीना तो बनता है।
1: हम नंबर लिखते हैं सीरियल वाइज से, हम उनका टोकन देते हैं, उन्हें नेम लिखते हैं, उस हिसाब से हम लोग को बुलाते हैं, जैसा नंबर आता है। तो दो चाय कंपलसरी लोगों ने रखा है इस सीन को लेके, एक बहुत एक वायरल सीन है फ्रेंडशिप को लेके, तो इसलिए लोग इसे बहुत चाह रहे हैं इस चीज को।
0: तस्वीरों में एक और रणवीर सिंह की फोटो के सामने लगी इस हॉट सीट पर बैठकर धुरंधर के कैरेक्टर में लोग डूब रहे हैं, तो कुछ में धुरंधर मूवी के माहौल को महसूस करने का बेसब्र इंतजार भी दिखा। तो अगर आप बना रहे हैं ले जाने का प्लान, धुरंधर फिल्म से सुर्खियों में आई स्पेशल चाय की दुकान पर आप जरूर जाएं, दो कप चाय का लुत्फ उठाएं और अपनी लेह ट्रिप को यादगार बनाएं।
3: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
4: कला सिर्फ मंचों और दीवारों पर ही नहीं दिखती, कभी कभी रोजमर्रा के काम में भी अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। अब इस शख्स को ही देखिए, जिस तरह से ये मछली पकड़ने का जाल हवा में उछालता है वो किसी कलाकार के प्रदर्शन से कम नहीं लगता। जाल घूमते हुए ऐसा लगता है मानो नदी में कोई विशाल फूल खिल गया हो। सालों की मेहनत और अभ्यास इस एक पल में साफ दिखाई दे रहा है। इसकी शानदार तकनीक देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इंसानियत और दया की छोटी छोटी मिसालें दिल जीत लेती हैं। इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया, बड़े प्यार और धैर्य के साथ वो फलों को काटकर बंदरों को खिला रही है। आज तो बंदर भाइयों की मानो लॉटरी लग गई है, केले तरबूज और खीरे का भरपूर आनंद जो मिल रहा है। महिला के चेहरे की मुस्कान और जानवरों के प्रति उसका स्नेह देखने लायक है। ये नज़ारा बताता है कि प्रेम की भाषा हर जीव समझता है और दया हमेशा खुशी बांटती है। हरियाणा की मिट्टी से पहलवान निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन नन्हे उस्तादों का जोश देखते ही बनता है। अभी ठीक से कदम जमाना सीखा ही था कि अखाड़े में कुश्ती की तैयारी शुरू हो गई। छोटे छोटे हाथ, बड़े बड़े हौसले और जीतने का जुनून हर दांव में दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात है मुकाबले के बाद उनके चेहरों पर खिली मासूम मुस्कान। इन्हें देखकर लगता है कि भविष्य के चैंपियन यहीं तैयार हो रहे हैं। इनकी मेहनत और उत्साह मन को खुशी से भर देती है। मुंबई के दादर स्थित मुथू डोसा कॉर्नर में डोसा बनाना और परोसना भी किसी कला से कम नहीं है। खासकर मुथू के सहायक की फुर्ती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिस सटीक अंदाज में वो दूर तक डोसा प्लेट पहुंचाते हैं, उसे देखकर क्रिकेट प्रेमी मजाक में उन्हें भारतीय टीम का स्लिप फील्डर बनाने की सलाह

0: सकते हैं। तेजी, संतुलन और बेहतरीन तालमेल उनकी पहचान है। ग्राहकों के लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक मनोरंजक अनुभव भी बन जाता है। पेंट करना तो सभी ने देखा होगा, लेकिन ऐसा अनोखा तरीका शायद ही कभी देखा हो। ये कलाकार एक गोल घेरे में लगातार घूमते हुए पेंट करता है और कमाल की बात यह है कि उसका संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ता। हर चक्कर के साथ रंग सतह पर बेहद खूबसूरती से फैलते जाते हैं। देखने वालों को ये काम आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जबरदस्त अभ्यास और समझ छिपी है। कलाकार की अनूठी शैली लोगों को चौंका रही है और उसकी प्रतिभा की खूब सराहना हो रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: न्यूयॉर्क राज्य सेनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया। भारत प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी मान्यता दी गई।
4: देशभर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है उद्देश्य।
3: आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन।
4: कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रायल रन, लगभग 8.5 घंटे रह जाएगी बेंगलुरु से मैंगलुरु की दूरी।
3: महाराष्ट्र में राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में सबसे खुशुमा रहेगा मौसम।
4: तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, संतान रोग से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: उम्मीदों भरपहर की खुशी भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव प्राश शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: शुभ समाचार में बात संकष्टी चतुर्थी की होगी, आज विभुवन संकष्टी चतुर्थी है, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति जी का ये पर्व मनाया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास के दौरान पड़ने से इसका महत्व जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत में श्रद्धालु दिन भर उपवास रखकर विघ्नहर्ता गणपति की पूजा अर्चना करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण कर देते हैं। तो देश भर में कैसी रौनक है आगे आपको दिखाएंगे।
4: तो बात अमरनाथ यात्रा की भी होगी, आज से ठीक 1 महीने बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होकर बाबा बर्फानी की ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी, इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रंगाई पुताई सफाई समेत तमाम इंतजामों को पुख्ता करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने।
3: बिल्कुल कितना देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इसी बीच केदारधाम में कैरीमी बैग का नीति शुरू कर दी गई है, इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का सहयोग भी मिल रहा है, वो इसकी भी विस्तार से बात करेंगे।
4: तो वहीं गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही कल से मॉनसून के केरलम में एंट्री करने की भी संभावना है, कहां कहां कब पहुंचेगा मॉनसून ये भी आगे आपको बताएंगे।
3: देखिए इसके अलावा तमिलनाडु के श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, इसमें कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रोगों से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए यह पर्व मनाया जाता है, तो इसके रंग भी आपको तमाम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
4: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 30 लाख पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 11 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
3: अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भगवती नगर यात्री निवास की साफ सफाई, मरम्मत और रंग रोगन का काम अंतिम चरण में नजर आ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम 15 जून तक पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है।
4: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से पहले कावड़िया मार्ग पर आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। मुंगेर जिले के असरगंज कच्ची कावड़िया मार्ग पर एक पूर्व सैनिक को अपने पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की ओर डाक कावड़ यात्रा करते हुए देखा गया। उनकी असाधारण भक्ति और कठिन तपस्या राहगीरों और श्रद्धालुओं दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।
3: देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा कारणों से मोबाइल और बैग ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से पहले अपने सामान क्लॉक रूम में जमा कराने होंगे, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने अमानत घर बना रही है।
4: मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मौसम ने खुशनुमा करवट ली है। बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजान दर्रे पर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों के बीच भारी उत्साह है और पर्यटक इस अद्भुत नजारे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
3: मैदानी इलाकों में बढ़ती भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिमाचल के पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं। चंबा में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां पर लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, पारंपरिक हिमाचली पोशाकें पहनकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
4: भारत में रुद्रम 2 का सफल परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया। ये देश की स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है।
3: ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस आकाश लॉयटरिंग म्यूनिशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों के इस्तेमाल के बाद दुनिया में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि भी दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे की भी मंजूरी मिल चुकी है। इनकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है।
4: रामचरण और जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म पेरी को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म के हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार ये फिल्म कर चुकी है। ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत यात्रा महाकुंभ के साथ करने जा रहे हैं। पहाड़ों की रंगत पूरी तरीके से बदल गई है। चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आ रहा है। मंदिर से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन यात्रा रिकॉर्ड बना रही है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ जबरदस्त देखने को मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दोनों भक्तों का हुजूम देखने को मिला। स्थिति यह आ गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। ऐसा ही उत्साह जो है बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी बना हुआ है। उत्तराखंड के साथ साथ आज से ठीक एक महीने बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए भी तैयारियां जबरदस्त है। देखिए 3 जुलाई से शुरू होकर बाबा बर्फानी की ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। यात्रियों का पहला जत्था जो है 2 जुलाई को जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा
1: और 3 जुलाई से यात्रा औपचारिक रूप से दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल से शुरू होगी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रंगाई पुताई सफाई समेत तमाम इंतजामों को पुख्ता करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है।
2: बेहद करीब आ गई है बाबा बर्फानी के पावन दर्शन की घड़ी। एक बार फिर बरसेगी शिव भक्तों पर बाबा बर्फानी की कृपा। आज से ठीक एक महीने बाद बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्त कम है, लिहाजा अमरनाथ यात्रियों की सुगम और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
3: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें जो ये यात्री निवास भवन है इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं जो अलग अलग यहां पर जो भवन है जो हॉल्स है यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो कश्मीर घाटी हो दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
2: इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहां श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1600 से ज्यादा यात्रियों के रहने की व्यवस्था होती है, इसलिए यहां पर यात्रियों के ठहरने लंगर मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
3: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहाँ हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम्स भी यहाँ अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है उनके पास जो अपने बैग्स हैं वो यहाँ पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहाँ पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहाँ पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ गलियारे में क्योंकि हॉल्स हॉल्स अंदर हैं, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी हैं, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो हैं अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
2: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब पार्किंग का इंतजाम है, इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
3: हाँ, मैं खड़ा हूँ, अगर मैं इस स्थान की बात करूँ, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो हैं कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज़्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।
2: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनके सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना भी शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और IGP जम्मू भीमसेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
4: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति हम लोग चाकचौबंद रहेंगे।
2: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी लगातार बना हुआ है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जन सैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान कर रही है। चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: चूँकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहां यह नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमल नैन सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर देखने को मिल रही है। यहां लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना होने के साथ ही हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेकने पहुंच चुके हैं और यात्रा निरंतर जारी है। कभी कभी मौसम बदलने पर हल्की बर्फबारी भी हो रही है, फिर भी 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गुरुद्वारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

0: हेमकुंड साहिब हिमालय की गोद में बसा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल, जहां इन दिनों आस्था का मेला लगा है। एक तरफ चार धामों की रौनक तो वहीं दूसरी ओर सात बर्फीली चोटियों से घिरे इस पवित्र दरबार में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे, तब से लेकर अब तक करीब 40,000 लोग पवित्र हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। यहां रोजाना करीब 5,000 से 10,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहां ठंड लगातार बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है।
1: साल पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। मौसम ठीक है, यात्री को सुगम और अच्छे तरीके से यात्रा पुलिस द्वारा भी और गुरुद्वारा द्वारा भी सभी सहूलतों के साथ करवाई जा रही है। इन केस कभी बर्फबारी होती है तो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है, SDRF अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा गुरुद्वारा साहब का स्टाफ और मेडिकल के डॉक्टर, लंगर के सेवादार सभी अपना ड्यूटी जो है तनदेही से निभा रहे हैं।
0: हेमकुंड साहिब में हालांकि कभी कभी बारिश देखने को मिल जाती है, लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए इस समय यात्रा पर रोक है। जून के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, पर हेमकुंड साहिब में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं, अपने 7 दिनों की दवाइयाँ अपने साथ लाने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ साधना की थी। अपनी आत्मकथा दसम ग्रंथ में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। चमोली से कमलन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब आपको ओडिशा लिए चलते हैं। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विराट कोहली की कलाकृति बनाई है। IPL जीतने पर विराट के लिए यह आर्ट बनाया गया। इस आर्ट के जरिए विराट कोहली की अचीवमेंट और IPL विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया। कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मैचों में से 675 रन बटोरे।
3: देखिए, IPL जीत का जश्न, ट्रॉफी की चमक और करोड़ों फैंस की बधाइयों के बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर से भक्ति की ओर शरण में नजर आए। RCB की लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी जीतने से महज 2 दिन बाद ये स्टार कपल वृंदावन में दिखा, जहां पर उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। वायरल तस्वीरों और वीडियो में विराट और अनुष्का राधा कैली कुंज आश्रम में दिखाई दे रहे हैं।
4: ये तस्वीर सिर्फ सफलता की नहीं, धर्म की ताकत भी है, जिसने खेल के मैदान पर कई रन बनाए। जिसकी एक झलक पाने को फैन बेताब रहते हैं, वो आज भी उस शक्ति के सामने सिर झुकाता है। इसी अध्यात्म की डोर में बंधे विराट कोहली और अनुष्का एक बार फिर वृंदावन में अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को पहुंचे। विराट अनुष्का साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे के आश्रम गए। वहां दोनों ने प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में सिर नवाया। आश्रम में सत्संग और आध्यात्मिक चर्चा हुई। दोनों ने शांत वातावरण में कुछ पल बिताए। उनके इस आध्यात्मिक दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें विराट और अनुष्का की विनम्रता और भावुकता साफ नजर आ रही है। ये धर्म की ताकत है जो चैंपियन को साधक बनाती है। विराट कोहली ने मैदान पर हमेशा आक्रामक और जुझारू खेल दिखाया है, लेकिन उनके अंदर की शांति और संतुलन का राज इन आध्यात्मिक यात्राओं में छिपा है। ये पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे हों। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक अनुष्का और विराट कई बार उनके दर्शन के लिए गए हैं। हाल ही में संत प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अप्रैल में अक्षय तृतीया के मौके पर दर्शन करने गए थे। फरवरी में भी अपने परिवार के साथ दर्शन को आए थे। दिसंबर 2025 में भी दर्शन करने गए थे। 2025 में ही मई महीने में दोनों ने प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया था, जबकि 2025 की शुरुआत भी प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से ही की थी। बार बार दर्शन के लिए वृंदावन आना ये बताता है कि मैदान पर रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। हर वो इंसान जो इस मार्ग पर चलता है, वो जान पाता है कि शांति और सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा है संकष्टी चतुर्थी को लेकर देश भर में उत्साह।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
7: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे
14: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
3: न्यूयॉर्क राज्य सेनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया। भारत प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी मान्यता दी गई।
2: देशभर में मनाया जा रहा विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है उद्देश्य।
3: आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन।
2: कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रायल रन, लगभग 8.5 घंटे रह जाएगी बेंगलुरु से मैंगलुरु की दूरी।
3: महाराष्ट्र के राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम।
2: तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन, संतान रोगों से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आस्था, भक्ति और उत्साह की। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आज श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व विभुवन संगष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है और भगवान गणेश को समर्पित ये व्रत जो है विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। इस बार ये व्रत जो है पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता देखिए इसमें ये है कि इस दिन विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस खास मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया, सुबह भव्य आरती हुई जिससे पूरा माहौल बप्पामय हो गया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में।
2: तो विघ्नों का नाश करने वाले बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की आराधना का आज महापर्व विभुवन संकष्टी चतुर्थी है, जो आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, श्रद्धालु भगवान गणेश के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर सुख और समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं।
3: चलिए कुछ और खबरों की बात करेंगे। आज विश्व साइकिल दिवस है, देश भर में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दिल्ली में इस मौके पर खास साइकिल रैली निकाली गई, इसमें साइकिल प्रेमी शामिल हुए। साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा होता है और जेब पर भी कोई इसका असर नहीं होता, इसी संदेश के साथ तमाम साइकिलिस्ट आज शामिल हुए। देखिए तस्वीरें, राजधानी की तस्वीरें।

0: और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों प्री मानसून बारिश हो रही है, जिससे लोगों को चलचलाती गर्मी से राहत मिली है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में भी प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राहत की बात यह है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। कई जगह बर्फबारी भी हो रही है। पहाड़ों पर जून में हो रही बर्फबारी किसी करिश्मे से कम नहीं। वहीं माना जा रहा है कि कल मानसून के केरलम में एंट्री करने की भी संभावनाएं हैं, जिसके बाद धीरे धीरे मानसून पूरे देश में फैल जाएगा और 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा।
1: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक प्री मानसून बारिश आसमान से राहत लेकर आई है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं कम ज्यादा। मानसून से पहले आई इस बारिश ने न सिर्फ चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से छुटकारा दिलाया है, बल्कि मौसम को खुशगवार बना दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, तमिलनाडु, बेंगलुरु, आगरा, अलवर, देश के ज्यादातर इलाके प्री मानसून की बारिश से भीग उठे हैं। दिल्ली NCR को अच्छी बारिश का भी इंतजार है, लेकिन मौसम फिलहाल यहां का भी कूल कूल बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली NCR का मौसम सुहाना बना रहेगा।
2: आप NCR दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर है वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं NCR दिल्ली में हो ही सकता है।
1: मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून कल यानी 4 जून तक केरलम पहुँच सकता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देश के सभी हिस्सों में दस्तक देगा। जून के दूसरे हफ्ते में 10 तारीख के करीब मानसून मुंबई और महाराष्ट्र में दस्तक देगा। 15 से 20 जून के बीच मानसून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच सामान्य से करीब एक हफ्ते की देरी से मानसून पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 जून से 30 जून के बीच मानसून पहुँच सकता है। 25 से 30 जून के बीच इसके दिल्ली NCR पहुँचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून पहुंच सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर भारत में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। भले ही मुख्य मानसून उत्तर और मध्य भारत में जून के आखिरी हफ्तों में पहुंचेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्री मानसून गतिविधियों की वजह से दिल्ली, यूपी, MP और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिली है। राहत की बात यह भी है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा और प्री मानसून बारिश राहत की फुहारें बरसाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, एक दिन बाद देश में मानसून की एंट्री की पूरी पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने 4 जून को केरलम में मानसून के आने की संभावना जताई है। इस बीच प्री मानसून की बारिश चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा दिलाकर सुकून का एहसास करा रही है। चलिए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
0: जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश और आंधी आ सकती है। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है।
3: बिल्कुल गीतिका, देखिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश और आंधी तूफान का असर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।
0: तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में इन दिनों मौसम बेहद खुशगवार बना हुआ है। मई के आखिरी दिनों में शुरू हुई हल्की बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की सफेदी छाने लगी है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बांदीपुरा गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान पास पर इन दिनों हो रही बर्फबारी का रेयर माना इसको जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बर्फबारी की वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसकी वजह बताई जा रही है और बांदीपुरा और पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 5 जून तक एक और नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इसके चलते बांदीपुरा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। फिलहाल तो बांदीपुरा की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और मैदानी इलाकों की गर्मी से दूर यहां की आबो हवा का जी भर कर आनंद उठा रहे हैं।
4: इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं।
5: सम साउथ से पहुँच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं। ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं। हमको लग रहा है कि हम मूवी में है कोई।
6: काफी देर बाद व्यू देखो, सच ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पे इस समय जम्मू में जहाँ पे और हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ ट्रेड चल रही है और इस समय आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे। सबको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए वेदर के बारे में।
3: देखिए गर्मी से तपते शहरों से लोग तेजी से पहाड़ों की तरफ लगातार रुक कर रहे हैं। हर एक हिल स्टेशन सैलानियों से फुल है। शहर से हिल स्टेशन गए लोग मौसम के मिजाज को देखकर हैरान है।
7: डलहौजी से 25 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये है खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन इन दोनों सैलानियों से गुलजार है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और एक कटोरी नुमा हरा भरा खुला मैदान और बीच में एक छोटी सी झील सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। देश के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, ऐसे में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और पहाड़ों में अगर बात हिमाचल प्रदेश की हो तो ये जगह सैलानियों के लिए खास है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर सुहावना मौसम तक सैलानियों को खूब लुभा रहा है। यहाँ आए सैलानियों में कोई नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई अपने परिजनों के साथ थिरक रहा है, मानो यहाँ के मौसम में ही कोई जादू हो जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुड न्यूज टुडे आपसे कुछ ऐसे वीडियोस को शेयर करने की अपील कर रहा है जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट पैलेसेस खासतौर ऑफबीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाएं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं ले। सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन जहां एक्टर रणवीर सिंह और गौरव गेरा का नमक की चाय पीते हुए सीन को शूट किया गया था।

0: सैर सपाटे के शौकीनों को खासकर पहाड़ों का सुकून हमेशा से भाता रहा है। ऐसे में आपके लिए लेह परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ नेचर की अनोखी खूबसूरती है, लेकिन आजकल यहाँ की मस्जिद गली में बनी ये 10 साल पुरानी चाय की दुकान भी किसी स्टार टी स्टॉल से कम नहीं। कारण है रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म, जिसकी एक शूटिंग लोकेशन ये चाय की दुकान भी रही। SH खान रेस्टोरेंट नाम का ये टी स्टॉल है, जो अपने फिल्मी नाम वाशमा बट से भी मशहूर है। दुकान में फिल्म के पोस्टर, वो हॉट सीट और पर्यटकों की बेकरारी साफ दर्शा रही है कि दुकान मालिक ने लोगों को धुरंधर फिल्म की याद में डूबने को लेकर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है।
1: लास्ट ईयर जब शूटिंग हुआ था तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा रहता है, कम लोग, कोई अपने लोकल लोग से काम था। कुछ थोड़ी साल के रिलीज के बाद काफी लोग आए, कुछ स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स आए, कुछ जिन्होंने रील्स डाली है, तो उसके वजह से सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास लोग आने शुरू हुए हैं। तो जितना रश हो रहा है, जितना भीड़ हो रहा है, जितना लोग आ रहे हैं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ।
0: जरा धुरंधर के उस सीन को याद कीजिए, जब इस सीट पर फिल्म में आलम भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा हीरो रणवीर सिंह के साथ बैठकर नमक चाय पीते हैं, और यहीं से धुरंधर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। बस ये समझ लीजिए कि अब ये दुकान कोई मामूली टपरी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक फैन जोन बन गई है। दीवारों पर धुरंधर फिल्म के पोस्टर्स लगे हैं और माहौल लोगों को एकदम फिल्मी बना दे रहा है।
2: यहाँ आके हम लोग एक घंटा वेट किया, तब जाके हमें यहाँ पे ये जगह मिली है, तब जाके हम लोग ये कैरेक्टर में बैठ पाए। वो हमारा एक प्राउड है कि इंडिया के ऊपर ये मूवी बना है और इतना फेमस हुआ है कि इसके कारण ये कैफे भी फेमस हो गया। इसका मेन सीन यही शूट हुआ है, इसके कारण जो भी क्लाइंट है उसका बस पहले यही फरमाइश रहता है कि हमें धुरंधर कैफे ही देखना है। हम कुछ नहीं देखना, पहले धुरंधर कैफे देख लिया, हमारे लिए पूरा हो गया।
0: दुकान की मशहूरियत देख दुकान मालिक भी खुश है, तो वहीं आप अकेले जाएं, दोस्तों संग यहां बैठें, इस टेबल पर दो कप चाय पीना तो बनता है।
1: हम नंबर लिखते हैं सीरियल वाइज से, हम उनका टोकन देते हैं, उन्हें नेम लिखते हैं, उस हिसाब से हम लोग को बुलाते हैं, जैसा नंबर आता है। तो दो चाय कंपलसरी लोगों ने रखा है इस सीन को लेके, एक बहुत एक वायरल सीन है फ्रेंडशिप को लेके, तो इसलिए लोग इसे बहुत चाह रहे हैं इस चीज को।
0: तस्वीरों में एक और रणवीर सिंह की फोटो के सामने लगी इस हॉट सीट पर बैठकर धुरंधर के कैरेक्टर में लोग डूब रहे हैं, तो कुछ में धुरंधर मूवी के माहौल को महसूस करने का बेसब्र इंतजार भी दिखा। तो अगर आप बना रहे हैं ले जाने का प्लान, धुरंधर फिल्म से सुर्खियों में आई स्पेशल चाय की दुकान पर आप जरूर जाएं, दो कप चाय का लुत्फ उठाएं और अपने लेह ट्रिप को यादगार बनाएं।
3: तो देखिए, आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी खबर जिसे देखकर आपको अपनी दिल्ली पर गर्व होगा। दिल्ली सरकार ने बेजुबान पक्षियों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नेक पहल की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय के पास फ्लाईओवर के नीचे एक विशेष बर्ड हाउस का निर्माण किया है। इसे आप परिंदों का कूल आशियाना कह सकते हैं। इस पहल का मकसद गर्मी से परेशान परिंदों, घायल और बीमार पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह बर्ड हाउस जितना खूबसूरत है उतना ही हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ पक्षियों के रहने खाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे कर्नाटक, जहां सत्ता में आज से बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन वहां ज्योतिष की भी काफी चर्चा है। दरअसल डीके शिवकुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धरमैया ने हाल ही में आलाकमान के कहने पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिवकुमार को राज्य की बागडोर सौंपी जा रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि शपथ समारोह में ज्योतिष के हिसाब से बदलाव भी हुआ है। शिवकुमार को ज्योतिष पर काफी भरोसा है, ऐसे में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ज्योतिषी की सलाह का पालन किया। शिव कुमार ने परंपरा तोड़ते हुए मंच को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित करवाया। ज्योतिषी की सलाह के बाद पूर्व मुखी नया मंच तैयार करवाया गया। हालांकि परंपरा के अनुसार कर्नाटक के सभी मुख्यमंत्री लोकभवन में पश्चिम मुखी मंच पर ही शपथ लेते आए हैं, लेकिन डीके शिवकुमार की इस इच्छा के बाद मंच की बनावट में बदलाव किया गया और उसी के अनुरूप एक नया मंच तैयार करवाया गया। इस बदलाव के चलते बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा योजनाओं, मीडिया के लिए निर्धारित स्थान और वीआईपी प्रवेश मार्गों में भी फेरबदल करना पड़ा।
3: बिल्कुल गीतिका, देखिए वैसे कहा यह भी जाता है कि शिवकुमार ने नवंबर दिसंबर में ही ये कह दिया था कि 6 महीने बाद उनका राजयोग आ रहा है। शिवकुमार ज्योतिष को काफी ज्यादा मानते हैं, उनकी सलाह पर ही काफी काम करते हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है। देखिए आधुनिकता की दौड़ में हिंदुस्तान की सनातन भाषा संस्कृति हमसे काफी पीछे छूट चुकी है। वैदिक काल में घर घर की बोलचाल की भाषा रही संस्कृत आम लोगों के बीच अब कौतूहल का विषय बन चुकी है। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप एक सभ्य सभा में मौजूद हैं और वहां एक वक्ता फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ शुद्ध व्याकरण के साथ संस्कृत बोलने लगे, जाहिर सी बात है आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। अब हम आपको ऐसी ही एक सभा में ले चलते हैं जहां पर पूरे प्रवाह के साथ संस्कृत बोलने वाला शख्स अपने लिए जाना जाता है, बल्कि आप उसे जानते हैं। ये बॉलीवुड के एक्शन हीरो हैं, देखिए।
5: कमांडो फेम बॉलीवुड स्टार विद्युत जम्वाल की भारतीय योग पद्धति में गहरी अभिरुचि से दुनिया वाकिफ है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी उनकी अद्भुत मास्टरी है। इसकी झलक देखने को मिली योगोत्सव 2026 कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के लोनावला स्थित कैवल्य धाम में इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से आयोजित योगोत्सव 2026 में विद्युत जामवाल ने अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह भाषण देकर सबको हक्का बक्का कर दिया।
6: अस्माक्षु संस्कृत सभायाम उपस्थित सर्वे सम्माननीय, एतत् अवसर प्राप्त हम अत्यंत सम्मानित अस्मि। अहम सनिधियो वदन महत सौभाग्यमणे अस्मिन् शुभ संवेशाम अहम आदर पूर्वक वंदे।
5: भारतीय योग विज्ञान पर 29 और 30 मई को हुए इस कार्यक्रम में विद्युत जम्वाल को एंशियंट रूट्स फ्यूचर मूव्स योगा फॉर दिस जेनरेशन नाम के विशेष पैनल में वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर इंडियन योगा एसोसिएशन ने उन्हें एम्बेसडर फॉर यूथ IDY 2026 के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए योग, प्राणायाम, सोशल मीडिया, स्क्रीन एडिक्शन और मानसिक शांति जैसे विषयों पर अपने विचार और अनुभव साझा किए। एक ही वक्ता के मुख से निकली संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वहाँ मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए।
7: मैं ये बोलना चाहता
6: था, आदमी के अंदर एक कोई अपनी चीज होती है एंड जब भी मैं नर्वस होता हूँ या कुछ एक्साइटमेंट होती है, प्यार की बात होती है, गुस्से की बात होती है

0: एक ही सांस में शंख की इतनी लंबी टंकार शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। साफ है कि विद्युत जामवाल भारतीय योग पद्धति पर सिर्फ स्पीच ही नहीं देते बल्कि वो इसके डीप प्रैक्टिशनर भी हैं। और यही वजह है कि सनातन संस्कृति और उसके स्क्रिप्चर्स में उनकी गहरी आस्था है। जामवाल ने अप्रैल 2026 में लास वेगास में आयोजित सिनेमाकॉन के दौरान अपनी हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के प्रमोशन के मंच पर गायत्री मंत्र का जाप करके सबको हैरान कर दिया था। लास वेगास में हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक अभिनेता के मुख से गायत्री मंत्र का जाप सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। पूरी दुनिया में जामवाल की इस पहल की खूब तारीफ हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए विद्या बालन की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: दिस इज दही।
3: व्हाट इज दही?
2: मिल्क स्लीप एट नाइट, मॉर्निंग बिकम टाइट।
4: कि जिंदगी में सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करो, अब मेरा थोबड़ा क्या देख रहे, जाओ ना करो।
5: और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: क्या चंदन के प्रयोग से क्रोध को कम किया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है? क्या चंदन के प्रयोग से राहु और केतु की बाधा को दूर कर सकते हैं? क्या है चंदन का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत Connect.
8: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: न्यूयॉर्क राज्य सेनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के

में घोषित करने का प्रस्ताव किया भारत। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों के सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। देश भर में मनाया जा रहा विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना उद्देश्य। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, गुंटूर में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र से राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम। तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, संतान रोगों से मुक्ति और नागदोष निवारण के लिए मनाया जाता है पर्व।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। पूजा उपासना में चंदन कितना मूल्यवान है, चंदन लगाना कितना अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि चंदन की विशिष्टताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और ग्रहों के मामले में चंदन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं सैंडलवुड की, यानी चंदन की। चंदन को मूल्यवान क्यों समझा जाता है, इसका महत्व क्या है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध जितनी पवित्र है, उतनी ज्यादा पवित्र कोई सुगंध नहीं मानी जाती। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन, और दोनों का खूब प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके से लाल और सफेद चंदन का प्रयोग पूजा उपासना में भी होता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में अन्य सुगंधों का भी प्रयोग होता है, लेकिन जो बात चंदन की है वो बात किसी और सुगंध की नहीं है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाकर चारों तरफ से उसमें चंदन लगाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतार, विशेषकर भगवान कृष्ण के लिए सफेद चंदन का लेपन किया जाता है और इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देवी की उपासना में, माता की उपासना में भी चंदन का प्रयोग होता है। हालांकि देवी की उपासना में लाल चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन का प्रयोग करके ध्यान की परंपरा बताई गई है। अलग अलग चक्रों पर चंदन लगाकर ध्यान किया जाता है। और ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध चंदन आपको मिले और आप नियमित रूप से अपने मस्तक पर और अपने शरीर पर लगाने लगें तो आपकी भावनाएं भी पवित्र हो जाएंगी। चंदन इतना शक्तिशाली माना जाता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर की समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि चंदन के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, अगर आप नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं चंदन का लेप, चाहे लंबा तिलक लगाएं, इससे आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा। चंदन का नियमित तिलक लगाने से क्रोध कम होता है और तनाव की स्थिति में सुधार होता है। चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर अगर गले में पहना जाए या भुजाओं में बांधा जाए तो राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है। चंदन की सुगंध अगर आप नियमित रूप से लगाएं और लगाकर कहीं जाएं तो नजर नहीं लगेगी, नजर दोष से और डिप्रेशन की समस्या से आप बचेंगे। चंदन की माला से अगर आप मंत्र जप करें, खास तौर से श्री कृष्ण के मंत्र का जप अगर चंदन की माला से किया जाए तो आकर्षण में वृद्धि होती है। देखिए, जिनको बहुत तनाव होता है या जो बहुत चिंता करते हैं, उन्हें रोज स्नान के बाद मस्तक पर और कंठ पर सफेद चंदन लगाना चाहिए। जिनको ये शिकायत है कि मुझे बार बार नजर लग जाती है, मैं बार बार शादी पार्टी में जाने के बाद बीमार पड़ जाता हूं, ऐसे लोग चंदन की सुगंध लगा करके जाएं, अच्छा होगा। और जीवन में अगर बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, या तो चंदन की माला अपने गले में धारण करें, चंदन के दानों की बनी हुई माला, या चंदन की लकड़ी नीले धागे में डालकर अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।

मकर राशि, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चंदन के महत्व की और उसके विशेष प्रयोग की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, निरंतर नियमित रूप से करते जाएं, आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at CMEFCU.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org for details.
1: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी त्रेता युग में तो राम कथा के रसक हैं, ये चारों युगों में रसक हैं, लेकिन चारों युग परिताप में हनुमान जी के हम एक युग की कथा और बताते हैं। द्वापर युग की कथा सुनो। द्वापर युग में भी वीर बजरंग बली ने कथा सुनी भगवान कृष्ण से। लोग मानते हैं गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऐसी सुनी जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी को दिया। अच्छा, हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला। देखो कितनी अच्छी बात, राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी चरित्र पढ़ना तो भगवान कृष्ण का भी काम बिना हनुमान के नहीं चला, दोनों को जरूरत पड़ी। हनुमान जी महाराज की एक चरित्र की द्वापर युग की चर्चा हम आपको बता दें। द्वापर युग की चरित्र की एक चर्चा है। मन में हनुमत

योद्धा एक समान है, जैसे अर्जुन को श्याम प्रिय है, हनुमान जी को राम प्रिय है। तो एक घटना घटी, एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, एक काम करो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, जाओ पूजा के लिए फूल ले आना। अर्जुन जी ने आज्ञा मान ली। तो एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन जी कहां गए फूल लेने, कहां गए? पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अरे पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी से कहा, जाओ पुष्प लेकर के आओ। फूल लेने के लिए अर्जुन गए, जहां कदली वन में वीर बजरंग बली विराजमान, उन्हीं हनुमान जी का जहां अवतार हुआ उसी वन में अर्जुन जी आ गए। पुष्प लाने के लिए कदली वन में आए, हनुमान जी वहीं केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। द्वापर युग की घटना, हनुमान जी केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे, अजर अमर हैं हनुमान जी तो, और पत्तों के बीच में छुप कर बैठ करके हनुमान जी

हनुमान जी पेड़ के बीच में बैठकर सीताराम का कीर्तन कर रहे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में अर्जुन जी आए, अर्जुन जी आए बाग में।

जहां पर हनुमान जी विराजमान थे वहीं पर अर्जुन जी गए और फूल तोड़ने लगे, और जैसे ही फूल तोड़ने लगे सो ही हनुमान जी दौड़े दौड़े, ए भैया रोको रोको रोको, क्या कर रहे क्या कर रहे हो? अर्जुन जी बोले फूल तोड़ रहे। अरे भाई फूल तोड़ रहे तो कम से कम पूंछ तो लेना चाहिए, बिना पूंछ करके फूल तोड़ रहे हो? अरे पूंछ करके फूल तोड़ते, हम यहीं तो थे, हमसे पूंछ लेते। अर्जुन जी ने कहा अब तोड़ लिया तो क्या बिगड़ गया? हनुमान जी बोले ऐसे कैसे क्या बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया, जब हम यहां हैं हमसे पूछ लेना चाहिए, फूल तोड़ना है काय के लिए तोड़े? अर्जुन जी बोले तो भाई नहीं पूछा, पूजा के लिए लेना था, अब पूजा के लिए पुष्प लेना था सो तोड़ लिए। हनुमान जी बोले ठीक है, अच्छा किसकी पूजा के लिए ले जा रहे, किसकी पूजा? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले तो ठीक है फिर, तो ठीक है। अर्जुन जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त का तो ठीक है पर तो ठीक है, पर तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा अर्जुन जी को, बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले राम जी के। अर्जुन जी बोले तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते, अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है, दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले कितने भी बड़े बड़े बानर हो हम ऐसा पुल बना सकते हैं अपने बाणों से कि कोई भी निकल जाए टूट नहीं सकता। हनुमान जी बोले हम भी? अर्जुन जी बोले लगा लो सर देख लो। हनुमान जी बोले दिखा के बताओ। बोले ठीक है। अर्जुन जी बोले रुको एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हम पुल बनाएंगे बाणों से और तुम चल करके जाना, अगर पुल टूट जाएगा तो हम क्षत्रिय हैं, हम प्रण लेकर के कहते हैं तुरंत चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का है। हनुमान जी बोले तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। जब शर्त लगी अर्जुन जी हनुमान जी को देख कर कहे अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े भए अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया। बाण की बरसा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की बरसा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में बाण का, कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर अर्जुन जी ने जैसे ही पुल बनाया विशाल, और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है, अगर तुम्हारा पुल तैयार है राम जी का बंदर भी तैयार है तो अर्जुन जी बोले तो चढ़ के बताओ, चढ़ के बताओ, देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आमने हो ही जाए कि तुम में दम है कि हम में दम है, बाण में दम है कि तुम्हारे बानरों में दम है, राम जी के बंदर में दम है। हनुमान जी बोले तैयार, और लगा लो ताकत, थोड़ा कस दो। नहीं नहीं तैयार है, तैयार तैयार है, फुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी गए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए हजार योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के
दाता हजार योजन बदन बढ़ाया गधा धर लियो कांधे। इतना ही नहीं, 1000 योजन का शरीर बना लिया, मुगदर को रख लिया कम

सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी सो, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच, बैर बांधो आज बजरंग बलधारी सो, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो, कांपत शरीर, अर्जुन जी का शरीर कांपने लगा हनुमान जी की देख करके, कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, कांपत शरीर नैनन से बहत नीर, बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो, ब्रज पे संकट देख आप बने एक गिरधारी, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आहा, आंखों में आंसू भर के अर्जुन जी कहने लगे, हे भगवान, ब्रज पे संकट आया था, आपने पर्वत उठा लिया था, अब बचाओ ये हजार पर्वत लेके ही चल रहे साथ में, इनसे बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक पैर जैसे ही पुल पे रखा सो चले सो गा पाताल तुरंता, एक ही बार में टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा, पुल नहीं दिख रहा, कहां गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले, अब देखा पुल नहीं दिख रहा, कहां गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले, अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत, ये बात तो हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले, नहीं नहीं हम नहीं, चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा, बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी है गिरधारी, अब बचा लो, कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले, महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन देकर के उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले, ले ओ, थोड़ी देर ये बचते ही से पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे, ये तो प्राण लेकर के ही मानेंगे भगवान। हनुमान जी बोले, हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? तो अर्जुन जी बोले, महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़े कर जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं, हम ही दो लोग थे। तो बोले, देखो भाई, निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, एक काम करो, फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशाल काय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा, कहीं सच में ना टूट जाए तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है, तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया, अब पुल बच गया। सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले, आप जीत गए। ब्राह्मण देवता बोले, हनुमान जी जीत गए, अब जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। और अर्जुन जी से बोले, इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले, कब? महाभारत का जब समय आया
तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए? ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले, हम नर ये बानर, हम नर ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले, चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले, हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हमारे सिर पे बैठ जा, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले, चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले, हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले, यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यहीं रहो। हनुमान जी बोले, हमारी तो आदत है हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए, और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपित ध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गल जाता, अर्जुन ने मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते, नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले, नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है, तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया, हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था, अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को यह कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली।

सतयुग में द्वापर में, सतयुग में त्रेता में द्वापर में, कलयुग में भी जहां जहां भगवान की कथा होती वहीं हनुमान जी आ जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा

प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हनुमान जी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी तो कथा के प्रेमी है, क्या तुम लोग 3 दिन में कथा के प्रेमी बन पाए? कौन कौन कथा का प्रेमी हो गया 3 दिन में, जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अच्छा संकोच, आज बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आसन ले लो, आसन ले लो।

प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं, हम लोगों को भी हनुमान जी की तरह रसिक होना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है पत्नी की सुन लेंगे, कथा की नहीं सुनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। घरवाली की सुन लेंगे लेकिन कथा की नहीं सुनेंगे। घरवाली की सुनना, कई बार लोग कहते गुरु जी मजबूरी हो जाती है, हैं? अरे भाई ऐसी भी मजबूरी क्या, कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। हाँ, पत्नी वरना कह देती है आज से खाना पीना बंद, नहीं तो चलो हमारे साथ कथा। तो कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानो, कथा में वही आता है जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं।

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर.
7: खेल से कभी ना खेल
8: वरना होगी सेहत फेल.
9: सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं. पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं.
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है. यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है. एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है.
11: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है. फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है.
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है. अब घुटने में भी दर्द नहीं है. कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता.
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है. अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ.
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है. और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं.
14: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है.
15: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है. डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार. इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है.
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं.
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था. उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी. ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने.
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है. और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा.
17: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था. और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए. इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
18: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
18: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360
16: कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
20: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
21: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
22: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
10: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
0: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
10: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
1: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय

0: जिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्पररी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रिंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.

0: सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेट का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता। आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। तमिलनाडु में श्री नागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, संतान रोगों से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व। देश भर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है उसका उद्देश्य। महाराष्ट्र से राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, आज से ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही है तैयारियां, अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू यात्री निवास में की जा रही है साफ सफाई और रंग रोगन। अमरनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने जम्मू के भगवती नगर में की बैठक, सुरक्षा समेत यात्रा से जुड़े तमाम इंतजामों पे हुई चर्चा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियों की होगी तैनाती, गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां जम्मू एंड कश्मीर पहुंचना शुरू। जम्मू एंड कश्मीर के लखनपुर एंट्री पॉइंट से लेकर श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर तक होगी केंद्रीय बलों की तैनाती, पठानकोट जम्मू हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू में यात्री निवास भवन और अन्य जगहों पर भी केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 10.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगह पर 10 लाख भक्तों ने लगाई अपनी हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से किया गया खास श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। तमिलनाडु के मयिलादुथुरई के श्री नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर में पालकुड़म उत्सव की धूम। जुलूस के दौरान नादस्वरम और थवी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते मंदिर पहुंचे भक्त, भगवान के अभिषेक के बाद किया गया भव्य श्रृंगार। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया, गवर्नर से की गई 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में इंडिया इंडिपेंडेंस डे घोषित करने की अपील। सीनेट में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और महात्मा गांधी की विरासत को सराहा गया, सांसदों ने भारत की समृद्ध सभ्यता और वैश्विक लोकतांत्रिक योगदान का उल्लेख किया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को न्यूयॉर्क सीनेट ने दी विशेष मान्यता, कानून निर्माताओं ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में निभा रहे हैं अहम भूमिका। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का किया निरीक्षण, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों से की खास मुलाकात, बच्चों को बांटी चॉकलेट। पश्चिम बंगाल के लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने। आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना के 3,000 रूपए की पहली किस्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात। आज मल्टी स्पेशलिटी ललिता PVS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होगी शुरुआत। कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच जल्द शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन सेवा। आज शुरू होगा ट्रेन का ट्रायल रन। करीब 8.5 घंटे में बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचेगी यह ट्रेन। आज कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। DK शिव कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई में आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 5 जून को बैठक के अंतिम दिन फैसलों का ऐलान करेंगे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। देशभर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस। स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है इसका उद्देश्य। लखनऊ में भी मनाया जा रहा है वर्ल्ड साइकिल डे। बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। राजकोट में वर्ल्ड साइकिल डे पे लोगों ने चलाई साइकिल। स्वास्थ्य और पर्यावरण का दिया संदेश। श्रीनगर में विश्व साइकिल डे पे CM उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। भटिंडा में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एम्स भटिंडा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में की शिरकत। छात्रों को किया गया सम्मानित। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्म उत्सवम पर जुलूस की तैयारी तेज। जुलूस के लिए रथ तैयार। तमिलनाडु के मंत्री S. रमेश ने पेरुमल मंदिर का लिया जायजा। जुलूस को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। अब तक मई के महीने में करीब 70,000 वाहन कुल्लू पहुंचे। कारोबारियों के बिखले चेहरे। गोरखपुर में CM योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को जल्द मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। अगरतला में क्रिकेट किट वितरण समारोह का हुआ आयोजन। CM माणिक साह ने खिलाड़ियों को बांटे किट। तिरुवनंतपुरम में CM VD सतीशन ने केरल पुलिस के नशा विरोधी अभियान ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का किया उद्घाटन। कहा युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। गोरखपुर दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित चिलुआ ताल पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण परियोजना का किया लोकार्पण। भुवनेश्वर में गोवा और तेलंगाना के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हुए शामिल। अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त GS मलिक ने मिशन फिट खाकी अभियान का किया निरीक्षण। जवानों को फिट रहने के लिए दिए टिप्स। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने कुत्ते और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शरीर में कैंसर का पता लगाने की तकनीक विकसित करने का किया दावा। स्टार्टअप ने कुत्ते की सूंघने की शक्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है इस्तेमाल। कैंसर की पहचान के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का होता है इसमें इस्तेमाल। पेट रीढ़ और जोड़ों में दर्द के मुफ्त इलाज के लिए मुंबई में लगा 3 दिवसीय शिविर। कार्यक्रम में भारत के साथ साथ कई दूसरे देशों के डॉक्टर भी हुए शामिल। मरीजों को पेट और जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत हुआ इसका आयोजन। कार्यक्रम में पुराने दर्द के इलाज की नई तकनीकों पर भी हुई चर्चा। मरीजों को दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स हुए शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़ नीज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
3: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेट का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता। आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का हुआ भव्य श्रृंगार। तमिलनाडु में श्रीनागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, संतान रोगों से मुक्ति और नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये खास पर्व। देश भर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है इसका उद्देश्य। महाराष्ट्र से राजस्थान तक गर्मी से राहत वाली बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते खुशनुमा रहेगा मौसम।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और देखिए जीएनटी स्पेशल में आज बात संकट हरने वाली संकष्टी चतुर्थी की होगी। देखिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यानी आज श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व विभुवन संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। भगवान गणेश को समर्पित ये व्रत विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई हैं। देखिए इस बार अगर इस व्रत के बारे में बात करें तो ये व्रत पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है, जिससे इसका जो धार्मिक महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के सभी संकट सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस खास मौके पर सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया। सुबह भव्य आरती भी हुई जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में रौनक साफ देखने को मिल रही है।
1: संकष्टी चतुर्थी का ये पावन मौका जब भक्त अपने सारे कष्ट अपनी सारी चिंताएं दूर करने के लिए बापा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के प्रभा देवी में मौजूद सिद्धि विनायक मंदिर की, जहां आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर सुबह पर सिर्फ गणपति बापा का ही नाम है। पहली किरण के साथ जैसे ही सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट खुले पूरा परिसर बापा के जयकारों से गूंज उठा। संकष्टी चतुर्थी की इस पावन बेला पर सिद्धि विनायक मंदिर का कण कण बापा की दिव्य ऊर्जा से सराबोर है। संकष्टी चतुर्थी के पावन मौके पर बापा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। क्या आम क्या खास, हर कोई सिर्फ और सिर्फ बापा की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कहते हैं कि श्रद्धा में वो शक्ति है जो मुश्किल को आसान कर देती है। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर लगी ये लंबी कतारें इसी बात की गवाही दे रही है। घंटों का इंतजार लेकिन चेहरे पर थकान की जगह सिर्फ मुस्कान है और जुबान पर बापा का नाम है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सिद्धि विनायक के दर्शन मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों से भी इस पावन मौके पर भक्त यहां खींचे चले आते हैं। बापा के इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए मंदिर समिति ने भी पूरी तैयारी की है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। लाखों की इस भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों को सुगम दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रशासन और मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। कहते हैं बापा के दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यहाँ तो बस भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता है। संकष्टी का व्रत रखने वाले भक्त अब बप्पा की महाआरती की लौ को अपनी आंखों में बसाने के लिए आतुर है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन गणपति का पूजा उपासना करने से हर मनोकामना पूरी होती है, जीवन की मुश्किल से मुश्किल बाधा भी दूर होती है।
0: तो चलिए इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, सुबह से ही लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं, और बात अगर मुंबई की करें तो सिद्धि विनायक मंदिर जो कि बप्पा का ही मंदिर है, और आज का दिन जो कि संकष्टी चतुर्थी का दिन है, भगवान बप्पा को समर्पित है ये दिन, किस तरीके की रौनक वहां मंदिर में देखने को मिल रही है धर्मेंद्र?
2: देखिए, रोजाना ही सिद्धिविनायक मंदिर में तमाम श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज पुरुषोत्तम मास है जो 3 साल बाद है, और उसके ऊपर संकष्टी भी है, इस वजह से भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मंदिर के प्रांगण में हूं, और ठीक मेरे पीछे गणपति बप्पा विराजमान है। आप भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। गणपति बप्पा के सिर्फ पैर छूने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं, न केवल महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। सुबह से ही वीआईपीओ का भी यहां पर तांता लगा हुआ है। ये मंदिर का प्रांगण है, 3 तरह की कतारें यहां पर पहुंच रहे हैं, और वाकई में लगभग 3 से 4 घंटे कतार में खड़े होने के बाद गणपति बप्पा के पास पहुंचा जा सकता है। महिलाओं की कतार अलग है, पुरुषों की कतार अलग है, पूजा पाठ बड़े ही संपन्न तरीके से यहाँ से हो रहा है, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि आज सुबह से ही मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें, वीडियो जल्द सचिन सावंत से कहना चाहूँगा कि पंडितों को दिखाएं, सुबह से ही पंडित इस तरह से बैठे हुए हैं और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर भजन कीर्तन भी हुआ है, और हर वो चीज़ की जा रही है जिससे गणपति बप्पा को आज खुश किया जा सके। देखिए किस तरीके से जो मेन यहाँ के महंत हैं, वो बाकी जो महंत हैं उन सभी को टीका लगा रहे हैं। ये पूजा लगभग 3 घंटों से चल रही थी और अब समाप्ति पे है। कुछ देर पहले ही आरती संपन्न हुई है। अब इसके बाद जो मुख्य आरती है सिद्धिविनायक बप्पा की, वो भी यहाँ पर की जाएगी। थोड़ा सा मैं भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, देखिए ये तीसरी वाली कतार है, दूरदर्शन यानी कि दूर से ही गणपति बप्पा के दर्शन किए जा सकते हैं। जो भी पूजा की थालियां सजाकर लोग लाए हैं वो यहीं पर रख दी जाती है। जहां तक आपकी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्ति यहाँ पर नजर आने वाले हैं। ये तो यहाँ की तस्वीरें हुई, इसके अलावा भी इसके बाहर का भी जो प्रांगण है वो भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजाना तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज जैसे खास मौके पर ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। सुरक्षा के हैसियत से देखें तो सुरक्षा पुलिसकर्मी तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ प्राइवेट गार्ड्स भी यहाँ रखे गए हैं। साफ तौर से पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सबसे ज्यादा स्पेशल सेवा जो है दिव्यांग को दी जा रही है, बकायदा उन्हें मंदिर प्रांगण में ले आकर के सिद्धिविनायक का दर्शन किया करवाया जाता है। देखिए अब जो श्रद्धालु हैं उन्हें बप्पा के समीप जाना रोक दिया गया है, क्योंकि अब आरती का समय हो गया है और सिद्धिविनायक मंदिर के बप्पा का जो है आरती की जाएगी। बड़े ही मान्यता है यहाँ पर, वीआईपी जो भी अपना नया काम शुरू करता है वो सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर का ही आकर के दर्शन लेता है, उसके बाद अपने नए काम की ओर बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, और जो मैं तस्वीरें यहाँ पर देख पा रही हूँ, और जैसे आप भी हमें बता रहे हैं लगातार कि जहाँ भी नजरें जा रही हैं वहाँ पर भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। और देखिये पुरुषोत्तम मास है, इस बार पुरुषोत्तम मास काफी लंबा भी है और उसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी भी है, तो दो दिव्य और पावन जो मौके हैं एक साथ हो गए हैं। ऐसे में सोने में सुहागा इसे कहा जाएगा। अगर आपके पास वहां पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हो, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? कितना उत्साह, कितना जोश उनमें देखने को मिल रहा है धर्मेंद्र?
2: बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा ये भी जानने की कि कितनी देर उन्होंने लाइन लगाई है, कतार में खड़े हैं, और किस तरीके से बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। आप देखें हर कोई यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। भैया कहाँ से आए?
3: ओडिशा से आया हूँ।
2: ओडिशा से? कितनी देर खड़े हुए कतार में?
3: अभी 10 मिनट खड़ा था। मगर अच्छा लग रहा है भगवान को देखने के लिए।
2: अच्छा, लेकिन बप्पा को छू नहीं पा रहे हैं आप उनके चरणों को?
3: कोई बात नहीं, भगवान के पास आएगा ना, बहुत बढ़िया।
2: अच्छा, आप कहाँ से आई हैं?
4: ओडिशा से ही।
2: मुंबई में ही रहती हैं?
4: हाँ, मैं मुंबई में।
2: सिद्धिविनायक मंदिर हमेशा आना जाना होता है?
4: हाँ, कभी कभी आते हैं।
2: माता श्री क्या मांग रही है पप्पा से?
5: कुछ नहीं, सब अच्छा करो,
6: महंगाई कम करो बस, पप्पा को पेट्रोल का भाव महंगाई कम करो बस।
2: अच्छा, आप पप्पा के पास महंगाई कम करने
6: महंगाई के लिए आए हो बस? अब तो भगवान अच्छा ही से रखता है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, ये कम करो बोलना।
0: मुंबई से गणपति बप्पा सबको बुद्धि दे।
2: सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में क्या कहेंगे?
0: बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है।
2: आपको लगता है मन्नतें पूरी होती है माता जी?
4: होती है, सच्चे मन से करते हो तो होती है। मन सच्चा।
2: कितनी देर से खड़े हो आप?
7: हम अभी आए थोड़ी देर से।
8: अभी आए हैं। अच्छा, लेकिन
9: हमारे दर्शन हो गए, बप्पा के दर्शन सिर्फ 10 ही मिनट में हो गए।
7: हाँ, और बहुत अच्छा।
2: वाह, क्या बात है, आप कहाँ से हैं?
10: मुंबई के ही है।
2: सिद्धिविनायक मंदिर को मानते हैं?
10: मानते हैं।
2: आज का दिन तो बड़ा खास है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग आए हैं, 10 से 15 मिनट में फिलहाल यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इनके लिए उलझन ये है कि वो बप्पा के समक्ष नहीं जा पा रहे हैं। बप्पा को जो छू सकता है वो कतार 3 से 4 घंटों की होती है, लेकिन फिर भी लोग कितना भी थक जाएं, बप्पा को देखते ही उनमें एक अलग ही तरह की ऊर्जा आ जाती है, और जब बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर के जब बप्पा का प्रसाद उन्हें मिलता है और भंडारा का वो स्वाद चखते हैं, तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। कहते हैं आज के दिन गणपति बप्पा का जो भी दर्शन करे, बप्पा उनकी मिन्नतें पूरी कर लेते हैं। और देखिए, जब भी पूजा पाठ होती है, जब भी अभिषेक किया जाता है, गणपति बप्पा ही एक ऐसे ईश्वर है जिनकी पूजा अर्चना बकायदा खा पी कर की जाती है, उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके फेवरेट है, सबके चहीते हैं, और यही वजह है कि सिद्धि विनायक प्रांगण में आज एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं। हर कोई बप्पा को दूर से भी देखना चाहता है, उन्हें छूना भी चाहता है, अपनी मिन्नत लेकर के थालियां सजा करके।
0: हर कोई अपनी मन्नत लेकर आया है, और कहते हैं कि आज के दिन जो कुछ भी आपके मन में कामना होती है, आपकी मनोकामना होती है, कष्ट आपके जीवन में अगर आ रहे हैं, तो बप्पा उन सबको हर लेते हैं। धर्मेंद्र, आप खुद मंदिर प्रांगण में मौजूद है, क्या आपने भी कोई मन्नत बप्पा से मांगी है?
2: बिल्कुल, मैंने भी बप्पा से मन्नत मांगी है कि मेरा परिवार जो है स्वस्थ रहे, मेरे मित्रगण सारे स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो ही मस्त रहेंगे। और जिस तरीके से ईश्वर जो है सभी की रक्षा करते हैं, सभी की मिन्नतें पूरी करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, हर किसी की मिन्नतें पूरी हों, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की है, वाकई में अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आने वाले लोगों की है वो शादी में सम्मिलित होने वाले लोगों की है। जाहिर है मई और ये जो अभी जून आ गया है, और जून का जो महीना है शादी विवाह का महीना है, हर कोई शादी करके अपने परिवार संग बप्पा का दर्शन करने आया है। एक खास बात मैं आपको आज जरूर बताना चाहता हूँ, गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशानी इस समय मुंबईकर को थी, लेकिन आज इतना प्यारा सा मौका है, इतना खास दिन है कि आज सुबह ही अच्छी खासी बारिश मुंबई में हुई है, यानी कि पहली बारिश मुंबई में दस्तक दे चुकी है। इससे बड़ा खुशहाली आखिर भला क्या हो सकता है। तो इस तरह से आज का ये खास दिन मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हुए बप्पा के समक्ष।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे लोग लाइनों में लग रहे हैं बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए। एक बार फिर से अगर आप श्रद्धालुओं से बात कर पाए और ये जाने कि कितना उत्साह है, क्योंकि बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, और साथ ही में आज बप्पा का आशीर्वाद पाने का विशेष दिन भी है।
2: बिल्कुल, मैं देखिए यहाँ पर कुछ महंत हैं, पंडित हैं, इनसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बातचीत करूँ और मैं जानने की कोशिश करूँ कि आखिर क्या खास दिन है। गुरुजी, आप इस समय गुड न्यूज़ टुडे पे लाइव हैं, थोड़ा सा आज का महत्व बता दीजिए।
11: अरे मैं, मेरे को अलाउड नहीं है
2: यहाँ पर जो है बोल पाना, हर किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। पवन त्रिपाठी जी हैं जो अब मंदिर में पहुँच चुके हैं, और उनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। पवन त्रिपाठी जी यहाँ से कोषाध्यक्ष हैं और देखिए यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। भैया, आप इस समय गुड न्यूज़ टुडे पे लाइव हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, थोड़ा सा आज हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं किस तरीके से आज की तैयारी हुई है, क्या कुछ खास है आज के दिन?
12: ये आज पवित्र पुरुषोत्तम मास की संकष्टी चतुर्थी है, और बुधवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आज के दिन में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं, मुख दर्शन की अलग लाइन लगी हुई है, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की गई है, तो और गर्मी का समय है तो पर्याप्त कूलर और एसी की भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, और जो है किसी का स्वास्थ्य में कोई तकलीफ आती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से भगवान श्री सिद्धि विनायक जी के आशीर्वाद से किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया है।
2: अच्छा, रोजाना जो श्रद्धालु आते हैं उनसे तो आज संख्या बड़ी होगी, ज्यादा होंगे?
12: जी बिल्कुल, जो प्रतिदिन श्रद्धालु हैं उससे आज थोड़ा ज्यादा संख्या है। आज है शनिवार है रविवार है, इन दिनों में ज्यादा जो है श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। और आज संकष्टी है तो निश्चित रूप से संकष्टी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है।
2: कुछ देर पहले हमने देखा मंत्र उच्चारण किए गए, काफी यहाँ पर महंत और पंडित बैठे हुए थे, इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है आज पूरे दिन में?
12: देखिए, इसमें धार्मिक विधि होती है संकष्टी के दिन, आज यहाँ पर उसको पूर्ण किया गया है। वहाँ पर बैठ करके गणेश जी का स्तोत्र का पाठ और उनका पूजन करने का कार्य श्री सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से किया गया है।
2: भैया ये भी है, हमने सुना है कि दादर जो स्टेशन है सबसे बड़ा स्टेशन है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ वैन्स भी वहाँ पर हैं जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक ले आती हैं, इस तरह की यात्राओं को लेकर के क्या चीजें?
12: देखिए, यहाँ पर आने के लिए एक तो मेट्रो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आने के लिए अच्छी सुविधा है। इसके अलावा दादर स्टेशन से एसी बस जो लगातार उपलब्ध है, जो दादर स्टेशन से सीधे श्री सिद्धिविनायक मंदिर आता है और उस पर लगातार जो है श्रद्धालु आकर के दर्शन करते
0: हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भक्तों की लंबी कतारें हैं और किस तरीके से सभी में जोश है, उल्लास है, और जो इस तरह के दिन होते हैं वो काफी ज्यादा विशेष हो जाते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा खास तौर पर यहाँ पर महसूस की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी का दिन है जिस पर लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर हैं।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों प्री मानसून बारिश हो रही है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन राहत जरूर मिल चुकी है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राहत की बात यह भी है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। वहीं कल से मानसून के केरलम में एंट्री करने की संभावना है, जिसके बाद धीरे धीरे मानसून पूरे देश में फैल जाएगा। देखिए, माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा।
4: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक प्री मानसून बारिश आसमान से राहत लेकर आई है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है।

0: को खुशगवार बना दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, तमिलनाडु, बेंगलुरु, आगरा, अलवर, देश के ज्यादातर इलाके प्री मॉनसून की बारिश से भीग उठे हैं। दिल्ली एनसीआर को अच्छी बारिश का भी इंतजार है, लेकिन मौसम फिलहाल यहां का भी कूल बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहेगा।
1: आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून कल यानी 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देश के सभी हिस्सों में दस्तक देगा। जून के दूसरे हफ्ते में 10 तारीख के करीब मानसून मुंबई और महाराष्ट्र में दस्तक देगा। 15 से 20 जून के बीच मानसून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच सामान्य से करीब एक हफ्ते की देरी से मानसून पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 जून से 30 जून के बीच मानसून पहुंच सकता है। 25 से 30 जून के बीच इसके दिल्ली एनसीआर पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून पहुंच सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर भारत में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। भले ही मुख्य मानसून उत्तर और मध्य भारत में जून के आखिरी हफ्तों में पहुंचेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस और प्री मानसून गतिविधियों की वजह से दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिली है। राहत की बात यह भी है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा और प्री मानसून बारिश राहत की फुहारें बरसाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गर्मी से तपते शहरों से लोग तेजी से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हर एक हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार है, सैलानियों से फुल है। शहर से हिल स्टेशन गए लोग मौसम के मिजाज को देख हैरान है।
3: डलहौजी से 25 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये है खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन इन दोनों सैलानियों से गुलजार है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और एक कटोरी नुमा हरा भरा खुला मैदान और बीच में एक छोटी सी झील सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। देश के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, ऐसे में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और पहाड़ों में अगर बात हिमाचल प्रदेश की हो तो ये जगह सैलानियों के लिए खास है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर सुहावना मौसम तक सैलानियों को खूब लुभा रहा है। यहाँ आए सैलानियों में कोई नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई अपने परिजनों के साथ थिरक रहा है। मानो यहाँ के मौसम में ही कोई जादू हो जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: आज से धूमधाम से मनाई जा रही संकष्टी चतुर्थी विधि विधान के साथ की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना। सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दान पात्रों से मिला 26,94,813 रुपए का दान। श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच खोले गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के दान पात्र। तमिलनाडु में श्री नागा कनिका उत्सव की धूम, कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संतान रोगों से मुक्ति, नाग दोष निवारण के लिए मनाया जाता है ये पर्व। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता।
7: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। आज से ठीक एक महीने के बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही तैयारियां। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू यात्री निवास में की जा रही साफ सफाई और रंग रोगन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियों की होगी तैनाती। गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 10.5 लाख के पार। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रुपए की पहली किस्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, आज मल्टी स्पेशलिटी ललिता पीवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होगी शुरुआत। कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच जल्द शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन सेवा, आज शुरू होगा ट्रेन का ट्रायल रन, करीब 8.5 घंटे में बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचेगी ट्रेन। आज कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई में आज से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, 5 जून को बैठक के अंतिम दिन फैसलों का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया, गवर्नर से की गई 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में इंडिया इंडिपेंडेंस डे घोषित करने की अपील। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव पर जुलूस की तैयारियां, तेज जुलूस के लिए रथ तैयार। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच में पहाड़ों के सुहाने मौसम का मजा उठाने पहुंच रहे लोग। देशभर में मनाया जा रहा विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है इसका मकसद। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द मामला निपटारा करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के कई जिलों में झमाझम हुई बारिश, 11 जून तक बारिश का येलो अलर्ट। बेंगलुरु में भी जोरदार बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। डोडा में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, रास्तों पर थमी वाहनों की रफ्तार। मुंबई के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में भारी बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, आवागमन बाधित हुआ। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर आउट, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। शाहिद कृति और रश्मिका की मच अवेटेड फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, करीब 14 साल के बाद आ रहा कॉकटेल का सीक्वल। रामचरण की आगामी फिल्म पैदी का नया गाना मासा मासा रिलीज हो गया है, जिसमें उनके पहलवान अवतार की दिखाई दे रही झलक। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग हुई पूरी, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। 3 इडियट्स की कहानी से उठ गया पर्दा, सेकंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि होने वाले हैं 4 इडियट्स, राजकुमार हिरानी जल्द फाइनल कर देंगे स्क्रिप्ट को।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। संकष्टी चतुर्थी पर आज पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की आराधना, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में बापा का भव्य श्रृंगार।
4: चिलचिलाती गर्मी के बीच में रिमझिम फुहारों ने दी राहत, महाराष्ट्र से राजस्थान तक बरखा बहार, मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते पूरे उत्तर भारत में सुहाना रहेगा मौसम।
0: डीआरडीओ ने एयरफोर्स के साथ मिलकर किया रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, हवा से सतह पर सटीक वार की अद्भुत क्षमता।
4: गहराया डॉन 3 का विवाद, खुद पर लगे बैन के खिलाफ रणवीर ने FWICE को भेजा है नोटिस।
0: 1.5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी को तैयार कंगना, भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर रिलीज।
4: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की खबरों के साथ, किरदार और कहानी से पहले डॉन 3 फिल्म विवादों की वजह से चर्चा में है। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच इस फिल्म को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। फरहान की शिकायत पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फिल्म संस्था ने रणवीर पर बैन लगाने का आदेश दिया था, आपको याद होगा। अब रणवीर ने फिल्म संस्था को कानूनी नोटिस भेजकर बैन को चैलेंज किया है। क्या है ये पूरा विवाद और क्यों ये तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, दिखाते हैं आपको।

0: क्या है ताकत मेरी, क्या है हिम्मत मेरी, फिर दिखाने को मौत से खेलना जिंदगी है मेरी।
1: बड़े पर्दे पर डॉन 3 के इस अंदाज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।
0: तुम तो हो जानते जो मेरा नाम है।
1: जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इस ट्रेलर ने दर्शकों के उत्साह को और भी बढ़ा दिया था। फैंस डॉन 3 में रणवीर सिंह के किरदार की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन अब इस फिल्म की चर्चा किरदार और कहानी से ज्यादा विवादों को लेकर हो रही है। डॉन 3 फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर और रणवीर के बीच विवाद इस कदर गहराया है कि फरहान ने रणवीर के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी। अब रणवीर ने भी कानूनी रास्ता अपनाकर इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने उनके खिलाफ FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में शिकायत की है। इस शिकायत पर अमल करते हुए FWICE ने रणवीर पर बैन लगा दिया था और अब इस मामले में रणवीर ने FWICE के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि रणवीर ने नोटिस में मांगे क्या रखी है, लेकिन लगातार गहराया ये विवाद फिल्मी गलियारों में सुर्खियां जरूर बन गया है। FWICE के पास फिल्म इंडस्ट्री के कामकाजी माहौल को नियंत्रित करने की बड़ी ताकत है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले करीब 90% लोग इसी फेडरेशन से जुड़ी एसोसिएशंस के सदस्य हैं। अगर फेडरेशन अपने सदस्यों को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक दे तो अगले ही दिन से फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पूरी तरह से बंद हो सकती है। अब रणवीर ने FWICE को कानूनी नोटिस भेज खुद पर लगे बैन को चैलेंज किया है। दरअसल अगस्त 2023 में जोर शोर से ऐलान किया गया था कि डॉन में अमिताभ, डॉन 2 में शाहरुख खान और अब फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन के तीसरे सीक्वल में इस लेगेसी को निभाते हुए रणवीर सिंह नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 15 दिन पहले रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया, जिससे फरहान और उनके प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को भारी नुकसान हुआ। जब मामला नहीं सुलझा तो फरहान ने रणवीर से फिल्म के प्री प्रोडक्शन में आए 45 करोड़ के खर्च को हट जाने के तौर पर भुगतान करने की मांग की। फरहान ने FWICE में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रणवीर सिंह ने उनके नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने इनके बायकॉट का ऐलान कर दिया। लेकिन अब रणवीर ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए FWICE के बैन को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की है। जाहिर है FWICE का बायकॉट रणवीर सिंह के करियर के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन अब रणवीर पीछे हटने की बजाय अपने पक्ष को कानूनी तौर पर सामने रखना चाह रहे हैं। धुरंधर में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद बॉलीवुड में रणवीर का कद और ऊंचा हुआ है, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी आने वाली फिल्मों पर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। रणवीर के फैंस तो जल्दी से जल्दी इस विवाद के सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन FWICE के खिलाफ रणवीर के नोटिस ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
2: प्यार, दोस्ती और दिल का ऐसा कन्फ्यूजन जिसमें हंसी भी है, तकरार भी और इश्क का तड़का भी। दरअसल 14 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट आया है कॉकटेल का नया स्वाद। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। तो आखिर क्या है इस नए कॉकटेल का फ्लेवर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है। नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती।
4: कभी दोस्ती में प्यार घुल जाता है तो कभी प्यार में दोस्ती का रंग चढ़ जाता है, और जब दोनों का तालमेल बिगड़ जाए तो बनता है कॉकटेल चू।
3: उनसे सोते हैं, और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है।
4: शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आते ही इसने फैंस की एक्साइटमेंट को हाई कर दिया है।
5: a hat for your handsome boyfriend.
3: No, I'm not her.
6: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं.
3: मैंने तो ये सोच के कहा था ठीक है तुझे बुरा ना लग जाए.
7: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं.
4: करीब 3 मिनट के ट्रेलर में रोमांस है, कॉमेडी है, इमोशन है और रिश्तों का ऐसा उलझा हुआ खेल है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है. शाहिद कपूर यहाँ कुणाल के किरदार में नजर आ रहे हैं, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो लड़कियाँ दस्तक देती हैं. एक तरफ है रश्मिका मंदाना जिनके किरदार में सादगी और गहराई है, तो दूसरी तरफ है कृति सेनन जो बिंदास है, बेफिक्र है और जिंदगी को अपने अंदाज में जीती है.
8: वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
4: मजेदार बात तो ये है कि दोनों ही शाहिद के करीब आना चाहती हैं और यहीं से शुरू होता है प्यार, दोस्ती और कंफ्यूजन का खेल. ट्रेलर में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो सीधे दिल पर असर छोड़ते हैं, साथ ही कॉमेडी का तड़का भी लगाते हैं.
6: मैंने कहा हीरा मिली क्या है तो बोली लगा ले.
3: मैं हीरा नहीं कोहिनूर हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे खरीद.
4: शानदार लोकेशन, फ्रेश केमिस्ट्री, कलरफुल विजुअल्स और प्रीतम का म्यूजिक कॉकटेल 2 को इस साल की सबसे चर्चित रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में शामिल कर रहा है. फिल्म का निर्देशन होमी अज्जानिया ने किया है जिन्होंने पहली कॉकटेल को भी डायरेक्ट किया था. ट्रेलर देखकर इतना तो साफ हो गया है कि इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि रिश्तों की नई परिभाषा की भी है. अब ये लव ट्रायंगल आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा ये जानने के लिए इंतजार करना होगा 19 जून का जब कॉकटेल 2 सिनेमा घरों में दस्तक देगी. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
5: अ हैट फॉर योर हैंडसम बॉयफ्रेंड.
3: नो आई एम नॉट हर.
6: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो, इतनी बुरी हूँ मैं.
3: मैंने तो ये सोच के कहा था ठीक है तुझे बुरा ना लग जाए.
7: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं.
2: करीब 1.5 साल के बाद कंगना रनौत एक दमदार किरदार के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने को तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म है भारत भाग्य विधाता जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक पर आधारित है. इस फिल्म में कंगना रनौत कुछ अनसुने हीरोज की बहादुरी की दास्तान को बड़े पर्दे पर उतारने जा रही हैं.

0: एक दमदार किरदार के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने को तैयार है कंगना रनौत। भारत भाग्य विधाता में कुछ अनसुने नायकों की कहानी को बड़े पर्दे पर ला रही है कंगना। मुंबई टेरर अटैक की कहानी को पर्दे पर उकेरते कंगना के किरदार की इस झलक ने फिल्म के दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है।
1: आज आम पकने वाला है।
2: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही।
3: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग, है ना?
4: लड़का देखने आने वाला था ना।
0: कंगना रनौत की मच अवेटेड फिल्म भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया।
5: दवाई खाया?
6: डॉक्टर को बुलाओ पहले। सिस्टर से बात ही नहीं करने का मेरे।
7: अपना मुर्गा बीमार है।
0: देशभक्ति, साहस और इंसानियत से भरे इस ट्रेलर में कंगना एक नर्स के किरदार में दिख रही है।
8: अरे सब जगह टेरेस अटैक हो रहा है, तू निकल अभी के अभी।
0: भारत भाग्य विधाता में कंगना उन गुमनाम नायकों की कहानी लेकर आ रही है जिन्होंने आतंक और डर के बीच भी हिम्मत नहीं हारी और दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया।
9: प्रोटोकॉल फॉलो करो।
10: टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है?
8: ज्यादा देर शाला बनती क्या तू?
0: ट्रेलर की शुरुआत दहशत और अफरा तफरी के माहौल से होती है। गोलियों की आवाज और हर तरफ फैला डर दर्शकों को 26/11 जैसे खौफनाक दौर की याद दिलाता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। फिल्म में कंगना रनौत का किरदार एक नर्स के तौर पर मरीजों और अस्पताल में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना करता नजर आता है।
11: प्रेम और करुणा के साथ
0: कंगना का गंभीर और भावनात्मक अंदाज फिल्म की कहानी को और प्रभावशाली बनाता है। भारत भाग्य विधाता की सबसे खास बात यह है कि उन आम लोगों की कहानी है जो असाधारण हालात में असली हीरो बनकर सामने आए। फिल्म उन मेडिकल स्टाफ, नर्सों, अस्पताल कर्मचारियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि देती है जिनकी बहादुरी को शायद उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ट्रेलर में देशभक्ति का जज्बा, इमोशनल पल और थ्रिलर का रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत भाग्य विधाता का निर्देशन फेमस डायरेक्टर मनोज तापड़िया ने किया है।
12: नर्स नहीं चाहिए उसको।
13: रणवा भी मना करके चला गया।
10: दवाई खाया?
6: डॉक्टर को बुलाओ पहले।
0: भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और प्रिया अरुण बैनर्जी भी अहम भूमिका में हैं।
8: अरे सब जगह टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तू निकल अभी के अभी।
0: ट्रेलर देखने के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये फिल्म आतंक की कहानी नहीं बल्कि उस साहस की कहानी है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता।
14: आधुनिकता की दौड़ में हिंदुस्तान की सनातन भाषा संस्कृत हमसे काफी पीछे छूट गई है और वैदिक काल में घर घर की बोलचाल की भाषा रही संस्कृत आम लोगों के बीच अब कौतूहल का विषय बन चुकी है। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप एक सभ्य सभा में मौजूद हैं और वहां एक वक्त फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही शुद्ध व्याकरण के साथ संस्कृत बोलने लगे। जाहिर है कि आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। अब हम आपको एक ऐसी ही एक सभा में लिए चलते हैं जहां पर पूरे प्रवाह के साथ संस्कृत बोलने वाला शख्स आपके लिए अनजान नहीं है बल्कि बॉलीवुड का एक्शन हीरो है।
15: कमांडो फेम बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल की भारतीय योग पद्धति में गहरी अभिरुचि से दुनिया वाकिफ है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी उनकी अद्भुत मास्टरी है। इसकी झलक देखने को मिली योगोत्सव 2026 कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के लोनावला स्थित कैवल्य धाम में इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से आयोजित योगोत्सव 2026 में विद्युत जामवाल ने अंग्रेजी और हिंदी के साथ ही संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह भाषण देकर सबको हक्का बक्का कर दिया।
16: अस्माक्षु संस्कृत सभायाम उपस्थित सर्वे सम्माननीय, एतत् अवसर प्राप्त अहम अत्यंत सम्मानित अस्मि। अहम सनिधियो वदन महत सौभाग्यमणे। अस्मिन् शुभ संवेशाम अहम आदर पूर्वक वंदे।
15: भारतीय योग विज्ञान पर 29 और 30 मई को हुए इस कार्यक्रम में विद्युत जामवाल को एंशियंट रूट्स फ्यूचर मूव्स योगा फॉर दिस जेनरेशन नाम के विशेष पैनल में वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर इंडियन योगा एसोसिएशन ने उन्हें एम्बेसडर फॉर यूथ IDY 2026 के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए योग, प्राणायाम, सोशल मीडिया, स्क्रीन एडिक्शन और मानसिक शांति जैसे विषयों पर अपने विचार और अनुभव साझा किए। एक ही वक्ता के मुख से निकली संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वहाँ मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए।
9: मैं ये बोलना चाहता था,
16: आदमी के अंदर एक कोई अपनी चीज होती है एंड जब भी मैं नर्वस होता हूँ या कुछ एक्साइटमेंट होती है, प्यार की बात होती है, गुस्से की बात होती है, आई बिलीव इन साइंस। जैसे मैं अगर कभी शूटिंग के लिए जाता हूँ और सारी लाइट्स ग्रीन दिखती हैं, आज अच्छा दिन जाएगा, दिस इज अ साइन। कभी कभी बटरफ्लाइज दिख जाती हैं, दिस इज अ साइन। सो मैं छोटे छोटे साइन ढूंढता रहता हूँ। कल जब मैं रात को केवले धाम के कमरे में गया और मैंने ये लिस्ट देखी जिनके बीच में मुझे बैठाया जाएगा, थोड़ी हार्ट रेट थोड़ी सी अलग सी चेंज हुई। आई एम यूज्ड टू ग्रेट पीपल बट दिस इज डिविनिटी हियर। सो मुझे लगा रात को हो सकता है नींद ना आए, कोई साइन तो होना चाहिए। आई शुड शो द लाइट और खिड़की के बाहर चमचमाते हुए 10,000 के करीब जुगनू थे, लाइक फायरफ्लाइज। मैंने कहा नींद अच्छी आएगी।
15: इस मौके पर विद्युत जामवाल ने शंख भी बजाया। शंख की टंकार सुनकर सभा स्थल में मौजूद लोग आध्यात्मिक चेतना के भाव से भर गए।

0: एक ही सांस में शंख की इतनी लंबी टंकार शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। साफ है कि विद्युत जामवाल भारतीय योग पद्धति पर सिर्फ स्पीशी नहीं देते बल्कि वो इसके डीप प्रैक्टिशनर भी हैं। और यही वजह है कि सनातन संस्कृति और उसके स्क्रिप्चर्स में उनकी गहरी आस्था है। जामवाल ने अप्रैल 2026 में लास वेगास में आयोजित सिनेमाकॉन के दौरान अपनी हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के प्रमोशन के मंच पर गायत्री मंत्र का जाप करके सबको हैरान कर दिया था। लास वेगास में हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक अभिनेता के मुख से गायत्री मंत्र का जाप सुनकर वहां का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। पूरी दुनिया में जामवाल की इस पहल की खूब तारीफ हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे मौसम के बदलते रंग।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज धूमधाम से मनाई जा रही संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान के साथ की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दान पात्रों से मिला 26,94,813 रुपए का दान, श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच खोले गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर के दान पात्र। फ्रांस एम बाइक रेस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कोटा के साइक्लिस्ट नितिन सैनी। अमेरिका में 7 जून से शुरू होगी प्रतियोगिता, 6,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे तय। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई है मान्यता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: और देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों प्री मॉनसून बारिश हो रही है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है। बिहार, यूपी समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मॉनसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है।
1: राहत की बात यह है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा।
0: देखिए, कई जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। कई जगह पर आपको बर्फबारी की तस्वीरें नजर आएंगी। पहाड़ों पर जून में हो रही बर्फबारी किसी करिश्मे से कम नहीं है। माना जा रहा है कि कल मॉनसून के केरलम में एंट्री करने की संभावना है, जिसके बाद धीरे धीरे मॉनसून पूरे देश में फैलेगा। माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा।
2: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, प्री मॉनसून बारिश आसमान से राहत लेकर आई है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं कम ज्यादा। मॉनसून से पहले आई इस बारिश ने न सिर्फ चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से छुटकारा दिलाया है, बल्कि मौसम को खुशगवार बना दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, तमिलनाडु, बेंगलुरु, आगरा, अलवर, देश के ज्यादातर इलाके प्री मॉनसून की बारिश से भीग उठे हैं। दिल्ली एनसीआर को अच्छी बारिश का भी इंतजार है, लेकिन मौसम फिलहाल यहां का भी कूल कूल बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहेगा।
3: आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही सकता है।
2: मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल यानी 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देश के सभी हिस्सों में दस्तक देगा। जून के दूसरे हफ्ते में 10 तारीख के करीब मॉनसून मुंबई और महाराष्ट्र में दस्तक देगा। 15 से 20 जून के बीच मॉनसून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच सामान्य से करीब एक हफ्ते की देरी से मॉनसून पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 जून से 30 जून के बीच मॉनसून पहुंच सकता है। 25 से 30 जून के बीच इसके दिल्ली एनसीआर पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच मॉनसून पहुंच सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर भारत में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। भले ही मुख्य मॉनसून उत्तर और मध्य भारत में जून के आखिरी हफ्तों में पहुंचेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्री मॉनसून गतिविधियों की वजह से दिल्ली, यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिली है। राहत की बात यह भी है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा और प्री मॉनसून बारिश राहत की फुहारें बरसाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गर्मी से तपते शहरों से लोग तेजी से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हर एक हिल स्टेशन सैलानियों से फुल है। शहर से हिल स्टेशन गए लोग मौसम के मिजाज को देखकर हैरान है।
4: डलहौजी से 25 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये है खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और एक कटोरी नुमा हरा भरा खुला मैदान और बीच में एक छोटी सी झील सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। देश के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, ऐसे में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और पहाड़ों में अगर बात हिमाचल प्रदेश की हो तो ये जगह सैलानियों के लिए खास है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर सुहावना मौसम तक सैलानियों को खूब लुभा रहा है। यहाँ आए सैलानियों में कोई नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहा है, तो कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई अपने परिजनों के साथ थिरक रहा है। मानो यहाँ के मौसम में ही कोई जादू हो जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जीएनटी आपसे कुछ ऐसे वीडियोस को शेयर करने की अपील कर रहा है जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस खासकर ऑफ बीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाएंगे। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं लेह। सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक से सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन जहां एक्टर रणवीर सिंह और गौरव गेरा का नमक की चाय पीते हुए शूट हुआ था।

0: सैर सपाटे के शौकीनों को खासकर पहाड़ों का सुकून हमेशा से भाता रहा है। ऐसे में आपके लिए लेह परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ नेचर की अनोखी खूबसूरती है, लेकिन आजकल यहाँ की मस्जिद गली में बनी ये 10 साल पुरानी चाय की दुकान भी किसी स्टार टी स्टॉल से कम नहीं। कारण है रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म, जिसकी एक शूटिंग लोकेशन ये चाय की दुकान भी रही। एसएच खान रेस्टोरेंट नाम का ये टी स्टॉल है, जो अपने फिल्मी नाम वाशमा बट से भी मशहूर है। दुकान में फिल्म के पोस्टर, वो हॉट सीट और पर्यटकों की बेकरारी साफ दर्शा रही है कि दुकान मालिक ने लोगों को धुरंधर फिल्म की याद में डूबने को लेकर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है।
1: लास्ट ईयर जब शूटिंग हुआ था तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा रहता है, कम लोग, कोई अपने लोकल लोग से काम था। कुछ थोड़ी साल के रिलीज के बाद काफी लोग आए, कुछ स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स आए, कुछ जिन्होंने रील्स डाली है, तो उसके वजह से सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास लोग आने शुरू हुए हैं। तो जितना रश हो रहा है, जितना भीड़ हो रहा है, जितना लोग आ रहे हैं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ।
0: जरा धुरंधर के उस सीन को याद कीजिए, जब इस सीट पर फिल्म में आलम भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा हीरो रणवीर सिंह के साथ बैठकर नमक चाय पीते हैं, और यहीं से धुरंधर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। बस ये समझ लीजिए कि अब ये दुकान कोई मामूली टपरी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक फैन जोन बन गई है। दीवारों पर धुरंधर फिल्म के पोस्टर्स लगे हैं और माहौल लोगों को एकदम फिल्मी बना दे रहा है।
2: यहाँ आके हम लोग एक घंटा वेट किया, तब जाके हमें यहाँ पे ये जगह मिली है, तब जाके हम लोग ये कैरेक्टर में बैठ पाए। वो हमारा एक प्राउड है कि इंडिया के ऊपर ये मूवी बना है और इतना फेमस हुआ है कि इसके कारण ये कैफे भी फेमस हो गया। उसका मेन सीन यही शूट हुआ है, इसके कारण जो भी क्लाइंट है उसका बस पहले यही फरमाइश रहता है कि हमें धुरंधर कैफे ही देखना है, हम कुछ नहीं देखना, पहले धुरंधर कैफे देख लिया, हमारे लिए पूरा हो गया।
0: दुकान की मशहूरियत देख दुकान मालिक भी खुश है, तो वहीं आप अकेले जाएं, दोस्तों संग यहां बैठें, इस टेबल पर दो कप चाय पीना तो बनता है।
1: हम नंबर लिखते हैं सीरियल वाइज से, हम उनका टोकन देते हैं, उन्हें नेम लिखते हैं, उस हिसाब से हम लोग को बुलाते हैं, जैसा नंबर नंबर आता है। तो दो चाय कंपलसरी लोगों ने रखा है इस सीन को लेके, एक बहुत एक वायरल सीन है फ्रेंडशिप को लेके, तो इसलिए लोग इसे बहुत चाह रहे हैं इस चीज को।
0: तस्वीरों में एक और रणवीर सिंह की फोटो के सामने लगी इस हॉट सीट पर बैठकर धुरंधर के कैरेक्टर में लोग डूब रहे हैं, तो कुछ में धुरंधर मूवी के माहौल को महसूस करने का बेसब्र इंतजार भी दिखा। तो अगर आप बना रहे हैं ले जाने का प्लान, धुरंधर फिल्म से सुर्खियों में आई स्पेशल चाय की दुकान पर आप जरूर जाएं, दो कप चाय का लुत्फ उठाएं और अपने लेह ट्रिप को यादगार बनाएं।
3: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। दरअसल आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाएं अपना फोन और बनाइए व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
4: और चलिए बात कर लेते हैं पवित्र धार्मिक यात्राओं के महाकुंभ की।

0: पहाड़ों की रंगत पूरी तरह से बदल गई है। चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं से गुलजार है। मंदिर से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: देखिए, हर दिन ये यात्रा नए रिकॉर्ड्स बना रही है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम आपको नजर आएगा। हालात ये हैं कि घंटों तक लाइनों में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी आपको नजर आएगा। उत्तराखंड के साथ साथ आज से ठीक एक महीने बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसके लिए भी तैयारी काफी तेज है। 3 जुलाई से शुरू होकर बाबा बर्फानी की ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा और 3 जुलाई से यात्रा औपचारिक रूप से दोनों मार्गों यानी पहलगाम और बालटाल से शुरू होगी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रंगाई पुताई सफाई समेत तमाम इंतजामों को पुख्ता करने का काम जोर शोर से चल रहा है।

0: बेहद करीब आ गई है बाबा बर्फानी के पावन दर्शन की घड़ी। एक बार फिर बरसेगी शिव भक्तों पर बाबा बर्फानी की कृपा। आज से ठीक एक महीने बाद बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्त कम है, लिहाजा अमरनाथ यात्रियों की सुगम और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहाँ पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहाँ पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहाँ पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहां श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1600 से ज्यादा यात्रियों के रहने की व्यवस्था होती है, इसलिए यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स हैं, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो हैं अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब पार्किंग का इंतजाम है, इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
1: हाँ, मैं खड़ा हूँ, अगर मैं इस स्थान की बात करूँ, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए, इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं, और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज़्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।
0: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनके सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना भी शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और IGP जम्मू भीम सेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
2: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाकचौबंद रहेंगे।
0: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मंगलवार को भारत ने अपने सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 की सफल टेस्टिंग की है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मनों के रडार, उनके बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई पट्टियों को पलक झपकते तबाह कर सकती है। इस एंटी रेडिएशन मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मिसाइल खुद किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन दुश्मन के रडार सिस्टम को ध्वस्त करके रख देगी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का ताजा तरीन सबूत है रुद्रम 2। हवा से जमीन पर मार करने वाली देश की सबसे आधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका सुखोई फाइटर जेट से किया गया परीक्षण सफल रहा। मंगलवार को डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर ओडिशा के तट पर रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। रुद्रम 2 की सफलता ने भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। बेहद घातक, तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाली ये सुपर किलर मिसाइल हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन का सफाया कर देगी। दुश्मन के बंकर, एयर स्ट्रिप, भूमिगत एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार और सैन्य ठिकाने इस मिसाइल की रेंज से दूर नहीं। खासतौर पर रुद्रम 2 को दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने के लिए बनाया गया है। किसी भी देश की हवाई सुरक्षा काफी हद तक उसके रडार सिस्टम पर निर्भर करती है। रडार ही दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाकर सेना को समय रहते चेतावनी देते हैं। रुद्रम 2 का मुख्य काम ऐसे ही रडार सिस्टम को खोज कर नष्ट करना है, जिससे दुश्मन की हवाई सुरक्षा कमजोर पड़ जाए। रुद्रम 2 हर तरह के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका वजन 1025 किलोग्राम और रफ्तार करीब 5.5 मैक यानी 6738 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे दुश्मन के रडार को इसे रोकने का मौका नहीं मिलता। इस मिसाइल की रेंज 300 से 350 किलोमीटर है। विमान से दागे जाने के बाद ये मिसाइल महज 2.5 से 3 मिनट में टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से रुद्रम 2 किसी गेम चेंजर से कम नहीं। इसी एंटी रेडिएशन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के रडार बंद होने पर भी उसे खोज कर खत्म करती है। आमतौर पर जब दुश्मन को पता चलता है कि उसकी तरफ एंटी रेडिएशन मिसाइल आ रही है, तो वो अपना रडार बंद कर देता है, जिससे कि मिसाइल को सिग्नल मिलना बंद हो जाए और वो टारगेट तक ना पहुंच सके। लेकिन रुद्रम 2 मिसाइल में INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और SATNAV मतलब सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक उसे टारगेट की आखिरी लोकेशन याद रखने में मदद करती है, जिससे दुश्मन के रडार बंद करने पर भी रुद्रम 2 से बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि रडार नष्ट होते ही दुश्मन की निगरानी और चेतावनी देने की क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है।

0: विराज 2000 और तेजस से भी लॉन्च किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बढ़ती गर्मी में इंसान तो बेहाल है ही, जानवर और पक्षियों का भी बुरा हाल है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एक अनोखी पहल की। दिल्ली सचिवालय के पास फ्लाईओवर के नीचे एक खाली जगह पर पक्षियों का एक खास आशियाना बसाया गया, जहां पर पक्षियों के लिए अलग अलग तरह के घोंसलों के साथ रंग बिरंगे झूले, फीडिंग ट्रे लगाई गई है। साथ ही उन्हें गर्मी से बचाने के लिए वाटर मिस्ट स्प्रिंकल और वो भी लगाए गए हैं, जो कि लगातार हल्की फुहारों के जरिए आसपास के तापमान को कम करते हैं।
2: दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसान के साथ साथ बेजुबा पक्षी भी अब इस चिलचिलाती गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल करी है, उन्होंने पक्षियों के लिए एक अनोखा सा आशियाना बनाया। इस वक्त दिल्ली सचिवालय में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक जगह आपको नजर आ जाएगी, ऊपर आपको फ्लाईओवर का हिस्सा जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसके ठीक नीचे की अगर मैं बात करूँ तो एक ये खाली पूरी जगह जो है वो रखी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा आशियाना जो है वो पक्षियों के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई जो है परेशान हो रहा है, लेकिन दिल्ली सचिवालय के परिसर में अब आपको पक्षियों के लिए एक अनोखी और संवेदनशील ये जगह जो है वो नजर आने वाली है कि गर्मी से किस तरीके से उनको राहत देने के लिए हर एक इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको ये छोटे छोटे जो घोंसले हैं वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है सभी पक्षी जो है आके आराम कर सकते हैं, किसी तरीके की जो धूप है वो यहाँ पर जो है नहीं नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको जो घोंसले हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे घर भी जो है वो नजर आ जाएंगे कि कभी पक्षियों को आराम करने का, विश्राम करने का मन है तो घोंसले की जगह वो इस तरीके के छोटे छोटे घर में भी जो है जाकर जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की फीडिंग ट्रे दिख जाएगी। हालांकि अभी इसमें आपको दाने नजर नहीं आएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो जल्दी होगी। अभी बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ट्रायल में है कि किस तरीके से ये फीडिंग ट्रे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी फीडिंग ट्रे घोंसले जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिस्ट स्प्रे, जो वाटर स्प्रे जो है, मिस्ट स्प्रे जो है, स्प्रिंकलर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि अच्छी खासी जो कूलिंग है वो यहाँ पर बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से हर एक इंतजाम जो है पक्षियों के लिए यहाँ पर किए गए ताकि सुरक्षित और अच्छा एक वातावरण जो है वो उनको यहाँ मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है वाकई में इंसानों के साथ अब पक्षियाँ भी जो है वो परेशान हो गए, लेकिन उनके लिए किसी तरीके की कोई जगह नहीं है, ना हो उनके लिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाके आराम कर सके, धूप से बच सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक इंतज़ाम आपको जो है वो नज़र आने वाले हैं कि किस तरीके से वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर जो है यहाँ लगाए गए, जो लगातार हल्की फुहारे जो है छोड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि आसपास के तापमान में भी जो है यहाँ पर कमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि बाहर का जिस तरीके से तापमान है, मैं जिस तरीके से अभी बाहर से आई हूँ तो काफ़ी तेज़ गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही ठंडक जो है वो मिलने वाली है कि किस तरीके से पक्षियों के लिए अच्छा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिया गया है। और बात सिर्फ इस ठंडक की नहीं है बल्कि पक्षियों के रहने के लिए और भोजन की जो खास व्यवस्था की गई है, हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर फीडिंग ट्रेस जरूर नजर आ जाएगी, नीचे यहाँ पर इस तरीके की ट्रेस जो है लगाई गई है, मिट्टी के बर्तन जो है ये वो लगाए गए ताकि इसके अंदर साफ पानी पक्षियों के लिए जो है वो रखा जा सके, और जितने भी यहाँ पर जो पक्षी आराम करने आएंगे उनके लिए एक खास चीज और लगाई गई है, वो है इनके लिए छोटे छोटे खिलौने। अब ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आपको कुछ इस तरीके के खिलौने जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि बच्चे जो है वो खिलौने से खेलते, लेकिन पक्षियों के लिए भी कुछ इस तरीके के खास इंतजाम जो है वो किए गए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें जा रही है, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम

सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दान पात्रों से मिला 26,94,813 रुपए का दान, श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच खोले गए बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के दान पात्र। ट्रांसिम बाइक रेस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कोचा के साइक्लिस्ट नितिन सैनी, अमेरिका में 7 जून से शुरू होगी प्रतियोगिता, 6,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे तय। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डी के शिव कुमार, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट में 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित, प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, आज से ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही है तैयारियां, अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू यात्री निवास में की जा रही है साफ सफाई और रंग रोगन। अमरनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने जम्मू के भगवती नगर में की बैठक, सुरक्षा समेत यात्रा से जुड़े तमाम इंतजामों पर की चर्चा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनीज होंगी तैनात, गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां JNK पहुंचना शुरू। JNK के लखनपुर एंट्री पॉइंट से लेकर श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर तक होगी केंद्रीय बलों की तैनाती, पठानकोट जम्मू हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू में यात्री निवास भवन और अन्य जगहों पर भी केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। कठुआ में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए लखनपुर में डोगरा कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली 3D चित्र का अनावरण। लखनपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने इलाके का किया दौरा, यात्रा की सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देश। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सिद्धिविनायक के दर्शन। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 10.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 43,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन से दूर और आभूषणों

से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। तमिलनाडु के महिला दुतराई के श्री नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर में पाल कूड़म उत्सव की धूम। जुलूस के दौरान नाद स्वरम और थविल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते मंदिर पहुंचे भक्त। भगवान का अभिषेक के बाद किया गया भव्य श्रृंगार। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल और बैग नहीं ले जा सकेंगे अब श्रद्धालु। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में मोबाइल और सामान ले जाने पर रहेगी रोक। श्रावणी मेले के दौरान साधारण शुल्क देकर नवनिर्मित क्लार्क रूम में अपने सामान रख सकेंगे श्रद्धालु। सामान रखने के लिए मंदिर में बनाए जा रहे हैं अमानत घर। देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर बोर्ड संभालेगा क्लार्क रूम में संचालन की देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा। अतिरिक्त स्टाफ और पुलिस की भी होगी तैनाती। देवघर श्रावणी मेला शुरू होने से पहले देखा डाक कावड़ यात्रा का अनोखा नजारा। बाबा बैद्यनाथ धाम जाते देखे जंजीरों के जकड़े पूर्व सैनिक राम उदय सिंह। सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर रवाना हुए राम उदय सिंह। विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ कर रहे हैं यात्रा। कांचीपुरम वरदराज पेरुमल मंदिर व काशी ब्रह्मोत्सव कार उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कांचीपुरम में भगवान वरदराज पेरुमल और उनकी पत्नियों की निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाए जयकारे। वैकासी ब्रह्मोत्सवम के दौरान मंदिर में वेदों का पाठ, भजन और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव पर जुलूस की तैयारियां तेज, जुलूस के लिए रथिया तैयार। तमिलनाडु के मंत्री एस रमेश ने पेरुमल मंदिर का लिया जायजा, जुलूस को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को दान में मिले 26.94 लाख रुपए, डॉलर व नेपाली रुपए भी शामिल। मंदिर में 26,94,813 नगद और 865 नेपाली नोट और 2 लाख दान भी मिले। कड़ी सुरक्षा में हुई नोटों की गिनती। तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंची रेंकू राजगुरु, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। पुरी से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आरसीबी की जीत पर रेत से बनाई कलाकृति, विराट को दी जीत की बधाई। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रूपए की पहली किश्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, आज मल्टी स्पेशलिटी ललिता पीबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होगी शुरुआत। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच जल्द शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन सेवा, शुरू होगा ट्रेन का ट्रायल रन, करीब 8.5 घंटे में बेंगलुरु से मैंगलुरु पहुंचेगी ट्रेन। आज कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई में आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, 5 जून को बैठक के अंतिम दिन फैसले का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट में भारत के स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया गया, गवर्नर से की गई 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में इंडिया इंडिपेंडेंस डे घोषित करने की अपील। सीनेट में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और महात्मा गांधी की विरासत को सराहा गया, सांसदों ने भारत की समृद्ध सभ्यता और वैश्विक लोकतांत्रिक योगदान का उल्लेख किया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को न्यूयॉर्क सीनेट ने दी विशेष मान्यता, कानून निर्माताओं ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में निभा रहे हैं अहम भूमिका। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का किया निरीक्षण, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से की मुलाकात, बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। देशभर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है उद्देश्य। लखनऊ में भी मनाया जा रहा है वर्ल्ड साइकिल डे, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाई। राजकोट में वर्ल्ड साइकिल डे पर लोगों ने चलाई साइकिल, सेहत और पर्यावरण का दिया संदेश। श्रीनगर में विश्व साइकिल दिवस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
बठिंडा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स बठिंडा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए छात्रों को

0: किया सम्मानित। देश के कई इलाकों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का मौसम। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। अब तक मई महीने में करीब 70,000 वाहन कुल्लू पहुंचे, कारोबारियों के भी चेहरे खिले। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पड़ने वाले फाजिल नगर का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने नाम बदलकर पावागढ़ रखने का किया ऐलान। अगरतला में क्रिकेट किट वितरण समारोह का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने खिलाड़ियों को बांटे किट। तिरुवनंतपुरम में सीएम वीडी सतीशन ने केरल पुलिस के नशा विरोधी अभियान ऑपरेशन तूफान द नाकोवन का किया उद्घाटन, कहा युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित चिलुआ ताल पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण परियोजना का किया लोकार्पण। भुवनेश्वर में गोवा और तेलंगाना के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हुए शामिल। अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने मिशन फिट खाकी अभियान का किया निरीक्षण, जवानों को फिट रहने के टिप्स दिए। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने कुत्ते और एआई की मदद से शरीर में कैंसर का पता लगाने की तकनीक विकसित करने का दावा किया। स्टार्टअप ने कुत्ते की सूंघने की शक्ति और एआई का होता है इसमें इस्तेमाल, कैंसर की पहचान के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का होता है इस्तेमाल। टीट रीढ़ और जोड़ों में दर्द के मुफ्त इलाज के लिए मुंबई में लगा 3 दिवसीय शिविर, कार्यक्रम में भारत के सांसद, कई दूसरे देशों के डॉक्टर्स भी शामिल हुए। मरीजों को पीठ और जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत यह आयोजन, कार्यक्रम में पुराने दर्द के इलाज की नई तकनीकों पर हुई चर्चा। मरीजों को दर्द से मुक्ति दिलाने की पहल के तहत आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हुए शामिल। भारत ने किया सुपर किलर मिसाइल रुद्रा M2 का सफल परीक्षण, हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है रुद्रा M2। प्रशिक्षण के दौरान लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई मिसाइल रुद्रा M2 6,791 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है रुद्रा M2 की स्पीड। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा M2 दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह के संचार सिस्टम की पकड़ में नहीं आएगी ये मिसाइल। 300 किलोमीटर है रुद्रा M2 की रेंज, अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है मिसाइल। रक्षा निर्माण क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम ये मिसाइल है, हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने किया इस मिसाइल का विकास। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बड़ी भारतीय हथियारों की मांग, ब्रह्मोस आकाश लॉयट्रिंग म्यूनिशंस और नेत्रा जैसे हथियार प्रणालियों की मांग में बढ़ोतरी। साल 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंचा देश का रक्षा निर्यात, पिछले साल के मुकाबले 62% की हुई बढ़ोतरी। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ऑपरेशन शेरुवाली की समीक्षा की, जमीनी स्तर पर ऑपरेशनल स्थिति का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के को दिया गया ऑपरेशन शेरुवाली का नाम, गंभीर मुगला से रोडीमल तक के घने जंगलों में जारी अभियान। विपुल होंगे सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत, फिलहाल कतर में है भारत के एम्बेसडर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का ताना बाना। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Step into timeless class.

0: music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब बात कर लेते हैं मासूम बच्चों की। बच्चों के साथ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो देर रात तक जागते हैं तो मम्मी पापा उन्हें डांट देते हैं, जिस पर वो मजबूरी में सो भी जाते हैं। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के बच्चों की किस्मत शायद इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छी है। दरअसल वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने खुद एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर NBA फाइनल्स देखने की इजाजत दी गई है। वजह है 27 साल बाद न्यूयॉर्क की टीम फाइनल में पहुंची और पूरा शहर जश्न के मूड में है।
7: Who's ready to watch the Knicks? Executive order is signed. Okay, quick.
8: That's amazing.
7: Let's go Knicks. Let's go Knicks.
8: 2, 3.
9: खेल के जुनून में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन न्यूयॉर्क में तो मेयर ही बच्चों के साथ फैन बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक मजेदार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें बच्चों को देर रात तक जागकर NBA फाइनल्स देखने की अनुमति दी गई। हालांकि ये कोई असली सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि बास्केटबॉल के प्रति दीवानगी दिखाने का एक अनोखा तरीका था।
7: For the Knicks finals run. Are we ready? Who here was alive in 1999? No, you were not. You were? Okay, we're going to talk about that later.
10: I don't know when I was born.
7: All right, here we go. We're signing it.
10: I don't know.
7: Okay, my friends. Executive order is signed.
10: I don't know when I was.
7: Bedtime is repealed. All of you can watch the finals.
9: कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भी खास मेहमान बनाया गया। मेयर ने बच्चों को उस दस्तावेज पर अपने हाथों के निशान लगाने के लिए आमंत्रित किया और फिर सब ने मिलकर न्यूयॉर्क निक्स के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। पूरा माहौल किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसा नजर आया।
7: ओके, क्विक,
11: यस गर्ल,
7: डिसाइसिव।
9: इस उत्साह की वजह भी खास है। न्यूयॉर्क निक्स 1999 के बाद पहली बार NBA फाइनल्स में पहुंची है, यानी लगभग 3 दशक बाद टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।
7: Let's go Knicks! Let's go Knicks! Let's go Knicks!
9: फाइनल में उसका मुकाबला सैन एंटोनियो स्पर्स से होगा और पहला मैच बुधवार रात खेला जाएगा। टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया है।

0: ओके
1: अब तो फैंस की लिस्ट में खुद मेयर भी खुलकर सामने आ गए हैं। वैसे ये आदेश कानूनी रूप से भले लागू ना हो, लेकिन न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए इससे बेहतर बहाना शायद ही कोई हो सकता है। अगर मम्मी पापा सोने के लिए कहें तो जवाब तैयार है, वो ये कि मेयर ने खुद इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दान पात्रों से मिला 26,94,813 रुपए का दान, श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच खोले गए बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के दान पात्र। ट्रांसएम बाइक रेस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कोचा के साइक्लिस्ट नितिन सैनी, अमेरिका में 7 जून से शुरू होगी प्रतियोगिता, 6,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे तय। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2024 को न्यूयॉर्क राज्य में भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया पारित, प्रस्ताव में न्यूयॉर्क के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान को भी दी गई मान्यता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल तो एक सस्ता, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल एक टिकाऊ साधन है। ये दिन एनवायरमेंट कंजर्वेशन और हेल्थ को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो आज तो बाइसिकल पर बिठाकर ही हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। आज तो है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर गुड न्यूज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफरनामा हेडलाइंस के साथ।
11: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, होगा ईशा और सूरज का आमना सामना, करेंगे दोनों प्यार का इजहार। मेरे साईया रे, साईया रे। दुल्हन बनी अभीरा, कर रही है अरमान का इंतजार। अपराजिता को प्रपोज करने गए रक्षित का टूटा दिल, शुरू हुआ सिंदूरी तमाशा।

0: ने खोया अपना बच्चा, शौक में जाएगी रीत।
1: आपकी वजह से हमारा बच्चा मरा है, आपकी वजह से, ना कि उनकी बदुआओं की वजह से।
2: तू मैनू छड़ जाड़ा।
0: वसुधा बनेगी बिजनेस वुमन, शुरू होगी नई पारी।
3: आप लोगों को हमारी अंग्रेजी पर हंसी आ रही है, हमारे को अब सब पर। हमारे देश को आजाद हुए जमाना हो, लेकिन आप लोग तो अभी भी अंग्रेजी के ही गुलाम हैं।
0: और आएगी फहमान की नई फिल्म, लगेगा सितारों का मेला, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अगर बचत की नजर से देखा जाए तो साइकिल सबसे अच्छा और सस्ता साधन है। अजय कह रही हैं हमसे हमारी ईशा। वैसे ईशा, कैसी है आपकी लाइफ की बाइसिकल? क्या यहाँ पर है बैलेंस या हो गया है ऑफ बैलेंस? क्योंकि देखिए, कहानी में आते हैं इतने सारे ट्विस्ट कि यहाँ भी है लगातार उतार और चढ़ाव। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग, लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
1: सूरज, तुम जिंदा हो?
2: हाँ ईशा जी, मैं आपके सामने हूँ।
1: कहाँ चले गए थे तुम सूरज? मैं तुमसे बहुत बहुत बहुत प्यार करती हूँ।
2: ईशा जी, मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।
3: टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में लौट आया है ईशा का सूरज, और देखिए कैसे इन दोनों का आमना सामना हो गया है। असल में ईशा यहाँ पर पहुँची थी सूरज के लिए प्रार्थना करने, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा को सूरज के आसपास होने का एहसास हो रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईशा ने सूरज को याद किया और सूरज लौट आया। चली हवाएं, किस्मत ने दिया इशारा और मिल गए ईशा और सूरज। भाई देखिए कैसे सूरज पर ईशा का पल्लू जा गिरा, और ऐसे में दोनों भी काफी इमोशनल हो गए।

तक तो सबको पता ही है, ईशा और बाकी घर वाले मान रहे हैं कि सूरज मर चुका है, लेकिन आज फाइनली सूरज ईशा के सामने आ गया है, क्योंकि वो तो जिंदा है और उसे आकाश के सच का पता लगाना है। लेकिन साथ ही सूरज को ये भी पता लगाना है कि अगर ईशा ने आकाश से शादी कर ली थी तो वो सूरज के लिए क्यों तड़प रही है। ऐसे में सूरज यही जानना चाहता है और ईशा उसे बता भी देती है कि आज भी सूरज से वो बेहद प्यार करती है। ऐसे में दोनों काफी इमोशनल हुए और साथ ही इन तस्वीरों के जरिए दोनों की यादें ताज़ा हो गई, जब दोनों ने एक दूसरे संग हसीन पल बिताए थे।

सूरज और ईशा वो सभी लम्हे जी रहे हैं, चाहे फिर वो शादी हो या फिर हो इनका रोमांस, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। ऐसे में सूरज ईशा से ये भी जानना चाहता है कि आखिर वो उसे छोड़ कर क्यों गई थी, लेकिन ईशा उसे कुछ नहीं बताती।

0: या बिल्कुल सूरज के सूरज एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट में ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मर चुका है. ऑडियंस नोज वेरी वेल कि सूरज जिंदा है. एंड सूरज जिंदा इसलिए ही है क्योंकि सूरज ने देख लिया था कि उसकी जीप में बॉम्ब लगाया जा रहा है. तो बॉम्ब लगाया जा रहा है मुझे मारने की साजिश की जा रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, कोई गुत्थी है जो मुझे सुलझानी ज़रूरी है. एंड समय के हिसाब से जब उसे पता चल जाता है कि ईशा जी जो है कि सूरज के जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ईशा जी वहाँ पे आई है, रोते जा रही हैं एंड बोल रही हैं कि मेरा सूरज मर नहीं सकता, तो सूरज के दिलो दिमाग में ना वो घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि ये आज भी मेरा सूरज क्यों बोल रही हैं. एंड आखिर क्या मतलब माजरा क्या है, मतलब जब इन्होंने एक डेढ़ साल पहले मुझे छोड़ दिया है तो आज भी मेरे लिए इतना केयर क्यों कर रही हैं, तड़प क्यों रही हैं. यही चीज़ जानने के लिए वो अपने पापा को इस गेम में शामिल करता है. सूरज अपने पापा को भी बोलता है कि पापा अब किसी को मत बताइएगा कि ऐसा ऐसा है, समथिंग मुझे सच तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, मुझे सच पता लगाना है जो ईशा जी हम सबसे छुपा के रखी है. तो पापा को ही बोलता है कहीं ना कहीं कि ईशा जी को मतलब किसी भी बहाने आप उस गार्डन की तरफ भेजिए जहाँ पे अक्सर सूरज कभी कभी ईशा जी को लेकर गया था, जहाँ सूरज अपनी माँ का और पापा का जो बोलते हैं ना ये क्या बोलते हैं निशानी था जो पौधा लगा था उसी वाले गार्डन में हमेशा सूरज जाता है. तो वहाँ पे जा बेटा और उसके नाम का कुछ समथिंग कर, वहाँ पे जा फूल पौधे लगा काइंड ऑफ कुछ तो है. एंड ईशा जी यहाँ पे आती है और वहाँ पे सूरज का आभास होता है ईशा जी को, और सूरज वहाँ पे यू नो प्रकट होता है. एंड ईशा जी फुल्ली शॉक्ड हो जाती है. सूरज सारी चीज़ें बताता है कि पूछता है कि मुझे बताओ कि एक्चुअली सच्चाई क्या है ईशा जी. तो ईशा जी वहाँ पे बताने वाली रहती है, ये तक बता देती है कि मुझे आज भी तुमसे प्यार है. सूरज भी बताता है कि मुझे भी तुमसे प्यार है, अगर इतना ही प्यार था तो उस वक्त मुझे छोड़ के आकाश से शादी क्यों की, क्या रीज़न है. लेकिन ईशा जी रीज़न बता नहीं पाती बिकॉज वो भी सर्कमस्टेंसेस में फंसी पड़ी हुई हैं कि अगर उन्होंने गलती से बता दिया तो उनकी माँ को मार दिया जा सकता है. सो दैट्स ऑल.
1: फिलहाल तो सूरज और ईशा एक दूसरे से मिल चुके हैं और ईशा को पता चल गया है कि सूरज जिंदा है. लेकिन इससे पहले देखिए कैसे इस मंदिर में पेड़ के नीचे ईशा सूरज के गम में है और हो गई है बेहोश. तभी वहां आकाश आता है. भाई आकाश को तो मिल गया है मौका ईशा के साथ शादी रचाने का और वो इन्हीं ख्यालों में खोया है. लेकिन आकाश को ये नहीं पता कि सूरज उसके इन इरादों पर पानी फेरने वाला है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सूरज को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था.
2: किसके कहने पर मेरी गाड़ी में बॉम्ब लगाया? जान प्यारी है तो राम वरना तेरे इतने टुकड़े करूंगा तेरे साथ उस टाइम भी मैं तुमसे छुड़ाऊंगा.
1: तो भाई आकाश के इस आदमी के जरिए सूरज ने सच का पता तो लगा दिया है. अब देखना होगा कि कैसे वो आकाश के सच का खुलासा करता है और ईशा के साथ फिर से जुड़ता है सूरज का रिश्ता.
3: सूरज को मार दिया मैं, कौन रोकेगा हमारी शादी.
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: छोड़ के नहीं जा सकता.
5: ईशा जी मुझसे इतना प्यार करती है कि अपने जीवन का बलिदान दे दिया.
6: साइकिल तो सस्ती होती है और इसका रख रखाव और इसमें लागत भी कम होती है, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी. लेकिन रूहानी और गुरु की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या अब भी है यहाँ पर इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का, चलिए पता कर कर आते हैं. लेकर चलते हैं आप सबको इश्क जुनूनी के सेट पर.
1: पूरी हुई रूहानी की तलाश, सास बहू का हुआ मिलन, रक्षक बनकर पहुंचा गुरु, गुरु और रूहानी का हिट एंड मिस. दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी वार्डन और नर्स के चंगुल से भाग निकली है और पूरे अस्पताल में अपनी सासू माँ कुसुम को तलाश रही है. हर कमरे में जा जाकर झांक रही है और साथ ही साथ भाग भी रही है. इतना ही नहीं वो तो ऊपर वाले से दुआ भी मना रही है.
7: गजल,
1: वही माता रानी ने तो रूहानी की दुआ कबूल की और देखे कैसे गुरु अस्पताल में एंट्री कर गया है अपनी रूहानी को ढूंढने के लिए। यहाँ रूहानी छिपी हुई है क्योंकि वार्डन और उसकी नर्स उसे तलाश रही है। ऐसे में अपनी जान बचाते हुए रूहानी जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी नजर पड़ जाती है अपनी सासू माँ कुसुम पर, जो जमीन पर रेंग रही है क्योंकि वो घायल है। रूहानी तो अपनी सासू माँ को पाकर बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले वार्डन और नर्स आकर उन्हें देख ले, पकड़ ले, रूहानी अपनी सासू माँ को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं गुरु भी रूहानी को तलाश रहा है। ऐसे में दोनों सिक्योरिटी गार्ड गुरु को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
7: हम जानते हमारी पत्नी यही है और हम उसे लेकर ही जाएंगे।
1: गुरु तो यहाँ से भी भाग निकला, लेकिन उसे रूहानी अब भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में वहाँ पहुँच जाती है पीहू, जो गुरु की मदद करने के लिए गुरु को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं रूहानी भी अपनी सासू माँ के साथ एक कमरे में छिप गई है, लेकिन किस्मत रूहानी का साथ नहीं दे पाई क्योंकि वार्डन के हाथों लग जाती है पीहू, और उसे पता है कि पीहू को अगर दुख देंगे तो रूहानी सामने आ ही जाएगी। ऐसे में देखिए कैसे वार्डन पीहू पर जुल्म ढा रही है।
8: देखो आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आई ना तो इस पीहू को इतना शौक देंगे, इतना शौक देंगे कि जिंदगी भर ये ना तो बोलने लायक रहेगी ना ही चलने लायक रहेगी।
1: भाई पीहू के दर्द की आवाज़ सुनकर रूहानी से रहा नहीं गया और उसने अपनी सासू माँ को अपनी कसम दे दी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से घर पहुँचे।
9: माँ मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पीहू को बचा के जल्दी घर आ जाऊँ।
1: अब रूहानी के कहने पर कुसुम यहाँ से चली तो गई और रूहानी पहुँच गई वार्डन के पास ताकि वो पीहू को बचा सके, और फिर से वार्डन ने रूहानी को गिरफ्त में कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या गुरु सही समय पर पहुँचकर अपनी रूहानी को बचा पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: साइकिल तो एक सस्ता ऑप्शन है, इसलिए ये सभी वर्गों के लिए सुलभ है। कुछ ऐसा ही कह रही है आज हमसे हमारी किशोरी। लेकिन किशोरी की जिंदगी में क्या हो रहा है आज? क्या लाला और किशोरी के बीच सब कुछ ठीक है? क्या कहानी से आ रही है हमारे लिए कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको पति अनाड़ी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: लाला हुआ फना, किशोरी के सुहाग पर मंडराया खतरा, टीकू बना जानी दुश्मन, दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी में टीकू ने कर लिया है लाला का किडनैप क्योंकि उसे लाला की दुकान जो चाहिए। ऐसे में टीकू लाला को किडनैप कर अपने अड्डे पे लाया तो है, लेकिन लाला ने वहाँ आकर सभी के नाक में दम कर दिया। वो इधर उधर भाग रहा है क्योंकि वो उस जगह को लेकर फैसिनेटेड जो है। ऐसे में टीकू परेशान है और अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कह रहा है। इतना ही नहीं, उसने तो लाला की बहन मंजू को कॉल भी लगा दिया डराने धमकाने के लिए।
10: दो ही चीजें जान से प्यारी हैं, एक तो तुम्हारा ये अनाड़ी भाई और दूसरी तुम्हारी दुकान। तो अपने भाई की जान अगर प्यारी है तो अपनी दुकान सौंपने को तैयार हो।
11: पता नहीं कैसे गुंडे लोग हैं ये, ना एसी है ना कुछ है, और लेके आ गए लाला को। और लाला ने मोस्टली क्या होता है, गुंडे परेशान करते किडनैप करने वाले को, लेकिन लाला ने सबको परेशान कर दिया बहुत ज्यादा और बहुत कैओस हो गया ऊपर।
12: ऑब्वियसली लाला अगर कहीं पे फंसा हुआ है तो किशोरी तो जाएगी जाएगी बचाने, तो वैसे ही वो आई है बचाने। बट उसको ये भी डर है कि कहीं टीकू को ये ना पता चल जाए कि मैं लाला की पत्नी हूँ। अगर उसे ये पता चल गया फिर तो बैन बच जाएगा, क्योंकि अभी उसका प्लान ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोनों पति पत्नी हैं इसीलिए इसको किडनैप किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका फोकस सिर्फ अभी दुकान पे है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों पति पत्नी हैं फिर तो फिर टीकू अपना रूप दिखा देगा।
1: अब लाला और टीकू का पीछा करते हुए किशोरी टीकू के अड्डे पर पहुंच तो गई है, और ऐसे में लाला की नज़र भी किशोरी पर पड़ जाती है। बस फिर क्या, वो तो उछलने कूदने लगता है और खुश होने लगता है कि उसकी किशोरी आ गई है। बस फिर क्या, किशोरी को देखकर टीकू को अपना अतीत याद आ जाता है और उसका गुस्सा भड़कने लगता है। अब किशोरी ने कोशिश तो की थी टीकू को सबक सिखाने की, लेकिन अफसोस वो भी पकड़ी गई। ऐसे में टीकू ने गुस्से में आकर छुरी निकाल ली और किशोरी की नजरों के सामने ही लाला को घोप दिया।

0: ये तो
1: ये लाला को जान से मार दिया टिकू ने, उसको पता चल गया है
0: शायद इसका या
1: फिर क्या है? ये तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा।
0: ये एक फ्लैश है बिकॉज किशोरी को ऐसा लगता है कि चली जाती हूँ बचाने के लिए, बट फिर उसको ऐसे स्ट्राइक कर जाता है कि अगर मैं चली गई फिर ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद किशोरी कौन सा प्लान लेके आएगी तो देख ही लोगे वैसे भी आज ही।
2: टीकू का लाला को जाने वाला किशोरी का सिर्फ सपना है, वो तो अब भी टीकू के अड्डे पर छिपी हुई है। कैसे बिगड़ के लाला को बचा सके, लेकिन तभी लाला की नजर भी किशोरी पर पड़ ही जाती है। ऐसे में बाकी गुंडे उसे देख ना ले, इसीलिए किशोरी छिप जाती है। अब देखना होगा कि किशोरी क्या प्लान बनाएगी और कैसे अपने लाला को टीकू और उनके गुंडों के चंगुल से बचाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: साइकिल का पहला नाम या फिर आविष्कार के बाद उसका पहला नाम उसे हॉबी हॉर्स के नाम से जाना जाता था, यानी काठ का घोड़ा, क्योंकि पहली साइकिल एक्चुअली लकड़ी से बनी हुई थी। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी इस अगली कहानी की ओर, यानी यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड।
4: सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्यों को करने की शपथ लेती हूँ प्रेम और करुणा के साथ, मानवता की रक्षा करूंगी और अधिकारों का सम्मान करूंगी। हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हम जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
5: साड़ी में कंगना रनावत और एक नया अंदाज, क्योंकि वो लेकर आ रही एक नई फिल्म जिसका नाम है भारत भाग के विधाता, जो है मुंबई के 26/11 की सत्य घटनाओं पर आधारित। यहाँ पर वो बनी है मुंबई की एक नर्स।
6: अरे आई एकदम बाप पे गई है।
7: पक्का ना? डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं? नंबर 12 आज आम पकने वाला है।
8: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही।
9: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग, है ना?
5: के साथ मराठी स्टेज और फिल्मों के कई कलाकार हैं। मुंबई में हुआ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, जहां पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कंगना अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाक बोल बोलती नजर आई। फिल्म को डायरेक्ट किया मनोज तपारिया ने और प्रोड्यूस किया है पेन स्टूडियोज ने, और इस मौके पर

इंडस्ट्री जो है, खबरें जो है भारतवर्ष तक पहुंचाते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इन्हांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भाग्य विधाता कोई हैं तो आप लोग हैं। मुझे जो है महाराष्ट्र में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मुझे एक मराठी फिल्म जो है करने का मौका मिला, तो मराठी एक्टर्स के साथ में इतने क्लोजली काम करना, और नेचुरली वी ऑल नो कि हाउ गुड मराठी एक्टर्स आ, चाहे थिएटर एक्टर्स ले लीजिए या आप सिनेमा से रिलेटेड ले लीजिए, तो यू नो आई हैव सम वेरी हेल्पफुल पीपल जिन्होंने मुझे एक्सेंट के साथ में, चाहे कह लीजिए या ओवरऑल क्या लाइफ स्टाइल रहता है उसके साथ में, समिता जी ने, गिरिजा जी ने, ईशा जी ने बहुत हेल्प किया। एंड आप देख सकते हैं हम लोगों का जो केमिस्ट्री है फिल्म में, एज फ्रेंड्स, एज कोवर्कर्स, एज कलीग्स, एज वुमेन हु आर डूइंग एवरीथिंग फैमिली के साथ साथ देश के लिए, उनकी जो धारणा है घटना पर आधारित है, ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या हिम्मत रखती हैं, हमारे जो जो चाहे क्या डॉक्टर्स तो होते ही हैं अस्पतालों में, और हम सोचते हैं अस्पताल जब सोचते हैं तो डॉक्टर्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो वॉचमैन, वार्ड बॉयज, मौशी, मामास, नर्सेस, ये लोगों के आप इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के आम लोगों में ये जज्बा है, और हमें वाकई में एक भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। इनका रिएक्शन था कि मैम हमें ना, हमें रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हमें ना छत्तीसगढ़ रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा आई सेड लेट अस फर्स्ट शूट इट, विल फर्स्ट शूट इट एंड देन विल हैव द कॉपी एंड देन विल सी। वो पहली इनकी चीज की मुझे अपने घर होम टाउन में मुझे दिखाना है कि मैंने फिल्म बनाई है, तो एक जज्बात होता है, छोटे शहरों से आए हुए लोगों का एक जज्बात होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें अक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो जब निकले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बागी बन गया जो भी है तो ये हमेशा मुझे कहते हैं। तो मैंने सर आपको पता है मैंने पहली स्क्रीनिंग कहाँ अरेंज की है, छत्तीसगढ़ में हम पहली फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहां कर रहे हैं। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज ए टीनेजर शुरू किया था, एक काफी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की जिंदगी, तो मैं मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेस से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ वास्तविकता से, कितना दूर थी मैं और कितना जरूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना, कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर, सब्जी काटते हुए जब घर जाती है, और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के यू नो एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके, जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निग्लेक्ट करने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, यू नो कोई भी, अब हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट, तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह जाके हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज़म था, वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने, हमने तो फिल्म में शायद एक या दो डिलीवरी दिखाई होगी, एक दो घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे।
एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया, एक भी जो जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो चाहे कोई भी चीज, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहां पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है। आई वॉज we were, you know, all coming up and working with Bhatt Saab, and you know, we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere, and there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there.

0: at Shahna's house, and then Bhatsa broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very. भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिसको जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा. विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा. जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा. तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया. तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले. और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं, उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं. उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएँ आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें. इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है, और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है. तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए.
1: तो उम्मीद है कि सत्य घटनाओं पर आधारित कंगना की ये नई कोशिश दर्शकों को पसंद आए. मुंबई से ब्यूरो
2: वर्ल्ड बाइसिकल डे पर जगह जगह कैंप और सेमिनार्स का आयोजन होता है, जहां लोग एक दूसरे को साइकिल चलाने के फायदे बताते हैं और उसके साथ साथ इससे जुड़ी जो बीमारियां होती हैं या फिर ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो साइकिल से चलाने से दूर होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को. तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर, जहां है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और परोस रहे हैं हम इसे राइट हियर राइट नाउ एकदम गर्मा गर्म.
1: फिर से मिले रब राखा के मेखला और रणबीर. जगदात्री का एक नया अंदाज, लेकिन इस बार अपने पहले शो के लिए मिले फहमान खान से, जो आज अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी फिल्म गूंज रिलीज हो चुकी है. मुंबई में हुई गूंज की खास स्क्रीनिंग, जहां पर फहमान और उनके साथ मयूर मेहता, जो इस फिल्म को लेकर आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग में पहुंचे ढेर सारे मेहमान. फहमान के साथ रब राखा नाम का शो कर चुकी सोनाक्षी बत्रा अब बन गए हैं जगदात्री की जगदात्री, और जगदात्री इस मौके पर सबका ध्यान खींच रही थी. भले ही सोनाक्षी अब जगदात्री बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं फहमान उनके पहले हीरो थे और ये उनके लिए बहुत स्पेशल मौका था.
3: दोस्त का एक प्रोजेक्ट, उनकी शॉर्ट फिल्म लॉन्च हुई है, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम. ऑफ कोर्स जब दोस्तों का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तब मन करता है कि उनके उनके अचीवमेंट्स, उनके सक्सेस, उनके हर चीज़ में उनका साथ दें. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर टू वॉच हिज फिल्म विद हिम एक्चुअली, और उनको अपना ताज़ा ताज़ा ओपिनियन दें, फीडबैक दें कि कैसी लगी है मूवी, उनको बताएं. और अच्छा भी लगता है ना जब जो दोस्त होते हैं वो साथ में बैठ के देख रहे होते हैं. एक्साइटेड टू बी हियर टू वॉच हिज फिल्म विद हिम एक्चुअली, और उनको अपना ताज़ा ताज़ा ओपिनियन दें, फीडबैक दें कि कैसी लगी है मूवी, उनको बताएं. और अच्छा भी लगता है ना जब जो दोस्त होते हैं वो साथ में बैठ के देख रहे होते हैं, हम उनका रिएक्शन देख पाते हैं एंड जान पाते हैं उनकी उनके दिल में क्या चल रहा है. थोड़ा सा एक आभास तो हो ही जाता है कि पसंद आ रही है कि नहीं आ रही. तो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर सपोर्टिंग हिम एंड वॉचिंग द फिल्म विद हिम. वेल आई एम रियली ग्रेटफुल दैट द शो इज़ डूइंग रियली गुड. जगदात्री बहुत अच्छा कर रहा है. 200 एपिसोड्स अभी हमने कंप्लीट किए एंड आई जस्ट होप कि वो मल्टीप्लाई होता रहे एपिसोड्स का सिलसिला. एंड लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, एडिट्स आते हैं इतने सारे, एंड दे आर एंगेज्ड इन ऑल द एपिसोड्स. तो बहुत अच्छा लगता है, उतनी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है और दिल से पूरा शिद्दत से काम करने का मन करता है. वेल अभी शिवाय प्यार का इजहार करेंगे, सच में बताएंगे, ये कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं होने वाला. वो एक्चुअली बताएंगे कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं जगधात्री से, और देखना होगा ये कि जगधात्री क्या आंसर देंगी. कि थैंक यू फॉर ऑल द लव. आपका जो लव एंड सपोर्ट है वही हमें काम करने की एनकरेजमेंट देता है. करता है, हमें एक्साइटेड करता है हर बार कि हम कैमरा के सामने खड़े हों और अपना काम करें बहुत ही चाह से. एंड

0: थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड द ब्लेसिंग्स एंड आप ही की वजह से हम इतने सारे एपिसोड्स बना पा रहे हैं।
1: एक लंबे समय के बाद दिखाई दी हिबा नवाब यानी झनक, जो जल्द ही वापसी करने वाली है। हिबा और फहमान ने एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था और अपने दोस्त फहमान को सपोर्ट करने पहुंची हिबा, और साथ साथ अपनी वापसी की खबर भी उन्होंने कंफर्म की।

0: be back super soon. I'm also excited. Something great is coming up. And I can't tell right now, but it will be out like really, really soon. So I'm really excited for that. So, yeah. Jitna maine unko jana, I think he's very nice. Achhe insaan hai, achhe dost hai wo. Aur wo bahut achhe actor hai, especially because I've worked with him. Bahut chota se humne kaam kiya tha, we did a music video together, but I could see there's a lot of depth in his eyes, and I think that's all you need as an actor. Aapki aankhon se agar aap convey kar pa rahe ho, shabdon ki zarurat nahi pad rahi hai, to I think that is something which we all want in us as an actor. So he has it, so I think that's great.
1: वैसे यहाँ पर परिधि शर्मा भी नजर आई, जोधा अकबर की जोधा, जो यहाँ पर आई थी अपने दोस्तों को सपोर्ट करने.
2: बहुत ही प्यारा और सहज काम दिखा मुझे उनका ट्रेलर में. So all the very best to him, and yeah, looking forward for it. और मयूर के इसके पहले भी टू बॉक्सेस करके बहुत ही प्यारी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और इनका सेकेंड प्रोजेक्ट है, तो जितना खूबसूरत ट्रेलर है आई एम श्योर उससे कहीं गुना ज्यादा प्यारी मूवी होगी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट.
1: कुमे किसी के प्यार में और बिग बॉस जैसे शोज में दिखने वाली ऐश्वर्या शर्मा भी यहाँ पर पहुंची. भले उनकी पर्सनल लाइफ लूज में रही हो, लेकिन ऐश्वर्या यहाँ पर अपने खास दोस्त मेहमान के लिए पहुंची.
3: स्टोरीज बहुत कम बनाते हैं हर कोई, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिस तरीके से फहमान ने इतनी मेहनत की है, एंड स्पेशली दैट अंडर द वाटर सीन. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस सीन को देखने के लिए, इन मतलब पूरी फिल्म में. सो एंड इसीलिए बस वेट कर रही हूँ मैं. एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ डायरेक्टर बोथ साथ में करना, एंड एक्टिंग एज वेल, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज डूइंग इट रियली वेल. एंड मुझे बस फिल्म देखना है, मैं यही बोल रही थी पहले, मैंने ये बोला कि लेट मी वॉच फर्स्ट. वैसे तो अच्छी है ऑफकोर्स, ट्रेलर को देख के तो काफ़ी विजुअल्स एंड एवरीथिंग, इट्स लुकिंग वेरी नाइस. यस, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती. सो समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू.
1: वैसे यहाँ पर नजर है विक्रम सिंह चौहान, जो आजकल दिख रहे हैं दो दिल एक जान में. भाई फहमान उनके खास दोस्त हैं, और इसलिए अपनी शूटिंग के बीच में विक्रम यहाँ पर पहुंचे.
4: मुझे हर बार सरप्राइज करता है, एंड एज एन एक्टर तो उसने बहुत सरप्राइज किया है, बट एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर उसने एक नया स्टेप लिया है, एंड इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स. एंड आई रियली विश बेस्ट टू हिम कि वो यहाँ से उसका सफर जो ये शुरू हुआ है वो नेक्स्ट लेवल और यू नो कुछ और यहाँ से आगे जाए, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स.
1: भाता प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस शॉर्ट फिल्म के साथ फहमान और मयूर मेहता भी अपना डेब्यू कर रहे हैं, और इस मौके पर इनकी फैमिली और पूरी कास्ट क्रू और फहमान के परिवार एक साथ आज जमा हुआ है.
5: बहुत अच्छा लगता है यार, जब इतने लोगों को देखा ना मैंने पहली बार, तो पहले टाइम पे फुल हो गया थिएटर और नीचे भी लोग बैठे हैं. अब अगला मुझे लगता है अगला भी फुल होने वाला है, इससे बेटर क्या फीलिंग हो सकती है. अब पता है मुझे कि अगर कुछ भी हम बनाएंगे इसके आगे, पीपल विल कम टू वॉच इट, एंड उसी तरीके का प्यार हमें जनता से भी मिल जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने लोगों को तो, अपने लोगों से तो प्यार आता ही है, पर आई हैव अंडरस्टूड दैट दे ऑल्सो लाइक द फिल्म, एंड आई एम ओवर द मून राइट नाउ, एंड आई थिंक आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट द रिस्पॉन्स. आगे आप लोगों के हवाले है, आप देखिए फिल्म और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है जेन्यूनली.
6: मैं तो गूज़बम्स अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं मेरे. आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिएक्शन, विद द रिस्पॉन्स. मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ इतने बड़े स्क्रीन में एक फिल्म अपनी, तो आई एम एट दिस मोमेंट. मैं जनरली मेरे पास चीज़ें होती हैं बोलने के लिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास शब्द नहीं है. अभी मेरा हो गया शब्दों का हिसाब, मैं अभी विजुअल्स में अटका पड़ा हूँ. पिक्चर अभी बाकी है वाली सीन है.
7: वेरी ओवरवेलमिंग,
8: इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. आई थिंक हम सब एक साथ लगे और इसको क्रिएट करने की कोशिश करी, एंड आई रियली हैप्पी कि सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है. अभी मतलब अभी तो बहुत छोटी सी है फिल्म, हमारी यूट्यूब पर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, सो आई होप कि वहाँ पर भी लोगों को पसंद आए.
1: तो उम्मीद है कि फहमान खान और मयूर मेहता की ये खास कोशिश रंग लाए और गूंज सबको पसंद आए, जो रिलीज हो चुकी है. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
9: वर्ल्ड बाइसिकल डे,
7: जिसका उद्देश्य विश्व भर में साइकिल को बढ़ावा देना है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी स्पेशल दिन को. लेकिन क्या सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर नाहर और रूही की इस कहानी में, चलिए पता कर आते हैं. लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स पंच सुंदर के सेट पर.

दादी माँ का नकली ड्रामा। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही और नाहर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते रूही अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वो और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही खतरे में हैं। इस बात को लेकर सभी घर वाले बेहद परेशान हो रहे हैं कि तभी नाहर को नजर आ जाती है अपनी रूही, और उसे अपने सामने देखकर नाहर हैरान है। लेकिन वो रूही नहीं बल्कि रूही की अंतर आत्मा है, जो नाहर से बात करने आई है।

0: डॉक्टर ने बोल दिया कि दोनों बहुत क्रिटिकल है, कोमा में चली गई रूही। तो नहार एकदम शॉक में है, बोले ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी सजा मत दो रूही, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इतना बड़ा सजा मत दो, और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो नहार बहुत परेशान है, रो रहा है। इतने में उसको एक फ्लैश आता है, मतलब ड्रीम सिक्वेंस है, जिसमें रूही आती है, बोलती है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, हमारे बच्चे का आपको आपको ठीक से रहना होगा, बच्चे का ख्याल रखना होगा, हमारे होने वाले बच्चे का और रूहान का भी। तो नहार ये बोलते कि ऐसे तुम क्यों बोल रही हो, तुमको ठीक होना होगा, हम साथ मिलके हम बच्चों का ख्याल रखना है। सो रूही बोलती है कि मुझे नहीं, मैं बहुत सुकून में हूँ। नहीं, सुकून तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे बिना नहीं है। तो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स जाते हैं और वो गायब हो जाती है, और फिर थॉट टूटता है, तो सब एज इट इज़ है, सब नॉर्मल है, फैमिली वहाँ पे है। और एक सदमा शॉक लगता है नहार को कि एक रिपोर्ट, बच्चे की रिपोर्ट आती है, जिसमें ये लिखा हुआ कि उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, उसकी धड़कन नहीं चल रही है, कि मतलब आपका होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दादी ये न्यूज़ देती है आके, तो नहार हिल गया है, वो एकदम पागल हो रखा है, वो डॉक्टर से बात करने गया है, लेट्स सी आगे क्या बात हो रही है।
1: अब रूही ने अपने मन की बात नाहर को बता दी, और नाहर वो तो बेहद परेशान है और चाहता है कि रूही और उसका होने वाला बच्चा दोनों ही सही सलामत रहे। लेकिन तभी डॉक्टर ने आकर नाहर को बैड न्यूज दे दी है कि उन्हें रूही के होने वाले बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही। बस फिर क्या, ये बात नाहर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो तो वापस रूही का चेकअप करवाना चाहता है। ऐसे में वापस चेकअप ना हो, दादी पीछे से ड्रामा शुरू कर देती है।
2: रूही का तो कुछ प्लानिंग लग नहीं रहा है, बट दादी जैसे हम जितना भी शो अब तक किए हैं कि दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रूही नहार का बच्चा इस दुनिया में आए, तो हमें पता नहीं हम दादी के बातों पे यकीन कर लेंगे, या हमें सच का पता अभी चलेगा, बाद में चलेगा, या ये भी हो सकता है कि दादी का कोई प्लानिंग हो, या तो सच भी हो सकता है, क्योंकि रूही कोमा में है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे के सीन्स जैसे आएंगे वैसे ही पता चलेगा। इतना पता है कि जो भी होगा बहुत ही मज़ेदार होगा, आप लोगों को बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, और हमें भी आएगा मजा करके, है ना।
1: अब रूही के लिए ही नहीं बल्कि दादी के लिए भी सभी परेशान हैं, लेकिन नाहर वो तो अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसे में दादी नाहर के सामने आती है और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जो डॉक्टर ने बोला है वो सही बोला है। अब देखना होगा क्या नाहर दादी की बात पर यकीन कर पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सन 1990 तक साइकिल का दौर रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बदला साइकिल का महत्व लोगों के बीच कम हो गया, और इसी महत्व को बताने के लिए वर्ल्ड साइकिल दिवस, जी हाँ, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है हर साल 3 जून को। वैसे हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट को आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के साथ साथ। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी इस अगली कहानी की ओर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ।
1: नया सीरियल, नई जोड़ी, नया अंदाज और नया आगाज, वही स्टार प्लस पर आ गया है नया सीरियल जिसका नाम है सैराब, और इस सीरियल में जोड़ी जमी है रोहित और मदिराक्षी की। रोहित ईशान का किरदार निभाते हैं, कलाकार हैं, गाना गाते हैं और सबके लिए रॉक स्टार हैं। और नैनिका वो है घरेलू लड़की, घर संभालती है, साथ ही साथ जॉब भी करती है और अपनी बेटी को भी पालती है। दोनों की दुनिया तो अलग है, लेकिन रिश्ता एक है, जो जल्द ही आने वाली कहानी में पता चलेगा। फिलहाल तो इस सीरियल के पहले एपिसोड को सभी कलाकारों ने मिलकर देखा है और खूब एंजॉय किया है।
4: किसका बर्थडे है 2 दिन बाद?
5: नो वे मॉम, प्लीज इस बार
4: का मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, आप कुछ अरेंज मत कीजिए। आपका वो पायस बनाना, दिया जलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक
5: इट। आई तो लाइक इट ना।
1: इतना ही नहीं, पूरी टीम ने तो मिलकर केक भी काटा, एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शो बहुत ही खास है उनके लिए और दर्शकों के लिए भी।

0: बहुत समय बाद टेलीविजन से रूबरू होने का मौका मिला है. इट वॉज काइंड ऑफ लिटिल बिट इमोशनल मोमेंट फॉर मी जो इन्होंने देखा है.
1: That was a top secret.
0: Top secret. हाँ, मैंने बोला किसी को बोलना मत जो आंसू निकले.
1: ये जो नॉइनिका डॉक्टर नॉइनिका है, she works बाहर भी as a doctor, professional doctor, surgeon, और वो घर आके रोटियाँ भी बनाती है. ये हर वो औरत है जो अपना घर भी संभाल रही है और बाहर भी जा रही है. अब इसकी अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं. सो शी इज़ वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. लेकिन बाहर से वो खुश दिखती है, अपनी बेटी को खुश दिखाती है कि हाँ बेटा सब ओके है. तो जो वो खालीपन है, वो खालीपन भरने के लिए उसकी लाइफ में ईशान आते हैं जो कि रॉक स्टार हैं. हाउ ही कम्स, दोनों का कनेक्शन कैसा होता है, बिकॉज आई थिंक प्यार एक वाइब्स हैं, इट इज़ अ कनेक्शन. तो ये वो कनेक्शन वाली कहानी है. इट इज़ नेवर अबाउट द एज, बिकॉज द वुमेन इज़ ओल्ड, जिसकी 19 साल की लड़की है और जो लड़का है वो बहुत यंग है. तो इट इज़ नेवर अबाउट द एज, इट्स ऑलवेज अबाउट द कनेक्शन.
2: वो क्या है ना कि श्रेया और उषा तो दिन भर रसोई में ही काम कर रहे थे. अब उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, तुम खाना बना लेना.
3: भाई ये तो नॉइनिका और ईशान की कहानी है, लेकिन इनका एक परिवार भी है. बात करेंगे नॉइनिका के परिवार की. भाई नॉइनिका के पति ने भले ही उसे छोड़ दिया हो, लेकिन नॉइनिका अब भी अपने ससुराल में रहती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी को अच्छी परवरिश मिले, वो भी परिवार के साथ. लेकिन घर वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते नॉइनिका को ताने कसने में. लेकिन नॉइनिका का साथ हमेशा उसकी बेटी देती है. इतना कुछ होने पर भी नॉइनिका चुपचाप चीजें बर्दाश्त करते हुए सबके सामने सभ्यता से पेश आती है. यही तो है नॉइनिका. बात करेंगे बाकी के किरदारों की, तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं सभी के किरदारों के बारे में.
4: नहीं है तो हम कुक है क्या? काकी माँ, मॉम सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल में काम ही कर रही होती है, फिर क्या वो घर आने के बाद भी काम ही करती रहे? इवन मेज का और चोट का भी डेली ऑफिस जाते, क्या वो घर आने के बाद काम कर रहे होते? नहीं ना.
5: ये कैरेक्टर बंगाली फ्रॉम द मराठी लुक. मराठी में एक्चुअली मैंने भवानी काकू में मैंने नाइनर साड़ी पहनी थी जो मराठी टिपिकल लुक था, वैसे इसमें टिपिकल बंगाली लुक रखा हुआ है. मेरी सासू माँ बंगाली थी एंड मेरे घर में भी बंगाली कल्चर है थोड़ा बहुत. सो वो एक थोड़ा सा एक अपनापन लगता है मुझे बंगाली कल्चर के साथ. एंड यस, इसमें भी दुर्गा पूजा वगैरह सब है और क्या मैं अच्छो. सो बंगाली बातें कर रही हूँ, डायलेक्ट है थोड़ा सा, कभी लिख कर आता है, कभी मैं खुद का कुछ डाल देती हूँ, तो मज़ा आता है करने को, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है. रिसर्च करके करके मैं कर रही हूँ ये कैरेक्टर. ये तीखा, नमकीन, थोड़ा सा मीठा होने वाला है. बिकॉज तीखा इसलिए क्योंकि इसका बेटा उसकी बहू को छोड़कर चला गया है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी बहू को कोसती हूँ कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया एंड तुम यही हो, ऐसे टाइप का. तो लेकिन मेरी क्या कहते हैं, जो कनेक्शन है वो उसकी बेटी के साथ है. मतलब मेरा बेटा है उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, उसकी जो वाइफ आती है उसके साथ भी इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन इस बहू की वजह से वो चला गया, ये मुझे खंत है. और उसके बाद फिर जो बच्चे हैं फैमिली के, उनके साथ तो प्यार है ही, बाकी सबसे प्यार है, एक ही प्रॉब्लम है, बहू रानी. जो एक्सास बहू का थोड़ा सा तो नोकझोंक चलेगा.
6: मी बीइंग अ ओरिजिनल बंगाली, वहाँ पे मैं न्यूएंसेस ये करने की कोशिश करती हूँ. एंड ऑल्सो माई को एक्टर्स, दे रियली ट्राई हार्ड कि बंगाली एक दो शब्द वो बोले ताकि वो ऑथेंटिक लगे. एंड आई एम देयर, अजय दा इज देयर टू हेल्प देम, सो यस.
3: यानी इस सीरियल में सास बहू का ड्रामा जबरदस्त है जो आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देगा. उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इनकी ये कहानी पसंद आए. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: एक वक्त था जब इस बाइसिकल को परिवार में साधन का हिस्सा माना जाता था, तब तक होते थे सब लोग साइकिल पे ही डिपेंडेंट. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे और यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है एंटरटेनमेंट. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्राजिता और रक्षित के पास और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में. आज लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर.
8: आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
9: तुमसे कुछ खास बात करनी है.
8: क्या?
9: वहाँ देखो,
10: रक्षित की इजहार करने की प्लानिंग. अपराजिता की शादी का खुलासा.
11: रंग

0: का सीरियल ओ हम नफा तुम देना साथ मेरा में रक्षित ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आज वो अपराजिता को अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा, जिसके लिए वो लेकर आया है फूलों का गुलदस्ता और ये अंगूठी।
1: दुनिया साथ देगी नहीं देगी पता नहीं, पर एक चीज का वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बस तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। आई लव यू अपराजिता शर्मा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
2: आप यहां?
0: इससे पहले कि रक्षित अपराजिता को प्रपोज करता, यहाँ उसे पहले ही शॉक मिल गया क्योंकि उसने देख लिया अपराजिता के गले में मंगलसूत्र।
3: कुछ गिर गया।
2: क्या गिरा है? कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा।

0: और सोने पर सुहागा तो ये कि आ गया अपराजिता का पति ललित, जिसे देखकर तो रक्षित के होश ही उड़ गए और उसने फैसला लिया कि वो अपराजिता को प्रपोज नहीं करेगा। ऐसे में बेचारे रक्षित का तो दिल ही टूट गया है।
1: बीवी जी, तुम यहाँ हो, तू जहाँ मैं वहाँ। बीवी जी का गुलाम पति जी और कहाँ हो सकता है। मैं अपराजिता का पति ललित शिमाली, आप कौन?
2: ये रक्षित, रक्षित भारद्वाज, हाउस ऑफ भारद्वाज के ओनर है।
0: के बाद सभी जाते हैं मंदिर में, जहां हो रही है अपराजिता की बहन की शादी। यहां पर हो रहा है नाच गाना और इस शादी में अपराजिता के साथ साथ शामिल है रक्षित और यहां मौजूद है पूरा परिवार, साथ है ललित भी, जो इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे।

0: वहीं दूसरी तरफ असली तमाशा तो तब शुरू होता है जब ललित सबके सामने अपराजिता से कहता है कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आज तो वो अपने नए रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता है। अपराजिता के मांग में फिर से सिंदूर भरकर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर।
1: मेरे प्यारे घर वालों, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीवी जी मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गई और इनको लेने के लिए मैं भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ गया। आरू की सगाई और बीवी जी के कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा लंबा रुकना पड़ गया। ये दोनों काम अच्छे से हो गए तो मैं अपनी बीवी जी को अपने घर वापस ले जाना चाहूंगा। उससे पहले मैं सबके सामने कान पकड़ के बीवी जी से माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो भी गलतफहमियां हुई उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी जी को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा के वापस ले जाना चाहता हूँ। एक बार फिर बीवी जी के साथ सात फेरे लेके सात जन्मों के वादे करना चाहता हूँ।

0: इससे पहले कि ललित उसकी मांग में सिंदूर भरता, उसने ललित का हाथ रोक लिया। आज अपराजिता ने खुद का स्टैंड लिया और अपने लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, आज तो अपराजिता ने सबके सामने सारी सच्चाई बयां कर दी कि कैसे ललित उसे टॉर्चर करता है, उसे मारता पीटता है।
1: ये क्या किया तुमने? बाबा ने तुम्हें कह दिया तो ना आप शब्द बाबा जी मेरी चीज कर रही है, पति पत्नी के बीच में होते हैं ना, हमारा भी हो गया।
0: अपने घर वालों के सामने रो रो कर आज अपराजिता ने अपने दिल का दर्द बयां किया। हालांकि ललित इस बात को भी झुठला रहा था, लेकिन अपराजिता के आंसू वो तो सारा सच कह रहे हैं। ललित डर गया है, अब देखना होगा कि अपराजिता का खुद के लिए ये स्टैंड कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट लाता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: साइकिल चलाने से तनाव कम होता है और मूड में भी सुधार होता है, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज हमसे हमारी अभीरा। अभीरा, इन दैट केस आपको तो साइकिल चलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकी जिंदगी में है स्ट्रेस और इनकी जिंदगी में है अनलिमिटेड ट्विस्ट। तो कैसे आगे बढ़ रही है अरमान और अभीरा की ये कहानी, लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर।
0: अभीरा को अरमान का इंतजार। अरमान की तबीयत हुई नासार। क्या लगेगी अरमान अभीरा के रिश्ते को नजर? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अभीरा अपनी दोनों बेटियों दादी संग पहुंच गई है कोर्ट, वो भी दुल्हन बनकर, क्योंकि आज अरमान और अभीरा दोनों की शादी होने वाली है। ऐसे में अभीरा अपने परिवार संग अरमान का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरमान भी कार में सवार होकर निकल चुका है अपनी अभीरा संग ब्याह रचाने के लिए। भाई वो तो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ अभीरा उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंतजार लंबा हो रहा है। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट, होती है एक आदमी की एंट्री जो लेकर आया है अभीरा के लिए उसके फेवरेट फूल। अभीरा को लगता है कि वो अरमान ही है, लेकिन जैसे ही अभीरा फूलों को गुलदस्ता उस आदमी से लेती है तो कोई दूसरा ही आदमी होता है। ऐसे में वो आदमी अभीरा को बताता है कि ये फूल अरमान पोद्दार ने भेजे हैं। ये देखकर अभीरा खुश तो होती है लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा है कुछ अनहोनी होने का। वहीं दूसरी ओर अरमान भी पहुंच गया है कोर्ट के बाहर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अरमान को अचानक चक्कर आने लगते हैं।
3: मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ ना।

0: ये फ्लावर्स बहुत रेयर हैं, इसीलिए पापा आपको ये देना चाहते थे,
1: क्योंकि आप और आप दोनों का प्यार इन फ्लावर की तरह रेयर है।
2: मैम, आपके मंगेतर आ भी रहे हैं या नहीं?
3: अरमान का वेट हो रहा है, पता नहीं अरमान है कहाँ। कोर्ट मैरिज करनी है हमने और जो रजिस्ट्रार है वो कह रहा है कि जल्दी करो, बच्चे बोल रहे हैं जल्दी करो, दादी साहब बोल रही है, तानिया बोल रही है, लेकिन अभीरा बोल रही है 2 मिनट, यू नो शी इज़ गेनिंग टाइम। फिर फाइनली उसके लिए बुके आता है बट अरमान नहीं आता, और किसी और का फ़ोन अरमान के हाथ में है, तो सारा माहौल बहुत टेंस है। समझ नहीं आ रहा कि अरमान का पता नहीं चल रहा है कहाँ है कहाँ अरमान। सो और यहाँ पे लड़की तैयार, तो एवरीथिंग इज वेरी टेंस्ड, सारे टेंस्ड है।
4: भाई टेंशन वाली बात तो है ही, क्योंकि अरमान अब तक आया जो नहीं है। ऐसे में अभीरा बेचैन होकर अरमान को कॉल लगा देती है, लेकिन उसको झटका तब लगता है जब फोन अरमान नहीं बल्कि कोई और उठाता है, और तो और उनके बीच बात भी नहीं हो पाती।
0: हेलो अरमान, अरमान कहाँ हो तुम?
5: हेलो,
0: ये किसकी आवाज है? हेलो, आप कौन है और अरमान का फोन आपके पास कैसे आया?
5: आपको आवाज आ रही है? हेलो,
0: अरमान कहाँ है? देखिए जरा जोर से बोलिए, अरमान कहाँ है? हेलो,
6: फोन कटो क्या?
7: जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है।
0: लड़की,
3: ऑब्वियसली फैमिली तो बिल्कुल फिर परेशान हो जाएगी, बिकॉज सडनली बच्चे को हो क्या गया है। कभी कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, सिम्टम्स होता था शायद हम देख नहीं पाते थे, और जब पता चलेगा तो पता नहीं फिर कहर हो जाएगा, बट अभी तक तो पता नहीं है, ना ही अरमान ने बताया है और ना ही ये डिस्क्लोज हुआ है। सो इनफैक्ट यू आर ओनली वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक कि दोनों की शादी हो। खास नहीं है, ये है कि देयर इज समथिंग नाइस टू शो, फिर उनका रोमांस होता है विद पीपल लव, बिकॉज हमारा शो ही है विद लॉट ऑफ रोमांस फैमिली, तो वो तो अच्छा लगता है बिछड़ के फिर मिलना, फिर बिछड़ के फिर मिलना, तो इट लुक्स नाइस। बट अभी देखिए क्या होने वाला है, दोनों मिलेंगे कैसे मिलेंगे, शादी होगी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो देखते रहिए।
4: भाई अभीरा तो डर के मारे कोर्ट के अंदर से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आकर उसे लगा है एक और झटका, क्योंकि वही फूल उसे रास्ते में पड़े हुए दिखाई देते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि अरमान यहीं कहीं था। इतना ही नहीं, उसे तो ये भी एहसास होता है कि अरमान खतरे में है, इसलिए वो घबरा कर वहाँ से दौड़ लगा देती है। तो वहीं दूसरी ओर अरमान अस्पताल में भर्ती हो गया है, और जैसे ही उसे होश आता है अपने आप को वो अस्पताल में पाता है तो वो भी हैरान है, और वो वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, क्योंकि आज उसकी शादी जो होने वाली है अभीरा से। हालांकि डॉक्टर उसे मना करते हैं, लेकिन अरमान ये मानने को तैयार नहीं है।
8: मिस्टर पोद्दार प्लीज शांत हो जाइए।
9: अरे मैं शांति था, आपने मुझे इरिटेट कर दिया। डॉक्टर प्लीज, जो भी न्यूज है मैं हैंडल कर सकता हूँ।
8: ऐसा अभी आपको लग रहा है मिस्टर पोद्दार, बट ट्रस्ट मी, सच जानने के बाद आपको संभालने के लिए अपनों की जरूरत पड़ेगी।
9: आप नहीं बताने वाले हैं, मत बताइए, मैं जा रहा हूँ।
8: मिस्टर पोद्दार आपको ब्रेन ट्यूमर है।
4: अब अरमान को तो जोरदार झटका लगा है ये सुनकर कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे अरमान ये खबर अभीरा और परिवार वालों को देगा और कैसे इन रिश्तों को संभालेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
10: आज तो मन्नत कह रही है कि वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, चलाकर बाइसिकल। वैसे मन्नत, आपकी कहानी की जो बाइसिकल है ना, इसमें तो है ढेरों ट्विस्ट। कभी आपकी साइकिल हो जाती है ऑफ बैलेंस, कभी आपकी साइकिल गिर पड़ती है, तो कभी ये फुर्र से आगे चलती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं कैसे ही है इनकी कहानी में एंटरटेनमेंट के रंग।
11: विक्रांत को लगी गोली, भाई बना भाई का दुश्मन,
4: रिश्तों का खूनी खेल कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि धैर्य ने तान दी है विक्रांत पर बंदूक। भाई धैर्य के सर पर तो खून सवार है, वो बस अपना परिवार चाहता है, यानी कि मन्नत और दुआ का साथ। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और आज ऐसा ही हुआ।
6: तुमको जाना पड़ेगा
12: क्योंकि मेरी नई कहानी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए रेस्ट इन पीस मिस्टर सलूजा। मन्नत जी का प्यार आज जीतता है कि मेरा वार।
4: भाई उसके कब्जे में विशाखा है, ऐसे में वहाँ पर विक्रांत भी आता है, और आते ही धैर्य ने विक्रांत को गोली मार दी है, और विक्रांत देखिए कैसे दर्द से तड़प रहा है।

0: लेकिन इतने पर भी धैर्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो विक्रांत को खरी खोटी सुनाया जा रहा है और उसके जख्मों को कुरेदता जा रहा है।
1: छुपी निकली है। अरे मरते हो पर इतना शोर मचाना शोभा नहीं रहता है कि नहीं? नीचे मत लो, जाओगे तुम जरूर जाओगे, बचना नहीं है तुमको। अब टाइम आ गया है, चलो आगे खोलो, जाना है अब तुमको। हाँ आगे खोलो, जाना है तुमको अब।
2: दुआ 2 दिन में तुमको भूल जाएगी।
1: वार्म अप था, वार्म अप। देखो क्या है, तुमको जाना पड़ेगा, मेरी नई कहानी शुरू हो रही है, तो तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी कहानी में कहीं फिट ही नहीं हो रहे हो ना, तो क्या करूंगा तुम्हारा। हाँ जाना पड़ेगा ना।
3: अरे नहीं नहीं नहीं, गोली मत चला प्लीज, बाय बाय, गोली मत।
0: इससे पहले कि धैर्य विक्रांत को एक और गोली मारकर उसकी जान ले लेता, विक्रांत उसे चकमा देकर भागने लगा, लेकिन धैर्य ने दे दी धमकी। ऐसे में शुरू हो गई है दोनों भाइयों के बीच बहसबाजी, जहां धैर्य अपनी बातें बता रहा है तो वहीं विक्रांत उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धैर्य आज नहीं रुकने वाला है।
1: सबको गोली मारूंगी
4: बिना किसी शर्त के, मैंने अपनों के लिए सब कुछ किया है। एक अच्छा भाई बनाओ, एक अच्छा बेटा बनाओ, एक अच्छा दोस्त बनाओ, अच्छा बाबा बनाओ। बाप जिसके हाथ में दिया गया, तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छे करने का अंजाम सिर्फ अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है।
1: कैसे बोल सकते हो ये यार, देखा है तुमने, तुम्हारी अच्छी परवरिश का नतीजा।
4: आज बुरा बनाऊं तो देखो जीत रहा हूं ना।
0: वही विक्रांत के इतने समझाने के बावजूद भी धैर्य नहीं समझा और उसने विक्रांत पर गोली चला दी, लेकिन बीच में आ गई नीतू और गोली नीतू को लग गई है। फिलहाल धैर्य ने खुद मन्नत को यहां बुलाया है और विक्रांत और नीतू दोनों ही गायब हैं। ऐसे में मन्नत हो गई है काफी परेशान कि आखिरकार विक्रांत और नीतू गए तो कहां गए।
5: क्या हुआ?
6: विक्रांत! विक्रांत!

0: तभी वहाँ मन्नत को विशाखा दिखती है और ऐसे में विशाखा पर मन्नत का गुस्सा फूट जाता है। उसे लग रहा है कि विशाखा ने ही विक्रांत और नीतू को नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में धैर्य तो सब कुछ कर भी चुपचाप खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि मन्नत कैसे विक्रांत और नीतू को ढूंढती है और उनकी जान बचाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: राघव, तो आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पे हमसे यही कह रहे हैं कि रोजाना साइकिल चलाने से बॉडी का फैट जल्दी कम होता है, ऑफ कोर्स ओवरऑल फिटनेस बढ़ती है, तो कम से कम रोजाना आप भी 30 मिनट साइकिल चलाएं। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। चलिए इसी बात पर लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।
0: रीत को लगा सदमा,
2: गल्ला तेरिया तो लग दाए यारा वे मैं थो।
3: आपकी वजह से हमारा बच्चा
0: नहीं रही नन्ही सी जान,
3: आपकी वजह से ना कि उनकी बदुआओं की वजह से।
2: परे आ बदल गया सारा वे तू मैं छड़ जाना।
0: ने लगाया राघव पर इल्जाम,
2: तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं।
0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रीत के साथ हो गया है हादसा, जिसके चलते सभी अस्पताल पहुंच गए हैं और बेहद परेशान हो रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर आकर फूफा जी को ये बताती है रीत की कंडीशन ठीक नहीं है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऐसे में फूफा जी साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन शारदा आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है और समझा बुझा कर वापस भी लाती है। ऐसे में तभी रीत का भाई ध्रुव भी आता है और फिर आ जाता है राघव भी, जिसको डॉक्टर जल्द से जल्द कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। ऐसे में राघव रीत को बचाने के लिए कहता है और कंसेंट फॉर्म साइन भी कर देता है। बस फिर क्या, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है रीत को भी होश आता है और होश में आने के बाद वो बाहर निकलती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को एक नज़र देखने के लिए। ऐसे में सभी रीत का ये हाल देखकर परेशान है, क्योंकि रीत तो सच से अनजान है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो डॉक्टर आके उसे सच बता देती है। रीत तो डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं है, वो तो सभी पर अपना गुस्सा उतार रही है। इतना ही नहीं, वो तो वहाँ से निकल जाती है अपने बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन तभी सामने आ जाता है राघव। उसकी आंखों में आंसू देखकर रीत की आंखें भी नम हो जाती हैं और जब राघव उसे बताता है कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो रीत अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो हो जाती है बेहोश, जिसे राघव संभालता है।

0: हमारी कहानी बहुत अच्छे मोड़ पर आ गई है, बहुत कमाल है। हमारी कहानी कुछ कुछ दिनों के बाद ना इट टेक्स अनदर एंगल, और फिर वो उसको हम सर्कल को पूरा करते हैं, करते ये हमारी एक नई कहानी का ट्विस्ट शुरू हुआ है, जहाँ से एक नया आयाम होगा, एक नई पड़ाव, नया पड़ाव होगा। सो कहानी हमारी बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल सीन। अगर मैं शारदा बुआ नहीं निभा रही होती तो जयति की तो आंखों में रीत की तकलीफ देखकर आंसू आ ही गए थे, लेकिन जो उसकी पीड़ा थी, इतनी सुंदर तरह से रीत ने परफॉर्म किया, कौशल्या जी ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया आज सीन, वो सब भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं शारदा बुआ बन जाती हूँ, तब ये सब चीज़ें साइड में हो जाती है और मैं अपने किरदार के हिसाब से सोचना शुरू कर देती हूँ। तो यस, शारदा बुआ का खेल अंजाम तक पहुँच चुका है।
1: भाई बुआ तो बहुत खुश है, लेकिन रीत का ये हाल देखकर सभी लोग बेहद दुखी हैं। इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि तभी ताशे बजाती हुई आ जाती है कीर्ति की माँ। ये देखकर बुआ जी डर तो जाती है, लेकिन रीत उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे उन्हीं की ही बद्दुआ लगी है। ऐसे में राघव रीत को संभालता है, लेकिन रीत सारा इल्जाम राघव पर लगा देती है।
2: जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं
3: है। सही कह रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।

0: मेरा प्लान तो काफी सक्सेस हो रहा है, बहुत वेट करना पड़ा उसे, अपने अपने दिल को बहुत मारना पड़ा, अपनी पूरी पर्सनालिटी को मारना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जो सब्र करते हैं ना उनकी जीत जरूर होती है। ये बिल्कुल उसकी तरह ना, धीरे धीरे उसने अपने चूहे की तरह शारदा बुआ ने कट कट कट कट कट कट करते हुए इनके रिश्तों को काट दिया है और अपने बिल से बनाते बनाते बनाते इनकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गई हैं। और ऐसा आज देखकर बहुत गदगद हो गया दिल कि रीत ने राघव को अपने बच्चे के खोने के लिए पूरी तरह से उसको ठहरा दिया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, और दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं कर पा रहे हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। जो एक दूसरे के दिल में रहते थे आज वो एक दूसरे के चेहरा तक नहीं देखना चाह रहे हैं।
1: अब इस दिन का ना जाने शारदा कब से इंतजार कर रही थी। वैसे उन्नति ने रीत को समझाने की कोशिश की लेकिन रीत वो मानने को तैयार नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि उसका होने वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ राघव की वजह से मरा है।
2: इस वक्त आप अपने आप को भैया से दूर मत कीजिए, उन्हें सपोर्ट बनने दीजिए अपने। इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है।
3: नहीं चाहिए मुझे इनका सपोर्ट।
4: और मुझसे ये बिल्कुल मत कहना उन्नति कि ये सब किस्मत का लिखा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का फैसला किस्मत में नहीं, राघव ने खुद लिया था ना। ये गाय तेरा छोड़ के नदी नहीं जाते, जो मेरा बच्चा मेरे पास होता, मेरा मेरा बेटा मेरे हाथ में होता, वो मरता नहीं। मैं उसे अपनी गोद में घर ले जा रही होती, उसकी पहली बार नजर उतार रही होती, मैं उसकी छोटी छोटी उंगली अपने हाथों में पकड़ती, उसे दूध पिलाती, उसके साथ खेलती। लेकिन अब आप ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने 9 महीने उसे अपने अंदर महसूस किया, इतना इतना दर्द झेला, इतना डर झेला, 9 साल तक उसका इंतजार किया और एक पल में वो छिन गया मुझसे, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि इसमें राघव की गलती नहीं है, क्योंकि इसमें राघव की गलती है, राघव ने उसे मुझसे छीना है।
0: हाँ बिल्कुल, दूरियाँ बननी भी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया था, मेरे घर से दूर कर दिया था, मेरी जगह से दूर कर दिया था, मतलब मैं ये शालिनी बत्रा और शारदा बुआ की बात कर रही हूँ, कर दिया था, वैसे ही इनको भी समझ में आना चाहिए कि जब इतने साल अपने बच्चों को अपने साथ बड़ा करके, मैंने अपने बच्चों के साथ जो कुछ किया था अपने बच्चों के लिए ही किया था, शारदा बुआ ने जो भी वो हथियाना चाहती थी, पैसा दौलत अपने बच्चों के लिए करना चाहती थी, लेकिन उन्हीं बच्चों ने पलट के जब अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हो खराब और तुम हो विलेन हमारी लाइफ का, तुमने हमें हमें ऐसा तुमने किया कि हमारी नज़रें नीचे होगी, जिनके लिए किया उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया, तो आज बाजी पलट रही है और जिनकी वजह से मुझे घर से निकाला गया था, आज उन लोगों में दूरियां आ रही हैं, फूट पड़ रही है, अच्छी बात है।
1: अब राघव चुपचाप रीत की नाराजगी सुन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को मुजरिम मान रहा है, क्योंकि वो सही समय पर जो नहीं पहुंचा। फिलहाल तो रीत को उसका भाई ध्रुव संभाल रहा है, लेकिन राघव वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, सच का पता लगाकर ही रहेगा। अब देखना होगा कि कैसे राघव पुलिस के साथ मिलकर असली मुजरिम तक पहुँचेगा। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: साइकिल चलाने से पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये सुरक्षित है, एक्सरसाइज के लिए बेस्ट ऑप्शन है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पर यही कह रही हैं हमसे हमारी वसुधा। लेकिन क्या हो रहा है आज वसुधा की कहानी में, क्या यहाँ पर भी चल रही है एंटरटेनमेंट की बाइसिकल, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
6: चल पड़ा वसुधा का नया बिजनेस,

0: देव की नई जिम्मेदारी। क्या देव और वसुधा को मिलेगी कामयाबी? जी टीवी के सीरियल वसुधा में वही वसुधा इन दिनों परेशान है, क्योंकि उसे दादी ने एक चैलेंज दिया है, जिसके चलते वो सोच रही है कि वो कैसे अपना बिजनेस शुरू करेगी। ऐसे में उसे मिल गई है गुड न्यूज, क्योंकि एक औरत उसको देने आई है अचार का पहला ऑर्डर, जिसे सुनकर ना सिर्फ वसुधा खुश है बल्कि दिव्या भी काफी एक्साइटेड है। तभी तो देखिए वो ये मोमेंट को अपने फोन में कैप्चर कर रही है।
1: मैं चाह रही हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और उसके लिए मतलब मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है उसे समझाने के लिए, क्योंकि वो ऐसी लड़की है जो इतनी संस्कारों से बंधी हुई है कि वो मतलब एहसानों तले दबी हुई है, संस्कारों से लेस है कि उसने वही करना है जो अब तक करती आई है, वो उससे अलग नहीं कर सकती, किसी को नाराज़ नहीं कर सकती। तो उसको मोटिवेट करना पड़ा, मुझे बहुत कस्में देनी पड़ी, और फाइनली उसने मतलब यहाँ तक कह दिया कि तेरे ही पैसों का मैं खाऊंगी, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगी। तो वो बेचारी कुछ ना कुछ तो
2: ना
1: करेगी।
2: जिद्दी है, ये बहुत जिद्दी है, ये कुछ भी ऐसी ऐसी शर्तें नहीं खाऊंगी तो तुम्हारे पैसे खाऊंगी, क्या हमें परेशान कर रही है,
1: बुड्ढे लोग
2: की मर जाऊंगी
1: घर में, बुड्ढे लोग जिद्दी हो जाते हैं ना,
2: इमोशनल ब्लैकमेल करती है ये, समझो
1: भयंकर, मतलब ऐसा वैसा, मतलब बाद में मुझे खुद हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है, पर उस जिद में अगर उसका फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
0: और वसुधा के इस बिजनेस में उनका साथ देंगे देव? तभी तो देखिए कैसे, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ लोग आए तो देव वसुधा के साथ नजर आए, लेकिन अंग्रेजी भाषा को लेकर वसुधा मार खा गई और कॉन्ट्रैक्टर्स वसुधा पर हंसने लगे, लेकिन वसुधा ने भी दे दिया उन्हें करारा जवाब।
3: आप लोगों को हमारी अंग्रेजी पर हंसी आ रही है, हमारे को आप सब पर, हमारे देश को आजाद हुए जमाना हो गया, लेकिन आप लोग तो अभी भी अंग्रेजी के ही गुलाम हैं। हमारी रगों में दौड़ रहे हर खून के कतरे में हिंदी है।
4: बहुत प्राउड फील हो रहा है, अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली है, अपने खुद के पैसे कमाने की ठान ली है, और वसु का आचार का बिजनेस शुरू हो चुका है। साथ में देव ने वसु को पढ़ाने की भी जो बहुत पहले से सोचा था वो शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल काफ़ी मोटिवेटेड माहौल है पूरे सेट पे, पूरे सीन्स में।
0: भाई देव के ऊपर एक जिम्मेदारी तो थी ही, अब दूसरी जिम्मेदारी ये भी आ गई है कि उसे वसुधा को अंग्रेजी सिखानी है, और देखिए कैसे उसने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और वसुधा भी बड़ा मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। ऐसे में वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने वसुधा को अपना पहला अचार का ऑर्डर दिया था, जो एकदम रेडी है। भाई वसुधा को पहली कमाई तो मिल गई, ऐसे में उनके ससुर जी भी उसके लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं, और आशीर्वाद के रूप में है ये पेटी जिसमें होगी वसुधा की सेविंग्स।
5: चंद्रिका को हम मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वसु को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में देव को भी उसी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करने को कहा जा रहा है जो एक टाइम पे चंद्रिका और प्रभात ने की थी। तो चंद्रिका ने जब नया नया काम शुरू किया था तो प्रभात का सपोर्ट सिस्टम एज अ बैकबोन कितना स्ट्रांग था, उसी तरह से वसु का नया काम शुरू होने जा रहा है उसमें देव का कैसा योगदान होना चाहिए, साथ साथ में अब चौहान ग्रुप का एम्पायर संभालने का एज अ CEO भी एक जिम्मेदारी है, तो वो सारी चीज़ें भी दोनों को बैलेंस करनी है। तो प्रभात उसमें एक कैटलिस्ट बन के दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा है कि अचार का बिजनेस वसु करने जा रही है, वो भी नया मोड ले रही है उसकी ज़िंदगी में, तो वो भी एक मोटिवेट कर रहा है, और साथ साथ में देव को भी संभाल रहा है कि भाई तुझे बिजनेस भी संभालना है, घर को भी संभालना है और वसु को भी संभालना है।
1: बहुत मेहनत कर रही है, उसके साथ घर के सभी लोग लगे हुए हैं, अब इसमें भी बिजनेस में रोड़े तो आएंगे ही क्योंकि दुश्मन इतने खड़े हैं बाहर, और बिना दुश्मनों के तो आगे कहानी चल नहीं सकती ना, मजा भी नहीं आता। इजीली अगर वो बिजनेस अपना खड़ा कर लेगी तो जनता को भी मजा नहीं आता, क्योंकि हमारी ऑडियंस को नेगेटिव फोर्स चाहिए ही चाहिए।
2: और चांस को लड़ने में मजा आता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ आता रहना।
1: जीवन में भी ऐसा होता है ना कि आपके नजदीक के लोग आपसे ज्यादा जलसी फील करते हैं।

0: तो आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ और आने वाले हर रोग के लिए ये हो जाएगी शॉकिंग। कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ ओनली फॉर यू। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये अगला सेगमेंट जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें, नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए प्रोमो पर, जहां आ गए हैं तारक मेहता के बॉस यानी कि राकेश बेदी। अब होगा नया गोलमाल शुरू।
2: पहुंच गए ऑफिस, ऑन द वे हूं बॉस। ट्रैफिक की कोई आवाज ही नहीं आ रही है।
3: पी, पी, पी, पी, पी।
4: बॉस लेने आए थे मेहता साहब की क्लास।
5: सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? शूट, शूट, शूट। मुझे मारने के लिए किसी ने शूटर भेजा है?
4: पर पब्लिक ने बॉस का कर दिया सत्यानाश।
6: मेहता साहब, आपके बॉस शायद अंदर ही आने वाले।
5: क्या? मर गया अंजलि जी।
1: एकता कपूर लेकर आ रही हैं पीरियड ड्रामा जिसका नाम है कोके, जिसमें शेफाली शाह के साथ नजर आ सकते हैं फरदीन खान, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। देख लीजिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो, जहां पर तुलसी ने रियांश को घर में रोक लिया है और अब षड्यंत्र रचेगा रियांश।
7: मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ।
8: रियांश, रियांश, तू मेरे अंश का अंश है, अंश का अंश है। बड़े सालों बाद मुझे मेरा पोता मिला है रियांश। जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तुम्हारी सच्चाई पर अब कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। ठहर जाए प्लीज।
9: तुलसी दादी, यही तो मैं चाहता था।
10: शांति निकेतन में अब होगी असली अशांति।
1: विराट कोहली और अनुष्का पहुंचे हैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम लेने उनका आशीर्वाद।

0: आज वर्ल्ड बाइसिकल डे का उद्देश्य है लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना। आप सब तो जानते ही हैं कि बाइसिकल चलाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, तो आप भी आज से नियमित साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। बस अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की, रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना सिद्धि विनायक में, बप्पा का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त।
3: अपनी मिन्नतें लेकर
2: प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास, नौवे शतरंज में कार्लसन को दूसरी बार हराया, एक ही टूर्नामेंट में कार्लसन को दो बार क्लासिकल शतरंज में मात देने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। फ्रांस एम बाइक रेस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कोटा के साइकिलिस्ट नितिन सैनी। अमेरिका में 7 जून से शुरू होगी प्रतियोगिता, 6000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे तय। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में स्विमिंग पूल में मलखम का रोमांच, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत करतब।

0: अगले 24 घंटे में केरलम में दस्तक देगा मॉनसून। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरलम समेत तमिलनाडु और कर्नाटक में तेज वर्षा की संभावना। कर्नाटक में आज 13 मंत्रियों के साथ डीके शिवकुमार की ताजपोशी। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों की सलाह के चलते स्टेज का बदला गया नक्शा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: बाबर वारी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरुआत से ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही है व्यापक तैयारियां। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू यात्री निवास में की जा रही है साफ सफाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने जम्मू के भगवती नगर में की बैठक। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियों की होगी तैनाती। गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां जम्मू एंड कश्मीर पहुंचना शुरू। जम्मू एंड कश्मीर के लखनपुर एंट्री पॉइंट से लेकर श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर तक होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। पठानकोट जम्मू हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू में यात्री निवास भवन और अन्य जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती। कठुआ में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए लखनपुर में डोगरा कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली 3D चित्र अनावरण। लखनपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया, यात्रा की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर विशेष आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसाला, बड़ी संख्या में भक्तों ने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के चरणों में आस्था अर्पित की। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं, आंकड़ा 10 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 8.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का तांता, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। साहब गुजारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से किया गया स्वरूप श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जय। तमिलनाडु के महिला दुथराई के श्री नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर में पल कुड़म उत्सव की धूम। जुलूस के दौरान नाद स्वरम और थविल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते झूमते नजर आए भक्त। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल और बैग नहीं ले जाने सकेंगे अब श्रद्धालु। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में मोबाइल और सामान ले जाने पर प्रतिबंध। श्रावणी मेले के दौरान साधारण शुल्क देकर नवनिर्मित क्लास रूम में अपने सामान रख सकेंगे श्रद्धालु। देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर बूढ़ा संभालेगा क्लॉक रूम के संचालन और देखरेख की पूरी जिम्मेदारी। देवघर श्रावणी मेला शुरू होने से पहले देखा डाक कांवड़ यात्रा का अनोखा नजारा। बाबा वैद्यनाथ धाम जाते नजर आए जंजीरों से जकड़े पूर्व सैनिक रामोदय सिंह। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर रवाना हुए हैं राम उदय सिंह। कांचीपुरम वरदराज पेरुमल मंदिर वैकाशी ब्रह्म महोत्सव कार उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। कांचीपुरम में भगवान वरदराज पेरुमल और उनकी पत्नियों की निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाया जयकार। वैकासी ब्रह्म महोत्सव में दौरान मंदिर में वेदों का पाठ किया गया, भजन और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्म महोत्सव पर जुलूस की तैयारियां तेज, जुलूस के लिए रथ तैयार। तमिलनाडु के मंत्री एम रमेश ने पेरुमल मंदिर में जाकर जायजा लिया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर को दान में मिले 26.94 लाख रुपए, डॉलर और नेपाली रुपए भी शामिल। मंदिर को 26 लाख से ज्यादा नकद और 865 नेपाली नोट और तमाम डॉलर्स शामिल। तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंची रिंकू राजगुरु, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। पुरी से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आरसीबी की जीत पर रेत से बनाई कलाकृति, विराट को दी जीत की बधाई। पश्चिम बंगाल के इलाकों महिलाओं से जुड़ी गुड न्यूज, आज 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है अन्नपूर्णा योजना की 3,000 रुपए की पहली किस्त। आंध्र प्रदेश को मिलेगी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की होगी शुरुआत। कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच जल्द शुरू हो सकती है वंदे भारत ट्रेन सेवा, आज शुरू होगा ट्रेन का ट्रायल रन। आज कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई में आज से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, 5 जून को बैठक के अंतिम दिन फैसलों का ऐलान करेंगे आरबीआई गवर्नर संजय। न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में प्रस्ताव पारित कर दिया, गवर्नर ने की 15 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में इंडिया इंडिपेंडेंट डे घोषित करने की अपील। सेनेट में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और महात्मा गांधी की विरासत को सराहा गया। भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को न्यूयॉर्क सेनेट ने विशेष मान्यता दी, कानून निर्माताओं ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में निभा रहे हैं अहम भूमिका। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का निरीक्षण किया, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी मुलाकात की, बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। देश भर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना उद्देश्य। लखनऊ में भी मनाया जा रहा है वर्ल्ड साइकिल डे, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। राजकोट में वर्ल्ड साइकिल डे पर लोगों ने चलाई साइकिल, सेहत और पर्यावरण का संदेश। श्रीनगर में विश्व साइकिल दिवस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बठिंडा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स बठिंडा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए, छात्रों को सम्मानित किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael, to Hall & Oates, and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान के साथ की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में दर्शन को उमड़े श्रद्धा। प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास, नॉर्वे शतरंज में कार्लसन को दूसरी बार हराया, एक ही टूर्नामेंट में कार्लसन को दो बार क्लासिकल शतरंज में मात देने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ट्रांस एम बाइक रेस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कोटा के साइकिलिस्ट नितिन सैनी, अमेरिका में 7 जून से शुरू होगी प्रतियोगिता, 6000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे तय। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में स्विमिंग पूल में तैराकी के साथ साथ पारंपरिक मलखम, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत कर्तव्य।

0: अगले 24 घंटे में केरलम में दस्तक देगा मॉनसून। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरलम समेत तमिलनाडु और कर्नाटक में तेज वर्षा की संभावना। कर्नाटक में आज 13 मंत्रियों के साथ डीके शिव कुमार की ताजपोशी। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, हर औरत की ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है कि वो सुंदर और आकर्षक नजर आए, और इसमें श्रृंगार का सबसे बड़ा महत्व होता है। महिला और श्रृंगार का संबंध केवल शारीरिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और स्वास्थ्य का एक गहरा हिस्सा है। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि श्रृंगार से आपकी किस्मत भी सवर सकती है। देखिए, ज्योतिष के जानकारों का तो यही मानना है, महिलाओं के श्रृंगार का किस्मत से सीधा संबंध है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि श्रृंगार आपकी किस्मत को कैसे चमका सकता है।

0: सुहागिनों का आभूषण है 16 श्रृंगार। श्रृंगार से खुलेगा किस्मत का द्वार। श्रृंगार से है प्रीतम की आयु का सरोकार। समृद्धि और सौभाग्य से महकेगा संसार। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे खास है श्रृंगार। माना जाता है कि इससे ना सिर्फ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि तन मन में प्रफुल्लित करने वाली ऊर्जा का भी संचार होता है। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार से ना सिर्फ रूप सौंदर्य में निखार आता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा होती है। सोलह श्रृंगार की महत्वता पर कवियों ने लिखा भी है, सजना है मुझे सजना के लिए। ये पंक्तियां बताती हैं कि महिलाओं की सुंदरता का पहला द्वार है 16 श्रृंगार। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार केवल सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है बल्कि ये सनातन परंपरा में विवाहित स्त्री के सुहाग का भी प्रतीक है।
1: 16 प्रकार के जो श्रृंगार हैं वो स्त्रियों के आभूषण के स्वरूप में प्राप्त है, जिसको सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं और अपने आराध्य को प्रसन्न करती हैं। विवाहित स्त्रियों के आराध्य उनके पति ही, एक पति गुरु स्त्रीणाम, स्त्री जाति के जो गुरु होते हैं वो उनके पति होते हैं। पति को प्रसन्न रखने में ही भगवान की प्रसन्नता होती है।
0: ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि महिलाओं के श्रृंगार करने से किस्मत भी सवर जाती है। श्रृंगार से ग्रहों को मजबूती मिलती है और साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि 16 श्रृंगार की सामग्री कौन सी है, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको धारण करने से नारी के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। माना जाता है कि सर से पैर तक के लिए पहनी जाने वाली इन वस्तुओं में शरीर के संतुलन का रहस्य छिपा है। सिंदूर पति के प्रेम व समर्पण का प्रतीक है। ये मस्तिष्क को शांत रखता है। बिंदी माथे के बीचों बीच लगाते हैं। बिंदी दोनों भौहों के बीच के आज्ञा चक्र को जागृत करती है। मांग टीका मांग के बीचों बीच पहना जाता है, मन को नियंत्रित और एकाग्र करता है। काजल आंखों के सौंदर्य में निखार आता है, बुरी नजर से बचाव करता है। नथ सुंदरता में 4 चांद लगाती है, नथ पहनने से पीड़ा में राहत मिलती है। झुमके ये चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं। मंगलसूत्र पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। बाजूबंद भुजाओं में पहना जाता है, रक्त संचार को नियमित करता है।
1: सौभाग्यवती स्त्रियां ही केवल 16 श्रृंगार कर पा सकती है। वैधव्य प्राप्त स्त्रियां विडो, इनको श्रृंगार करना मना होता है तो वो तो कर सकती नहीं। कुंवारी कन्याएं हैं वहां भी प्रतिबंध है कि सिंदूर लगा सकती नहीं, बिछिया इत्यादि पहन सकती नहीं है, अतः वहां भी 16 श्रृंगार अपूर्ण है। 16 श्रृंगार यहाँ पर है जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने जीवन को अपने गृहस्थी को बनाए रखने के लिए पूजा पद्धति के द्वारा निर्वहन किया करती।
0: आज हम आपको अपनी खास पेशकश में 16 श्रृंगार की महिमा बता रहे हैं। अभी हमने 16 श्रृंगार की 8 वस्तुओं के बारे में जाना, अब आपको बाकी की 8 सामग्री बताते हैं जिनसे जुड़ा है नारी का रूप सौंदर्य। मेहंदी हाथों और पैरों में रची मेहंदी सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है, इसकी ठंडक तनाव को दूर करती है। चूड़ियां खुशहाली सौभाग्य और ऊर्जा का संचार करती है। माना जाता है कि ये रक्त संचार को बेहतर बनाती है। अंगूठी प्रेम और विश्वास के बंधन को दर्शाती है। तर्जनी या अनामिका उंगली में पहनी अंगूठी रक्त संचरण सुधारती है। कमरबंद ये आभूषण शरीर के पोस्चर को सही रखता है, शरीर में ऊर्जा को संतुलित करता है। पायल, चांदी से बनी पायल चलने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, शरीर की गर्मी को सोखती है, रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है। बिछिया, महिलाओं में हार्मोनल संतुलन बनाती है, मासिक चक्र को नियमित रखने में सहायक होती है। गजरा, प्राकृतिक सुगंध और ताजगी प्रदान करता है, स्नायु तंत्र को शांत करता है, मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। विशेष परिधान, लाल, गुलाबी या पीले रंग के शुभ वस्त्र पहन सकते हैं, ये ऊर्जा, समृद्धि और नए जीवन के आरंभ के प्रतीक हैं।
1: सोलह श्रृंगार का महत्व यही है कि हमारा श्रृंगार अमर हो, हमेशा वह स्त्री सौभाग्य की कामना करती हुई सौभाग्य की रक्षा के लिए अपने सोलह श्रृंगारों से युक्त रहते हुए भगवान माता श्रृंगार गौरी का पूजन भी वह करती है। महत्व यही है कि उनका श्रृंगार, उनका यह पूरा स्वरूप लाल रूप मैसा बनी रहे और वह हमेशा सदा सुहागिन बनी रहे।
0: ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्रृंगार महिलाओं की पहचान होती है। आज हम अपनी खास पेशकश में श्रृंगार की कुछ प्रमुख सामग्री की महिमा आपको बताएंगे। माना जाता है कि श्रृंगार करने से परिवार में खुशहाली आती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आइए अब आपको बताती है 16 श्रृंगार की प्रमुख सामग्री। मंगलसूत्र की महिमा, वैवाहिक जीवन का प्रतीक मंगलसूत्र होता है, ये काली मोतियों का बना होता है जिसको पीले धागे में पिरोया जाता है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। काली मोतियां नकारात्मक ऊर्जा से विवाहिता की रक्षा करते हैं। अगर मंगलसूत्र में सोने या पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो तो महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम होता है, धन का अभाव कभी नहीं होता। मंगलसूत्र में चौकोर लॉकेट लगा होने से बृहस्पति मजबूत होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी और उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि 16 श्रृंगार से महिलाओं की किस्मत तो चमकती ही है, इसके प्रभाव से घर परिवार में भी सुख शांति आती है। आगे हम आपको बताएंगे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और पायल का महत्व। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: महिलाओं के 16 श्रृंगार को उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि 16 श्रृंगार में हर एक गहने और श्रृंगार का अपना महत्व होता है। श्रृंगार से ही ग्रहों की दिशा बदलती है और श्रृंगार से ही रूप, सौंदर्य और किस्मत सवर जाता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक श्रृंगार जितना प्रभाव आपके आकर्षण पर डालता है उतना ही प्रभाव आपकी किस्मत पर भी डालता है। तो आइए अब आपको बता दें कि चूड़ियों के खनक और पायल के झनकार आपकी किस्मत पर किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है और इसका कुंडली के ग्रहों से आखिर क्या संबंध है।

0: श्रृंगार से सवर जाएगी तकदीर, नवग्रह की कृपा मिलेगी भरपूर। श्रृंगार है सनातन धर्म का संस्कार, श्रृंगार से मिलेगी खुशियां अपार। विवाहित महिलाओं के लिए श्रृंगार का अपना ही महत्व है। ये जितना शारीरिक आकर्षण को बढ़ाता है, उतना ही सौंदर्य में भी चार चांद लगाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रृंगार से ग्रहों की स्थिति बलवान होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सिंदूर और बिंदी है प्रमुख श्रृंगार। सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंदूर बिंदी का प्रयोग करने से सौभाग्य बना रहता है, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ता है। सिंदूर लगाने से शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है, इससे महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो रोज सिंदूर लगाएं। अगर सूर्य कमजोर हो तो कुमकुम लगाना अच्छा होगा। सिंदूर और बिंदी हमेशा स्नान के बाद लगानी चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को समर्पित करना चाहिए। शुद्ध सिंदूर या अच्छी बिंदी ही लगाएं। रसायन से बना हुआ कोई पदार्थ ना लगाएं। हम सभी जानते हैं कि त्याग की मिसाल होती है महिलाएं। पहले वो अपना मायका संवारती हैं, फिर वो सब कुछ भूलकर ससुराल को ही अपना जीवन मान बैठती हैं। और विवाह के बाद महिलाओं का यही समर्पण श्रृंगार की खूबसूरती को बढ़ा देता है।
1: सिंदूर अकेला नहीं होता, सिंदूर में पारे का अंश होता है। पारे का अंश होने के कारण शक्तिवर्धक लालिमा युक्त चूड़ी पिघला करके बनाई जाती है। जिस प्रकार से स्त्रियों का जन्म होता है एक जगह, जैसे चावल होता है एक जगह उगाते हैं फिर दूसरे जगह रोपते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों का जीवन जो होता है वो पिता के कुल की रक्षा और सम्मान का वर्धन और बाद में पति के कुल का सम्मान वर्धन, यही दोनों को संभालते संभालते वो दोनों समाप्त हो जाती है। अतः इनको धारण करने का मांगलिक स्वरूप पुराण के द्वारा हमारे परंपरा में यह व्यवस्थाएं प्रचलित हैं।
0: पहले स्त्री अपने पति के कुल को संभालती हैं, उसके बाद अपने पति के जीवन की कामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार में हर एक गहने और श्रृंगार का अलग महत्व है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मोदीखाई रस्म में सुखी और सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद के साथ कंगन देती है, जो पहली बार ससुराल आने पर उनकी सास ने दिए थे। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयां चूड़ियों से भरी रहनी चाहिए, क्योंकि इसका ज्योतिष में खास महत्व है। तो आइए आपको बताते हैं श्रृंगार में चूड़ियों का क्या महत्व है। माना जाता है कि चूड़ी पहनने से शरीर में कफ वात और पित्त नियंत्रित रहते हैं। चूड़ियां कांच की सर्वोत्तम होती हैं। इसके साथ ही सोने या चांदी की चूड़ियां भी पहन सकते हैं। अन्य चूड़ियां पहनने से परहेज करना चाहिए। चूड़ियों को कभी भी मंगलवार या शनिवार को ना खरीदें। पहनने से पहले माँ गौरी को अर्पित करें। काले रंग की चूड़ियों से परहेज करना चाहिए। उस महिला को चूड़ियां उपहार ना दें जिससे आपका प्रेम संबंध ना हो। चूड़ियों में अगर सफेद रंग के नग लगे हों तो इसे शुक्र मजबूत होगा। महिलाओं के 16 श्रृंगार में हर एक गहने और श्रृंगार का खास महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं के श्रृंगार से किस्मत भी संवरती है। चलिए अब आपको बताते हैं पायल पहनने का महत्व। पायल को संपूर्ण रूप से सौभाग्य का प्रतीक नहीं माना जाता, फिर भी ये महिलाओं का अत्यंत प्रिय आभूषण है। पायल को पैरों में धारण करते हैं, इससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी इकट्ठा नहीं होती, इससे रक्त का प्रवाह ठीक बना रहता है। पायल हालांकि चांदी की सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन कुछ महिलाएं सोने की पायल का प्रयोग भी करती हैं। सोने की पायल धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। पायल में घुंघरू लगे होने चाहिए ताकि उसकी छुनछुन की आवाज घर में आती रहे। ऐसा करने से बुध मजबूत होगा और घर में कलेश नहीं होगा। गहने और आभूषणों की तरह ही श्रृंगार से भी जीवन में खास प्रभाव पड़ता है, इसलिए महिलाओं को हमेशा श्रृंगार करना चाहिए। इससे शारीरिक आकर्षण तो बढ़ता ही है, ग्रह मजबूत होने से किस्मत भी चमकने लगती है। आगे हम आपको बताएंगे कि बिछिया पहनने से क्या लाभ होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: आज हम आपको बता रहे हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार की महिमा के बारे में और 16 श्रृंगार का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन। अब तक हमने आपको अलग अलग श्रृंगार के फायदे बताए हैं, तो आइए अब आपको बताते हैं कि बिछिया पहनने से आपकी किस्मत को कैसे चार चांद लग जाते हैं।

0: जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि पर 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, वैसे ही नारी का रूप और सौंदर्य 16 श्रृंगार से निखर उठता है। श्रृंगार सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि 16 श्रृंगार के बिना नारी सज ही नहीं सकती है। श्रृंगार महिलाओं की जरूरत है, इस लिहाज से भी श्रृंगार से आकर्षण और सौंदर्य मिलता है। लेकिन अगर ज्योतिष की माने तो श्रृंगार से ग्रहों को मजबूती मिलती है, इससे किस्मत भी चमकती है। 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। श्री लक्ष्मी नारायण को श्रृंगार बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। सौभाग्यवती महिलाओं के जीवन में समृद्धि के लिए 16 श्रृंगार।
1: श्रृंगार का बहुत महत्व है। अलंकार प्रियो विष्णु, जिस प्रकार श्रृंगार प्रिय भगवान विष्णु होते हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी को भी श्रृंगार, जैसे 16 प्रकार के भगवान को चढ़ाने योग्य वस्त्र, आभूषण, भोज्य सामग्रियां, लक्ष्मी पूजा में हमेशा 16 प्रकार के सुरहिया के मेला में इस 16 की व्यवस्थाओं को देखा गया है। उसी प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियों के जीवन में सुखमय व्यवस्था लाने के लिए इनका धर्म है कि वह हमेशा 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार में आभूषण नहीं है तो फूल वगैरह से भी भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प से भी कर सकते हैं।
0: ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्रृंगार का जीवन में खास प्रभाव रहता है। श्रृंगार में हर एक गहने और वस्तु का प्रभाव अलग है, तो आइए अब आपको बताते हैं बिछिया पहनने से क्या प्रभाव पड़ता है। सौभाग्य की बड़ी महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। हर सौभाग्यवती स्त्री को बिछिया जरूर धारण करनी चाहिए। बिछिया धारण करने से महिलाओं की भावनाएं संतुलित और नियंत्रित रहती हैं। साथ ही घुटनों और जोड़ों के दर्द से भी बचाव होता है। बिछिया थोड़ी मोटी और चांदी की हो तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है। अविवाहित लड़कियों को बिछिया धारण नहीं करना चाहिए, ये शुक्र को अत्यधिक मजबूत कर देता है, इसलिए बिना विवाह के बिछिया बिल्कुल ना पहने। तो देखा आपने, महिलाओं के जीवन का अटूट हिस्सा है श्रृंगार, या यूं कहें कि श्रृंगार बना ही महिलाओं के लिए है। तो आप भी करें श्रृंगार, जिससे आपका भी सौंदर्य और आकर्षण बढ़े। हो सकता है इससे आपकी किस्मत भी संवर जाए।
2: तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुड न्यूज टुडे आपसे कुछ ऐसे वीडियोस को शेयर करने की अपील कर रहा है, जिससे आप अपने यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, खासकर अगर हम देखें तो ऑफबीट जगहों को प्रमोट करने में अपना खास रोल निभा पाएं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं लेह। सोचिए आप लद्दाख की सुकून भरी वादियों में घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने आ जाए धुरंधर फिल्म की वो मशहूर लोकेशन, जहां पर एक्टर रणबीर सिंह और गौरव खेरा का नमक की चाय पीते हुए शूट हुआ था। सोशल मीडिया पर इस खास चाय की दुकान का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। लेकिन यहां बैठकर चुस्की लेने से पहले एक शर्त है आपको माननी होगी, वो ये कि हर शख्स को उस हॉट सीट पर बैठने के लिए कम से कम 2 कप चाय ऑर्डर देनी होगी।

0: की दुकान मालिक ने लोगों को धुरंधर फिल्म की याद में डूबने को लेकर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है।
1: लास्ट ईयर जब शूटिंग हुआ था तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा रहता है, कम लोग, कोई अपने लोकल लोग से काम था कुछ। थोड़ी साल के रिलीज के बाद काफी लोग आए, कुछ स्टार्टिंग में कुछ यूट्यूबर्स आए, कुछ जिन्होंने रील्स डाली है, तो उसके वजह से सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास लोग आने शुरू हुए हैं। तो जितना रश हो रहा है, जितना भीड़ हो रहा है, जितना लोग आ रहे हैं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ।
0: जरा धुरंधर के उस सीन को याद कीजिए, जब इस सीट पर फिल्म में आलम भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा हीरो रणवीर सिंह के साथ बैठकर नमक चाय पीते हैं, और यहीं से धुरंधर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है। बस ये समझ लीजिए कि अब ये दुकान कोई मामूली टपरी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक फैन जोन बन गई है। दीवारों पर धुरंधर फिल्म के पोस्टर्स लगे हैं और माहौल लोगों को एकदम फिल्मी बना दे रहा है।
2: यहाँ आके हम लोग एक घंटा वेट किया, तब जाके हमें यहाँ पे ये जगह मिली है, तब जाके हम लोग ये कैरेक्टर में बैठ पाए। वो हमारा एक प्राउड है कि इंडिया के ऊपर ये मूवी बना है और इतना फेमस हुआ है कि इसके कारण ये कैफे भी फेमस हो गया। उसका मेन सीन यही शूट हुआ है, इसके कारण जो भी क्लाइंट है उसका बस पहले यही फरमाइश रहता है कि हमें धुरंधर कैफे ही देखना है, हम कुछ नहीं देखना, पहले धुरंधर कैफे देख लिया, हमारे ये लेट पूरा हो गया।
0: दुकान की मशहूरियत देख दुकान मालिक भी खुश है, तो वहीं आप अकेले जाएं, दोस्तों संग यहाँ बैठें, इस टेबल पर दो कप चाय पीना तो बनता है।
1: हम नंबर लिखते हैं सीरियल वाइज से, हम उनका टोकन देते हैं, उन्हें नेम लिखते हैं, उस हिसाब से हम लोग को बुलाते हैं जैसा नंबर नंबर आता है। तो दो चाय कंपलसरी लोगों ने रखा है इस सीन को लेके, एक बहुत एक वायरल सीन है फ्रेंडशिप को लेके, तो इसलिए लोग इसे बहुत चाह रहे हैं इस चीज को।
0: तस्वीरों में एक और रणवीर सिंह की फोटो के सामने लगी इस हॉट सीट पर बैठकर धुरंधर के कैरेक्टर में लोग डूब रहे हैं, तो कुछ में धुरंधर मूवी के माहौल को महसूस करने का बेसब्र इंतजार भी दिखा। तो अगर आप बना रहे हैं ले जाने का प्लान, धुरंधर फिल्म से सुर्खियों में आई स्पेशल चाय की दुकान पर आप जरूर जाएं, दो कप चाय का लुत्फ उठाएं और अपनी लेह ट्रिप को यादगार बनाएं।
3: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह आपको नजर आती है, या आपके शहर आने में आपको कोई खास वजह नजर आती है, तो बस कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae
9: exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip hop
11: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
19: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी

0: Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी। विधि विधान से की जा रही है बप्पा की पूजा अर्चना। सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में दर्शन को उमड़ रहे भक्त। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार। रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे हैं दर्शन। प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास नॉर्वे शतरंज में। कार्सलन को दूसरी बार हराया एक ही टूर्नामेंट में। कार्सलन को दो बार क्लासिकल शतरंज में मात देने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में स्विमिंग पूल में तैराकी के साथ साथ पारंपरिक मलखम। हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत करतब।
2: खिलाड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: अगले 24 घंटे में केरलम में दस्तक देगा मानसून। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरलम समेत तमिलनाडु और कर्नाटक में तेज वर्षा की संभावना।

0: मामला लीगल है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में यह विवाद काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मामला रणवीर सिंह के बॉयकॉट से जुड़ा हुआ है। डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद अब लीगल हो चुका है। डॉन 3 कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सामने उठाया था। ऐसे में फेडरेशन ने रणवीर के बॉयकॉट करने को कहा था, लेकिन अब यह बैन हटा दिया गया है। पर अब विवाद कानूनी चौखट पर पहुंच गया है। आखिर क्यों, क्या ये क्रिएटिव अनबन है या फिर ये ईगो का मामला है? डॉन की लड़ाई कौन करेगा भरपाई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिल्म जगत के तमाम खास हस्तियां मौजूद रहेंगी। तो रणवीर और फरहान का मामला एक तरीके से लीगल हो चुका है। दोनों ही पक्षों की ओर से नोटिस वाला खेल अब शुरू हो चुका है। FWIC यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर से बैन हटा दिया है जो कि पहले लगाया गया था, लेकिन वो अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही फेडरेशन ने रणवीर को मामला सुलझाने का न्योता भी दिया कि बातचीत के जरिए इस मामले का हल किया जा सके। रणवीर सिंह ने फेडरेशन को कानूनी नोटिस भेजा था। ये नोटिस फेडरेशन की ओर से लगाए गए बैन के जवाब में था और इस नोटिस में रणवीर ने फेडरेशन के निर्देश को चुनौती दी थी। निर्देश क्या था कि उन्होंने इनको बैन करने की बात कही थी। फेडरेशन ने अपने सदस्यों को रणवीर के साथ काम नहीं करने के लिए कहा था। फिर रणवीर ने फेडरेशन के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। वहीं इस बीच प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का भी एक बयान आया। उसने भी दोनों पक्षों से विवाद को सुलझाने की अपील की कि बातचीत के जरिए यह विवाद सुलझाया जा सकता है। फिल्म डॉन 3 को लेकर दरअसल पूरा विवाद है। इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह पहले साइन कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर हैं। अगस्त 2003 में फिल्म का ऐलान हुआ था। अप्रैल 2026 में फरहान ने रणवीर की शिकायत की थी और इसमें उन्होंने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज में ये मामला उठाया था। साथ ही साथ फरहान ने रणवीर से 45 करोड़ का हर्जाना मांगा था। रणवीर पर फिल्म डॉन 3 छोड़ने का आरोप है। तो इस मुद्दे पर बयानबाजी भी लगातार बढ़ती जा रही है।
1: हम फेडरेशन की तरफ से अपील करते हैं हमारे देश के बहुत बड़ा स्टार से कि आइए बैठिए साथ में, ये परिवार आपका भी है, ये हमारा भी है, सबका है, और इसका सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करिए ताकि एंटायर थिंग स्टार्ट्स अगेन विद द सेम स्पिरिट एंड सेम थिंग। सो वी ऑल हैव सेलिब्रेटेड दिस स्टार्टअप, वी ऑल आर विद हिम, वी ऑल वांट दैट ही बिगर एंड बिगर स्टार कीपिंग इन माइंड द एंटायर इंडस्ट्री।
0: दरअसल रणवीर फरहान और फेडरेशन के बीच की कानूनी जंग में बॉलीवुड भी दो धड़ों में बढ़ चुका है। कई बॉलीवुड हस्तियों ने खुलकर रणवीर सिंह का समर्थन किया है। इस फहरिस्त में अब ताजा नाम कंगना रनौत का सामने आया है। कंगना ने कहा है कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने। आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है, उनका कद क्या है, उनके इतने दुश्मन हैं। कंगना से पहले रामगोपाल वर्मा और कलाकारों की संस्था सेंटा भी रणवीर का समर्थन कर चुकी है। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर हम खास मेहमानों के पास हैं। उससे पहले मेरी सहयोगी सना फरजीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सना, आज जिस तरीके से मामला बहुत आगे बढ़ गया है, जहां तक नोटिस की बात है, लग नहीं रहा है कि रणवीर इस पूरे मामले में चुप बैठने वाले हैं। क्या समझा जाए इसको, क्या आप सीधा कोर्ट में बातचीत होगी?
2: जी बिल्कुल, इनिशियली तो जैसे बात चल रही थी कि FWIC का डिमांड था कि रणवीर आके उनसे मिले, पर वो नहीं हुआ और उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है जो कि अगर कहा जा सके तो कहीं ना कहीं उनके ईगो पे भी ये बात लगी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी FWIC को यही कहा था कि ये आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यही मामला वो लीगली इसे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 45 करोड़ जो उन्होंने मांगी है, डिमांड की है एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऐसा हर्जाना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक वैल्यू है और वो चाहेंगे कि जो ये सॉर्टेड, ये मैटर जो है वो लीगली सॉर्ट हो जाए ताकि इस बात से भी वो कहीं ना कहीं निकल पाए। क्योंकि लीगली ये जरूरी नहीं है कि एक एक्टर ये पूरा जो उन्होंने प्री प्रोडक्शन पे कॉस्ट किया है वो लीगली अब तक नहीं है कि एक एक्टर को उसे डैमेज एज अ डैमेजर पे करना होगा, बट रणवीर डेफिनेटली चाहेंगे कि ये सारा मैटर अब लीगली सॉल्व हो जाए ताकि उनपे कहीं ना कहीं कोई लायबिलिटी नहीं रहे. और जिस तरीके से अफकोर्स ये सारा सब कुछ आगे हुआ है, वो FWIC से भी कहीं ना कहीं नाराज थे कि उन्होंने इस तरीके से एक पब्लिक फोरम पर आकर बात की और नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव उनपे जाया किया. और शायद इसी बात का एक जो गुस्सा रहता है, एक ईगो जो हम बात करते हैं, वो आगे निकल कर आया है. और अभी लीगल नोटिस दिया है, FWIC अफकोर्स इसको लीगली ही हैंडल करेगी क्योंकि अब ये मैटर एक अलग तरीके से आगे बढ़ चुका है. जो पब्लिकली हम बात कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव का, आज FWIC ने उसे विड्रॉ कर लिया है. और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी भी आगे आए हैं, जैसे कि आज का जो प्रेस प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अब बहुत जरूरी हो चुका है कि सारी पार्टीज आकर मिलकर बात करें और इस मैटर को कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लिया जाए. कि जिस तरीके से एक्टर शायद बिल्कुल फिल्म स्टार्ट होने से पहले जब वो स्टेप बैक करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर बहुत लोगों के कामों पर पड़ता है. बट ये बात तभी हम एक्टर्स को भी कहीं ना कहीं हमें उनकी भी साइड सुननी पड़ेगी कि ये डिसीजन वो क्यों लेते हैं. तो शायद अब ये जो जो जब जब कुछ जो ये सब हुआ है वो एक कहीं ना कहीं नई पहल लेकर आएगा इंडस्ट्री में, जहां पर शायद
3: लेकिन सना ये बात आप सही कह रही हैं, दोनों पक्षों को सुनना होगा. चलिए उससे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है. सना रहिए. BN तिवारी प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज से. हमारे साथ शोएब चौधरी जी फिल्म प्रोड्यूसर मौजूद है, रामकिशोर पाठशा जी फिल्म क्रिटिक है, लेजली त्रिपाठी एक्ट्रेस है. आप सबके पास आऊंगी. लेकिन सना अभी तक क्या ये क्लैरिटी आई है? बात सही है कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए. क्या ये क्लैरिटी आई है कि विवाद की जड़ क्या है? क्या दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हैं या रणवीर का फिल्म में थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप करना वो एक इशू है? क्या मेन इशू क्या है दोनों के बीच में?
2: नवजोत, प्रॉब्लम ये है कि रणवीर ने अब तक आकर खुले में बात नहीं की है और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया, एस्केलेट कर गया. क्योंकि रणवीर ने अब तक अपनी साइड ऑफ द स्टोरी हमें नहीं बताई है, ना कि उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है, ना मीडिया में आकर बात कही और ना ही FWIC के साथ उन्होंने मीटिंग की है. बट जहां तक हम अपने सूत्रों की माने तो उन्हें थोड़े क्रिएटिव डिफरेंसेस थे डॉन 3 के स्क्रिप्ट को लेकर, जिसपे जो कि ये कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर रेडी थे उस पर काम करने के लिए. बट क्या ये धुरंधर का सक्सेस था जिसके बाद वो शायद एक कबड्डी और उस तरीके की फिल्म करना चाह रहे थे जो शायद वो डॉन 3 उसके जो मोल्ड होता है उसमें वो फिट नहीं हो रही थी. बट जब तक रणवीर सिंह आकर इस पे बात नहीं करेंगे, अब तक जो भी है होगा वो सोर्सेस की माननी होगी या हम अज्यूम कर सकते हैं. लेकिन जितनी भी अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है यही था कि रणवीर सिंह को डेफिनेटली थोड़े क्रिएटिव इश्यूज थे, उनको स्क्रिप्ट से कुछ दिक्कत थी जो वो चाहते थे कि फरहान अख्तर उस पर काम करे. बट FWIC की मीटिंग पे हमें ये भी पता चला कि फरहान अख्तर रेडी थे उस पर काम करने के लिए और उन्होंने काम किया भी था. बट जस्ट 3 हफ्ते पहले जब ये फिल्म शूट फ्लोर पे जाने वाली थी उससे पहले रणवीर सिंह ने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता. और शायद यही ये दिक्कत आई है कि जो बात शायद क्योंकि उन्होंने एक्सेल के साथ पहले गली बॉय भी की है, तो जब आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है शायद आप अपनी बात रखें, उसका एक हल निकाले, ना कि इस तरीके से आप स्टेप डाउन कर दें. क्योंकि जैसे जो हम बात कर रहे थे कि एक फिल्म सिर्फ एक एक्टर का नहीं होता, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. अगर आप 3 हफ्ते पहले ये डिसाइड कर ले कि आप उस फिल्म का पार्ट खेलना चाहते हो तो बाकी वर्कर्स के भी बहुत काम पे वो असर पड़ता है.
3: और शायद इसी वजह से उन्होंने 45 करोड़ की डिमांड भी की. लेकिन सुना एक और बात, सलमान खान के भी बात आ रही थी कि वो दोनों के बीच में पैचअप करवाने वाले हैं.
2: जी, सलमान खान की डेफिनेटली अभी जब FWIC ने नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया था उसके बाद सलमान खान का ये न्यूज आया था कि वो चाह रहे थे. बट इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोड्यूसर्स जो एम्पा जिसे हम कहते हैं उसमें आमिर खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, ये सारे लोग इन्वॉल्व है. और इससे पहले भी कई बार मीटिंग हुई आमिर खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा, काफी सिद्धार्थ कपूर रॉय सॉरी, वो साथ में मिलकर उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे. आमिर खान के बहुत बार ये बात सुनने को आया, वो स्पॉटेड भी हुए थे कि वो दोनों पार्टी से मिल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे. तो ये जो मैं यही कह रही थी कि एक पहल है कि शायद ये इंडस्ट्री को एक कहीं ना कहीं यूनाइट कर रहा है क्योंकि उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है. हम कहते हैं कि आप एक एक्टर ने फिल्म छोड़ दी एक बहुत छोटी बात समझकर हम इसे भूल जाते हैं, कोई और एक्टर आ जाता है. बट इसका जो एक कोलैटरल डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये शायद पूरी इंडस्ट्री समझ चुकी है. तो आमिर खान और सलमान खान दोनों ने कोशिश की थी कि उन्होंने यही समझाया था कि आप दोनों प्रोफेशनल हो, आप इसे अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से पब्लिकली आप एक दूसरे पे सिर्फ ब्लेम्स करोगे तो उससे इंडस्ट्री का फायदा नहीं होगा. उससे बेहतर ये है कि आप इस मैटर को सॉल्व करें और अगर आपको लगता है कि जोन 3 में आप नहीं काम कर सकते हो तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में आप कोलैबोरेट करो, और ये जो सारी बातें हैं वो यहीं पे छोड़ देते हैं। और यही कहीं ना कहीं बाकी प्रोड्यूसर्स गिल्ड और इम्पा का भी यही एक एफर्ट रहा है, इस बार शायद पूरी इंडस्ट्री साथ होकर ये मैटर को सॉर्ट करना चाहिए।
3: लेकिन यहीं से क्या इंडस्ट्री दो धड़े में डिवाइड होती नजर नहीं आ रही? कंगना रनौत, ये आखिरी सवाल है आपसे। कंगना रनौत कह रही है कि रणवीर सिंह को समझना चाहिए कि उनका कद बढ़ रहा है और इसीलिए उनके दुश्मन बढ़ रहे हैं। क्या ये दुश्मनी तक बात है? राम गोपाल वर्मा भी इसमें अपनी बात कह चुके हैं
2: जी। कहीं ना कहीं हम जब देख रहे हैं ना तो वो डिवाइड जो है वो एक प्रोड्यूसर्स वर्सेस एक्टर्स का डिवाइड हो चुका है। एक एक्टर की जो कम्युनिटी है, जैसे सिंटा ने भी कल हमसे बात करते हुए यही कहा था कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था और वो चाहते हैं कि वो रणवीर सिंह का साथ दे, क्योंकि एक एक्टर्स बॉडी है वो, और यहाँ पे FWIC एक फिल्म बॉडी है और प्रोड्यूसर्स बॉडी है जो कि अलग यहाँ पे खड़ी हो रही है। सबके डिमांड्स और सबके बिलीव जो है वो अलग तरीके से है। बट जैसे कि आमिर खान और सलमान खान की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक्टर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं और इतने साल से इस इंडस्ट्री में है तो वो एक इंडस्ट्री के फायदे के लिए बात करना चाह रहे थे। और कंगना रनौत के डेफिनेटली अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ, तो वो एक एक्टर का दर्द समझ सकती है। तो डेफिनेटली एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का डिवाइड जो आप कह रही है वो बिल्कुल दो तरीके से बढ़ चुका है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बीच में रहकर उन दोनों पार्टीज को एक साथ लाना चाहती है ताकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आज खत्म ना हो बल्कि आगे भी ना बढ़े।
3: आगे इस तरह की बात है। शुक्रिया सना पूरी जानकारी के लिए। बीएन तिवारी जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। देखिए, जो नोटिस भेजा है, नोटिस भेजने का मतलब ही ये होता है कि आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज हम कोर्ट का रुख करेंगे। कैसे समझा जाए इस नोटिस को?
4: दरअसल ऐसा है मैडम की सारे पैनलिस्ट को हमारा नमस्ते। आज हमने इसको वापस लिया है। हमने जिस दिन नॉन कोऑपरेशन लागू किया था उसी दिन हमने चारों प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिखा कि ये रास्ता सही नहीं है, हल करने का तरीका नहीं है। हमने तो पहल कर दिया है मगर प्रोड्यूसर इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक प्रोड्यूसर की कहानी है इसमें, प्रोड्यूसर की ही प्रॉब्लम है। हमारे वर्करों का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्टर है उसमें जरूर मगर फरहान अख्तर, मगर सवाल प्रोड्यूसर का है। और प्रोड्यूसर बॉडी को पहले भी ट्राई किए मगर हाफ हार्टेड कर रहे थे। हमने जब लेटर लिखा कि ये सब इसी प्रॉब्लम हो गई है, तो 29 तारीख को इम्पा ने हमें लेटर का जवाब दिया। 30 तारीख को हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, सारे मुद्दे पर चर्चा की गई। उसको सिर्फ रणवीर सिंह के ऊपर ये बात नहीं थी, ये एक कॉमन ऐसा लॉ बनना चाहिए कि आगे भी कोई किसी प्रोड्यूसर को, ये फरहान अख्तर की कंपनी बड़ी है रितेश की, मगर किसी छोटे प्रोड्यूसर की बात साथ इस तरह का काम होगा, आज इन्होंने छोड़ा कल दूसरा आर्टिस्ट छोड़ देगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है और होता रहता है, इस तरह के कारोबार होते हैं, मगर हमारे तक कभी कंप्लेन आई नहीं थी। तो हमने अपनी पहल इसमें करने के लिए इनको लेटर लिखा था कि सर आप आए, रणवीर से बड़ी मोहब्बत है, सारी बातें हैं। बैन करना, लोगों ने इसको उल्टा ले लिया कि पेटिशन ने बैन किया। पेटिशन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी कि जहां पर आए और मिल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो टिम्पा ने इस बात
3: नहीं सर, लेकिन उस नोटिस में बैन शब्द का तो इस्तेमाल हुआ ही था, ये तो आप भी मान लीजिए। हमारे पिछले शो में भी आपने इस बात का जिक्र किया था, वो नोटिस हमने दिखाया था।
4: बार बार मैंने क्लियर किया था कि ये बैन नहीं है, नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव है,
3: ठीक है,
4: इसको क्लियर किया जाए। इसको कभी बैन हम कर नहीं सकते, हमारे अधिकार में बैन शब्द नहीं है कि हम उसको यूज करेंगे। जो इलीगल है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता है,
3: ठीक है।
4: लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए डाल देते हैं कि बैन कर दिया, बैन क्यों करेंगे भाई, बैन नहीं करते।
3: ठीक है सर, लौटते एक बार शोएब चौधरी जी आपके पास आते हुए, मामला फंसा कहाँ हुआ है? देखिए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से लग रहा है कि अब ये डिवाइड हो चुकी है इंडस्ट्री। अभी तक रणवीर ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, पहली बात, और दूसरी बात यह कि अब ये नोटिस दे देना, क्या अब वो मन बना चुके हैं कि वो सीधा कोर्ट जाएंगे?
5: गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, देखिए मैं अग्री करता हूँ तिवारी जी ने कहा, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना एक बहुत बड़ी फैमिली, एक परिवार की तरह है, लाखों लोग एक ही छत के नीचे सब काम करते हैं, सुबह शाम उठना बैठना सबका मुलाकातें रहती है, और ये तो बहुत छोटा सा इशू है, इससे बड़े बड़े इश्यूज हमारे सामने आते हैं हमेशा से और वो वक्त के साथ सब सेटल हो जाते हैं. देयर इज नो परमानेंट राइवलरी ऑफ फ्रेंडशिप हियर इन द फिल्म इंडस्ट्री. पर थोड़ा सा एक ये है कि जो तिवारी जी ने आज इन लोगों ने काम किया है वो सेंसिबली अगर एक हफ्ता पहले किया होता तो ये बात यहां तक ना पहुंचती. ये एज अ प्रोड्यूसर मैं, मेरा पूरी सहानुभूति जो है फरहान अख्तर के साथ है कि उनके अगर पैसे खर्च हुए हैं किसी एक्टर को इस तरह मिडवे नहीं जाना चाहिए. लेकिन फेडरेशन का काम तो इतना ही है ना कि भाई उन्होंने, आप लोगों ने समझाने की कोशिश की अगर एक पार्टी नहीं मान रही है तो आप बैन और नोटिस जैसे हैवी ड्यूटी शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपनी फ्री की पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, क्योंकि आपको टीवी कैमराज एक्सेसिबल है, आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और फिर कह देंगे कि हमने वो वापस ले लिया, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए.
3: अच्छा, एक चीज क्योंकि हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके, अगर आपको याद हो यही पैनल हमारा था. सर एक सेकंड, दस सेकंड का सवाल. अगर फरहान अख्तर FWIC नहीं जाते, अगर ये नोटिस नहीं देते, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपस में मामला सुलझ सकता था?
5: नहीं, उनके पास 50 दूसरे एवेन्यूज है ना भाई. कोई और सीरियस आर्बिट्रेटर्स होते, कोर्ट, एक आर्बिट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करता, कोई आर्बिट्रेटर या कोर्ट में जाए इफ यू हैव अ लीगल अग्रीमेंट टू इट. वाइस का क्या रोल है, फेडरेशन का क्या रोल है इसमें सिवाय इसके के फ्री की पब्लिसिटी पाने के अलावा? उनका एक काम है, सीनियर बॉडी की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनको बात हुई, अगर बात नहीं बनी तो जस्ट लीव देम ऑन देयर ओन. वो बड़े प्रोड्यूसर हैं, दे कैन हैंडल इट. जिस तरह से इन लोगों ने एक नॉन कोऑपरेशन का एक सजेशन दिया 400,000 मेंबर्स को, भाई तिवारी जी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फरहान और रणबीर की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट इमेजिन, आज इंडस्ट्री में काम बहुत है, वो 500 लोग जो इनकी रणबीर की फिल्मों से जुड़े होते. अच्छा, नॉन कोऑपरेशन के मायने क्या है? नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि आप हमारे जो मेंबर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर के दूसरी एसोसिएशन के मेंबर्स वो काम कर सकते हैं. इसका मायने ये होगा कि आपके जो डेली वेज वर्कर्स है आप उनकी रोजी रोटी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं काम करने से. यही तो सजेशन है आपका, जो आज आपने वापस ले लिया, अच्छा किया. ये पहले ही दिन आपको इशू नहीं करना चाहिए था. और मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं. ये लोग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग बैठ करके उन चीजों को सुलझा लेंगे. लेकिन हाँ,
3: सर बात ये भी है ना कि अभी तक हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों के बीच इशू किस बात को लेकर है. देखिए, पहली बात, रणवीर ने फिल्म छोड़ी, क्या फरहान को ये बात बुरी लगी? फरहान ने उसके बाद 45 करोड़ के हर्जाने की बात कही. फरहान उसके बाद फेडरेशन के पास चले जाते हैं. क्या ये फिर ईगो का मामला हो गया है? क्योंकि जहां तक अभी सना फरजीन मेरी सहयोगी यही तो बता रही थी कि जो जो इश्यूज रणवीर को थे, फरहान उसके लिए, उन तमाम चेंजेस के लिए फरहान तैयार भी हो गए थे.
5: ठीक है, दो चीजें हैं इसमें. जो क्योंकि तिवारी जी ने पिछली बार इसी पैनल पे कहा था कि इन्होंने अग्रीमेंट्स और सारे पेपर वर्क को स्टडी करने के बाद बैन और बाकी सारे सजेशन दिए थे, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उस पेपर वर्क में क्या था, वो अग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या थी.
3: नहीं सर, मैं रणवीर की पक्ष की बात कर रही हूँ सर.
5: लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अग्रीमेंट तो इन्होंने प्रेजेंट किया होगा ना, फिर फेडरेशन को दिखाया होगा, उसी के बाद इन लोगों ने कोई आगे एक्शन लिया होगा. जो नोटिस ये कह रहे हैं भेजे हैं, तो अग्रीमेंट जो फरहान ने प्रेजेंट किए होंगे वो रणवीर की तरफ के भी अग्रीमेंट्स होंगे, इन्होंने देख कर ही उसके ऊपर कोई फैसला लिया होगा. तो इसका जवाब तो तिवारी जी देंगे. दूसरा आपका, सॉरी, क्या सवाल था?
3: मेरा सवाल यही था कि मामला एक्चुअली है क्या, क्या ये अब ईगो तक बात आ गई? क्योंकि जिन चेंजेस की बात रणवीर कर रहे थे, फरहान उसके लिए तैयार हो गए थे.
5: नहीं, ईगो तो मुद्दा ही ईगो तब आया जब इन लोगों ने उसको बैन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नोटिस जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया. और पिछली बार भी मैंने आप ही के पैनल पे कहा था, कोई भी रणवीर तो बहुत इज अ ह्यूज स्टार, कोई छोटा सा वन डे एक्टर भी उस बात पे ईगो ले जाएगा. इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन लोगों को नहीं करना चाहिए, अपने ज्यूरिसडिक्शन को स्टेप ओवर नहीं करना चाहिए.
3: मेरे इसी सवाल का जवाब रामकिशोर पारचा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी. सर, अब मामला क्या, आमिर खान बीच बचाव कर चुके हैं, पहल कर चुके हैं, सलमान खान पहल कर चुके हैं, कंगना रनौत, रामगोपाल वर्मा, जिस तरीके से पद्मिनी कोल्हापुरी, इन सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं. देखिए, दोनों के साथ लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि रणवीर के साथ लोग नहीं या फरहान के साथ नहीं, दोनों के साथ खड़े हैं. लेकिन मामला क्या वाकई अब लीगल हो चुका है?
6: देखिए, मुझे दो चीजें हैं. मैं आपको एक पहली बात बताऊं कि जिस वक्त रणवीर ने ये फिल्म साइन की थी, उस समय संजय लीला भंसाली की फिल्मों से रणवीर एक बड़ा नाम बन रहे थे, और शाहरुख खान ने फिल्म छोड़ी थी, और शाहरुख खान का जो करियर है वो भी अप डाउन चल रहा था उस समय. तो रणवीर के लिए डॉन जैसी फिल्म, जिसको बच्चन साहब कर चुके थे पहले, फिर शाहरुख खान ने की, तो वो कहते ना एक दूसरे के जूते में पैर डाल के बड़ा होना, तो रणवीर के लिए वो मौका था. लेकिन अगर धुरंधर इतनी बड़ी हिट नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि शायद ये विवाद खड़ा नहीं होता. अब रणवीर को भी लगता है कि डॉन जो है शायद धुरंधर के सामने एक छोटा कॉन्सेप्ट और छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है।
3: लेकिन सर रणवीर जैसा एक्टर मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे। सर एक सेकंड, रणवीर जैसा एक्टर क्या इस तरीके का स्टेप उठाएगा कि ये फिल्म छोटी है बड़ी है, फरहान के साथ वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वो फिल्म है जिसके लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है, क्या वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हटना अफोर्ड कर पाएंगे?
6: देखिए वो कर सकते हैं नवजोत, अगर फ्रेंकली आप पूछें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, बॉलीवुड में इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं असल में देखा जाए तो नाम के लिए तो वो सबके दोस्त होते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी किसी का इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। सब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं और किसको कितना लाभ मिलता है किस चीज से वो सबको पता है। इस वक्त वो जो नॉन कोऑपरेटिव जो उन्होंने रवैया अपनाया है वो जानते हैं कि इस रवैये से फरहान को और इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होगा, और वो एक ऐसा रास्ता भी खोल रहे हैं जो आने वाले समय में बाकी स्टार्स को भी इस बात के लिए एक स्पेस दे देगा कि वो कोई फिल्म साइन करें और अगर उनको लगता है कि ये हमारे मतलब की फिल्म अब नहीं रही है तो उसको छोड़ सके।
3: सर एथिक्स कहां जाएंगे? कमिटमेंट आप कमिटमेंट कभी भी छोड़ सकते हैं, प्रोड्यूसर्स का हाल क्या होगा? उनकी अपनी इमेज भी तो देखिए ना, उनकी अपनी इमेज में भी असर होगा। अब ये पूरा मामला मीडिया में है, लीगल तक ये पूरा मामला जा रहा है, खुद नोटिस वो दे चुके हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्ट का मामला है ही नहीं असल में, ये आपस में बैठ के सुलझाने वाला मामला है। जैसे अभी शोएब कह रहे थे, जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे कि अगर वो चाहते तो इसको फरहान के साथ बैठकर सुलझा सकते थे, क्योंकि फरहान अख्तर भी नवजोत कोई छोटा नाम नहीं है, वो बड़े एक्टर है, बड़े डायरेक्टर है, और डॉन कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है इंडस्ट्री के लिए। तो इस वक्त जो ये मसला है ये मेरे ख्याल से इस टाइम पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, रणबीर को वो फिल्म करनी चाहिए थी। और जहां तक वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो कोर्ट जाने के लिए इसलिए नहीं जा रहे कि फिल्म छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि मुझसे 45 करोड़ रुपए मांग लिया है। और फरहान को भी ये बात मालूम है कि 2100 करोड़ रुपए की धुरंधर जो इस वक्त मार्केट में उछली हुई है उसके बाद उनको क्या मिल सकता है। तो मसला ये नहीं है कि वो छोड़ेंगे या करेंगे, मसला ये है कि उन्होंने जो ये असमझौता किया है और जो अनकोऑपरेटिव जो रवैया है उससे उनकी इंडस्ट्री को एक रास्ता देने की जो छवि है वो खराब होगी, रणवीर की खुद की छवि खराब होगी और इससे इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान।
3: अब दूसरी साइड आते हैं सर, एक और चीज बताते चले फिर उसके बाद शोएब आपका जवाब लेती हूँ। अगर फरहान, ठीक है रणवीर ने मना किया, अगर फरहान वो नोटिस नहीं देते, 45 करोड़ के हर जाने की बात नहीं करते, FWIC नहीं जाते, FWIC की तरफ से नॉन कॉपरेशन जैसे शब्दों की बात नहीं होती, तो क्या मामला यहां तक नहीं पहुंचता, अभी तक सुलझ जाता मामला, आपको लगता है? सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? रामकिशोर जी
6: देखिए, मेरा जो अपना अनुभव है इंडस्ट्री को देख, साल इंडस्ट्री में काम किया है एज एन फिल्म क्रिटिक और फिल्म पत्रकार, मैं बहुत अच्छे से इंटीरियर जो इंडस्ट्री हमारी इसको मैं जानता हूं। अगर ये मामला यहां तक नहीं पहुंचना था तो ये सिर्फ रणवीर के ऊपर ही निर्भर करता था, ये फरहान से जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल नहीं था। लेकिन बड़ी बड़ी हिट होती हैं और बड़े बड़े केस होते हैं और विवाद जो इतना बड़ा रूप लेते हैं वो सिर्फ एक पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा होते हैं। आप देखिए कि इस वक्त धुरंधर के सामने एक बड़ी फिल्म का आना जरूरी है, वो फिल्म कौन सी बड़ी हो सकती है? अगर ये फिल्म डॉन उससे बड़ी साबित हो गई तो ये मसला निपट जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर रणवीर चाहते तो इस मसले को वो बिना कोर्ट में जाए हुए भी फरहान के साथ बैठकर, हमारी जो सोसाइटीज हैं, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ बैठकर सुलझा लेते, और उसको सुलझाना भी चाहिए क्योंकि ये सीधा सीधा रास्ता जो है नए रास्ते खोलता है विरोध के। इंडस्ट्री इस वक्त विरोध नहीं मांग रही है, इंडस्ट्री में हर एक्टर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इस वक्त सहयोग चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का जो कलेप्स डाउन इस वक्त हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, और इसमें ये जो केस उभर कर सामने आया है इससे सीधा सीधा नुकसान जो है वो हमारी इंडस्ट्री
3: का होगा। जी शोएब जी अपनी बात रखिए।
5: मैं ये कहना चाह रहा था कि जो तिवारी जी ने बात की पहले के किसी और प्रोड्यूसर के साथ ना हो, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ये केस जो हुआ इनकी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इन्हीं लोगों की नासमझी की वजह से हुआ, जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा किसी और के साथ ये ना हो इसके लिए इन लोगों को एक वो सब प्रॉपर एक सेटअप करना चाहिए कि इतने स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट हर किसी के लेवल पे होने चाहिए, कोई भी कोई पानी पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेकर के सब तक के सारे वो अग्रीमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए। किसी भी प्रोड्यूसर्स को या आर्टिस्ट को या पूरी यूनिट को उसके बगैर काम नहीं करना चाहिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहली बार मैंने देखा फेडरेशन प्रोड्यूसर के फेवर में बात कर रही है। वो ये हो सकता है बहुत बड़े प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर इसलिए कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे जो प्रोड्यूसर्स है उनके फेवर में बोलना चाहिए, क्योंकि आइंदा मैंने जो देखा हमेशा वो सिलसिला ये होता है कि ये इन लोगों का जितनी एसोसिएशंस हैं वो प्रोड्यूसर्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द क्रू वाला जो झगड़ा है ये एक डिवीजन बना के चलते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए. एवरीबॉडी शुड वर्क एज अ फैमिली और स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल शुड बी इन प्लेस.
3: ठीक है, एक बार लेज़ली जल्दी से आपके पास आते हुए फिर ब्रेक लेना है मुझे. कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को?
7: नमस्ते मैम, नमस्ते पैनलिस्ट. मैम ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली ना डर लगता है कि आर्टिस्ट पे बैन शब्द अगर सुनने को मिलता है उनका इमेज खराब हो जाता है, उनका रेपुटेशन खराब हो जाता है, लोग उनके साथ काम करने से डरते हैं. तो आज तो गुड न्यूज है कि बैन लिफ्ट हो गया ये बात सुन के, बट जो भी हुआ एक्चुअली क्या हो रहा है, मीडिया ट्रायल भी अपनी तरफ से होने लगी है बिकॉज हमें पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत व्यूज दे रहे हैं. एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये जो एक्टर है अभी ही इज द लेटेस्ट हार्ट थ्रोप, सबके दिलों में बैठे हैं, तो लोगों को लग रहा है हमारे घर के किसी इंसान के साथ ज्यादती हो गया है. बट ये सही है कि प्रोड्यूसर का एक बात है, आर्टिस्ट का एक बात है और सब मिलके चलना चाहिए. आई फील कि मैटर तो सुलझ जाना चाहिए और कभी कभी लगता है क्या इतना बड़ा डिवाइड हो गया. एक इंडस्ट्री वैसे भी छोटी है और उसमें जब डिवाइड हो जाता है कि प्रोड्यूसर गुस्सा है, आर्टिस्ट से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये न्यूज भी आ रहा है.
3: रणवीर सिंह ने डॉन के लिए लेज़ली मना किया, क्या आप इसकी फेवर में हैं या नहीं?
7: आई थिंक ही शुड हैव वोट, मुझे लगता है बिकॉज डॉन 3 इज अ बिग ब्रांड और उसमें हीरो का जैसे होता है फ्रेमिंग, उनका बहुत इंटरनेशनल अपील होता है, ही शुड हैव वर्क. बट मे भी मुझे लगा कि उनका प्रलय फिल्म के बारे में जितना सुनने को मिला, टाइम क्लैश हो रहा था एंड ही वॉक्ड अवे. बट आई थिंक कुछ तो सुलह होना चाहिए था कि कुछ दिनों बात करेंगे. अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रणवीर सिंह के साथ तो फरहान अख्तर जी और उनके सिस्टर भी काम नहीं करना चाहते, तो दैट इज अ बिग लॉस बिकॉज वी हैव सीन गली बॉय.
3: फरहान ने जो नोटिस भेजा, जो हरजाने की बात आई, क्या आप उनकी फेवर में हैं या नहीं?
7: ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स का लॉस नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक मैटर इतना बैन वर्ड ऐसे शब्द ना हो क्योंकि आर्टिस्ट का इमेज खराब हो जाता है.
3: लेज़ली यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अब इसके बाद अगर मामला कोर्ट में जाता है तो तमाम जितनी संस्थाएं हैं उनका से क्या रह जाता है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल इंटरव्यू

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या फरहान और रणवीर का मामला लीगल है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या रणवीर का कोर्ट जाना सही है या फिर गलत है। एक बार पार्षद साहब आपके पास आना चाहूंगी। हाल फिलहाल में ही एक मामला इस तरह का आया जिसमें परेश रावल ने जब हेराफेरी 3 छोड़ी थी तो उन्होंने भी 15% ब्याज के साथ जो अतिरिक्त मुआवजा वो लौटाया था। अगर फरहान अख्तर इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और अगर एक्टर लास्ट मोमेंट पे 3 महीने पहले शूटिंग जब शुरू होनी थी तब वो मना कर देते हैं तो क्या ये जुर्माना सही है या गलत है? रामकिशोर पाचा जी आपसे सवाल है मेरा।
1: आपकी आवाज कम आ रही है, क्या पूछा?
0: मेरा सवाल ये है कि इससे पहले हेराफेरी 3 को लेकर भी जब परेश रावल ने छोड़ी थी जब 15% मुआवजे के साथ 15% ब्याज के साथ और दूसरा मुआवजा भी उन्होंने लौटाया था, अक्षय कुमार और उन दोनों के बीच में मामला आया था, यहां पर फरहान अख्तर ने जिस तरीके के मुआवजे की मांग की है क्या वो सही थी या गलत थी?
1: देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे मित्र बात कर रहे थे और आपने भी नवजोत एक बड़ा मसला उठाया था कि एक फिल्म जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं होती है, एक हीरो के लिए तो उसकी कीमत होती है कि मान लो उसने 20 करोड़ लिया, 50 करोड़ मांगा कि मैं इतना मेहनताना लूंगा, लेकिन उसके साथ जो 500 लोग या 700 लोग एक फिल्म के साथ काम कर रहे होते हैं वो एक बड़ा मसला होता है। अभी जो मेरे मित्र जो है तिवारी जी भी बोल रहे थे और श्रेयस आप भी कह रहे थे कि एक फिल्म में जो 500 लोग काम करते हैं उन सबकी रोजी रोटी भी इससे जुड़ी होती है और फिल्म पर चूंकि 3 साल पहले काम शुरू हो चुका है तो उस पर पैसा लगा हुआ है, तो अगर 45 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे हैं तो मुझे लगता है कि वो उनका हक भी बनता है क्योंकि उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
0: ठीक है,
1: रणवीर तो फिल्म छोड़कर चले जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेंगे, वहां से उनको फीस भी मिल जाएगी, लेकिन जो लोग लगे हुए थे और जो पैसा फरहान खर्च कर चुके हैं उसकी भरपाई कैसे?
0: ठीक है, एक बार तिवारी जी आपके पास
1: अगर मैं देखूं तो उनका ये मुआवजा लेना जो है वो सटीक फैसला है, लेकिन कितना मिलना चाहिए ये कोर्ट में तय किया जा सकता है कि जो जायज है वो उनको उसकी वापसी होनी चाहिए।
0: ठीक है, अब तिवारी जी आपके पास आते हुए, अब मामला इतना बढ़ चुका है कि अब रणवीर ने नोटिस दे दिया। नोटिस का मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सीधा मतलब ये होता है कि दिस इज अ फाइनल वार्निंग और अगर इस पे बात नहीं हुई तो फिर वो सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। मान लीजिए कि अब पूरा मामला कोर्ट में जाता है, मामला पूरा लीगल हो जाता है तो जितनी तमाम संस्थाएं हैं जो बिचौलिए का काम हर जगह पर कर रही हैं फिर उनका क्या औचित्य रह जाएगा?
2: देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, जो हमारे 50 साल के तजुर्बे हैं उसके हिसाब से हमारे कम लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर करते हैं, सारे प्रोड्यूसर ही बैठे हैं, सारे पत्रकार बैठे हैं, तुम जानते हैं चीज को। मुझे एक बात की खुशी है कि मेरे इस नॉन कोऑपरेशन ने सारे प्रोड्यूसरों को इकट्ठा कर दिया है, सारी संस्थाएं एक साथ जुट गई हैं और सबने इसका रास्ता ढूंढना शुरू किया है, तो हमें यदि बहुत ज्यादा तारीफ न मिले इसके लिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो अपने वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं जैसा चौधरी साहब ने भी बताया और लेस्ली ने भी बोला, सबने बोला कि पैसा प्रोड्यूसर का लगा है, पैसा नेशनल लॉस नहीं होना चाहिए, पैसा किसी का भी लगा हो। रणवीर सिंह के टीम को नाराजगी हमसे थी, उनका आपस में तो कोई बात विवाद था नहीं, तो हमने इसको वापस ले लिया है और मुझे लगता है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे और ये एक अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: ठीक है,
2: आप लोग पॉजिटिव सोचें इस
0: ये कहीं तो तिवारी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, शोएब जी एक जवाब इस पे आपका बनता है, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने, कहा क्योंकि नाराजगी हमसे है हम जवाब दे देंगे, उन दोनों की आपस में नाराजगी नहीं है, क्या अब मामला सुलझ सकता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारे हिसाब से मामला सुलझ जाएगा।
0: तिवारी जी एक सेकंड शोएब जी का जवाब ले लो।
3: मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना तिवारी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इन्हीं लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छा किया और पूरे इंडस्ट्री के हक में है, लेकिन दो चीजें और हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं, इनको सिर्फ वर्कर की लड़ाई नहीं लड़नी है, जो मैंने बात की है मेरी बात को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ये बात कह के, लड़ाई जो है प्रोड्यूसर वर्सेज वर्कर और टेक्नीशियंस की जो ये लोग क्रिएट करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये केस एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए प्रोड्यूसर्स के लिए कि सारे प्रोटोकॉल इन प्लेस हों, क्योंकि पैसा चाहे 1 रुपए से लेके 1,000 करोड़ तक सिर्फ प्रोड्यूसर इज बियरिंग द ब्रंट ऑफ एनी लॉसेज ऑफ द प्रॉफिट्स, बाकी किसी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीबॉडी वॉक्स अवे विद हिज फी और डेली वेजेस, बाकी किसी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, पब्लिसिटी के लिए ये फेडरेशन डायरेक्टर एसोसिएशन के जितने जिम्मेदार लोग हैं ये अभी बाज आने वाले दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज भी 12:30 बजे या 12 बजे जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक नया शगुफा छोड़ा है इन्होंने। ये हर बार पब्लिसिटी के लिए इसके ऑफिस जो ऑफिस में रहते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। वो अनुपम खेर के साइड के हैं, क्या नाम है उनका, फेडरेशन के चेयरमैन, जस्ट जस्ट मिस्ड हिज नेम, वो डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, जस्ट स्लिप्ड हिज नेम है। तो वो भाई साहब फरमा रहे हैं कि वो राम गोपाल वर्मा वो करते हैं 100 करोड़ रुपए फेडरेशन के। भाई साहब जरा बताएंगे कौन सी ये कौन सा पैसा है जो फेडरेशन को राम गोपाल वर्मा को पे कर रहा है। कोई भी स्वीपिंग पासिंग स्टेटमेंट देकर के आप निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें गलत समझा जा रहा है। आप खुद ही लोगों को रास्ता दे रहे हैं आपको कोर्ट में लेके जाने का। भाई आप लोग अपने सीनियर लोग हैं, सुकून के साथ जिस चीज के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, वोट देकर के प्रोड्यूसर के सब लोगों ने किया है, वो काम करिए ना भाई। आप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह के एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं। आज किस वजह से कहा गया कि राम गोपाल वर्मा 100 करोड़ रुपए वो करते हैं? भाई कौन सा पैसा होगा जो राम गोपाल वर्मा कौन से लॉजिक से आपको वो करते होंगे पैसे?
0: चलिए दूसरे मुद्दे पर नहीं जाते क्योंकि वक्त की कमी
3: है। नहीं नहीं मुद्दा भाई,
0: नहीं सर, ये
3: आपने
0: लास्ट टाइम की जो बात की उससे लगता है कि आपस में बहुत ज्यादा टसल है। पाशा साहब आप ही के पास आऊंगी, आपके अलावा कोई न्यूट्रल जवाब देगा नहीं। दो सवाल है सर मेरे इस पर, तो आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक और चीज रखिए, जितनी भी संस्थाएं सर किसके पास लीगल राइट्स हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वर्कर्स, हर किसी को कोर्ट ही जाना है, तो यहां पर संस्थाओं की भूमिका क्या रह जाती है?
1: देखिए अभी जो शुएब ने बात कही है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि कितना भी मसला बड़ा होके कोर्ट में जाए या कहीं जाए, आखिरी जो विड्रॉ करने का फैसला है या फैसला लेने की जो अपनी जो पावर्स हैं वो तो उसी के पास होती हैं जो केस दायर करता है या जिस पर केस दायर होता है। कोर्ट भी एक हद तक जाकर काम करता है, उसके बाद कोर्ट भी कहता है कि आप बैठकर इस फैसले को सुलझा लीजिए। लेकिन शोएब ने एक बहुत अच्छी बात कही और आपने उसका समर्थन किया है कि ये सारे मसले जो होते हैं एक इनसिक्योरिटी से भरे हुए मसले होते हैं जब कोई बड़ी फिल्म हिट होती है और जब किसी आने वाली फिल्म के बारे में आपको प्रिडिक्शन देना होता है, तब ये मवाद जो है ज्यादा उठते हैं कि पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा को एजेंडा बनाकर वो कोर्ट तक भी जाते हैं और बाद में पता चलता है कि मसला सुलझ भी गया, फिल्म बन भी गई और लोग सिर्फ उसको उस प्रोपेगेंडा के थ्रू जो विवाद हुआ है उसी के लिए वो देखने चले जाते हैं। तो एक तरह की ये बिजनेस स्ट्रेटजी भी हो सकती है, पर इसका सीधा सीधा नुकसान जो
0: है तो नहीं होने वाला
1: है इंडस्ट्री को।
0: आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, पता चले कि डॉन 3 जिस दिन रिलीज हो उस दिन रणवीर सिंह भी उसमें हमें नजर आ रहा है और हम यही बात दोबारा से कर रहे हो।
3: ये बात बिल्कुल सही है,
0: लेकिन हो सकता है
3: फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी होता है,
1: बिल्कुल हो सकता है,
2: खत्म होने वाला है।
0: लेजली आप तो एक्ट्रेस हैं, बहुत फिल्मों में आपने काम किया है।
4: मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा,
0: परमानेंट एनिमी नहीं, कोई परमानेंट दोस्त नहीं,
1: कोई नहीं है
4: यहाँ पे, कोई किसी का परमानेंट एनिमी नहीं है, एक छोटा सा परिवार
1: है।
4: आई फील ऑल वेल दैट एंड्स वेल। जैसे आज FWIC सर तो यहीं पे बैठे हैं, उन्होंने तो लिफ्ट कर दिया बैन, हो सकता है कि कल फरहान अख्तर और रणवीर सिंह डिक्लेयर करें कि हम फिल्म कर रहे हैं एंड रिलीज डेट अनाउंस करते, तो आई थिंक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होगा वो, तो हम चाहेंगे बिकॉज हम इंडियंस है, वी लव बोथ, वी लव द प्रोड्यूसर, वी लव प्रोड्यूसर ने जैसे फिल्में की है डॉन सीरीज, वी लव दोस फिल्म्स एंड रणवीर सिंह, वाओ वी लव हिम एज एन एक्टर, ये कॉम्बिनेशन फिर से आ जाना चाहिए। मुझे लगता है नजर लग गई,
0: फैंस जनता ये चाहेगी, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा, रणवीर को हर कोई पसंद करता है, फरहान को हर कोई पसंद करता है, लेकिन इस पूरे मामले में तिवारी जी अब फिर आपके पास आऊंगी, आपने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही कि मामला हमसे था हम उसको क्लियर कर लेंगे और आपने कहीं ना कहीं इशारा भी कर दिया, इसीलिए अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, लेकिन सर इस पूरे मामले ने क्या मैसेज दिया है पूरी इंडस्ट्री को? आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्री को एक होने की जरूरत है।
2: आज इकट्ठा हो गए सारे प्रोड्यूसर इकट्ठा हो गए हैं, ये हमारे चाहे हमने अच्छा किया या बुरा किया ये हमारे अपना निर्णय था, मगर प्रोड्यूसर इकट्ठा होकर के आपस में बात करेंगे, बड़े अच्छे सोच के लोग हैं, इस तरह की सोच नहीं सोचते जिस तरह से शोएब चौधरी साहब सोचते हैं, उनकी सोच थोड़ी बड़ी है क्योंकि रेगुलर प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बना रहे हैं। शोएब चौधरी को अपनी बातें करनी होती है, एक ही बात पिछली बार भी बोले थे पब्लिसिटी, अरे 70 साल से जो संस्था है वो पब्लिसिटी नहीं, कोर्ट के भी मसले हमारे पास हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाते हैं और वो फेडरेशन को भेजा जाता है। आज फेडरेशन की बात प्रोड्यूसर बॉडी पूरी सुन रही है, एक प्रोड्यूसर नहीं सुनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना सुने आप नाराज रहे हम आपको मना लेंगे, मगर हमारा मकसद पूरा हुआ है कि फिल्म बनेगी, दोनों साथ में आएंगे और फिल्म इंडस्ट्री हमारी
0: हेडलाइन दे रहे हैं रामकिशोर पारचा जी, ये हेडलाइन मिल रही है हम लोगों को।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो अभी तिवारी जी ने कहा है ना, शोएब ने जो है ये बिल्कुल नहीं कहा है कि फेडरेशन जो है वो पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। फेडरेशन तो
0: शोएब जी ने एक और
1: फिल्म आएगी और अच्छी बनेगी, फरहान की फिल्म को लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे,
0: रणवीर की फिल्म को भी सब देखेंगे। लेकिन तिवारी जी, शोएब जी ने एक और बात अच्छी भी तो कही है, क्या आप ये मानते हैं कि अंदर खाते कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होते हैं,
2: कोई अपना चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए, प्रोड्यूसर खुद चाहता है कि मेरी फिल्म बने, कोई चाहता नहीं करें, दिक्कतें होती हैं, सबको मालूम है। और लिस्ली ने जो बताया कि ना यहाँ कोई किसी का दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, कल सारे मिल जाएंगे, सब साथ में होंगे, हम लोग इसके लिए ताली बजाएंगे और ये फिल्म बनेगी।
0: बहुत ऑनेस्टली उन्होंने रिप्लाई किया है तिवारी जी ने, आप बताइए शोएब जी क्या कहेंगे इसको लेकर।
1: बिल्कुल सही ऑनेस्टली रिप्लाई जो है उनका, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि लेस्ली ने भी कहा कि परमानेंट इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है और खास तौर से विवाद परमानेंट कभी नहीं होता है। नवजोत आपको भी पता है कि कई बड़ी फिल्में ऐसी आई जिसमें हमने आपने साथ में शो किए हैं, बहुत बड़ा विवाद उठता है, बैठता है, फिल्म आती है, फिल्म देखी जाती है और एक अच्छा बिजनेस होता है, लोग फिल्म को पसंद करने जाते हैं।
0: और ये हमने ये भी देखा है कि फिल्म को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी होती है फिल्म उतनी हिट भी होती है, ये भी हमने देखा है। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस इसको लेकर, एक बार शोएब जी
3: मैं बोलूं।
0: हां हां शोएब जी, आपका किस सवाल था एक्चुअली मेरा?
3: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग, मैं इस बात से अग्री करता हूं क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूं, मैंने सारी जिंदगी राजनीति देखी और अब प्रोड्यूसर हूं, तो मैंने दोनों तरह की जिंदगी देखी है, पॉलिटिक्स में और फिल्म इंडस्ट्री में जरा भी एग्जीक्यूशन में फर्क नहीं है। तब हो सकता है आपने जो ये क्लिपिंग लगा रखी है रणबीर कपूर, ये रणवीर सिंह हंस रहे हो सकता है, हकीकत में हंस रहे हो, पब्लिसिटी एक बहुत बड़े एंगल में चल रही है, पीपल आर जस्ट डिबेटिंग ऑन द इशू दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर नो रीजन।
1: नवजोत के शो में हमेशा अच्छी क्लिपिंग लगती है और अच्छी हेडिंग होती है, हेडिंग्स बहुत हेडर्स बहुत बड़े होते हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं, ये भी मीनिंगफुल है।
3: लेकिन साथ साथ मुझे एक मुझे एक नया डर है, मुझे कोई शिकायत फेडरेशन से नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी शिकायत है कि भाई आप लोग अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देना बंद कर दें, जैसे पहले भी इन्होंने दिए।
0: नहीं सर, लेकिन ये बताइए ना, अगर फरहान नहीं जाते तो शायद बीच में आते ही नहीं ना, ये भी तो बात है।
3: मैं उसकी भाई, मैं इनका तो काम है ये, इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं।
0: फेडरेशन किसके लिए?
3: जिसका
0: फेडरेशन ने भी इससे लेसन लिया होगा कोई ना कोई,
3: इसी चीज के लिए। नहीं, ये लोग लेसन लेते ना तो आज ये रामगोपाल वर्मा पे 100 करोड़ रुपए का क्लेम नहीं ठोकते कि 100 करोड़ रुपए होते। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, दूर है कि 100 करोड़ रुपए किस
2: पे,
3: मैंने अभी ब्रेक में देखा, ये रहा वीडियो 100 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, देखिए
0: इस पर हम एक और शो कर सकते हैं।
3: मैं जानना चाह रहा हूँ
0: कि क्या फेडरेशन में एकता है या उनकी आपसी टसल है, इसको इसका शोएब जी बड़ा ऑनेस्टली उन्होंने अपना जवाब रख दिया, उन्होंने कहा है कि हर किसी के सेल्फ इंटरेस्ट भी यहाँ पर होते हैं, ये बात उन्होंने मानी है यहाँ पर। अब लेस्ली
3: नहीं तो सेल्फ इंटरेस्ट वालों को
0: डॉन जी आएगी का आखिरी सवाल सर,
3: सेल्फ इंटरेस्ट है वो लोग फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स ना बने,
0: इसको लेकर सवाल उठ सकता है। बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जायज है,
3: सेल्फ इंटरेस्ट वालों को वहां पे नहीं होना चाहिए,
0: ये उठ सकता है। लेस्ली क्या इससे लेसन मिल सकता है हमें?
4: एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन है, कोई एक्टर ऐसे वॉकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है। आई थिंक जब तिवारी सर और सबने जब ये स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों पहले तो पूरा तहलका मच गया था एंड सब डर गए थे क्या होगा, क्या प्रोड्यूसर इतना गुस्सा है कि आर्टिस्ट के साथ बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अभी अभी आज ना थोड़ा सा सबको दिल में ठंडक पड़ी, जैसे बारिश आई तो सबको अच्छा लगा कि ओके गर्मी थोड़ी सी कम हो गई, वैसे आज जो बैन लिफ्ट का मैसेज आया तो वहां से समझ में आया कि
0: बैन लिफ्ट तो कर दिया, वक्त अभी इतना ही है, बैन लिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या रणवीर अभी भी कोर्ट जाएंगे या फिर मिल बैठकर आपस में ये मामला सुलझेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में बेवरेज कंपनी पेप्सिको ने भारतीय बाजार में अपना प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक एड्रेनालाइन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नए प्रोडक्ट के साथ भारत के युवाओं और खासकर जेन जी को टारगेट किया है, और इस प्रोडक्ट के साथ ही पेप्सिको का इरादा भारत के तेजी से बढ़ते एनर्जी ड्रिंक सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी को और बड़ा करना है। कंपनी का सीधा फोकस आज के जेन जी पर है, जो एक दमदार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और हाई एनर्जी एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं।
8: Focus ultimate performance.
2: Let's go. अब आज सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जहां लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम सुहावना है, साथ ही साथ श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं।

0: हेमकुंड साहिब हिमालय की गोद में बसा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल, जहां इन दिनों आस्था का मेला लगा है। एक तरफ चार धामों की रौनक तो वहीं दूसरी ओर सात बर्फीली चोटियों से घिरे इस पवित्र दरबार में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे, तब से लेकर अब तक करीब 40,000 लोग पवित्र हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। यहां रोजाना करीब 5,000 से 10,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहां ठंड लगातार बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है।
1: मौसम ठीक है, यात्री को सुगम और अच्छे तरीके से यात्रा पुलिस द्वारा भी और गुरुद्वारा द्वारा भी सभी सहूलतों के साथ करवाई जा रही है। इन केस कभी बर्फबारी होती है तो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है, SDRF अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा गुरुद्वारा साहब का स्टाफ और मेडिकल के डॉक्टर, लंगर के सेवादार सभी अपना ड्यूटी जो है तनदेही से निभा रहे हैं।
0: हेमकुंड साहिब में हालांकि कभी कभी बारिश देखने को मिल जाती है, लेकिन फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए इस समय यात्रा पर रोक है। जून के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, पर हेमकुंड साहिब में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं, अपने 7 दिनों की दवाइयाँ अपने साथ लाने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ साधना की थी। अपनी आत्मकथा दसम ग्रंथ में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। चमोली से कमलन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
3: कला सिर्फ मंचों और दीवारों पर ही नहीं दिखती, कभी कभी रोजमर्रा के काम में भी अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। अब इस शख्स को ही देखिए, जिस तरह से ये मछली पकड़ने का जाल हवा में उछालता है वो किसी कलाकार के प्रदर्शन से कम नहीं लगता। जाल घूमते हुए ऐसा लगता है मानो नदी में कोई विशाल फूल खिल गया हो। सालों की मेहनत और अभ्यास इस एक पल में साफ दिखाई दे रहा है। इसकी शानदार तकनीक देख कर लोग दंग रह जाते हैं। इंसानियत और दया की छोटी छोटी मिसालें दिल जीत लेती हैं। इस महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया। बड़े प्यार और धैर्य के साथ वो फलों को काटकर बंदरों को खिला रही है। आज तो बंदर भाइयों की मानो लॉटरी लग गई है। केले, तरबूज और खीरे का भरपूर आनंद जो मिल रहा है। महिला के चेहरे की मुस्कान और जानवरों के प्रति उसका स्नेह देखने लायक है। ये नज़ारा बताता है कि प्रेम की भाषा हर जीव समझता है और दया हमेशा खुशी बांटती है। हरियाणा की मिट्टी से पहलवान निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन नन्हे उस्तादों का जोश देखते ही बनता है। अभी ठीक से कदम जमाना सीखा ही था कि अखाड़े में कुश्ती की तैयारी शुरू हो गई। छोटे छोटे हाथ, बड़े बड़े हौसले और जीतने का जुनून हर दांव में दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात है मुकाबले के बाद उनके चेहरों पर खिली मासूम मुस्कान। इन्हें देखकर लगता है कि भविष्य के चैंपियन यहीं तैयार हो रहे हैं। इनकी मेहनत और उत्साह मन को खुशी से भर देती है। मुंबई के दादर स्थित मुथु डोसा कॉर्नर में डोसा बनाना और परोसना भी किसी

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले तस्वीर आपको उस एक्शन की दिखाएंगे जो रामचरण की आने वाली फिल्म मेडी के प्रमोशन के दौरान नजर आई है। इस दौरान कैसे रामचरण के पास आने की कोशिश एक फैन पर भारी पड़ गई, उसकी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, बात हम आमिर खान की आज करेंगे जो कि तीसरी बार शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। किरण राव से रिश्ता टूटने के बाद वो लंबे समय से गौरी स्प्रैट के साथ नजर आ रहे थे। अब खबर है कि आमिर 5 जुलाई को गौरी से शादी करने जा रहे हैं। इस खबर की भी आगे पूरी डिटेल देंगे।
3: नमस्कार, मैं हूँ गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस इंतजार की करेंगे जिसकी इम्तिहा हो गई है। आते आते मानसून अब तक केरल नहीं आया, तो कब तक राहत के बादलों के केरल पहुंचने की आहट सुनाई देगी और देश में कहां कहां नजर आ रहा है प्री मानसून का असर, ये सब बताएंगे आपको।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, एंटरटेनमेंट की बात होगी, मौसम की बात होगी और आज आपको एक ऐसे स्कूल भी लिए चलेंगे जो पुरानी पड़ी टंकी में बना हुआ है। कैसे यहाँ चलती है बच्चों की खास पाठशाला और कैसे पानी की पुरानी टंकी को स्कूल में बदलने का आया आइडिया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी। विधि विधान से की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार, रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में स्विमिंग पूल में तैराकी के साथ साथ

0: पारंपरिक मलखम, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाए अद्भुत करतब। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी से मुंबई में करेंगे शादी। सलमान, शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस तस्वीर की खबर। दरअसल तस्वीर आप लोगों ने शायद देखी होगी सोशल मीडिया पर, बहुत ही वायरल है, बॉडीगार्ड की तस्वीर है कि किस तरह से, दरअसल बॉडीगार्ड, एक्चुअल बॉडीगार्ड अगर वो होते हैं तो आपको किस तरह से कहीं से भी बचा लेते हैं, चाहे कोई क्यों ना आ जाए। तो दरअसल ये बात हो रही है फिल्म प्रमोशन की, खास तस्वीरों की। अगर हो सके तो पीसीआर साथ ही साथ अगर आप प्ले कर दे तो वो तस्वीर भी हम डिस्क्राइब कर दे। देखिए यहां पर क्या हुआ, एक अजीब वाक्या हो गया। हुआ ये कि साउथ सुपरस्टार रामचरण और जानवी अपनी फिल्म पेडी के प्रमोशन को लेकर विजयवाड़ा पहुंचे थे और इसी दौरान स्टेज पर अचानक रामचरण जैसा दिखने वाला एक फैन उनकी तरफ तेजी से आता, ये देखिए तेजी से आया और जानवी एकदम से उनको देख करके यहां डर गई। जिसके बाद रामचरण का जो बॉडीगार्ड है वो देखिए किस तरह से एकदम सुपर हीरो की तरह इन्हें उड़ाकर अपने साथ ले गया। ये देखिए आपको एक बार शगुप्ता, ये जब मैंने सोशल मीडिया में देखा, हमारे यहाँ स्टोरी आज ये चल रही है, लेकिन ये देखा तो मुझे एक बार के लिए तो ये लगा कि वाकई रामचरण आया और रामचरण को कोई क्यों उठा रहा है।
2: मुझे पहली तस्वीर में तो मैं भड़बड़ा सी गई देखकर, क्योंकि जानवी की चेहरा पूरी पीछे हो गई है ना, डर के मारे आप गिर भी सकते थे। आई थिंक कंट्रोल योर सेल्फ, आप फैंस है तो बिहेव लाइक फैंस, क्योंकि बॉडीगार्ड्स का काम ही यही होता है जो उन्होंने इस वक्त किया ना, इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट के साथ आपको परफॉर्म करना, उठा के वो ले गए। ये मैंने प्रभास के दौरान भी देखा है, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ इवन इफ अ सेलिब्रिटी है ना। क्या कहेंगी?
3: नहीं, मुझे लग रहा है कि वो बॉडीगार्ड हीरो साबित हुआ है।
2: हाँ,
3: है ना,
2: बॉडीगार्ड के लिए गाना गाना पड़ेगा यहाँ पे।
4: बॉडीगार्ड तो हीरो साबित हुआ है, मुझे इससे याद आ रहा है। हाँ। अभी रिसेंटली आशिकी 3 नहीं, मुझे लगता है जो रोमांटिक अनटाइटल्ड फिल्म है कार्तिक आर्यन की और श्रीलीला की, उस दौरान भी श्रीलीला के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो ये जो घटना है, मतलब डर लग जाता है देखकर, ये फैन मोमेंट में घबरा दे।
0: एग्जैक्टली, लेकिन ये फैन मोमेंट से डर गए थे भाई, दोनों ही डर गए थे। तो आपको हम बता दें कि ये जब सब कुछ नजर आया ना, एक फैन जैसे सामने से आया जिन्हें देखा एकदम जानवी डर गई, जो आपको तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन तभी रामचरण के जो बॉडीगार्ड थे एमएमए फाइटर केविन कुंटा ने तुरंत एक्शन हीरो के तौर पर एंट्री लिया। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ही,
2: बिल्कुल उड़ा के ले गए उनको साथ में कि आप बीच में मत आइए। अब देखिए बॉडीगार्ड का एक्शन ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। जब भीड़ से निकलकर रामचरण का एक फैन सिक्योरिटी को तोड़ते हुए स्टेज पर आया तो एक्टर रामचरण के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त इन्होंने पर्सनल बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने गजब की मुस्तैदी दिखाई, झट से उस फैन को बीच रास्ते में ही रोक लिया, उन्हें गोद में उठाकर स्टेज से बाहर कर दिया। देखिए
5: ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेडी फिल्म की प्रमोशन के बीच आखिर हुआ क्या था, और साउथ के सुपरस्टार रामचरण की ओर तेजी से बढ़ने वाला ये शख्स था कौन। इस सवाल के बीच चर्चा रामचरण के उस बॉडीगार्ड की भी हो रही है जिसकी फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया में इस घटना के बाद से अब इस बॉडीगार्ड की कुंडली भी खंगाली जा रही है। दरअसल रामचरण की आने वाली फिल्म पेडी के प्री रिलीज इवेंट के दौरान इसने सभी का ध्यान खींच लिया। विजयवाड़ा में हुए इस इवेंट में रामचरण का एक जबरा फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर अपने पसंदीदा स्टार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अचानक हुई इस घटना से जानवी कपूर भी कुछ पल के लिए घबरा सी गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन अगले ही पल मैदान में उतरे रामचरण के पर्सनल बॉडीगार्ड केविन कुंटा और उन्होंने फैन को तुरंत उठाया और एक्टर से दूर कर दिया। इस इवेंट के बाद से ही रामचरण के बॉडीगार्ड की चर्चा है। करीब 6 फीट से ज्यादा लंबे मजबूत कद काठी वाले केविन की फुर्ती ने उन्हें स्टार बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केविन की स्पीड और प्रोफेशनल अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है। कई यूजर्स उन्हें रियल लाइफ बॉडीगार्ड हीरो बता रहे हैं। दरअसल रामचरण के साथ साई की तरह नजर आने वाले केविन मूल रूप से गेम्बिया के रहने वाले हैं और फिलहाल इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं। उनकी दमदार पर्सनालिटी और फाइटिंग स्किल्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय बना दिया। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि केविन की कमाई करोड़ों में है। एक तरफ रामचरण की बॉडीगार्ड की कमाई सुर्खियों में है, तो वहीं रामचरण की फिल्म पेरी रिलीज से पहले ही गदर काट रही है। बॉक्स ऑफिस पर पेरी का माहौल सेट है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो पहले ही दिन फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। खास बात यह है कि तेलंगाना में बुकिंग शुरू होने से पहले ही आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु में फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है।
6: मेरा फेवरेट रनर पैदी सर।
7: यहाँ के लोगों के लिए पैदी मंदिर का भगवान नहीं, मैदान का भगवान है।
8: खेले हमारा घमंड।
5: रामचरण की इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के पेड प्रीमियर आज रात 8 बजे से होंगे। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 8 करोड़ 9 लाख की कमाई कर ली है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म धमाका कर रही है। फिल्म ने प्री सेल्स के साथ विदेशों में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि अभी झांकी है, फिल्म की रिलीज तो अभी बाकी है।
9: एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती,
10: तो मुजरा करें।
5: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आगे बढ़ते हैं रणवीर सिंह और डॉन 3 विवाद में। अब एक नया मोड़ आ गया है जिस मामले में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया था, उसे अब वापस ले लिया गया है। FWICE ने साफ किया है कि रणवीर सिंह को भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से देगा। साथ ही संगठन ने अभिनेता से बातचीत की अपील करते हुए कहा है कि दोनों पक्ष बैठकर इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें ताकि फिल्म इंडस्ट्री के हितों की रक्षा की जा सके।
4: बिल्कुल, ये जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। दरअसल विवाद की शुरुआत फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद से ही हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर फिल्म की शूटिंग शुरू होने के करीब 10 दिन पहले प्रोजेक्ट से अलग हो गए थे। दावा किया गया कि इस फैसले से निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। खबरों के अनुसार फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ रुपए की नुकसान की भरपाई की मांग की थी। जब ये मामला नहीं सुलझा तो इसकी शिकायत FWICE से की गई। शिकायत के आधार पर संगठन ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया था, जिसके तहत इंडस्ट्री से उनके साथ काम न करने की भी अपील की गई थी। देखिए, फिलहाल विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना ने मामले के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जरूर जगा दी।
2: अब देखिए, हालांकि FWICE ने यह साफ कर दिया है कि वो रणवीर सिंह को भेजे हुए लीगल नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से देगा। साथ ही संगठन ने अभिनेता से बातचीत की अपील करते हुए कहा कि दोनों पक्ष बैठकर इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले ताकि फिल्म इंडस्ट्री के हितों की रक्षा की जा सके। दरअसल विवाद की शुरुआत फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद हुई थी। रिपोर्ट्स के माने तो अभिनेता फिल्म की शूटिंग शुरू होने से करीब 10 दिन पहले प्रोजेक्ट से अलग हो गए थे। दावा यह किया गया कि इस फैसले से निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर को करोड़ों रुपयों का नुकसान। खबरों के माने तो फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की मांग की थी। जब यह मामला नहीं सुलझा तो इसकी शिकायत FWICE से कर दी गई।
0: चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की जिंदगी का नया चैप्टर खुलने जा रहा है। भाई हम सभी जानते हैं तीसरी शादी उनकी होने वाली है, तो पहले बधाई हो जाए भाई।
2: हाँ, गुप्ता बहुत बहुत बधाई, देख ली सोशल मीडिया पे न्यूज।
0: बिल्कुल,
2: तो हैप्पी फॉर गौरी एंड
0: एग्जैक्टली। तो भाई हम तो खुशी हैं ऑफकोर्स इस नए शुरुआत के लिए। गौरी को लेकर के बहुत लोग नहीं जानते थे गौरी को। हाँ। लेकिन आमिर खान के साथ जब देखा तो ऑफकोर्स लोगों ने रिसर्च किया, गूगल किया और जाना। पिछले एक साल से बताया जा रहा है कि लगभग ये लोग फैमिली की तरह साथ रह रहे थे और शादी के बंधन में बंधेंगे।
3: अगर आपको याद हो तो आमिर की बेटी की शादी पे भी वो आई थी।
0: हाँ, बिल्कुल।
3: हालांकि मैं बता रही, देखिए इसको लेकर ना अब चर्चे बड़े होंगे हर जगह पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आएंगी। आप लोगों का विचार क्या है?
4: मैं आपको
0: सलमान का विचार बता दूं। मैं पहले तो सलमान का विचार, जब सलमान से ये सवाल पूछा गया कि वो तीसरी बार शादी कर रहे हैं क्या कहेंगे, तो बल्कि वो अपने जीवन में परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो मे बी वो लाइफ में भी परफेक्शन चाह रहे हैं, तो परफेक्शन ढूंढते ढूंढते ये उनकी तीसरी शादी।
4: सलमान का तो ह्यूमरस हो गया काफी।
2: नहीं, मैं कह रही हूँ हो सकता है गौरी वुड बी द परफेक्ट पार्टनर।
0: हो सकता है,
4: एक और चीज है इसमें शगुफ्ता, मतलब ही हैज बीन वेरी ओपन अबाउट हिज रिलेशनशिप विद गौरी. उन्होंने शुरुआत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता दिया था कि इस बार वो गौरी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है किसी तरीके की. ये भी कहा था खैर अब शादी का फैसला उन्होंने कर लिया है और सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो डेट भी कर रहे थे गौरी स्प्रैट को. और जैसे आपने बताया जितने भी पर्सनल इवेंट्स थे, जैसे उनकी बेटी की शादी या फिर फिल्म का प्रीमियर, उस दौरान भी गौरी स्प्रैट अक्सर स्पॉट होती थी. और अब क्योंकि वो अपने नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम तो
3: चर्चाएं वैसे वहीं से शुरू हो गई थी. बता दें 5 जुलाई को शादी है और आमिर खान ने कहा है कि शादी समारोह एकदम सिंपल रहने वाला है.
4: देखिए शादी का प्रपोजल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर को हम सफर बनाने का प्रपोजल अगर इंटरेस्टिंग तरीके से दिया जाए तो वो पूरा पल ही काफी ज्यादा यादगार हो जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है. महाराष्ट्र के नासिक का ये वीडियो है जहाँ पे कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल की पासिंग आउट परेड हुई. ये परेड जैसी पूरी हुई तो इसी दौरान भारतीय सेना के कप्तान भरत भारद्वाज ने अपनी मंगेतर आरुषि को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. उन्होंने आरुषि के हाथ में अंगूठी पहनाकर और हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों पर बैठकर एकदम फिल्मी स्टाइल में उन्हें प्रपोज कर दिया. इस अचानक आए पल ने वहां मौजूद ऑफिसर्स, परिवार वालों और दोस्तों को सभी को हैरान कर दिया. और जैसे ही आरुषि ने सबके सामने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, पूरा इलाका तालियों की घड़घड़ाहट से गूंज उठा.
2: बिल्कुल, वैसे तो देखिए पूरी खबर यही है, लेकिन पायलट ट्रेनिंग पूरी होने और जीवन के सबसे बड़े पेशेवर सपने को पूरा करने के तुरंत बाद कैप्टन भरत भारद्वाज ने घुटने के बल बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को विल यू मैरी मी कहा, तो आरुषि के हामी भरते ही उन्होंने अंगूठी पहना दी. भरत ने इस यादगार पल के लिए उसी हेलीकॉप्टर को चुना जिससे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी. भरत के मुताबिक वो आरुषि को 5 साल से जानते हैं, इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे. वाकई में ये मोमेंट्स जो हैं वो आरुषि और भरत के लिए बेहद इमोशनल रहे होंगे और यही वजह भी रही कि प्रपोजल का ये तरीका, टाइमिंग ही इस वीडियो को इंटरनेट पर इतना इंटरेस्टिंग बना रहा है और वायरल भी.
10: देखिए आज हम सभी ने भी ऑफिसर, आज एवीएटीएस बने हैं, जो पायलट्स बने हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स बने हैं, जो आरपीए पायलट्स बने हैं, आरपीए इंस्ट्रक्टर्स बने हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन था. एक साल से जो हमारी मेहनत थी वो आज सफल हुई और आज हमें इनकोवेटेड विंग्स से नवाजा गया. और इस माहौल के दौरान मैं अपनी जो कि मेरी मंगेतर है, मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, एक दूसरे को हम जानते हैं और मुझे इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं लगा अपने इस आवेदन को इनको प्रस्तुत करने के लिए कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी. और साथ साथ में ये हम सबके, हमारे परिवार के लिए, मेरी मदर के लिए, मेरे नाना नानी जी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है. तो यही एक सोच थी कि जैसे मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, साथ क्यों ना मैं अपनी मंगेतर के लिए भी इस दिन को और भी बड़ा कर दूंगा. तो ये मेरा एक सोच था इस पूरे आइडिया के पीछे.
3: आगे बढ़ते हैं शतरंज की बिसात पर. एक बार फिर से भारत का परचम लहराया है. चेन्नई के 20 साल के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने वो कर दिखाया जो से दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी सालों से नहीं कर पाए हैं. नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में 8वें दौर में प्रज्ञानंद ने दुनिया के पूर्व नंबर एक और शतरंज के सबसे बड़े नामों में से एक मैग्नस कार्लसन को मात देकर इतिहास रच दिया. और खास बात यह रही कि इस बार भारतीय खिलाड़ी ने काले मोहरों से खेलते हुए कार्लसन को हराया है.
0: बिल्कुल, आपको बता दें दरअसल टूर्नामेंट के तीसरे दौर में भी प्रज्ञानंद ने कार्लसन को सफेद मोहरों से शिकस्त दी थी. यानी कि एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने शतरंज के इस महान खिलाड़ी को दूसरी बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 19 वर्षों के क्लासिकल शतरंज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी खिलाड़ी ने एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया हो.
11: साल का युवा प्रज्ञानंद शतरंज की दुनिया में तूफान ला रहा है. इस बार उन्होंने नॉर्वे चेस 2026 में दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में 2 बार मात दी. ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में नंबर 1 खिलाड़ी और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को मात दी. ये प्रज्ञानंद की इस टूर्नामेंट में कार्लसन के खिलाफ दूसरी जीत है. ये जीत इसलिए खास है क्योंकि कार्लसन अपने घर में लगभग अजय माने जाते थे, मगर इस बार 20 साल के भारतीय लड़के ने उनका विजय रथ रोक दिया. इस जीत के साथ प्रज्ञानंद भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराया। इससे पहले साल 2007 में विश्वनाथन आनंद ने लीना रेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कार्लसन को लगातार दो मुकाबलों में शिकस्त दी थी।
12: इससे पहले एक दशक हो गया लगभग, लेकिन प्रज्ञानंदा ने कभी मैग्नस कार्लसन को नहीं हराया। लेकिन एक टूर्नामेंट में दो बार हराना, ये मतलब सबसे कमाल का फीट है। अगर हम देखें तो 2007 में विश्वनाथन आनंद ने मैग्नस कार्लसन को दो बार हराया था लिनारस में। लेकिन 2007 मैग्नस का एक अलग युग था। ये जो युग है मैग्नस कार्लसन के लिए सबसे बढ़िया युग है, हर फॉर्मेट में सबसे अव्वल। लेकिन नॉर्वे चेस अपने ही घर में खेलते हुए गोट, जो कहते हैं चेस के जो गोट है मैग्नस कार्लसन, वो दो बार प्रज्ञानंदा से हार चुके हैं। और प्रज्ञानंदा ने यह साबित कर दिया कि हाँ, इतिहास रचाया जा सकता है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वो साबित कर चुके हैं कि हाँ, वो आखिरकार इंसान ही है। तो प्रज्ञानंदा के लिए बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि ये एक अव्वल फीट है।
11: ये जीत दर्शाती है कि भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी अब विश्व पटल पर राज करने को तैयार है। विश्वनाथन आनंद के बाद की पीढ़ी लगातार कमाल कर रही है। गुकेश 2024 में सबसे युवा विश्व चैंपियन बने थे, जबकि 2024 चेस ओलंपियाड में ओपन और महिला टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा साल 2025 में दिव्या देशमुख ने वेमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। इन्हीं सबकी बदौलत 2025 में भारत के चार खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल थे, जबकि इस साल 12 से ज्यादा भारतीय टॉप 100 में हैं। शतरंज में कामयाबी के जिस शिखर पर भारत है, वो एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों की तपस्या है। आज बच्चों को घर बैठे शतरंज की ट्रेनिंग मिल रही है। इसके अलावा देश के बड़े टूर्नामेंट होने से सीखने के कई मौके भी मिल रहे हैं। साथ ही स्कूल्स में शतरंज के खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भी अहम, युवा पीढ़ी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। शतरंज की दुनिया में भारत का लगातार बढ़ता कद याद दिलाता है कि सही वक्त और सही प्रयास जरूरी है, क्योंकि मेहनत और धैर्य किसी को भी बड़ा बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: और चलिए अब बात करते हैं फीफा विश्व कप 2026 में। कतर लगातार दूसरी बार खेलने जा रहा है। पिछली बार मेजबान होने के नाते कतर ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार टीम अपनी ताकत और नए चेहरों के दम पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। लेकिन भारत, खासकर केरल में इस टीम को लेकर चर्चा की वजह कुछ और है। कतर की 26 सदस्य विश्व कप टीम में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने मलयाली समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये नाम है 19 साल के तहसीन मोहम्मद जमशेद का, जिन्हें फीफा विश्व कप 2026 के लिए कतर की अंतिम टीम में जगह मिली है।
4: बिल्कुल, देखिए तहसीन स्क्वाड के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल है। 1 जून को कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने जब अपनी टीम की घोषणा की थी, तो कई बड़े नामों के बीच तहसीन का चयन सबसे सुखद सरप्राइज माना गया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि तहसीन ने ये जगह किसी सिफारिश या पहचान के दम पर नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन के दम पर हासिल की है। विश्व कप से पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कोचिंग स्टाफ ने कई युवा खिलाड़ियों का खेल देखा, और उन्हीं में से तहसीन ने अपने खेल से चयनकर्ताओं को काफी ज्यादा प्रभावित किया।
13: चलिए अब समझते हैं कि आखिर फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचना भारतीय मूल के तहसीन के लिए क्यों है खास। तो आपको बता दें कि फीफा विश्व कप में एक बार फिर भारतीय मूल का खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहा है। इससे पहले भी भारतीय जड़ों वाले खिलाड़ी विश्व कप में नजर आ चुके हैं, और अब तहसीन मोहम्मद जमशेद इस गौरवशाली सूची में अपना नाम जोड़ने वाले हैं। महज 19 वर्ष की उम्र में तहसीन मोहम्मद जमशेद को कतर की सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। इतनी कम उम्र में विश्व कप स्क्वाड का हिस्सा बनना उनकी प्रतिभा और मेहनत का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है।
2: चलिए अब बात उस खबर की जो लाखों लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी बन गई है। सुबह ऑफिस, शाम को बाइक टैक्सी, रात में पीएचडी की पढ़ाई करना, सुनने में शायद ना इम्पॉसिबल सा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अहमदाबाद के हैं दीपक पांडे, यही करते हैं, यही उनकी जिंदगी है। दिन भर नौकरी करते हैं, उसके बाद जहां ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं दीपक शाम को अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं।
13: नहीं, आप स्टोरी हमने शायद कल दिखाई थी, है ना?
3: नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि एक दिन में कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, कितने मल्टीपल रोल्स आप निभा सकते हैं।
2: डिपेंड, मेरे इस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि मेरे में कितनी जिम्मेदारी है और मैं किस एक्सटेंट तक जा सकती
3: हूँ। यानी आप ये मानती हैं अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं हो तो आप इतने रोल नहीं निभाएंगे?
2: नहीं,
3: नहीं तो इंसान रिलैक्सिंग हो जाता है।
2: सही,
3: आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?
13: देखिए वो वैसे ही होता है, जब हम कॉलेज डेज में थे तब तो ये था कि भाई आप जितनी पढ़ाई करा लो, पूरी रात बैठ के पढ़ लेते थे, लेकिन एक बार जब जॉब लग गई, आपको थोड़ी सी आराम की आदत पड़ गई, तो उसके बाद फिर ऐसा ही होता है कि फिर आप आराम करना थोड़ा पसंद करते हैं, थोड़ा काम किया फिर थोड़ा आराम। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है, और शायद दीपक भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, तो हम
3: जुड़ चुके हैं।
2: अच्छा, जुड़ चुके हैं,
13: दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये स्टोरी, जैसा कि शुरुआत में शगुफ्ता ने बताया, अहमदाबाद की ये स्टोरी है। कल हमने ये खबर थोड़ी बहुत दिखाई भी थी, लेकिन पूरी कहानी पहले आप दीपक की जान लीजिए, फिर आपको दीपक से हम मिलवाते हैं।
14: हाय हाय, मेरा नाम है ट्रिपी। लोग सोचते हैं कि बाइक टैक्सी सिर्फ मजबूरी में चलाई जाती है, मुझे खुद 4 साल लग गए ऑफिस के एसी के उस मीठे जहर को समझने में।
15: ज्यादातर लोग 9 to 5 की नौकरी के बाद थकान का बहाना बनाकर आराम करना चाहते हैं, लेकिन दीपक पांडे के लिए ऑफिस खत्म होने का मतलब दिन खत्म होना नहीं है।
14: वेलकम टू माई जर्नी, पैशन ओवर कम्फर्ट। मैंने चुना एक नया रास्ता अपने वर्ल्ड टूर के पैशन के लिए, और वो है ऑफिस के बाद बाइक टैक्सी चलाना।
15: ऑफिस से निकलने के बाद वो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बाइक टैक्सी चलाते हैं। इसके बाद अपने लिए खाना बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और साथ ही PhD की पढ़ाई भी करते हैं।
14: मीठे जहर को समझने में तब लगता था कि लाइफ कितनी सेट है ना, लोग बाहर धूप में मर रहे हैं और मैं AC में बैठकर काम कर रहा हूँ। पर तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि AC की ये ठंडी हवा मेरे अंदर के सपनों की आग को भी धीरे धीरे ठंडा कर रही है। समझ आते आते 4 साल निकल गए।
15: दीपक की जिंदगी की ये दिलचस्प कहानी अब वायरल है। दीपक बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगता था कि नौकरी के बाद उनमें किसी और काम की ऊर्जा नहीं बचती, वो खुद को सीमित समझते थे और अपनी जिंदगी से खुश भी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू किया। पहले PhD में दाखिला लिया, फिर बाइक टैक्सी चलानी शुरू की और बाद में कंटेंट क्रिएशन भी जोड़ लिया।
14: एक कारण काफी है और वो है मेरा सपना। आप भी महसूस करते होंगे ये तकलीफ, पर आप अकेले नहीं हैं और हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे।
16: 4 लोग क्या कहेंगे, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे कुछ नया करने के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, इस डर से मैंने कभी अपना पोटेंशियल पहचाना ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे, पहले मैंने PhD में एनरोल किया, उसके बाद मैंने बाइक टैक्सी चलाना शुरू किया, फिर कंटेंट बनाना शुरू किया, और आज मैं सारी चीजें लगभग मैनेज कर पा रहा हूँ। तो यार, आप लोग भी अपना अगर कोई पैशन है ना, स्टार्ट कर सकते हो। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम मिलता है बस उसको स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आएगा जैसे जैसे आप अपना पोटेंशियल पहचानोगे, और ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट।
15: दीपक की कहानी ये याद दिलाती है कि हमारी असली क्षमता अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की शुरुआत ही काफी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: तो इस वक्त दीपक अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं खुद ही आपसे जानना चाहूंगी, एक तो आपकी खबर सुन के ना बहुत लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, इतनी सारी चीज एक साथ। आप जॉब भी कर रहे हैं, आप PhD भी कर रहे हैं, आप कंटेंट भी बना रहे हैं, आप टैक्सी भी चला रहे हैं, मतलब 4-5 चीज एक साथ आप कर कैसे लेते हैं? ये सुपर ह्यूमन वाली चीज कहां से आपके अंदर आई, पहले तो ये बताइए।
17: थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं नेशनल टेलीविजन पर बात कर सकूं। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड।
13: अच्छा,
17: और उत्तराखंड के लोगों को मेहनत करना शुरू से आता है, वो अहमदाबाद में आके माहौल मिल गया तो वो काम बन गया है। स्टार्टिंग ये है कि UPSC की पढ़ाई की थी तो टाइम मैनेजमेंट वहां से सीखा था, जहाँ पर आप डेली 12-13 घंटा पढ़ ही लेते हो। तो बाद में लगा कि यार कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में, ढंग का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जॉब मिली, 2-4 साल आप खुश रहते हो कि यार पैसा आ रहा है, लाइफ ठीक चल रही है, और जब मान ही लिया अंदर से कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो अपने पैशन सपना फिर आप भूल ही जाते हो। बट स्लोली रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पैशन तो कुछ और है और जॉब छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अकेले अपना पैशन पूरा करने के लिए फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हो। तो सोचा कि एक ही रास्ता बचता है कि सेकेंड जॉब कर लो ना कोई। अब सेकेंड जॉब आप इजीली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के बाद आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑफिस का टाइम भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है, तो दूसरी जॉब में कर नहीं सकता था। तो बाइक चलाने का ही पैशन था, प्लान भी है कि मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करूं अपनी बाइक पर, तो सोचा बाइक टैक्सी ही चला लेता हूं। और फिर बाइक टैक्सी चलाना शुरू किया, पीएचडी मैंने इनरोल किया क्योंकि पढ़ने का शौक शुरू से रहा है, तो सोचा चलो पीएचडी भी कर लेते हैं। फिर बाइक टैक्सी चलाया, फिर कंटेंट बनाना शुरू किया और लोगों को पसंद आया तो मैं कंटेंट बनाता गया। और रही बात मैनेज करने की, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ कि अगर मुझे कोई बुक्स पढ़नी है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उसको ऑडियो मोड में सुनना प्रेफर करता हूँ, तो मैं वैसे अपना टाइम बचा लेता हूँ। या ऑफिस में कभी ब्रेक मिलता है तो मैं वहाँ अपने काम कर लेता हूँ, तो हो जाता है। बात है कि आपके अंदर कितना जुनून है।
2: दीपक, अगर आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का है, आई एम श्योर कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। एक चीज बताइए, पैशन की भी बात कर रहे हैं ना, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, कैसे निकालते हैं टाइम, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं? और गोल की आपने बात की, आपका गोल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या है इस पैशन को लीड करते हुए?
17: मेरा पैशन एक ही है कि मैं अपनी बाइक पर पहले पूरा इंडिया घूमूं, और इंडिया घूमना मतलब मैं अलग अलग स्टेट में टाइम स्पेंड करूं, वहां के कल्चर को समझूं, लोगों को समझूं। और मैं अलग अलग लोकेशन पर, मेरा शौक है कि मैं किताबें पढ़ूं, तो उसके बाद वर्ल्ड टूर मुझे करना है। तो पैशन सिर्फ ट्रैवलिंग का है, और मुझे लगता है कि मैं वो सबसे बेहतर कर सकता हूँ, बिना बोर हुए कर सकता हूँ।
0: क्या बात है, चलिए विश ऑल द बेस्ट।
17: कंटेंट बनाना इसलिए शुरू किया,
0: बिल्कुल
17: अर्निंग का एक सोर्स बन जाए।
0: क्या बात है, आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश रहें, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी चाहिए होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप जो भी करें बड़े अच्छे से करें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का।
17: थैंक यू सो मच।
0: रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर अब मॉनसून कब तक दस्तक देने वाला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
18: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
1: आज धूमधाम से मनाई जा रही संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान के साथ की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार, रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। अमरावती के हनुमान प्रसारक मंडल में स्विमिंग पूल में तैराकी के साथ साथ पारंपरिक मलखम, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाए अद्भुत करतब। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त होंगे इस शादी में शामिल।
3: और देश के ज्यादातर इलाकों में आपको बता दें इन दिनों प्री मॉनसून बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। बिहार यूपी समेत पूर्वोत्तर भारत में प्री मॉनसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मुझे लग रहा है कि हमारा वीकेंड तो काफी अच्छा ही गुजरा है। हाँ। फिलहाल अभी भले ही यहाँ पर थोड़ी गर्मी हल्की महसूस हो रही है, बट आई थिंक इट्स ओके
1: थैंक्स टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, इन्होंने इतना अच्छा माहौल कर दिया है कि मूड इतना रिफ्रेश हो जाता है इस बारिश के
4: इस वीकेंड भी। वैसे कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि मुंबई में प्री मानसून शायद शुरू हो गया, हालांकि केरल में अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है, जिसका इंतजार हो रहा है शायद कल केरल में मानसून दस्तक देगा, लेकिन मुंबई तक पहुंच गया है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि प्री मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में कब तक पहुंचेगा अगर अभी तक केरल ही नहीं पहुंचा?
5: सही बात है, दिल्ली में कब आएगा मैं तो ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। 45 डिग्री 47 डिग्री तापमान जो है वो पार हो गया है, लेकिन देखिए गुड न्यूज भी अब सामने आ गई है। और देखिए राहत की बात यह है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिलहाल मौसम खुशनुमा बना रहेगा। वहीं कल से मानसून के केरलम में एंट्री करने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद धीरे धीरे मानसून पूरे देश में फैल जाएगा। और देखिए माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा।
6: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, प्री मॉनसून बारिश आसमान से राहत लेकर आई है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं कम ज्यादा। मॉनसून से पहले आई इस बारिश ने न सिर्फ चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से छुटकारा दिलाया है, बल्कि मौसम को खुशगवार बना दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, तमिलनाडु, बेंगलुरु, आगरा, अलवर, देश के ज्यादातर इलाके प्री मॉनसून की बारिश से भीग उठे हैं। दिल्ली एनसीआर को अच्छी बारिश का भी इंतजार है, लेकिन मौसम फिलहाल यहां का भी कूल कूल बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहेगा।
7: आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही सकता है।
6: मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून कल यानी 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देश के सभी हिस्सों में दस्तक देगा। जून के दूसरे हफ्ते में 10 तारीख के करीब मानसून मुंबई और महाराष्ट्र में दस्तक देगा। 15 से 20 जून के बीच मॉनसून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच सामान्य से करीब एक हफ्ते की देरी से मॉनसून पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 जून से 30 जून के बीच मॉनसून पहुंच सकता है। 25 से 30 जून के बीच इसके दिल्ली NCR पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच मॉनसून पहुंच सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और शेष उत्तर भारत में 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। भले ही मुख्य मॉनसून उत्तर और मध्य भारत में जून के आखिरी हफ्तों में पहुंचेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस और प्री मॉनसून गतिविधियों की वजह से दिल्ली, यूपी, MP और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे भीषण गर्मी और लू से काफी राहत मिली है। राहत की बात यह भी है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में फिलहाल मौसम सुहाना बना रहेगा और प्री मॉनसून बारिश राहत की फुहारे बरसाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हैदराबाद में पानी की एक पुरानी टंकी शिक्षा की मिसाल बन गई और इस टंकी के नीचे की खाली जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील किया गया है।
8: बिल्कुल, देखिए बरसों पहले कुछ बच्चों को पढ़ाई में मदद के साथ शुरू की गई ये कोशिश अब सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार चुकी है।

0: पानी की ये पुरानी टंकी अब गरीब छात्रों का भविष्य संवारने की पाठशाला बन गई है। हैदराबाद के मियापुर में बेकार पड़ी पानी की टंकी के बेहतर इस्तेमाल करने का ये आइडिया पोथुकुची श्रीनिवास का है। बरसों पहले अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर श्रीनिवास ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। साल 2008 में छात्रों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने पानी की टंकी के नीचे की जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया। अब ये पानी की टंकी गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रतीक बन गई है।
1: एक मुआयना या दौरा कर लेते हैं इस वाटर टैंक का। दिखने में बाहर से मैंने जैसे आपको बताया कि एक वाटर टैंक था, लेकिन अंदर से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक स्कूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, चेयर्स दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, किताबें दिखेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर टैंक का एक सिस्टम या मशीनरी होती है जो कई सदियों तक यहाँ पर यहाँ के इलाके में पानी पहुँचाता रहा, वो भी यहाँ पर इस क्लासरूम में दिखाई देगा। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहेंगे।
2: ये सरकारी स्कूल को कौन जा रहा है बोले तो गरीब लोग जा रहे हैं, डेली काम करने वाला और दिन भर डेली काम करने वाला और ऑटो ड्राइवर्स का ये सफाई करने वाला ऐसा पेरेंट्स का बच्चे उधर जा रहे हैं। उनको 10 क्लास होने के बाद ये ड्रॉप हो रहे हैं और पढ़े तो इंटरमीडिएट पढ़ता है, गर्ल बच्चों जल्दी जल्दी शादी हो रहा है। इसलिए मैं सोच के ये क्या करना, ये बच्चों के लिए कुछ ना कोई एडुकेशन दिया तो अच्छा होता बोल के सोच के ऐसा ये काम शुरू किया।
3: 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक।
0: इस ट्यूशन सेंटर में छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 1500 छात्र इस पाठशाला का लाभ उठा चुके हैं। यहाँ से पढ़े कुछ छात्रों ने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली है। कुछ पूर्व छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में 20 लाख सालाना से ज्यादा के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
4: मेरा जो भी कपड़ों का नहीं तो और जो भी चीज रहते ना बोले तो बुक्स पिंस वो सब रहते हैं ना, वो सब पूरे ट्रस्ट में दिया था सर। और मेरा पॉल सेट एग्जाम लिख दिया था सर आफ्टर 10th। मेरे को जे वही टॉप मोस्ट कॉलेज आया था सर, उसमें से मेरा 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया, अभी मैं बीटेक पढ़ रहा हूँ सर।
0: कभी लोगों की प्यास बुझाने वाली ये पानी की टंकी अब शिक्षा के प्रसार की मिसाल बन गई है। इस पानी की टंकी के साए में कुछ बच्चों की मदद के साथ शुरू हुई ये कोशिश आज सैकड़ों छात्रों के सपनों को उड़ान दे रही है। हैदराबाद से अबुल बशीर, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, डॉग्स की सूंघने की शक्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इन दिनों बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी कर रही है। इस स्टार्टअप के जरिए दावा है कि कैंसर के शुरुआती फेज का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये तकनीक कैंसर की बेहद सस्ती, सटीक और पेनलेस जांच मुमकिन हो सकती है।
6: बिल्कुल, देखिए, इस कंपनी का दावा है कि पिछले 2 सालों में दूसरे फेज के टेस्ट के दौरान लगभग 1500 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें ये तकनीक 90% से ज्यादा सटीकता के साथ कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ने में कामयाब रही है। तो कैसे डॉग्स की मदद से ये तकनीक काम कर रही है, आइए चलिए जानते हैं।
7: क्या कैंसर की पहचान अब डॉग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर करेंगे? दरअसल बेंगलुरु की एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो इंसानी शरीर में बीमारी के संकेत पहले पकड़ सकती है। इस अनोखे मॉडल में ट्रेन्ड डॉग्स मरीजों के सैंपल्स को सूंघते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को AI सिस्टम रिकॉर्ड और एनालिसिस करता है। दावा है कि इससे कैंसर के शुरुआती संकेतों की पहचान तेजी से और कम लागत में की जा सकती है।
8: I have been working with Dognosis for the past year now, and it's a very interesting concept because it allows for early and easy and a very inexpensive way of detecting early cancers.
7: इस स्टार्टअप का दावा है कि डॉग्स इंसानी शरीर से निकलने वाले बेहद सूक्ष्म गंध संकेतों को पहचान सकते हैं, जो कई बार कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े होते हैं। डॉग्स के रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर एआई उस डेटा का विश्लेषण कर कैंसर के संभावित संकेतों की पहचान करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है कि डॉग्स को सूंघ कर कैंसर का पता आखिर कैसे चलता है? तो इस सवाल का जवाब साफ है, मरीज की सांस और पसीना और दूसरे सैंपल। खास तौर पर ट्रेन डॉग्स इन सैंपल्स को सूंघते हैं।
9: That mask has volatile organic compounds or VOCs, which essentially have a signal for whether someone has a disease or not. So this face mask comes to our lab where a team of dogs is evaluating that face mask for these VOC compounds. And they're able to pick it up with their sense of smell and then give us a signal that they're finding it with high accuracy.
7: स्टार्टअप का दावा है कि शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान मुमकिन हो सकती है और साथ ही स्क्रीनिंग भी अपेक्षाकृत कम लागत वाली हो सकती है। फिलहाल तो इंसानी शरीर में कैंसर की वक्त रहते पहचान करने वाली ये तकनीक अभी शुरुआती स्टेजेस में है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले एक बड़े दायरे में क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल वैलिडेशन और रेगुलेटरी परमिशन की जरूरत होगी। यही वजह है कि अभी इस तकनीक को पारंपरिक कैंसर जांच का विकल्प नहीं बल्कि एक संभावित सहायक स्क्रीनिंग टूल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आधी रात तिब्बत का आसमान क्यों हो गया सुर्ख लाल।
11: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
13: Schwarber to right field, and it will leave.
12: From the first pitch of the season to the stretch run,
13: that's the ball game.
12: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें और वीडियोस लगातार हमसे शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं.
19: तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है. बताया जाता है कि इस मंदिर में अयोध्या से जुड़ी धरोहरें हैं. तो चलिए आपको भी बिहार के इस 300 साल पुराने गौरवशाली वैभव के दर्शन कराते हैं.

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कर विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का ये दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
3: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Tune-in's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अब बात उस तस्वीर की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दरअसल ये तस्वीर तिब्बत से आई है, जहां आसमान पर लाल रंग की चमक ने सबको हैरान कर दिया। पूछा जा रहा है कि आखिर ये है क्या। दरअसल ये प्रकृति की एक बेहद दुर्लभ घटना है जिसे वैज्ञानिक रेड स्प्राइट्स कहते हैं। ये लाल चमक सामान्य बिजली की तरह बादलों और जमीन के बीच नहीं बल्कि धरती से 50 से 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में पैदा होती है। वीडियो में दिखाई दे रही लाल रोशनी की ये विशाल आकृतियां कभी जेलीफिश तो कभी पेड़ या अंतरिक्ष में फैलती शाखाओं जैसी नजर आती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब नीचे बादलों में बेहद शक्तिशाली बिजली गिरती है तो ऊपरी वायुमंडल में मजबूत विद्युत क्षेत्र बनता है। इससे नाइट्रोजन के एटम सक्रिय हो जाते हैं और लाल रंग की चमक पैदा करते हैं। इसी चमक को रेड स्प्राइट कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पायलट वर्षों से तूफानों के ऊपर ऐसी रहस्यमय चमक देखने की बात करते रहे थे, लेकिन इसका पहला फोटोग्राफिक सबूत 1989 में मिला था। अब आधुनिक हाई स्पीड कैमरों की मदद से इन दुर्लभ घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तिब्बत में कैद हुआ ये नजारा वैज्ञानिकों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी की जो किसी घटना की वजह से नहीं बल्कि जापान में एक भालू की वजह से लगानी पड़ी। जापान उत्तर पूर्वी इलाके में भालू ने ऐसा आतंक मचाया कि यहां पहले फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और फिर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। थक हार कर पुलिस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। दरअसल हुआ यह कि उत्तर पूर्वी जापान के शहरी इलाके में एक एशियाई काले भालू के लोगों पर
7: धावा बोलते हुए से देखा गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें भालू एक कर्मचारी का पीछा करते हुए उसे जमीन पर पटकता हुआ नजर आ रहा है।
8: बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भालू एंट्री गेट के पास एक कर्मचारी के पीछे दौड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद भालू फैक्ट्री की इमारत के अंदर घुस जाता है जबकि एक जीप उसका पीछा करती हुई नजर आती है। अधिकारियों का कहना है कि भालू अभी भी उसी फैक्ट्री परिसर में कहीं छिपा हो सकता है। इस बीच हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। सुरक्षा वजहों से आसपास के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं जबकि फैक्ट्री ने फौरी तौर पर अपना काम भी रोक दिया है।
7: साइबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 5 बजे चाय पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: आज धूमधाम से मनाई जा रही संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान के साथ की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार, रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, अगले 24 घंटे में केरलम तट से टकराएगा मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त होंगे इसमें शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की अनंत यात्रा की करेंगे। एक तरफ चारधाम यात्रा जोर शोर से जारी है, तो वहीं उसी उत्साह के साथ अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज 3 जून है और आज से ठीक एक महीने के बाद यानी 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ यात्रा धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का दृश्य, जहां देवादि देव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बस कुछ दिनों बाद श्रद्धालु कश्मीर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के साथ गुजार है। मंदिरों से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। हर दिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं तैयारी अमरनाथ यात्रा की।

0: बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदा अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही है। बाबा बर्फानी के दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब के साल फिर वो घड़िया पहुँची।
1: हर महादेव हर, बम बम भोले।
0: अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और यात्रा का समापन लगभग 2 महीने बाद श्रावण पूर्णिमा रक्षा बंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा।

0: यानी आज से ठीक एक महीने बाद बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्त कम है, लिहाजा करीब 58 दिनों तक होने वाली यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों के सुगम अनुभव और सुरक्षा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहां पर जो भवन है, जो हॉल्स है, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहां आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: बता दें कि यात्रा का श्री गणेश होने पर अमरनाथ की ओर यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहां श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1,500 से ज्यादा यात्रियों को रोका जाता है, इसलिए यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर हैं, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी हैं, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए, ये लंगर हॉल्स हैं, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो हैं अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब ही पार्किंग का इंतजाम है। इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
1: जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए, इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहां पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज्यादा स्थान यहां पर बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गाड़ियां यहां पर जो है पार्क हो सके।
0: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटे ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
2: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें सैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल रहता है, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो पहले की भांति हम लोग
0: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बेस कैंप के अलावा यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन ने भक्तों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा शिविर और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो इन तमाम तैयारियों के बीच में अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आया है। लगातार दूसरे साल अब की बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा से पहले गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। आसमान को नो फ्लाइंग जोन रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ड्रोन आज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। एजेंसीज को सुरक्षा से जुड़ा इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यात्रा और आसपास मौजूद सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश यहां ना बचे। इसके साथ ही विशेष एंटी ड्रोन स्क्वाड भी बनाए गए हैं और किसी भी ड्रोन गतिविधि को नाकाम करने के लिए उन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सीधे श्रीनगर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद।
4: लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, इसका फैसला सरकार ने किया है और एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद किया है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जो दोनों रूट हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ, चाहे गांदरबल से बालतल का रूट हो या पहलगाम से जो चंदनवाड़ी रूट है। पिछले साल भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था, पहलगाम अटैक जो बैसरन में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद अपग्रेड किया गया था अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी को। इस साल भी ड्रोन थ्रेट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों का माने तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जो भी आतंकी संगठन है उनके पास ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो प्लान कर सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने का, और इसमें यात्रा या सिक्योरिटी फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी टारगेट पे हो सकती हैं। और इस इनपुट के बाद ये फैसला जो है लिया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही में ईरान यूएस वॉर में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है खासकर ईरान ने, और कैसे अभी भी लेबनान में हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक नया थ्रेट इवॉल्व हुआ है ड्रोन की वजह से, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी, खासकर उन श्रद्धालुओं को, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या फिर किसी तरह से जो पैदल यात्रा या घोड़ों पर यात्रा नहीं कर सकते, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुरक्षा साफ तौर पे सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेके कोई भी जान सरकार नहीं लेना चाहती। तो एक फैसला जिससे यात्रा पे जो है जरूर असर पड़ेगा, यात्री के प्लान पे भी असर पड़ेगा। और तभी सरकार ने कहा है जो भी यात्रा करना चाहते हैं, जो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हैं, उसी के मुताबिक अपना जो है सफर प्लान करें। और पोनीज या फिर जो कंधा गाड़ी होती है या फिर पैदल जो है यात्रा प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगी। कैंपसन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
3: कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां कोई और भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंच गए।

0: हर साल अमरनाथ की वादियों के बीच इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं बाबा बर्फन। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की, तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्तू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था।

शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था।

0: महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे पंचतरणी है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बालताल का है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालताल पहुंचना होता है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालताल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात चारधाम यात्रा की। गर्मी की छुट्टियों के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों में भी बना हुआ है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जनसैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान गढ़ रही है। चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा क्योंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहाँ ये नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे, ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमलनंदन सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनंत आस्था की यात्रा की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो GNT देखते रहिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: सूर्या हत्याकांड के आरोपी का कैमरे पर कबूलनामा। मर्डर के बाद आरोपी असद ने लाइव वीडियो पोस्ट किया। काव्या मारन ने वैभव को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की। कलयुग की श्रवण कुमार बहू। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: अच्छी और सच्ची खबरों का
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: बुध का कौन सा शुभ योग आपको अत्यंत बुद्धिमान बना देता है? बुध का कौन सा शुभ योग आपको जीवन में उच्च पद तक पहुंचा देता है? कौन से हैं बुध के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
4: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
5: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: life is like a song,
6: and new discoveries.
7: That's so much more than a history. Wake up.
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही बापा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक मंदिर में बापा का भव्य श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख के पार, रोजाना 15,000 से अधिक भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, अगले 24 घंटे में केरलम तट से टकराएगा मॉनसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पुरुषोत्तम मास विभवन संकष्टी चतुर्थी का पर्व की रौनक, विधि विधान से मनाए गए धार्मिक उत्सव। सिद्धिविनायक मंदिर में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बप्पा को दूर्वा, गुड़ और तिल के लड्डू की अर्पित, हुआ गणपति बप्पा का विशेष अभिषेक। त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर विशेष आरती का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त जुटे। बापा के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़, 3 साल में एक बार आती है विशेष तिथि। पवित्र पर्व पर बापा का किया गया भव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सबसे अधिक भक्त, आंकड़ा पहुंचा 10.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 8.5 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 43,000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, आज से ठीक 1 महीने बाद 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, 28 अगस्त को होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में की जा रही तैयारियां, अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर के यात्री निवास में की जा रही साफ सफाई और रंग रोगन। अमरनाथ यात्रा को लेकर कल प्रशासन पुलिस के अफसरों ने जम्मू के भगवती नगर में की बैठक, सुरक्षा समेत यात्रा जुड़े तमाम इंतजामों पर चर्चा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 670 कंपनियों की होगी तैनाती, गृह मंत्रालय का फैसला, कंपनियां J&K पहुंचना शुरू। जम्मू कश्मीर के लखनपुर एंट्री पॉइंट से लेकर श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर तक होगी केंद्रीय बलों की तैनाती, पठानकोट जम्मू हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू में यात्री निवास भवन और अन्य जगहों पर केंद्रीय बलों की होगी तैनाती। कठुआ में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए लखनपुर में डोगरा कला संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली 3D चित्र का अनावरण। लखनपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने इलाके का किया दौरा, यात्रा की सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में मोबाइल और बैग नहीं ले सकेंगे श्रद्धालु, श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में मोबाइल और सामान ले जाने पर लगी रोक। श्रावणी मेले के दौरान साधारण शुल्क देकर नवनिर्मित क्लार्क रूम में अपने सामान रख सकेंगे श्रद्धालु, सामान रखने के लिए मंदिर में मनाए जा रहे हैं अमानत घर। देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर बोर्ड संभालेगा क्लार्क रूम के संचालन और देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा, अतिरिक्त स्टाफ और पुलिस की भी होगी तैनाती। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर को रिकॉर्ड चढ़ावा, दान में मिले करीब 30 लाख रुपए, डॉलर और नेपाली रुपए भी शामिल। मंदिर में 26,94,813 रुपए, 865 नेपाली नोट और 2 डॉलर का दान। कड़ी सुरक्षा में हुई नोटों की गिनती। तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दरबार में पहुंची रिंकू राजगुरु, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने की वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। पुलिस असिस्टेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आरसीबी की जीत पर रेत से बनाई कलाकृति, विराट को दी जीत की बधाई। कांचीपुरम के वरदराजन पेरुमल मंदिर में वैकाशी महोत्सव कार उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कांचीपुरम में भगवान वरदराज पेरुमल और उनकी पत्नी ने निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाया जयकारे। वैकाशी ब्रह्मोत्सव के दौरान मंदिर में वेदों का पाठ, भजन और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकाशी ब्रह्मोत्सव पर जुलूस की तैयारियां तेज, जुलूस के लिए रथ तैयार। तमिलनाडु के मंत्री एस रमेश ने पेरुमल मंदिर का लिया जायजा, जुलूस को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। अमरावती में दिखा मलखंब का अनोखा रोमांच, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत करतब। छात्रों की तैराकी के दौरान प्रस्तुत किए गए मलखंब के पारंपरिक कौशल बने आकर्षण का केंद्र, हाथों में जलती मशाल लेकर पानी के भीतर और सतह पर बनाया संतुलन, दिखाई करतब। मलखंब के अलावा लाठी काठी, मार्शल आर्ट्स और अन्य पारंपरिक खेलों की भी देखने को मिली झलक। लगभग 550 तैराकों ने सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, वाटर पोलो, वाटर मलखंब और अन्य जल क्रीड़ाओं के माध्यम से दिखाई प्रतिभा। पिछले साल कई सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है शानदार मलखंब शिविर, युवाओं और बच्चों में मैदानी खेलों के प्रति रुचि विकसित करना है मकसद। पैतृक गांव समस्तीपुर पहुंचे वंशी हुआ शानदार स्वागत, बिहार विधानसभा के मुख्य पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन बहव के ने किया सम्मानित। देश भर में मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना उद्देश्य। लखनऊ में भी मनाया जा रहा वर्ल्ड साइकिल डे, बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। राजकोट में वर्ल्ड साइकिल डे पर लोगों ने चलाई साइकिल, सेहत और पर्यावरण का दिया संदेश। श्रीनगर में विश्व साइकिल दिवस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बठिंडा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स बठिंडा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, छात्रों को किया सम्मानित। बीसीसीआई ने इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया, इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी भारतीय टीम। 22 अक्टूबर से होगी सीरीज की शुरुआत, जबकि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल, 9वें चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कॉल्स को हराया। कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास, फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब मेंसिक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे, चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में बनाई जगह। डॉन 3 विवाद में रणवीर सिंह को मिली राहत, एक्टर पर से हटा बैन, तमाम सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद फाइस ने लिया यू टर्न। मणिपुरी फिल्म बूंग ने दुनिया भर में भारत का नाम किया रोशन, न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्री टीजर जारी, महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के चर्चित उपन्यास पाथेर दाबी की शताब्दी को समर्पित है फिल्म। आमिर खान की लगान फिर मचाएगी धमाल, 25 साल बाद 12 जून को बड़े पर्दे पर दोबारा होगी रिलीज, खास ट्रेलर जारी। आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से करेंगे शादी, सिर्फ करीबी लोग होंगे शामिल। देश के कई इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का मौसम, बांदीपुरा में बर्फबारी से खुश हुए सैलानी, कैमरों में कैद किए नजारे। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे लोग। अब तक मई महीने में करीब 70,000 वाहन कुल्लू पहुंचे, कारोबारियों के भी खिले चेहरे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। यूपी के कुशीनगर में पढ़ने वाले फाजिल नगर का बदले का नाम, सीएम योगी ने नाम बदलकर पावागढ़ रखने का किया ऐलान, भगवान महावीर से जुड़ी है जगह। अगरतला में क्रिकेट किट वितरण समारोह का आयोजन, सीएम माणिक साह ने खिलाड़ियों को बांटे किट। तिरुवनंतपुरम में सीएम वीडी सतीशन ने केरल पुलिस के नशा विरोधी अभियान ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट का किया उद्घाटन, कहा युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकसित चिलुआ ताल पर्यटन विकास और सुंदरीकरण परियोजना का किया लोकार्पण। भुवनेश्वर में गोवा और तेलंगाना के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हुए शामिल। अहमदाबाद में पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने मिशन फिट खाकी अभियान का किया निरीक्षण, जवानों को फिट रहने के लिए टिप्स। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में प्रस्ताव पारित किया, गवर्नर से की गई 15 अगस्त और 26 को न्यूयॉर्क में इंडिया इंडिपेंडेंस डे घोषित करने की अपील। सीनेट में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और महात्मा गांधी की विरासत को सराहा गया, सांसदों ने भारत की समृद्ध सभ्यता और वैश्विक लोकतांत्रिक योगदान का किया उल्लेख। भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को न्यूयॉर्क सीनेट ने दी विशेष मान्यता, कानून निर्माताओं ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में निभा रहे हैं अहम भूमिका। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का किया निरीक्षण, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात, बच्चों को बांटी चॉकलेट। उत्तर भारत में जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, केरल में कल मानसून आने की संभावना। केरल के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु के कई जिलों में भी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट, तेज हवाएं भी चलने की संभावना। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ेगा तापमान, अगले कुछ दिनों तक तीव्र लू चलने की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश के आसार, प्रशासन ने लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की। कर्नाटक के कई जिलों में झमाझम बारिश, 11 जून तक बारिश का येलो अलर्ट। बेंगलुरु में भी जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोड़ा में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, रास्तों पर थमी वाहनों की रफ्तार। मुंबई के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में भारी बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, आवागमन हुआ बाधित। फिर लौट रहा ही मैन का जादू, 5 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। Spaceships and magic swords that can make a man as mighty as a god. फिल्म में ही-मैन की भूमिका में नजर आएंगे निकोलस गैलेडजीन, बड़े पर्दे पर नजर आएगा इस भव्य लाइव एक्शन। Where I come from, that stuff is real. करीब 1900 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी है फिल्म में VFX एक्शन सीक्वेंस और विशाल सेट्स पर हुआ है भारी खर्च।
3: I know it sounds crazy.
2: 1980 के दशक के साइकॉन को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ किया जा रहा पेश फिल्म में इड्रिस अल्बा जेरेड लेटो स्केलेटर और कैमरी मैंडेस टीला जैसे कलाकार भी मौजूद हैं। के दशक की शुरुआत में एक मेटल एक्शन फिगर के तौर पर हुई थी ही मैन की शुरुआत बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ था ये एक्शन हीरो। शंघाई में आयोजित की गई आधुनिक फायर फाइटिंग ड्रिल इसके तहत स्मार्ट फायर फाइटिंग तकनीकों की सीरीज की गई प्रदर्शित। इस ड्रिल में रोबोट्स भी हुए शामिल। इसमें बाढ़ के मौसम की आपात स्थितियों और आग लगने के जोखिम वाले खतरों को ध्यान में रखकर किया गया अभ्यास। बाढ़ की स्थिति में ड्रोन से पानी में उतारी गई बोट्स सड़कों पर भरे पानी में रेस्क्यू अभ्यास की हुई सफल प्रैक्टिस। पूरे शहर से 150 से अधिक फायर फाइटर ने लिया हिस्सा। ऊंची इमारतों में आग बुझाने की तकनीकों का किया गया परीक्षण। ऊंची इमारतों के मॉडल तैयार करके ड्रिल को दिया गया अंजाम। खास तौर से हाई राइज बिल्डिंग्स में आग बुझाने की ड्रिल दी गई। दुबई में तेजी से लोकप्रिय हो रहा अंडर वाटर हॉकी इस खास खेल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे हैं खिलाड़ी। स्विमिंग पूल में मास्क स्नो कल और फिंस पहने खिलाड़ी छोटी छोटी स्टिक्स के पक को धकेलते नजर आए। हर कुछ सेकंड में हवा लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं प्लेयर्स। तैराकी सांस रोकने की क्षमता और टीम वर्क का मेल ही एक खास खेल दुबई के यूथ्स में खेला लोकप्रिय खासा लोकप्रिय। अगस्त 2027 में इंडोनेशिया में होने वाले सीएमएस एशियन चैंपियनशिप अंडरवाटर हॉकी प्रतियोगिता में टीम भेजने की तैयारी में दुबई। देश के दो प्रमुख क्लब नियमित रूप से दे रहे हैं ट्रेनिंग। के दशक में हुई थी ब्रिटेन में हुई थी अंडर वाटर हॉकी की शुरुआत। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बनकर कई देशों में खेला जाता है अनोखा खेल। ताइवे में ड्रोन शो का जलवा आसमान में शानदार ड्रोन लाइट शो ने लोगों को किया आकर्षित। ड्रोन ने रोबोट कार पृथ्वी जैसी आकृतियां बनाई आधुनिक तकनीक का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों दर्शकों ने आसमान में बनती आकृतियों का आनंद लिया। ये आयोजन एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में शामिल। इस साल कंप्यूटेक्स में 6000 से अधिक प्रदर्शकों ने लिया हिस्सा। AI कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स सेक्टर की कंपनियां प्रमुख आकर्षण
4: बनी।
2: कंप्यूटेक्स में अगली पीढ़ी की तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI और रोबोटिक्स भविष्य को नई दिशा देंगे। तेज हवाओं और बारिश से पॉन्ट नेफ पुल पर लगे विशाल प्रिंटेड कैनवास के पहुंचा नुकसान। फिलहाल टाल दी गई प्रदर्शनी की शुरुआत। पेरिस के ऐतिहासिक पॉन्ट नेफ पुल को ढकने वाला प्रिंटेड कपड़ा तेज झोंकों में उखड़ा। सुरक्षा जांच के बाद नई तारीख घोषित हुई। फ्रांसीसी कलाकार जुआर की प्रदर्शनी अब तय समय पर नहीं खुलेगी। खराब मौसम ने तैयारियों पर असर डाला। ऐतिहासिक पॉन्ड नेफ पर बनाई गई अनोखी कला को तेज बारिश और हवाओं से नुकसान पहुंचा। आयोजकों ने उद्घाटन टालने का लिया फैसला। विशेषज्ञ करेंगे विशाल कला इंस्टॉलेशन में हुए नुकसान की समीक्षा। इसके बाद प्रदर्शनी के उद्घाटन की नई तारीख घोषित की जाएगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सूर्या हत्याकांड के आरोपी का कैमरे पर कबूलनामा। मर्डर के बाद आरोपी असद ने लाइव वीडियो पोस्ट किया। काव्या मारन ने वैभव को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की। कलयुग की श्रवण कुमार बहू। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ, लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा, चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर के सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। डॉग्स की सूंघने की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल का इन दिनों बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी कर रही है। इस स्टार्टअप के जरिए दावा है कि कैंसर के शुरुआती फेज का पता लगाने मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये तकनीक कैंसर की बेहद सस्ती, सटीक और पेनलेस जांच मुमकिन हो सकती है। तो कैसे डॉग्स की मदद से ये तकनीक काम कर रही है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
3: क्या कैंसर की पहचान अब डॉग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर करेंगे? दरअसल बेंगलुरु की एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो इंसानी शरीर में बीमारी के संकेत पहले पकड़ सकती है। इस अनोखे मॉडल में ट्रेन्ड डॉग्स मरीजों के सैंपल्स को सूंघते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को AI सिस्टम रिकॉर्ड और एनालिसिस करता है। दावा है कि इससे कैंसर के शुरुआती संकेतों की पहचान तेजी से और कम लागत में की जा सकती है।
4: I have been working with Dognosis for the past year now, and it's a very interesting concept because it allows for early and easy and a very inexpensive way of detecting early cancers.
3: इस स्टार्टअप का दावा है कि डॉग्स इंसानी शरीर से निकलने वाले बेहद सूक्ष्म गंध संकेतों को पहचान सकते हैं, जो कई बार कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े होते हैं। डॉग्स के रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर AI उस डेटा का विश्लेषण कर कैंसर के संभावित संकेतों की पहचान करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है कि डॉग्स को सूंघ कर कैंसर का पता आखिर कैसे चलता है? तो इस सवाल का जवाब साफ है, मरीज की सांस और पसीना और दूसरे सैंपल। खास तौर पर ट्रेन डॉग्स इन सैंपल्स को सूंघते हैं।
5: That mask has volatile organic compounds or VOCs, which essentially have a signal for whether someone has a disease or not. So this face mask comes to our lab where a team of dogs is evaluating that face mask for these VOC compounds. And they're able to pick it up with their sense of smell and then give us a signal that they're finding it with high accuracy.
3: स्टार्टअप का दावा है कि शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान मुमकिन हो सकती है और साथ ही स्क्रीनिंग भी अपेक्षाकृत कम लागत वाली हो सकती है। फिलहाल तो इंसानी शरीर में कैंसर की वक्त रहते पहचान करने वाली ये तकनीक अभी शुरुआती स्टेजेस में है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले एक बड़े दायरे में क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल वैलिडेशन और रेगुलेटरी परमिशन की जरूरत होगी। यही वजह है कि अभी इस तकनीक को पारंपरिक कैंसर जांच का विकल्प नहीं बल्कि एक संभावित सहायक स्क्रीनिंग टूल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की जिंदगी का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। खबर है कि आमिर खान बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से शादी के बंधन बंधने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां बॉलीवुड सितारों की शादियां अक्सर करोड़ों रुपए के भव्य समारोह और लंबी गेस्ट लिस्ट के साथ होती है, वहीं आमिर खान ने अपने अंदाज में के मुताबिक इस खास मौके को भी बेहद सादा रखने का फैसला किया है। चर्चा है कि आमिर गौरी 5 जुलाई को शादी करेंगे। इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल होंगे, ना कोई शाही वेन्यू ना ही कोई सितारों की लंबी बारात होगी। बताया जा रहा है कि शादी का पूरा कार्यक्रम बेहद निजी और सादगी भरा होगा। आमिर और गौरी करीब 1 साल से एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: गणपति हरेंगे सारे विघ्न, गणपति बप्पा की जय जयकार। जल्द आ रहा है मॉनसून, दिल्ली में परिंदों के लिए बड़ी पहल, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
8: बुध का कौन सा शुभ योग आपको अत्यंत बुद्धिमान बना देता है? बुध का कौन सा शुभ

0: कौन से हैं बुध के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: आज धूमधाम से मनाई जा रही है संकष्टी चतुर्थी, विधि विधान से की जा रही बप्पा की पूजा अर्चना, सिद्धि विनायक में बप्पा का भव्य श्रृंगार। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार, रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, अगले 24 घंटे में केरलम तट से टकराएगा मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रात से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है, इस मौके पर गणेश मंदिरों में भारी भीड़ होती है, लोग बड़ी संख्या में बप्पा का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है संकष्टी चतुर्थी पर विघ्न दूर करेंगे गणपति। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आज संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस बार ये व्रत पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। इस मौके पर मुंबई के प्रभादेवी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में भगवान गणेश का भव्य श्रृंगार किया गया और उनकी विशेष आरती की गई। मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन और मुंबई पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की गई। गर्मी को देखते हुए मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं, यहाँ कूलर, एसी और पानी का खास तौर पर प्रबंध किया गया है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु घंटों कतारों में लगकर भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं।
5: आपको बताएं, मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से और देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर गणपति बप्पा का दर्शन करने आते हैं। सिद्धि विनायक एक ऐसा मंदिर है जहां पर आम खास हर कोई पहुंचता है, अपने सपने लेकर, अपनी मिन्नतें लेकर लोग यहां पहुंचते हैं। जो कोई भी अपना काम नया शुरू करना चाहता है वो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद ही अपना काम शुरू कर लेता है। और जिस तरीके से आज पुरुषोत्तम मास संकष्टी चतुर्थी है, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी मंदिर में देखने को मिल रही है। कहते हैं आज के दिन गणपति बप्पा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जो कुछ भी उनसे मांगा जाए वो पूरी तरह से उन्हें मिल जाता है।
4: और अगले महीने 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई हैं। यहां यात्रियों के स्वागत के लिए यात्री भवन का रंग रोगन करने उसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारियां तेज। आज से ठीक 1 महीने के बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगने जा रहा है। ऐसे में यहां पर यात्रियों का स्वागत करने के

0: जय बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ एक बार फिर सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर कश्मीर के खूबसूरत वादियों में भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा आरंभ होगी। ठीक एक महीने बाद यानी 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुभारंभ होने जा रहा है।
1: अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है।
0: समय कम है, ऐसे में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में है। पूरे भवन को संवारा जा रहा है, रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
1: बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहां पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है।
0: क्योंकि यात्रा शुभ होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटने लगते हैं, ऐसे में यहाँ यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी यात्री निवास से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था है पूर्ण तरीके से चल रही है। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। हर हरकत पर CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है और साथ में डॉग स्क्वाड भी तैनात की गई है।
3: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें सैनिक बल, सेना, सभी का रोल होता है।
0: इस बार अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत करने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया और संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। जैसे ही देश के कोने कोने से शिव भक्त जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: जो म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शोकेसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली।
0: हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल तैयारियां तेज है और इंतजार 2 जुलाई का है। अब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लोहाड़ी पंचायत ने देश की स्वच्छता लिस्ट में 3रा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। लोहाड़ी पंचायत ने केंद्र सरकार की क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में स्थान हासिल करके देश भर में आदर्श ग्राम पंचायत बनने का गौरव हासिल किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 3री गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है क्लीन एंड ग्रीन बनी लोहाड़ी पंचायत को इनाम। लोहाड़ी पंचायत को तीसरा स्थान हासिल करने पर 25 लाख रुपए का इनाम मिला है। पूरे ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे का निष्पादन, शौचालय निर्माण और हरियाली को लेकर किए विशेष प्रयास किए गए हैं।

0: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के एक छोटे पंचायत लोहारडी ने देश की स्वच्छता सूची में तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के समग्र विकास के लिए 9 बिंदु चिन्हित किए थे। इन्हीं में से एक था क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बलह विकास खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लोहारडी ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि लोहारडी बिल्कुल नई पंचायत है। साल 2020 में साथ लगती हल्यातर पंचायत को तोड़कर लोहारडी पंचायत का निर्माण किया गया है। अपने बनने के 6 साल के अंदर ही लोहारडी के लोगों ने इस उपलब्धि को हासिल करके देश की दूसरी पंचायतों के लिए नजीर पेश की है। पंचायत को कचरा मुक्त बनाने के लिए यहाँ कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो घर घर जाकर इसे एकत्रित करता है।
1: हमारे पंचायत में लगभग 1500 के करीब आबादी है और इस पंचायत में 5 वार्ड हैं। पंचायत ने एक बीड़ा उठाया था प्लास्टिक के एकत्रीकरण के लिए, जिसके लिए पंचायत के माध्यम से एक व्यक्ति भी डिप्यूट किया गया है। आज मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत लोहारडी में हर घर से जो है वो प्लास्टिक के एकत्रीकरण हम कर रहे हैं। सड़क किनारे पौधारोपण करवाया गया, प्लास्टिक के एकत्रीकरण करवाया गया, स्वच्छता से जुड़ी हुई जागरूकता अभियान चलाए गए।
0: पंचायत के हरा भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया, लोगों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया और सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा दी गई, स्वच्छ जल, स्वच्छ ईंधन और शौचालय निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया। इस कार्य में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और खंड विकास कार्यालय से पंचायत को पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, जिस कारण आज ये पंचायत क्लीन एंड ग्रीन बन सकी है।
2: पंचायत जो फर्स्ट टाइम ये पंचायत बनी थी, अलग हुई थी लतर पंचायत से लोहारडी पंचायत, तो यहाँ पे जो पंचायत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जो है वो हर घर में घर से एक प्लास्टिक चुनने वाला व्यक्ति रखा था, जो प्लास्टिक हर गांव से चुनता था और एक जगह पे इकट्ठा करके रख उसको ये डिस्पोज ऑफ करते थे।
0: स्वच्छता और हरियाली की अलख जगाने में लोहारडी पंचायत को महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिला। पंचायत में धार, लोहारडी और बनौन नाम से 3 महिला मंडल हैं। इन मंडलों की महिलाओं ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
3: महिला मंडलों ने साफ सफाई और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया और पौधारोपण भी किया और पंचायत के बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी तो हम 3रे नंबर पर आए हैं हमारी पंचायत। हम चाहते हैं कि हमारे काम आगे भी ऐसे होते रहे और हम पहले नंबर पर आए।
0: पहले लोहारडी पंचायत को ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर पहला पुरस्कार हासिल हुआ। उसके बाद इसका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का पुरस्कार पंचायत को मिलेगा। पुरस्कार के रूप में मिलने वाली इस धनराशि को यहाँ के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
4: इस तीसरे स्थान पर चयन होने के लिए इस पंचायत को जो भारत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की इनाम की राशि दी जाएगी, जो कि जिला मंडी व हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव का क्षण है। और मैं इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत के सभी लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ तथा अपनी तरफ से एक संदेश देता हूं कि सभी इस पंचायत का अनुसरण करें व अपनी पंचायत को स्वच्छ व पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दें।
0: ग्राम पंचायत लोहारडी क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में देश भर के लिए आदर्श बनी है। आज पंचायत के लोग अपने क्षेत्र को देश भर में मिली इस पहचान से खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में पंचायत को और अधिक ऊंचे मुकाम पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। धर्मवीर, मंडी, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे।
5: हैदराबाद में पानी की एक पुरानी टंकी बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहा है। इस टंकी के नीचे की खाली जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इस ट्यूशन सेंटर में बच्चों की कक्षाएं आयोजित की जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है सपनों की उड़ान को पंख देती पानी की टंकी। आपको बता दें, बच्चों को पढ़ाई में मदद के साथ शुरू की गई कोशिश अब सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार चुकी है। ये पानी की टंकी 3 मंजिलों में फैली हुई है। पहली 2 मंजिलों में कमरे हैं जहां बच्चों की कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

0: पानी की ये पुरानी टंकी अब गरीब छात्रों का भविष्य संवारने की पाठशाला बन गई है। हैदराबाद के मियापुर में बेकार पड़ी पानी की टंकी के बेहतर इस्तेमाल करने का ये आइडिया पोथुकुची श्रीनिवास का है। वर्षों पहले अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर श्रीनिवास ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। साल 2008 में छात्रों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने पानी की टंकी के नीचे की जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया। अब ये पानी की टंकी गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रतीक बन गई है।
1: एक मुआयना या दौरा कर लेते हैं इस वाटर टैंक का। दिखने में बाहर से मैंने जैसे आपको बताया कि एक वाटर टैंक था, लेकिन अंदर से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक स्कूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, चेयर्स दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, किताबें दिखेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर टैंक का एक सिस्टम या मशीनरी होती है जो कई सदियों तक यहाँ पर यहाँ के इलाके में पानी पहुँचाता रहा, वो भी यहाँ पर इस क्लासरूम में दिखाई देगा। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहेंगे।
2: ये सरकारी स्कूल को कौन जा रहा है बोले तो गरीब लोग जा रहे हैं, डेली काम करने वाला और दिन भर डेली काम करने वाला और ऑटो ड्राइवर्स का ये सफाई करने वाला ऐसा पेरेंट्स का बच्चे उधर जा रहे हैं। उनको 10 क्लास होने के बाद ये ड्रॉप हो रहे हैं और पढ़े तो इंटरमीडिएट पढ़ता है, गर्ल बच्चों जल्दी जल्दी शादी हो रहा है। इसलिए मैं सोच के ये क्या करना है, ये बच्चों के लिए कुछ ना कोई एडुकेशन दिया तो अच्छा होता बोल के सोच के ऐसा ये काम शुरू किया। 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक।
0: इस ट्यूशन सेंटर में छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 1500 छात्र इस पाठशाला का लाभ उठा चुके हैं। यहाँ से पढ़े कुछ छात्रों ने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली है। कुछ पूर्व छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में 20 लाख सालाना से ज्यादा के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
3: मेरा जो भी कपड़ों का नहीं तो और जो भी चीज रहते ना बोले तो बुक्स पिंस वो सब रहते ना वो सब पूरे ट्रस्ट में दिया था सर। और मेरा पॉलसेट एग्जाम लिख दिया था सर आफ्टर 10th। मेरे को JOE टॉप मोस्ट कॉलेज आया था सर, उसमें से मेरा 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया। अभी मैं BTech पढ़ रहा हूँ सर।
0: कभी लोगों की प्यास बुझाने वाली ये पानी की टंकी अब शिक्षा के प्रसार की मिसाल बन गई है। इस पानी की टंकी के साए में कुछ बच्चों की मदद के साथ शुरू हुई ये कोशिश आज सैकड़ों छात्रों के सपनों को उड़ान दे रही है। हैदराबाद से अबुल बशीर, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपको अपनी दिल्ली पर गर्व होगा। दिल्ली सरकार ने बेजुबान पक्षियों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नेक पहल की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय के पास फ्लाईओवर के नीचे एक विशेष बर्ड हाउस का निर्माण किया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है परिंदों का कूल आशियाना। इस पहल का मकसद गर्मी से परेशान परिंदों, घायल और बीमार पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बर्ड हाउस जितना खूबसूरत है उतना ही हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ पक्षियों के रहने खाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं।
5: दिल्ली NCR में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसान के साथ साथ बेजुबा पक्षी भी अब इस चिलचिलाती गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल करी है, उन्होंने पक्षियों के लिए एक अनोखा सा आशियाना बनाया। इस वक्त दिल्ली सचिवालय में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक जगह आपको नजर आ जाएगी, ऊपर आपको फ्लाईओवर का हिस्सा जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसके ठीक नीचे की अगर मैं बात करूँ तो एक ये खाली पूरी जगह जो है वो रखी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा आशियाना जो है वो पक्षियों के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई जो है परेशान हो रहा है, लेकिन दिल्ली सचिवालय के परिसर में अब आपको पक्षियों के लिए एक अनोखी और संवेदनशील ये जगह जो है वो नजर आने वाली है कि गर्मी से किस तरीके से उनको राहत देने के लिए हर एक इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको ये छोटे छोटे जो घोंसले हैं वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है सभी पक्षी जो है आके आराम कर सकते हैं, किसी तरीके की जो धूप है वो यहाँ पर जो है नहीं नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको जो घोंसले हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे घर भी जो है वो नजर आ जाएंगे कि कभी पक्षियों को आराम करने का विश्राम करने का मन है तो घोंसले की जगह वो इस तरीके के छोटे छोटे घर में भी जो है जाकर जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की फीडिंग ट्रे दिख जाएगी। हालांकि अभी इसमें आपको दाने नजर नहीं आएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो जल्दी होगी। अभी ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ट्रायल में है कि किस तरीके से ये फीडिंग ट्रे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी फीडिंग ट्रे घोंसले जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिस्ट स्प्रे जो वाटर स्प्रे जो है मिस्ट स्प्रे जो है स्प्रिंकलर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि अच्छी खासी जो कूलिंग है वो यहाँ पर बनी रहे।
4: भीषण गर्मी के दौरान जहां सड़कों पर निकलना मुश्किल होता है, उस समय सड़क पर उतरकर ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की, जिन्हें गर्मी से बचाने के लिए उन्हें एसी हेलमेट दिया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज यही है, गर्मी को मात देने ट्रैफिक पुलिस के लिए एसी हेलमेट। वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान गर्मी नहीं सताएगी क्योंकि यहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिला है एसी हेलमेट, जो न केवल उन्हें भीषण गर्मी से राहत पहुंचाता है बल्कि उनके सिर को लगातार ठंडा रखता है। दरअसल वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को 100 एसी हेलमेट वितरित किए गए हैं। इस हेलमेट की खासियत यह है कि इसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग फैन लगा है जो सर को लगातार ठंडा रखता है। ये एसी हेलमेट रिचार्जेबल बैटरी से चलता है और एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर करीब 10 घंटे तक बैकअप देता है। ये हेलमेट हीट स्ट्रोक, चक्कर आने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से लोगों को सुरक्षित रखता है। ट्रैफिक के जवान जो निरंतर अपनी ड्यूटी धूप में खड़े होकर कर रहे हैं, उन्हें इस एसी हेलमेट से राहत मिलेगी। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए वाराणसी प्रशासन ने एसी हेलमेट्स के अलावा 1000 छाते और 600 सामान्य हेलमेट भी वितरित किए हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रख सके।
6: पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा निरंतर ट्रैफिक पे जोर दिया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा पैदल भ्रमण भी किया जाता है, सभी को ब्रीफ भी किया जाता है। इस ब्रीफिंग के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि जो कर्मचारी हैं वो निरंतर धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके तहत 1000 के आसपास छाते वितरित किए गए हैं, 600 सामान हेलमेट वितरित किए गए हैं, 100 हेलमेट ट्रैफिक डायरेक्टरेट से मंगवा कर जो एसी जिन में लगा है जो सिर पर ठंडक प्रदान करते हैं उनका वितरण किया गया है, ताकि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने ध्यान रख सके।
4: और अब बात खेल की दुनिया में शानदार उपलब्धि की। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंदा रमेश बाबू ने नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। खास बात यह है कि प्रज्ञानानंदा के टूर्नामेंट में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन के खिलाफ ये दूसरी जीत है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, प्रज्ञानानंदा ने कार्लसन को दूसरी बार हराकर रचा इतिहास। आपको बता दें कि विश्व शतरंज के मंच पर भारत ने दमदार प्रदर्शन किया है। आज आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाकर इतिहास रच दिया है। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंदा ने विश्व के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया है। इससे पहले 28 मई को प्रज्ञानानंदा ने कार्लसन को सफेद मोहरों से मात दी थी। इसके बाद उन्होंने कल यानी कि मंगलवार 2 जून को नॉर्वेजियन प्लेयर को काले मोहरों से हराया। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानानंदा भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया। इससे पहले 2007 में विश्वनाथन आनंद ने निरलिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कार्लसन को लगातार 2 मुकाबलों में शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ प्रज्ञानानंदा के नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में 12 पॉइंट्स हो गए हैं और वो टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।
7: नॉर्वे चेस 2026 में हमने एक शानदार लाजवाब और कमाल का एक रिजल्ट देखा। मैग्नस कार्लसन शतरंज के बेताज बादशाह, वो खेल रहे हैं नॉर्वे चेस में। उनको हराना लगभग नामुमकिन सा है आज के दौर में, लेकिन एक खिलाड़ी ने उनको सिर्फ ना कि एक बार हराया लेकिन दो बार उनको शिकस्त दे दी। कौन है?
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ कल आना है। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
9: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
8: और चिल्ला चिल्ला गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: कुछ दिनों से एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक आदमी ने ऐसा पोज देकर फोटो खिंचवाई थी जिससे देखकर लग रहा था कि जैसे वो अधूरे चांद को पूरा कर रहा हो। इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कुछ लोग इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये तस्वीर क्यों जारी की गई है और इसका मकसद क्या है। आज तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बेनकाब हो गई है। असल में तस्वीर बेवरेज कंपनी पेप्सिको की ओर से जारी की गई है। गर्मियों के मौसम में पेप्सिको ने भारतीय बाजार में अपना प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक अरश लॉन्च कर दिया है। इस नए प्रोडक्ट के साथ ही देश के युवाओं और खासकर जेंजी को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए प्रमोशन का एक बेहद अलग तरीका चुना गया, सस्पेंस बनाकर रखा गया और आखिर में आज जब इस ड्रिंक को लॉन्च किया गया तब उस तस्वीर के पीछे का सस्पेंस सामने आया।
13: Focus ultimate performance.
14: Go, let's go.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
15: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
11: मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
20: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 10.5 लाख पार, रोजाना 15,000 से ज्यादा भक्त कर रहे दर्शन। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर, अगले 24 घंटे में केरलम तट से टकराएगा मॉनसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ मुंबई मिलेंगे साथ फेरे, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने बिल्कुल सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे और बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उनमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो असद का है, जिसने कोड़ा में ईद के दिन सूर्य चौहान की हत्या कर दी और बाद में मर्डर की बात कबूल करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर काव्या मारन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट में दी है। इस तस्वीर की सच्चाई भी आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो असद का है, जिसने खोड़ा में ईद के दिन सूर्या चौहान की हत्या की और बाद में मर्डर की बात कबूल करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के दिन सूर्या नाम के एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सूर्या को कुर्बानी दिखाने के नाम पर बुलाया गया और हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, वहीं तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब असद का कबूलनामा बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखिए जिसमें ये लड़का क्या कह रहा है।
3: देखो भाई, रात के बज रहे 11:22, तुम्हारे भाई ने एक मटर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है, उसका रे भाई प्यार देना है, ओके कर दो।
2: सुना आपने, ये लड़का खुलेआम एक मर्डर करने की बात को स्वीकार कर रहा है, जेल जाने की बात कह रहा है और बदले में लोगों का सपोर्ट मांग रहा है।
3: देखो भाई, रात के बज रहे 11:22, तुम्हारे भाई ने एक मटर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है, अरे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ,
2: कुछ लोग इसे असद का वीडियो बताकर लिख रहे हैं कि उसने सूर्या की हत्या करने के बाद ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। फेसबुक पर एक व्यक्ति ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये है हिंदुस्तान का डरा हुआ अल्पसंख्यक, देख लो। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या करने के बाद असद ने रात को 11 बजे के आसपास की वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था। इसको पता नहीं था कि ये योगी राज है, अखिलेश यादव की सरकार नहीं, कि एक हिंदू की हत्या करने के लिए इसे यश भारती सम्मान या सांसद विधायक का टिकट दिया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सूर्या हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी असद का वीडियो है। सबसे पहले सुनिए आखिर इस वीडियो में शख्स क्या कह रहा है।
3: अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसका रे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लवियो, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लवियो, तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर देखो भाई
1: रात के 11:22 हो रहे हैं, तुम्हारे भाई ने एक मर्डर कर दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर जा रहा है, और इसीलिए सभी भाई प्यार और सपोर्ट देना, ठीक है? मतलब जिसे असद बताया जा रहा है उसने कैमरे के सामने हत्या की बात कबूल की है पोस्ट के जरिए, तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रही पोस्ट का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स के चेहरे को गौर से देखा, जिससे ये बात साफ हुई कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा लड़का असद नहीं। सूर्या हत्याकांड के बाद आरोपी असद को हाल ही में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हत्या के बाद असद की कई तस्वीरें सामने आई, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक तरफ वायरल वीडियो में नजर आ रहे युवक की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद की तस्वीर है, जिससे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आप दोनों तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे शख्स की पहचान क्या है जानना जरूरी हो गया था। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि हत्या के बाद असद ने कोई वीडियो पोस्ट किया होता तो फिर हत्या की बात कबूली होती तो उसके बारे में कोई जानकारी सामने आती, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लिहाजा हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, और हमारा पहला सवाल यही, अगर दावा सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर दूसरे हत्याकांड में शामिल आरोपी के वीडियो को असद का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान ये वीडियो हमें एक YouTube चैनल पर मिला, यहाँ इसे 3 अप्रैल को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये पुराना वीडियो है और सूर्या हत्याकांड से संबंधित नहीं हो सकता है। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम करण कुमार है। इस लड़के पर आरोप था कि इसने दिल्ली के शालीमार बाग में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना शालीमार बाग में 2 अप्रैल को हुई थी। 20 साल के नितेश उर्फ निक्की नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप 18 साल के करण उर्फ तरुण, 22 साल के मोंटी और एक नाबालिग पर था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मर्डर के बाद आरोपी करण ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर हत्या की बात कबूली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल का है और सूर्या हत्याकांड से संबंधित नहीं है। इसमें दिख रहे लड़के का नाम करण है, जो दिल्ली के शालीमार बाग में हुए एक मर्डर का आरोपी है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: आईपीएल के इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के जरिए क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। इन सबके बीच वैभव सूर्यवंशी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की को ओनर काव्या मारन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है, और इसके जरिए लोग ये कह रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की है। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: IPL का ये सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की लगातार दूसरी खिताबी जीत से ज्यादा राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए जाना जाएगा। IPL के इतिहास में किसी भी एक खिलाड़ी ने इतने अवार्ड एक सीजन में नहीं जीते जितने वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए। ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा छक्के, इमर्जिंग प्लेयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैसे बड़े बड़े 5 अवार्ड फाइनल खेले बिना वैभव सूर्यवंशी को मिले। क्रिकेट जगत में वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा ही नाम बन गए हैं जिन्होंने अपने अनोखे टैलेंट और धैर्य की बदौलत महज 15 साल की उम्र में न सिर्फ दुनिया भर में नाम कमाया है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी और सनराइजर्स हैदराबाद टीम की को ओनर काव्या मारन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में काव्या सूर्यवंशी को मैदान में घड़ी पहनाती हुई नजर आ रही हैं। इसे शेयर करने वालों का कहना है कि हैदराबाद की हार की एक बड़ी वजह सूर्यवंशी थे जिनकी धमाकेदार पारी की बदौलत राजस्थान ने हैदराबाद के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और हैदराबाद हार गई। इसके बावजूद काव्या ने वैभव को एक खास घड़ी गिफ्ट की। तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वैभव सूर्यवंशी को वो मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला। RR वर्सेस SRH का मैच समाप्त हो गया तब मैदान पर सभी लोग थे, तभी वहाँ काव्या मारन जो कि SRH की मालकिन है वो आती है और वैभव सूर्यवंशी को एक घड़ी गिफ्ट करती है। ये घड़ी आखिर क्यों गिफ्ट की वैभव सूर्यवंशी को जबकि उनकी टीम को बाहर करने वाला यही वैभव था जिसने 29 गेंद में 97 रनों की पारी खेली। क्या काव्या मारन अगली बार वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल कर पाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बता दें इस बार IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ी शिकस्त दी थी। इस मैच में राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी स्टार प्लेयर साबित हुए। उन्होंने महज 29 गेंदों में 97 रनों की शानदार पारी खेली थी।
1: असल सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है और इसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की को ओनर काव्या मारन ने एलिमिनेटर मैच में हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर की जा रही है, तो ऐसे में वायरल तस्वीर का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस साबित हो सके कि काव्या मारन ने वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों की घड़ी गिफ्ट में दी है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो फिर यह खबर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलती, सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने तस्वीर को बारीकी से देखा तो इस दौरान ऐसा लग रहा है कि एडिट करके घड़ी को चिपकाया गया है, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये, कहीं जानबूझकर तस्वीर को एडिट करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल दावे की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली जिसमें काव्या मारन राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से हाथ मिलाती हुई दिख रही हैं। हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि काव्या ने वैभव को मैच के बाद घड़ी गिफ्ट की। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मई को हुए एलिमिनेटर मैच में मिली हार के बाद भी हैदराबाद कैंप ने राजस्थान रॉयल्स के वैभव की खूब तारीफ की थी। मैच के बाद काव्या वैभव से मिली, उनसे हाथ मिलाया और उनकी शानदार पारी के लिए उन्हें बधाई भी दी। सोशल मीडिया पर उनकी इस प्रतिक्रिया की काफी तारीफ भी हुई। IPL के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी ये वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें दोनों लोग हाथ मिलाते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल वही प्रेम और वही बैकग्राउंड मौजूद है जो वायरल तस्वीर से हूबहू मिलता है। इसी फ्रेम को AI की मदद से एडिट करके वायरल तस्वीर बनाई गई है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल तस्वीर को AI की मदद से एडिट करके बनाया गया है। असल में काव्या ने वैभव से सिर्फ हाथ मिलाया था और उन्हें बधाई दी थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: साक्षात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा
2: है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: गणपति हरेंगे सारे विघ्न, गणपति बप्पा की जय जयकार, जल्द आ रहा है मॉनसून, दिल्ली में परिंदों के लिए बड़ी पहल, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
5: विश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
6: Good News Today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
1: है।
0: गुड न्यूज
1: आएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी उन्होंने खूब पसंद किया जा रहा है।
2: जब औलाद अपनी पहली कमाई से बाप का सिर फक्र से ऊंचा करे तो समझो उसने दुनिया की सारी दौलत कमा ली। ये कहावत इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो पर सटीक बैठ रही है। इसमें एक छोटी सी बच्ची ने YouTube की कमाई से पिता को ऐसा तोहफा दिया कि वो भावुक हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्ही सी बच्ची चहकते हुए पिता के पास पहुंचती है। पिता किसी काम में व्यस्त होते हैं, तभी पीछे से जाकर बच्ची जोर से पुकारती है, पापा। उसकी आवाज सुनकर पिता तुरंत मुड़ता है और बेटी के हाथों में अपने लिए अनमोल उपहार देखकर निशब्द रह जाता है। महज 5 साल की छोटी सी बेटी के हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था। पिता को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके अंदर क्या है। जब बेटी ने उसे खोला तो उसमें सोने की एक अंगूठी थी। ये कोई आम तोहफा नहीं था, बल्कि बेटी की यूट्यूब से हुई पहली कमाई का सरप्राइज था। इतनी छोटी सी उम्र में उसका यह प्यार और समझ देखकर पिता पूरी तरह हैरान रह गया। बच्ची ने अंगूठी निकालकर अपने पिता को पहनाई। इस दौरान बच्ची के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। छोटी सी उम्र में पिता को तोहफा देना उसके लिए भी गर्वित पल रहा होगा। इसके बाद पिता ने अपनी बेटी के पैर को छुआ।
3: राधे राधे मैया, राधे राधे। ये देखिए,
2: आज के दौर में जहां सास बहू के झगड़ों के किस्से आम हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी है। कलयुग में भी त्रेता युग जैसी भक्ति और सेवा का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी।
3: आज के टाइम में भी ऐसी बहू है अभी।
2: दरअसल ब्रज मंडल में इन दिनों प्रसिद्ध 84 कोस परिक्रमा चल रही है। इसी दौरान सहपहु इलाके में एक बहू ने अपने बुजुर्ग सास को एक टब में बैठाया और उस टब को अपने सिर पर रखकर मीलों लंबी परिक्रमा पर निकल पड़ी। बिना थके बिना रुके अपनी सास को सिर पर उठाकर ले जाती इस महिला का वीडियो अब इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है।
3: राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज के टाइम में भी ऐसी बहू है अभी।
2: बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सास की लंबे समय से ब्रज की पवित्र 84 कोस परिक्रमा करने की दिली इच्छा थी, लेकिन ढलती उम्र और शरीर में भारी कमजोरी होने के कारण उनके लिए मीलों तक पैदल चलना बिल्कुल नामुमकिन था। जब बहू को सास के मन की इस अधूरी ख्वाहिश का पता चला तो उसने बिना एक पल सोचे यह भारी जिम्मेदारी उठा ली। उसने सास को आराम से एक बड़े टब में बैठाया और सिर पर रखकर आस्था के मार्ग पर निकल पड़ी। ट्यूजन से इस बहू के पारिवारिक संस्कारों और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: इतनी अच्छी यात्रा है, बहुत अच्छी वो निकल रही है। ये बैठा के कौन है ये? इनकी सास है।
2: वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला खाली सड़क किनारे खड़ी है, जबकि उनका बेटा बड़े प्यार से उनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला का बेटा सिर्फ फोटो ही नहीं ले रहा, बल्कि वह अपनी माँ को पोज भी बता रहा है। वह उनकी अलग अलग एंगल से फोटो ले रहा है, कभी स्माइल करते हुए तो कभी सीधे खड़े हुए। बुजुर्ग अम्मा का बेटा उनके हर एक पल को खास बनाने की कोशिश कर रहा है। फोटो खींचने के बाद वह अपनी माँ के पास जाकर उन्हें वे तस्वीरें भी दिखा रहा है। अम्मा भी अपनी तस्वीरों को देख रही है। इस शख्स का वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं। इस शख्स को देखकर लगता है कि वह इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता तराजू है। शख्स बिना किसी मशीन, तराजू या वेट मशीन के वह चाकू की मदद से सब्जियां इतनी सटीक काटता है कि ग्राम तक का फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति तराजू के सामने खड़ा होकर लोगों से टमाटर आलू का बताया वजन चाकू से काट कर दिखाता है। उसके टैलेंट ने सबको दंग कर दिया। इस वायरल वीडियो ने सीधे लोगों के दिल को छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पक्षी के चोंच का ऊपरी हिस्सा टूट गया है, जिससे वह ठीक से खाना नहीं खा पा रहा। ऐसी स्थिति ने उसे कमजोर बना दिया है। आगे वीडियो में भी यह देखा जा सकता है कि चिड़िया की दूसरी साथी उसे अपनी चोंच से उसको खाना खिला रही है। वीडियो के टाइटल में बताया गया है कि वह चिड़िया अपने साथी को हर रोज ऐसे ही खाना खिलाती है। यह नजारा इतना प्यारा और भावुक है कि इसे देखकर लोगों की आंखें नम हो जाती है। सोशल मीडिया पर प्रकृति का एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखने के बाद लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक झील में पानी के अंदर कुछ कछुए एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। वे कुछ इस तरह से इकट्ठा हुए हैं जिससे एक गोलाकार बन गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर कुछ कछुए गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, जबकि दो कछुए उस गोल घेरे के बीच में बैठे हैं। कछुओं के इस तरह से एकत्रित होता देख ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी गंभीर मुद्दे पर कोई बैठक बुलाई हो।
4: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे।
2: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती है। अगर एसी बंद हो जाए तो वह न सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है।
4: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
2: वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: बुध का कौन सा शुभ योग आप को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है? बुध का कौन सा शुभ योग आपको जीवन में उच्च पद तक पहुंचा देता है? कौन से हैं बुध के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: You've always believed in students, their potential and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at wgu.edu.
7: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
8: You're listening to CNBC.
9: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
10: Keep it on smooth jazz.
11: This is Roots Reggae.
12: Exclusively on TuneIn.
13: This is classic hip-hop.
14: Exclusively on TuneIn.
7: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।

0: है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान।

0: भीषण गर्मी के बीच राहत वाली खबर, अगले 24 घंटे में केरलम तट पर दस्तक देगा मॉनसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत कई दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Sage University, transforming your passion into profession.
3: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: Achhi aur sachi khabron mein sabse pehle baat Vibhuvan Sankashti Chaturthi ki, जिसे आज भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पूजा के लिए Sankashti Chaturthi व्रत को विशेष दिन माना जाता है, लेकिन 3 साल में एक बार पड़ने वाली विभुवन संकष्टि चतुर्थी बेहद खास मानी जाती है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन और पूजन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। मान्यता यह है कि आज के दिन विधि विधान से गणेश पूजन, दुर्वार्पण, मोदक का भोग और गणपति मंत्रों का जाप करने से बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

0: संकष्टी चतुर्थी का आया पर्व तो मंदिरों में भक्तों की लगी कतार, गणपति बाप्पा की हो रही जय जयकार। इस खास मौके पर गणेश मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए दिन भर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर से सामने आई, जहां इस खास पर्व पर न सिर्फ बाप्पा का मनोहारी श्रृंगार किया गया है बल्कि मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, विघ्नहर्ता के दर पर आस्थावान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। घंटों का इंतजार, लेकिन चेहरे पर थकान की जगह सिर्फ मुस्कान है और जुबान पर बाप्पा का नाम है।
1: ठीक मेरे पीछे गणपति बप्पा विराजमान है, आप भी गणपति बप्पा का दर्शन करें। गणपति बप्पा के सिर्फ पैर छूने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं, न केवल महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। सुबह से ही वीआईपीओ का भी यहां पर तांता लगा हुआ है। ये मंदिर का प्रांगण है, तीन तरह की कतारें यहां पर पहुंच रहे हैं और वाकई में लगभग 3 से 4 घंटे कतार में खड़े होने के बाद गणपति बप्पा के पास पहुंचा जा सकता है। महिलाओं की कतार अलग है, पुरुषों की कतार अलग है, पूजा पाठ बड़े ही संपन्न तरीके से यहां से हो रहा है।
0: बुधवार और संकष्टी चतुर्थी दोनों ही भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित हैं। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 साल बाद आई है और बुधवार के दिन का दिव्य संयोग भी बना है। मान्यता है कि अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। इसी आस और विश्वास के साथ ये तमाम लोग सिद्ध विनायक मंदिर पहुँचे हैं।
2: चतुर्थी तिथि के नेता भगवान गणपति जी होते हैं और विभुवन संकष्टी

0: ऐसी जो है यह पुरुषोत्तम मास में ही आती है, इसके लिए इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और पुरुषोत्तम मास लगभग 3 साल में पड़ता है, मतलब इस व्रत को करने के लिए यदि कोई चूक गया तो 3 साल के बाद ही वह कर
1: पाएगा। पेट्रोल का भाव महंगाई कम करो बस बाबा।
2: अच्छा, आप पापा के पास महंगाई कम करने
1: महंगाई के लिए आए हो बस। अब तो भगवान अच्छा ही रखता है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, ये कम करो बोलना।
3: मुंबई से गणपति पापा सबको मूर्ति दे।
4: कैसा लग रहा है इस मंदिर में प्रांगण में आके?
5: बहुत अच्छा लगा है, और मांगे थे तो क्या अभी सब कुछ दे दिया है बापा ने। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा है।
6: भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना गया है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में उनकी उपासना सभी कार्यों की सफलता का मार्ग सुनिश्चित करती है। इस दिन भगवान गणेश का अभिषेक कर उन्हें लाल फूल, दुर्वा और मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए। यही वजह है कि संकष्टी चतुर्थी के मौके पर मंदिर पहुंचे तमाम श्रद्धालु अपने साथ पूजा के लिए ये चीजें लेकर आए।
7: पवित्र पुरुषोत्तम मास की संकष्टी चतुर्थी है और बुधवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज के दिन में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं, मुख दर्शन की अलग लाइन लगी हुई हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की गई है।
4: एक से बढ़कर एक यहाँ पर मालाएं लगी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर मालाओं को यहाँ पर रखा गया है और बकायदा थालियाँ भी यहाँ पर सजाई गई हैं। हर कोई अपने पसंद से, अपने हिसाब से इन थालियों को लेता है और गणपति बप्पा के चरणों में जाकर के डालता है। मिठाइयाँ एक से बढ़कर एक यहाँ पर रखी गई हैं। जाहिर है गणपति बप्पा को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इस वजह से अलग अलग तरह के मोदक अब बनाए जाने लग गए हैं, जिसमें चॉकलेट के भी मोदक होते हैं, मैंगो के भी मोदक होते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और तमाम वो चीज़ें जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली गणपति बप्पा को पसंद आती है। ऐसे ऐसे मोदक इस समय सिद्धिविनायक मंदिर में रखे गए हैं।
6: विभवन संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धालुओं की इस भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों के सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन और मुंबई पुलिस ने खास तैयारी की। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से नजर रखी गई और मंदिर के सेवादारों ने भी इस काम में अहम भूमिका निभाई।
7: तो जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जैसे दादर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एसी बस की सुविधा की गई है जो सीधे श्री सिद्धिविनायक मंदिर आएगी। तो पूरा ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा के लिए भी हमारी पुलिस जो है मुंबई पुलिस है, उसके अलावा हमारे ट्रस्ट के भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, वह सभी लोग सभी पॉइंट पर रुक करके पूरा ध्यान रख रहे हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और पूरा सुरक्षा का ख्याल रखा जाए।
6: सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से ही होती रही है। उन्हीं मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की सबसे प्रिय तिथि है संकष्टी चतुर्थी। शास्त्रों में इस दिन को संकटों का अंत करने वाला महायोग भी कहा गया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: आगे बढ़ते हैं, मॉनसून से जुड़ी खबर आपको दे देते हैं, जिस पर मौसम विभाग का जो नया अपडेट आया है वो आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने यह बताया है कि 4 जून को यानी कि कल दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम तट पर पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून को केरलम में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो अगले 7 दिन तक जारी रह सकता है, और इसी को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के लिए भी राहत के संकेत दिए हैं।

0: मॉनसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या फिर उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। इस प्री मॉनसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। एक दिन पहले भी देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश देखने को मिली है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए हालात अनुकूल हैं और इसके 4 जून तक केरलम पहुंचने के आसार हैं।
1: मॉनसून जो है लगभग 4 तारीख के आसपास केरला के ऊपर दाखिल होने का पूर्वानुमान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारी से बहुत भारी वृष्टिपात यानी कि 7 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वृष्टिपात केरला में आने वाले 7 दिन तक एक दो स्थानों में देखने को मिलेगा।
0: मौसम विभाग ने इससे पहले केरला में मॉनसून के आने की तारीख 25-26 मई बताई थी, लेकिन मॉनसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में देरी हुई, जिसके चलते अब इसके अगले कुछ घंटों में पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आने के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
1: तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 6 से 7 दिन के अंदर भारी बारिश यानी कि 7 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक वृष्टिपात का पूर्वानुमान किया गया है।
0: मॉनसून वाली गुड न्यूज के साथ ही खबर ये भी है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर समूचे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। ये नया पश्चिमी विक्षोभ राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
2: 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी।
0: लेकिन जिन जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहाँ गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों के तहत इंसान ही नहीं बल्कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए भी जगह जगह इंतजाम किए गए हैं। सूरत के जू में ऐसे इंतजाम देखने को मिले हैं, जहां वाटर स्प्रिंकलर्स, कूलर और बाड़ों में पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, और साथ ही खाने में जानवरों को मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं।
3: गर्मी का जो है प्रमाण थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए अपने जो भी कैप्टिविटी में एनिमल्स रखे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड, उनको ज्यादा हीट से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग हर साल एहतियात के बेस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। वो हिसाब से इस साल भी हम लोगों ने लायन, टाइगर, लेपर्ड और बेर का और ऑस्ट्रिच का जो केज है उसमें ओपन यार्ड में फॉगर का व्यवस्था किया हुआ है। इसके सिवा जो भी ओपन यार्ड में बड़े वाटर बॉडी है उसको फुल भर के रखते हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी के टाइम में एनिमल्स उसमें अपने बाथ लेके भी अपने बॉडी को कूल कर सके। और एक एक्स्ट्रा केयर में हम लोग उसका जो फीड है उसमें जो बर्ड्स के उसमें ज़्यादा जूसी फ्रूट्स रहते हैं वो सब देते हैं, जिससे उसका बॉडी का पानी का लेवल मेंटेन हो और उसको डिहाइड्रेशन का कोई इश्यू नहीं हो। इसके सिवा जो भी खुराक देते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और मल्टीविटामिन का टेबलेट देते हैं, वो भी उसके बॉडी में पानी का जो है लेवल वो मेंटेन करने में उसको हेल्प होता है और ज़्यादा हिस्से कोई एडवर्स इफेक्ट उसके बॉडी पे नहीं आता। जो हिरन का केज है वहाँ पे भी हम लोगों ने पोर्टेबल पानी के छंटकाव के लिए व्यवस्था किया हुआ है, और इसके सिवा जो भी केज के आसपास के एरिया में भी पानी का छंटकाव करते हैं।
0: इन सब के अलावा गर्मी के इस मौसम में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो राहत की उम्मीद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसके चलते इस वक्त पहाड़ी राज्यों के ज्यादातर मशहूर पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक सैलानियों की भारी मौजूदगी देखी जा रही है। पिछले महीने हिमाचल में ग्रीन टैक्स बैरियर के रास्ते कुल्लू में करीब 66,700 पर्यटक वाहन दाखिल हुए हैं।
4: देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है, और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं, तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में। तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है।
5: हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है, राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे, सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया।
6: राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफी चेंज है और काफी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफी चेंजेस है।
0: कुल मिलाकर मई के महीने में लोगों ने जिस भीषण गर्मी का सामना किया, जून की शुरुआत ज्यादातर जगहों पर वैसी नहीं रही और अब मॉनसून भी पहुंचने वाला है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों के लिए राहत भरे हो सकते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली सचिवालय की तरफ से एक अनोखी पहल की, जिसकी वजह से गर्मी से त्रस्त दिल्ली के पक्षियों को एक अनोखा आशियाना मिल गया है। दिल्ली के परिंदों के लिए बड़ी पहल करते हुए सचिवालय से सटे एक फ्लाईओवर के नीचे बर्ड हाउस बनाया गया है, जहां भीषण गर्मी और हीट वेव से पक्षियों को राहत मिलना तय है। उनको सुकून देने के लिए घोंसले, फीडिंग ट्रे और मिस्ट स्प्रिंकलर्स की खास व्यवस्था की गई है। यहां घायल पक्षियों का इलाज भी मुमकिन होगा।

0: बर्ड सेंचुरी की तरह दिखने वाली ये जगह दिल्ली सचिवालय के पास एक फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगह थी, जिसे अब पक्षियों के संरक्षण, प्रजनन और सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों की तरह दिल्ली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप है। दिन का तापमान 40 डिग्री से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं की भी हालत बुरी है। भीषण गर्मी और लू का कहर केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। चिलचिलाती धूप और लगातार ऊपर जाते तापमान के कारण पानी की कमी और हीट स्ट्रोक से बड़ी संख्या में पक्षियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। भीषण गर्मी से बचाने के लिए ही दिल्ली सचिवालय के पास इस फ्लाईओवर के नीचे पड़ी बेकार जगह को एक बर्ड हाउस में बदल दिया गया है।
1: दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसान के साथ साथ बेजुबा पक्षी भी अब इस चिलचिलाती गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल करी है, उन्होंने पक्षियों के लिए एक अनोखा सा आशियाना बनाया। इस वक्त दिल्ली सचिवालय में हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एक जगह आपको नजर आ जाएगी, ऊपर आपको फ्लाईओवर का हिस्सा जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसके ठीक नीचे की अगर मैं बात करूं तो एक ये खाली पूरी जगह जो है वो रखी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा आशियाना जो है वो पक्षियों के लिए बनाया है।
0: भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत देने के लिए बड़ी संख्या में वहाँ घोंसले लगाए गए हैं, जिन्हें नारियल के रेशों से तैयार किया गया है। इसके अलावा मौसम की मार से बचाने के लिए लकड़ी से बने बर्ड हाउस भी दीवारों पर टांगे गए हैं। कुछ दूरी पर पक्षियों के दाने के लिए फीडिंग ट्रे भी टांगी गई है। उनके पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी है।
1: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई जो है परेशान हो रहा है, लेकिन दिल्ली सचिवालय के परिसर में अब आपको पक्षियों के लिए एक अनोखी और संवेदनशील ये जगह जो है वो नजर आने वाली है कि गर्मी से किस तरीके से उनको राहत देने के लिए हर एक इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको ये छोटे छोटे जो घोंसले हैं वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है सभी पक्षी जो है आके आराम कर सकते हैं, किसी तरीके की जो धूप है वो यहाँ पर जो है नहीं नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको जो घोंसले हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे घर भी जो है वो नजर आ जाएंगे कि कभी पक्षियों को आराम करने का, विश्राम करने का मन है तो घोंसले की जगह वो इस तरीके के छोटे छोटे घर में भी जो है जाकर जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की फीडिंग ट्रे दिख जाएगी। हालांकि अभी इसमें आपको दाने नजर नहीं आएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो जल्दी होगी। अभी ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ट्रायल में है कि किस तरीके से ये फीडिंग ट्रे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी फीडिंग ट्रे घोंसले जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर फीडिंग ट्रे जरूर नजर आ जाएगी, नीचे यहाँ पर इस तरीके की ट्रे जो है लगाई गई है, मिट्टी के बर्तन जो है ये वो लगाए गए ताकि इसके अंदर साफ पानी पक्षियों के लिए जो है वो रखा जा सके। और जितने भी यहाँ पर जो पक्षी आराम करने आएंगे उनके लिए एक खास चीज और लगाई गई है, वो है इनके लिए छोटे छोटे खिलौने। आप ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आपको कुछ इस तरीके के खिलौने जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि बच्चे जो है वो खिलौने से खेलते, लेकिन पक्षियों के लिए भी कुछ इस तरीके के खास इंतजाम जो है वो किए गए, आप देख सकते हैं, ताकि वो इस पर बैठ के जो है यहाँ पर जितने भी पक्षी है वो आ सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे आपको जो खिलौने जैसे है झूले जो है झूले आपको जो है वो नजर आने वाले, ताकि यहाँ पर हर एक तरीके से जो भी पक्षी आए उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके।
0: भीषण गर्मी में बर्ड हाउस का तापमान कम रखने के लिए मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो पानी को बहुत ही बारीक बूंदों को कोहरे या धुंध के रूप में छिड़कती है। पानी की महीन फुहार से आसपास के वातावरण को ठंडा रखने में मदद मिल रही है।
1: आपको यहाँ पर मिस्ट स्प्रे जो वाटर स्प्रे जो है मिस्ट स्प्रे जो है स्प्रिंकलर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि अच्छी खासी जो कूलिंग है वो यहाँ पर बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से हर एक इंतजाम जो है पक्षियों के लिए यहाँ पर किए गए ताकि सुरक्षित और अच्छा एक वातावरण जो है वो उनको यहाँ मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है वाकई में इंसानों के साथ अब पक्षियां भी जो है वो परेशान होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक इंतजाम आपको जो है वो नजर आने वाले हैं कि किस तरीके से वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर जो है यहाँ लगाए गए, जो लगातार हल्की फुहारे जो है छोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आसपास के तापमान में भी जो है यहाँ पर कमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि बाहर का जिस तरीके से तापमान है, मैं जिस तरीके से अभी बाहर से आई हूँ तो काफी तेज गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही ठंडक जो है वो मिलने वाली है कि किस तरीके से पक्षियों के लिए एक अच्छा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिया गया है। और बात सिर्फ इस ठंडक की नहीं है बल्कि पक्षियों के रहने के लिए और भोजन की जो खास व्यवस्था की गई है हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: दिल्ली के चांदनी चौक में पक्षी अस्पताल है, जहां से घायल पक्षियों को यहां लाने की तैयारी है। खुले और हरियाली से भरपूर इस वातावरण में उनके स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि ये पहल केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति हमारी संवेदना का प्रतीक बन गई है। गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए ये छोटा सा प्रयास उनके जीवन में बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऐसे में दिल्ली सचिवालय की तरफ से ये पहल काबिले तारीफ है, जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हैदराबाद में पानी की एक पुरानी टंकी शिक्षा की मिसाल बन गई। इस टंकी के नीचे की खाली जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। बरसों पहले कुछ बच्चों को पढ़ाई में मदद के साथ शुरू की गई यह कोशिश अब सैकड़ों बच्चों का भविष्य सवार चुकी है।

0: पानी की ये पुरानी टंकी अब गरीब छात्रों का भविष्य संवारने की पाठशाला बन गई है। हैदराबाद के मियापुर में बेकार पड़ी पानी की टंकी के बेहतर इस्तेमाल करने का ये आइडिया पोथुकुची श्रीनिवास का है। बरसों पहले अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर श्रीनिवास ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। साल 2008 में छात्रों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने पानी की टंकी के नीचे की जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया। अब ये पानी की टंकी गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रतीक बन गई है।
1: एक मुआयना या दौरा कर लेते हैं इस वाटर टैंक का। दिखने में बाहर से मैंने जैसे आपको बताया कि एक वाटर टैंक था, लेकिन अंदर से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक स्कूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, चेयर्स दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, किताबें दिखेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर टैंक का एक सिस्टम या मशीनरी होती है जो कई सदियों तक यहाँ के इलाके में पानी पहुंचाता रहा, वो भी यहाँ पर इस क्लासरूम में दिखाई देगा। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहे।
2: ये सरकारी स्कूल को कौन जा रहा है बोले तो गरीब लोग जा रहे हैं, डेली काम करने वाला और दिन भर डेली काम करने वाला और ऑटो ड्राइवर्स का ये सफाई करने वाला ऐसा पेरेंट्स का बच्चे उधर जा रहे हैं। उनको 10 क्लास होने के बाद ये ड्रॉप हो रहे और पढ़े तो इंटरमीडिएट पढ़ता है, गर्ल बच्चों जल्दी जल्दी शादी हो रहा है। इसलिए मैं सोच के ये क्या करना, ये बच्चों के लिए कुछ ना कोई एडुकेशन दिया तो अच्छा होता बोल के सोच के ऐसा ये काम शुरू किया। 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक।
0: इस ट्यूशन सेंटर में छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 1,500 छात्र इस पाठशाला का लाभ उठा चुके हैं। यहाँ से पढ़े कुछ छात्रों ने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली है। कुछ पूर्व छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में 20 लाख सालाना से ज्यादा के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
3: मेरा जो भी कपड़ों का नहीं तो और जो भी चीज रहते ना बोले तो बुक्स पिंस वो सब रहते हैं ना, वो सब पूरे ट्रस्ट में दिया था सर। और मेरा पॉल सेट एग्जाम लिख दिया था सर आफ्टर 10th। मेरे को JEE टॉप मोस्ट कॉलेज आया था सर, उसमें से मेरा 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया, अभी मैं बीटेक पढ़ रहा हूँ सर।
0: कभी लोगों की प्यास बुझाने वाली ये पानी की टंकी अब शिक्षा के प्रसार की मिसाल बन गई है। इस पानी की टंकी के साए में कुछ बच्चों की मदद के साथ शुरू हुई ये कोशिश आज सैकड़ों छात्रों के सपनों को उड़ान दे रही है। हैदराबाद से अबुल बशीर, गुड न्यूज टुडे।
4: सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: बुध का कौन सा शुभ योग आपको अत्यंत बुद्धिमान बना देता है? बुध का कौन सा शुभ योग आपको जीवन में उच्च पद तक पहुंचा देता है? कौन से हैं बुध के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: To right field, and it will leave.
7: From the first pitch of the season to the stretch run,
8: and that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध से संबंधित शुभ योग हैं तो इनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष में बुध से संबंधित बहुत सारे शुभ योग पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बुध के विशेष शुभ योगों के बारे में बता रहे हैं। पहला जो शुभ योग है बुध का, उसको कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में हो, 6 में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 में हो, तो भद्र योग बनता है। लेकिन इसके लिए बुध को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। केंद्र स्थान में होने पर ही ये योग बनता है। भद्र योग होने से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है उनको खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भद्र योग वाले लोग होते हैं ये वाणी के क्षेत्र में समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्र योग वाले अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भद्र योग वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, अपनी बुद्धि से किसी को भी परेशान ना करें। बुद्ध के अन्य शुभ योगों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बुध के दूसरे शुभ योग की बात करते हैं। बुध का दूसरा शुभ योग है लग्न में बुध। देखिए, बुध किसी भी कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए तो अत्यंत शक्तिशाली होता है। बुध लग्न में दिग्बली हो जाता है, अत्यंत ताकतवर होता है। और लग्न में बैठा हुआ बुध जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के लग्न में बुध होता है, सामान्यतः ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणित वाले विषयों के, कैलकुलेटिव विषयों के जानकार होते हैं। जिनके लग्न में बुध होता है आम तौर पर ऐसे लोग वाणिज्य यानी कॉमर्स, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन आ जाता है, अंतर्ज्ञान आ जाता है। लग्न में अगर बुध बैठेगा तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल करके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुध के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बुध के तीसरे शुभ योग की बात करते हैं, उसका नाम है बुध आदित्य यानी बुधादित्य योग। कैसे बनता है? देखिए, बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट रहता है, इसीलिए अक्सर कुंडलियों में एक साथ हो जाता है। तो बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग कुंडली में बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, बड़ा साहसी होता है, अपनी साहस और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। बुधादित्य योग ज्यादातर तभी रिजल्ट देता है या ज्यादातर तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हो और बुधादित्य योग में बुध अस्त ना हो। अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो गया तो सारे परिणाम सूर्य देंगे, फिर बुध का ब्लेंड, बुध का होना उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर कुंडली में परफेक्ट तरीके से बुधादित्य योग बना हो तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत पैसे वाला हो जाता है। और बुधादित्य योग अगर कुंडली के करियर से संबंध बनाए तो बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं, जीवन में उच्च पदों पर रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है और आप इसका लाभ चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो कुंडली का बुधादित्य योग आपको बेहतर फायदा देगा, जीवन में बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बुध के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बालों की समस्या से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Tech is moving fast, and employers want people who get it. At WGU, you'll earn a computer science degree that teaches you the skills behind AI. Online, accredited, built for what's next. Get started at wgu.edu.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की एयरलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रामी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेगी ई बसें, 1725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर।

0: पूजन के लिए भक्तों का तांता लगने लगा। देखते ही देखते पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और फिर लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करते दिखे। आम से लेकर खास तक हर तरह के भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते दिखे। सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की चतुर्थी के चलते यहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी, क्योंकि इस मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है और उसमें संकष्टी चतुर्थी को लेकर विशेष मान्यता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इस साल भी कसौल, मणिकरण और आसपास के पहाड़ी इलाकों की ओर उमड़ पड़े लोग। कुल्लू पहुंचकर पर्यटक अलग अलग गतिविधियों के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मई के महीने में तो आलम ये रहा कि यहाँ पहुँचने वाली पर्यटकों की वैसी गाड़ी की संख्या ही 66,700 तक पहुँच गई, जिसने ग्रीन टैक्स बैरियर से कुल्लू में एंट्री की। मई के बाद अब जून महीने में भी गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी की वजह से इंसान से लेकर बेजुबानों तक को राहत दिलाने की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत के सरथाना नेचर पार्क में पशु पक्षियों के लिए कूलर, वाटर स्प्रिंकलर और फवारे लगाए गए हैं, साथ ही उनके बाड़ों में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। यहाँ मौजूद बेजुबानों के खानपान को लेकर भी गर्मी से राहत दिलाने के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। मौसमी फलों के अलावा हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पशु पक्षियों के खाने में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन खनिज दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय के पास की हैं, जहां पक्षियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष क्षेत्र तैयार किया है। पक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सचिवालय के पास बने फ्लाईओवर के नीचे वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो लगातार हल्की फुहार छोड़कर आसपास के तापमान को कम करते हैं। यहां पक्षियों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए कई घोंसले लगाए गए हैं, साथ ही फीडिंग ट्रे में दाना पानी रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। ये पहल खास तौर पर उन घायल और कमजोर पक्षियों को ध्यान में रखकर की गई है, जिन्हें इलाज के बाद खुले वातावरण में रखने की जरूरत होती है। पक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने और उन्हें प्राकृतिक माहौल का एहसास कराने के मकसद से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं जून के महीने में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। बांदीपोरा गुरेज रोड पर स्थित राजदान पास पर जून के शुरुआती दिनों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। अमूमन इस महीने में बर्फ की सफेद चादर देखना मुश्किल ही होता है, लेकिन कश्मीर की इस खूबसूरत वादी में ऐसा देखने को मिल रहा है। राजदान पास से गुजरने वाले पर्यटक यहां अपनी गाड़ियों को रोककर इन खूबसूरत नजारों का दीदार करते नजर आए। उनके चेहरे पर इस मौसम में बर्फ देखने की खुशी साफ झलक रही थी। वो इस यादगार पल को अपने कैमरों में कैद करते भी दिखे।
1: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।

0: अध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक, जय बाबा बर्फानी के जयकारों के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की 3 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहां पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राथमिकता यही है कि जो यहां पर श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो। अगर हम बात करें यहां यात्री निवास भवन की, तो यहां पर जो कल आला अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो साफ सफाई का काम है, जो रंग रोगन का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यहां पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे शौचालयों की बात करें हम, भवनों की बात करें हम, जो ये हॉल्स हैं, यहां पर भी साफ सफाई का काम है, उसको भी यहां पर किया जा रहा है। निर्देश साफ है कि ये काम जो है जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है 15 जून के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो है कुछ समय पहले से यहां आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए। इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा गया है। रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है, तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटने लगते हैं। ऐसे में यहाँ यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था पूर्ण तरीके से चल रही है यात्रा के लिए, पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है और हर हरकत पर CCTV से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्सेस के साथ में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है।
3: यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाकचौबंद रहेंगे।
0: सूत्रों के अनुसार लगातार दूसरे साल भी इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि आतंकी संगठन यात्रा और उसके आसपास सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने की भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त जैसे ही जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शो केसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
0: हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों से संचालित की जाएगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं और इंतजार 2 जुलाई का है, जब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक अभियान की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चार धाम की जारी यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशन में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहां स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्री स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं। इस अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। कैरी मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। यूपी के संभल में विलुप्त हो चुकी इस झील को मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही तालाब और झीलों को संरक्षित करने की कार्रवाई के तहत विलुप्त हो चुकी 1100 बीघा की झील को विकसित कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारतल मदापुर गांव में इस काम का शुभारंभ SDM और नायब तहसीलदार ने पूजा अर्चना करने के साथ किया, जिसके बाद झील की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CSR फंड होने वाले झील का 225 बीघा हिस्से का काम 11 ग्रुप को दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में हुई रैली में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और झंडी दिखाए जाने के साथ ही सभी लोग साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का दल सड़क पर पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाता नजर आया। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका खास मकसद साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साल हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्र से निकाले गए नकदी को मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी गिनती की गई, जिसमें कुल 26,94,813 रुपए के अलावा 865 नेपाली नकदी और $2 मिले।
5: पर अब बात पानी की टंकी वाली पाठशाला की। हैदराबाद में ओवरहेड वाटर टैंक यानी कि पानी की एक पुरानी टंकी शिक्षा के मिसाल बन गई है। इस टंकी के नीचे की खाली जगह को एक पाठशाला में तब्दील कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत पोथुकुची श्रीनिवास ने की थी, जो एक पूर्व कॉरपोरेट कर्मचारी थे और उन्होंने वंचित बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और बरसों पहले कुछ बच्चों को पढ़ाई में मदद के साथ शुरू की गई ये कोशिश अब सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार चुकी है।

0: वर्षों पुरानी पानी की ये विशाल टंकी अब गरीबों का भविष्य संवारने की पाठशाला बन गई है। हैदराबाद के मियापुर इलाके के एक शांत कोने में एक पुराने ओवरहेड वाटर टैंक को बदलकर बनाई गई एक छोटी सी पाठशाला ने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला दिया है। मियापुर में बेकार पड़ी पानी की टंकी के बेहतर इस्तेमाल करने का ये आइडिया पोथी कुची श्रीनिवास का है। बरसों पहले कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर श्रीनिवास ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। साल 2008 में छात्रों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने पानी की टंकी के नीचे की जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया। अब ये पानी की टंकी गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का बड़ा जरिया बन गई है।
1: एक मुआयना या दौरा कर लेते हैं इस वाटर टैंक का। दिखने में बाहर से मैंने जैसे आपको बताया कि एक वाटर टैंक था, लेकिन अंदर से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर एक स्कूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, चेयर्स दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, किताबें दिखेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर टैंक का एक सिस्टम या मशीनरी होती है जो कई सदियों तक यहाँ पर यहाँ के इलाके में पानी पहुँचाता रहा, वो भी यहाँ पर इस क्लासरूम में दिखाई देगा। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहे। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, खाना, जो शिक्षा खाना, और आगे चलकर उनके जो कॉलेज की फीस होती है उसमें भी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ से बच्चे निकलकर इंजीनियर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, ऐसा यहाँ के जो ट्रस्ट चेयरमैन है पी श्रीनिवास जी ने बताया है। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही नहीं, यहाँ से ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तीन मालों का ये वाटर टैंक का जो स्ट्रक्चर है ये इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बच्चों को शिक्षा बरामद करने की पूर्व कोशिश की जा रही है। एक बड़ा आइडिया जो सामने आया है यहाँ के बच्चों के लिए बड़ी ताकत बनता दिखाई दे रहा है।
2: ये सरकारी स्कूल को कौन जा रहा है बोले तो गरीब लोग जा रहे हैं, डेली काम करने वाला और दिन भर डेली काम करने वाला और ऑटो ड्राइवर्स का ये सफाई करने वाला, ऐसा पेरेंट्स का बच्चे उधर जा रहे हैं। उनको 10 क्लास होने के बाद ये ड्रॉप हो रहे और पढ़े तो इंटरमीडिएट पढ़ता है, गर्ल बच्चों जल्दी जल्दी शादी हो रहे हैं। इसीलिए मैं सोच के ये क्या करना, ये बच्चों के लिए कुछ ना कोई एडुकेशन दिया तो अच्छा होता बोल के सोच के ऐसा ये काम शुरू किया।
3: तो 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक, ये 2003 से 2007 से अभी तक दो ये पूरा 90% काम मिल गया, और 1200 तक पॉलिटेक्निक पढ़ा है वो भी काम कर रहा है। वो अच्छा स्टोरी बोलना बोले तो मैं इधर खाना भी देता बच्चों को हम लोग, क्यों बोले तो ये कॉलेज होने के बाद आता है ऐसा भूख लगता है बच्चों को, गरीब बच्चा है ना, भूख भी लगता है, घर जाने के 8 बजे तक होता है। ऐसा सेंटर हमारा 26 सेंटर है तेलंगाना स्टेट में।
0: पानी की टंकी पर बनी ये पाठशाला 3 मंजिलों में फैली हुई है। पहली 2 मंजिलों में कमरे हैं, वहाँ बच्चों की कक्षाएं लगती हैं। पहली मंजिल पर एक कंप्यूटर लैब भी है जहां बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इस पाठशाला में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 1500 छात्र इस पाठशाला का लाभ उठा चुके हैं।
4: जब से मैं 9th क्लास से ट्रस्ट का आरम्भ, मेरा जो भी कपड़ों का नहीं तो और जो भी चीज रहते ना बोले तो बुक्स पेंस वो सब रहते ना वो सब पूरे ट्रस्ट में दिया था सर, और मेरा पॉलसेट एग्जाम लिख दिया था सर आफ्टर 10th। आफ्टर ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में लिखने के बाद मेरे को एक जो रैंक आया था सर, वो अपने को कितने कम रैंक आए तो उतने अच्छे सीट मिलते अपने को, बोले तो मेरे को 19,000 आया था सर। 19,000 में मेरे को JOE टॉप मोस्ट कॉलेज आया था सर, उसमें से मेरा 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया, अभी मैं बीटेक पढ़ रहा हूँ।
0: चौकीदारों, घरेलू कामगारों और कम आय वाले परिवारों के बच्चे हर शाम यहाँ पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ से पढ़े कुछ छात्रों ने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली है, और उनमें से कई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर पेशेवर और सफल कामकाजी बन चुके हैं, जबकि कुछ पूर्व छात्र बड़ी कंपनियों में 20 लाख सालाना से ज्यादा के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
3: शिक्षा सेतु बोल के हम लोग नया प्रोग्राम शुरू किया। ये शिक्षा सेतु बोले तो स्कूल में दो घंटे ज्यादा रहना, बच्चा 10 क्लास बच्चा स्कूल 4:30 बजे को खत्म होने तो 6:30 बजे तक स्कूल में रहना। वो टाइम में हम एक टीचर को बन रख के उनको सपोर्ट करते, वो दिन क्या पढ़ा है वो पूरा फिर रिवीजन करता है। ऐसा हॉलीडेज हुआ है तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चल रहा है। ऐसा 300 बच्चे ये साल में ये पॉलिटेक्निक पढ़ रहे।
0: इस पाठशाला में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि छात्र छात्राओं के मनोरंजन का भी इंतजाम है। पढ़ाई के बाद ये छात्र शतरंज और कैरम गेम के जरिए मनोरंजन भी करते हैं, जिससे यहाँ उनका मन और भी रमता है। निशुल्क शिक्षा की शुरुआत श्रीनिवास पोथुकुची के घर से हुई। साल 2003 में श्रीनिवास ने अपने पिता के नाम पर पोथुकुची सोमा सुंदरा सामाजिक कल्याण एवं धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने अपने घर से ही छात्रों को निशुल्क पढ़ाना शुरू किया और बाद में उन्होंने एक पुराने पानी के टैंक को उपयोग में लाकर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, जो अब प्रसिद्ध कक्षा बन चुकी है। समय के साथ ये ट्रस्ट आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। शिक्षा के अलावा यह संगठन छात्रों को ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन, कोचिंग, कक्षाएं और दैनिक आवश्यकताओं में भी सहायता प्रदान करता है। शाम की कक्षाओं के बाद छात्राओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था करता है। कभी लोगों की प्यास बुझाने वाली ये पानी की टंकी अब शिक्षा के प्रचार प्रसार की नई मिसाल बन गई है। इस पानी की टंकी से कुछ बच्चों की मदद के साथ शुरू हुई ये कोशिश आज सैकड़ों छात्रों के सपनों को एक नई उड़ान दे रही है, जो इन बच्चों की आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के पीछे जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 303 अंक गिरकर 74,346 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 77 अंकों की गिरावट के साथ 23,405 पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,850 रुपए गिरकर 1,59,600 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,500 रुपए लुढ़क कर 2,69,500 रुपए पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 31 पैसे कमजोर होकर 95.67 के स्तर पर बंद हुआ।
5: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
5: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रामी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
9: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है।
10: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
9: उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेटियों के अधिकारों को लेकर आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। कानून के अनुसार बेटियों का पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाहित या फिर अविवाहित होने से संपत्ति के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला एक अहम फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटी किसी कल्याणकारी योजना के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसकी शादीशुदा स्थिति को आधार बनाकर उसे उस योजना के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने कहा है कि यह मानना कि शादीशुदा बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता पिता पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है संवैधानिक रूप से गलत है। इसमें यह बात नोट की गई है कि आज की सामाजिक हकीकत में कई शादीशुदा बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं या उन पर ही निर्भर रहती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली एक महिला की आवंटन अनुकंपा की अपील मंजूर कर दी। दरअसल याची महिला को उसकी मां की मौत के बाद अनुकंपा के तहत उचित मूल्य की राशन की दुकान का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, ये दलील देकर कि वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में राशन की दुकान याचिकाकर्ता की मां को आवंटित की गई थी। मार्च 2024 में मां की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी ने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो अपनी मां को दुकान चलाने में मदद करती थी और चार बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अधिकारियों और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी पर इस आधार पर खारिज कर दी कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी परिवार की परिभाषा में नहीं आती। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताया। बेंच ने फैसला सुनाया कि बेटी शब्द में शादीशुदा बेटी को भी शामिल माना जाना चाहिए, बशर्ते वो ये साबित कर दे कि वो मृतक डीलर पर निर्भर थी और स्थानीय निवास सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के भीतर याची महिला के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया जाए। जाहिर है अदालत के इस फैसले से पूरे देश में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
11: फैसले को लेकर के काफी खुश हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभार करती हूँ इतना अच्छा बेटियों के पक्ष में फैसला देने के लिए। समाज कहता है कि बेटियां पराया धन है, लेकिन आज इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम बेटियां कहीं भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हक पाने में हम कहीं भी कम नहीं है।
12: जब एक बेटे की शादी हो जाती है तब भी वो एक बेटा रहता है और माता पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद वो पराई क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता? सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो अनुकंपा नियुक्ति की उतनी ही अधिकारी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कहा भी गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, जो सरकारी विभाग थे, उनमें वही पुराने नियम चलते थे और अगर बेटी का विवाह कर दिया जाता था तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सिर्फ बेटा होता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। यहाँ पे ये बात सिर्फ एक बेटी के नौकरी की नहीं, ये बात उस बेटी उस महिला की गरिमा और सम्मान की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी महिलाओं और सभी बेटियों के लिए स्वागत योग्य।
13: जैसे कि पिता की संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हक दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकती हूँ मैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं लेकिन बेटियों को शक्ति किस तरह से प्रदान की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो परिवारों में बंटने वाली बेटी धुरी बनती है, दो परिवारों की धुरी बनती है, समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बेटी के विवाह हो जाने के बाद माता पिता और परिवार से उसका संबंध खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन वहां गुजरता है। तो मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये शानदार सा कदम आगे लिया है।
14: मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो आज का जो फैसला आया कोर्ट के द्वारा, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समानता की ओर हमारे कदम और बढ़ा रहा है और सच्चाई तो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहे घर के बेटे को मिले या बेटी को, जिम्मेदारी उतनी ही होती है, जितना बेटा निभाता है उतनी बेटी भी निभाएगी और ये बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह के फैसले समाज में जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर अनुकंपा नियुक्ति को में बेटी का रोल नहीं रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसको लायक नहीं समझते। ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है, चाहे उनकी शादी हो जाए और या वो एक परिवार से जुड़ी हो, और परिवार को भी उन्हें अपना मानना होगा और उन्हें सामने वाले जो माता पिता है उनकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उन पे आई है। और ये एक मजबूती भरा फैसला है, आज के जमाने में सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सभी वर्ग हो।
15: अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है और परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब सबसे योग्य और जिम्मेदार सदस्य को यह अवसर मिले, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। और अगर सिर्फ वैवाहिक होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अलग रखा जा रहा था तो यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि यदि परिवार की जिम्मेदारी बेटी उठा रही है तो वही सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसे विवाहित होने के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और आज की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की देखभाल और आर्थिक सहायता कर रही हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं और समाज के इस बदलते परिवेश में उन्होंने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत अभिनंदन।
5: आमिर खान की तीसरी शादी की तारीख तय हो गई है। फिल्म जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
6: बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शादी की तारीख भी अनाउंस कर दी। जानकारी के अनुसार आमिर खान 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं। ये शादी काफी सादे तरीके से होगी और इसमें केवल करीबी लोग ही शामिल होंगे। आमिर और गौरी के बीच उम्र का 14 साल का फासला है, बावजूद इसके उनके बीच काफी मजबूत रिश्ता है। उन्हें अक्सर अलग अलग इवेंट्स में साथ भी देखा गया है।
16: पागल, तुम यहाँ पे रहो ना, जाओ खेलो कूदो शैम्पू पी।
6: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज से पहले ही चर्चा में है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहले दिन के टिकटों पर 50% तक की छूट दी जा रही है।
17: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी,
6: माना जा रहा है कि इस ऑफर से सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। करीब 50 से 55 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म के लिए शानदार ओपनिंग बेहद अहम है।
18: तुमसे प्यार नहीं करता,
19: बहुत ज्यादा प्यार करता है। He wants to make love to me all the time.
6: अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखाती है।
20: Are you single?
21: Fully single.
22: वो जिज्ञासा करी लो पॉलिटिकल आसामी बुझी निमाई बाबू घर नड़िया बोली ले।
6: बंगाली सिनेमा एक बार फिर इतिहास के पन्नों को जीवंत करने जा रहा है। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की नई फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्री टीजर जारी हो चुका है। ये फिल्म महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के चर्चित उपन्यास पाथेर दाबी की शताब्दी को समर्पित है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह और विचारों की क्रांति को दर्शाने वाली इस फिल्म में अबीर चटर्जी, मिमी चक्रवर्ती और टोटा राय चौधरी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।
23: अरे आई एकदम बाप पे गई है, पक्का ना?
6: कंगना रनौत की नई फिल्म भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है।
1: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही।
18: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग, है ना?
6: फिल्म आतंकी घटना के बीच उन आम लोगों की बहादुरी को सामने लाती है जिन्हें इतिहास अक्सर भूल जाता है।
20: तो लोग शांत हो जाएंगे, प्रोसीजर यानी प्रोटोकॉल फॉलो करो।
23: टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है?
6: ट्रेलर में कंगना एक नर्स की भूमिका में है जो जान जोखिम में डालकर मरीजों की रक्षा करती नजर आती है। देशभक्ति भावनाओं और रोमांच से भरपूर ये फिल्म मेडिकल स्टाफ और आम नागरिकों के साहस को सलाम करती है। ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
24: सभा की उपस्थिति में और अधिकार उनका।
25: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है। नए दोस्त मजेदार लगते हैं।
6: शाहिद कपूर, प्रीति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेलर एक ऐसे रिश्ते की कहानी दर्शा रहा है जहां प्यार, दोस्ती और कमिटमेंट के बीच लगातार उलझन बनी रहती है।
25: और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है।
6: शाहिद के किरदार और दोनों अभिनेत्रियों के बीच बनते बिगड़ते समीकरण कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। हालांकि ट्रेलर ज्यादा खुलासा नहीं करता, लेकिन रिश्तों का ये कंफ्यूजन दर्शकों की उत्सुकता जरूर बढ़ा रहा है।
25: तुझे बुरा ना लग जाए,
26: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूं या नहीं।
6: ये फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
5: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सामूहिक प्रयास सफलता की राह आसान कर देती है। इसकी मिसाल हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत बनी। इस ग्राम पंचायत ने प्रगति की राह पर बढ़ने की ठान ली तो उसमें सबका साथ मिलता चला गया, जिससे कि ये ग्राम पंचायत राज्य की ही नहीं बल्कि देश की तीसरी स्वच्छ और हरियाली वाली पंचायत चुनी गई।

0: से किसी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है, उसका उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का लोहारड़ी पंचायत। हरी भरी वादी में बसी अपनी पंचायत के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए यहाँ के लोगों ने खुद को झोंक दिया। और आप जब इन रास्तों से गुजरते हुए इस पंचायत में पहुँचेंगे तो हर तरफ आपको चमक ही चमक दिखाई पड़ेगी। रास्तों से लेकर घर द्वार सब कुछ आपको एकदम साफ सुथरे मिलेंगे। प्लास्टिक कचरे के निष्पादन से लेकर शौचालय निर्माण और हरियाली को लेकर किए गए प्रयास का इस लोहारड़ी पंचायत को बड़ा इनाम मिला है। इस पंचायत को प्रखंड या जिला या राज्य नहीं बल्कि क्लीन एंड ग्रीन पंचायत के रूप में देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है।
1: हमारी पंचायत में लगभग 1500 के करीब आबादी है और इस पंचायत में 5 वार्ड हैं। पंचायत ने एक बीड़ा उठाया था प्लास्टिक के एकत्रीकरण के लिए, जिसके लिए पंचायत के माध्यम से एक व्यक्ति भी डिप्यूट किया गया है। सड़क किनारे पौधारोपण करवाया गया, प्लास्टिक के एकत्रीकरण करवाया गया, स्वच्छता से जुड़ी हुई जागरूकता अभियान चलाए गए और उसके साथ ही हर घर में जो है शौचालय निर्माण का बीड़ा जो है इस पंचायत ने उठाया, जिसमें इस पूरी जो पंचायत कार्यकारिणी थी, पंचायत प्रधान, पंचायत प्रधान, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, सभी महिला मंडल, खंड विकास कार्यालय, सभी का हमें सहयोग मिला, तब जाके जो है वो इस पंचायत के अथक प्रयासों से आज पंचायत इस उपलब्धि पर पहुंची है।
0: बलह विकास खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लोहारड़ी ने जो ये उपलब्धि हासिल की है उसमें हर किसी ने अपना योगदान दिया है। खंड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सदस्यों और महिला मंडल के साथ ही यहां के बाशिंदों ने भी इस उपलब्धि को हासिल करने में अपना पूरा योगदान दिया है।
2: हमारी पंचायत जो फर्स्ट टाइम पंचायत बनी थी, अलग हुई थी 78 पंचायत से लोहारड़ी पंचायत, तो यहाँ पे जो पंचायत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जो है वो हर घर में घर से एक प्लास्टिक चुनने वाला व्यक्ति रखा था, जो प्लास्टिक हर गांव से चुनता था और एक जगह पे इकट्ठा करके रख उसको ये डिस्पोज ऑफ करते थे। और हमारे यहाँ पे 3 महिला मंडल है, धार, लोहारड़ी और बनौण। इन तीनों महिला मंडल की लेडीजों ने मिलकर के जो है पौधारोपण किया, जिससे पूरी पंचायत में जो है वो काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है।
3: पंचायत में बड़े अच्छे काम हुए हैं, जैसे प्लांटेशन किया हुआ है, हरियाली की है, स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है पंचायत वालों ने। पंचायत की जो टीम थी उसने काफ़ी प्रोग्रेस की हुई इस पंचायत में। 3-3 महिला मंडल जुड़े हुए हमारे रिसेंटली यहाँ पर, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। घर घर जाके उनको सब कुल लोगों को, लेडीजों को समझाया गया हुआ कि कचरा कैसे रखना है, किस तरह से रख रखाव करना।
0: इस लोहारड़ी पंचायत का गठन 2020 में हल्यातर पंचायत से अलग कर किया गया। नई पंचायत बनने के बाद से ही लोहारड़ी को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया। प्रखंड के बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल करने के बाद अब केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के समग्र विकास के 9 पैमानों में से एक क्लीन एंड ग्रीन पंचायत के पैमाने पर खरा उतरकर लोहारड़ी ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया।
4: विकास खंड बल की ग्राम पंचायत लोहारड़ी ने पंचायत विकास सूचकांक 2.0 की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 9 थीम पर जो है कार्य होना होता है। ग्राम पंचायत ने इसके थीम नंबर 5, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन का दर्जा प्राप्त होता है, उस पर सतत कार्य किया। इस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया गया।
0: स्वच्छता और हरियाली की अलख जगाने में लोहारड़ी पंचायत को महिला और युवक मंडलों के साथ ही हर किसी का पूरा सहयोग मिला। पंचायत में प्लास्टिक कचरे को जमा करने से लेकर पौधारोपण तक के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पंचायत में सौर ऊर्जा से सिंचाई, कुहलों के निर्माण, स्वच्छ जल, स्वच्छ ईंधन, शौचालय निर्माण पर पूरा ध्यान दिया गया, जिसमें केंद्र से लेकर प्रदेश और जिला से लेकर प्रखंड तक के स्तर पर पूरा सहयोग मिला, जिससे इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने में मदद मिली। लोहारड़ी पंचायत में धार, लोहारड़ी और बनौण नाम से 3 महिला मंडल हैं, जिसने स्वच्छता और हरियाली को लेकर अलख जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई।
5: साफ सफाई और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया और पौधारोपण भी किया और पंचायत के बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी तो हम तीसरे नंबर पर आए हैं हमारी पंचायत। हम चाहते हैं कि हमारे काम आगे भी ऐसे होते रहें और हम पहले नंबर पर आए।
0: क्लीन एंड ग्रीन पंचायत के रूप में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए लोहारडी पंचायत को दिल्ली में 25 लाख रुपए बतौर पुरस्कार मिलेंगे। इस पैसे को भी पंचायत के विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: Tune in how to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: नॉर्विचस में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंदा की बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: नॉर्वे चेस के आठवें राउंड में दुनिया के नंबर वन चेस प्लेयर नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन को भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने हराया। प्रज्ञानंद के टूर्नामेंट में पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ ये दूसरी जीत है। इसके साथ ही वो भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में कार्लसन को दो बार हराया। इससे पहले 2007 में विश्वनाथन आनंद ने कार्लसन को लिनारेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगातार दो मुकाबलों में मात दी थी। बीसीसीआई ने अक्टूबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया। भारतीय टीम अपने इस दौरे पर न्यूजीलैंड के साथ कुल 12 मुकाबले खेलेगी जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं। 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में पहले टी20 मैच से मुकाबले की शुरुआत होगी। 22, 24, 27, 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर को टी20 मुकाबलों के खत्म होने के बाद 4 नवम्बर से वनडे मैच खेले जाएंगे। 4, 7, 10, 13 और 15 नवंबर को वनडे के बाद 19 से 30 नवंबर तक पहला टेस्ट जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब श्रीलंका में 9 जून को होने वाली ट्राई सीरीज पर है। भारत श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीम के बीच होने वाली सीरीज को लेकर वैभव अपने गाँव से बेंगलुरु जाने के लिए रवाना हो गए। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के अपने पैतृक गांव ताजपुर मोतीपुर पहुंचे थे जहां उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगने लगा। हालांकि चुनिंदा लोगों को ही उनसे मिलने दिया गया। इसके बाद बुधवार सुबह वो वहां से अपनी कार से पटना के लिए रवाना हो गए जहां से उन्हें बेंगलुरु के लिए जाना था। आईपीएल के खत्म होने के बाद सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विराट कोहली की उपलब्धियों और उनकी टीम आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी बीच पर एक भव्य सैन आर्ट बनाई। रेत के इस कलाकृति में विराट कोहली को ट्रॉफी के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही सुदर्शन पटनायक ने लिखा है, वी लव विराट। लव लिखने के लिए लव साइन का इस्तेमाल किया गया है और उसी में विराट को ट्रॉफी के साथ दर्शाया गया है।
1: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट आप कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं व्लॉग और भेज दें हमें 7303-409922 पर। आप व्हाट्सएप करें, हम दिखाएंगे इसे TNT पर। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज पथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: भी में पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: क्या लक्ष्मी माता की पूजा से कपड़े का व्यापार सुधर जाता है? क्या हनुमान जी की पूजा करने से व्यापार की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं? क्या शनिदेव का मंत्र पढ़ने से किसी तरह के व्यापार में फायदा होता है? कैसे बनाएं व्यापार को बेहतर, कैसे पाएं व्यापार में सफलता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period,

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बादलों की, जिन्होंने मानसून से पहले ही मैदानी इलाकों का मौसम बदल दिया है। जून का पहला हफ्ता है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आगे मौसम का क्या रुख रहने वाला है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही मानसून की रिपोर्ट देंगे, जो 24 घंटे के अंदर केरल में एंट्री करने वाला है। बेहिसाब गर्मी से परेशानी तो है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए एसी हेलमेट दिया गया है। क्या है ये प्रयोग, आपको बताएंगे। और आखिर में आपको लेकर चलेंगे कुल्लू मनाली की तस्वीरों में, जहां की तस्वीरें, ठंडे मौसम में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत बर्फीली तस्वीर भी आज आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जून में बरस रहे बादलों से। भीषण गर्मी से जूझ रहे देश के कई हिस्सों के लिए बादल राहत बनकर आए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी और बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। वहीं केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक भी तुरंत होने वाली है। देखिए रिपोर्ट।

0: मौसम के मोर्चे पर ये राहत वाली तस्वीर है। मैदानी इलाकों में मॉनसून के आने में अभी देर है, लेकिन उससे पहले बादल आए, गरजे और जमकर बरसे। राजस्थान के अलवर जैसे इलाके हों या गुजरात के खेड़ा और नवसारी, प्री मॉनसून यानी मॉनसून के पहले वाली बरसात से गर्मी रफू चक्कर हो गई और गर्म हवा से जूझ रहे इलाके को बारिश ने पूरी तरह भिगो दिया। हवा की रफ्तार ऐसी थी कि पेड़ उखड़ गए, पानी इतना बरसा कि सड़कें बंद हो गईं। नौतपा में जब भीषण गर्मी पड़ रही हो, ये मौसम की मेहरबानी नहीं तो क्या है। राजस्थान के अलवर ही नहीं बल्कि चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर समेत कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। ये असर पश्चिमी विक्षोभ का है, जिसकी वजह से राजस्थान के 19 जिलों में अगले दो दिनों तक आंधी बारिश की संभावना है। इसकी वजह से राजधानी जयपुर में भी तापमान नीचे आ चुका है।
1: राजस्थान में लगातार एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। टेम्परेचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि पिछले कुछ दिनों में कोई भी राजस्थान का ज़िला हीट वेव के अंदर नहीं आया है, कहीं पे भी हीट वेव महसूस नहीं की जा रही है, तो ये एक राहत वाली बात सभी के लिए है। हालांकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी सक्रिय हुए हुए हैं, इनकी वजह से टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री नीचे है, पर अगर मैं अभी की बात करूँ तो जून के शुरुआती समय से ही आंधी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से 19 जिलों में अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये सिलसिला 5 जून तक चलने वाला है।
0: ऐसा कतई नहीं कि जून में गर्मी से निजात मिल गई है। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड में बारिश की वजह से तापमान कम हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली और लखनऊ में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो जयपुर और पटना में 39 डिग्री, भोपाल में 37 डिग्री और रांची में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 जून तक जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आंधी बारिश से मौसम खतरनाक हो सकता है। पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में भी मौसम खराब हो सकता है, जबकि पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य रहने वाले हैं। जून के पहले हफ्ते में बारिश इसी तरह गर्मी को कंट्रोल में रखने वाली है, दूसरे हफ्ते में भी हालात ठीक रहेंगे। हालांकि तीसरे हफ्ते में पारा फिर एक बार 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अच्छी खबर ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि इस हफ्ते उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बादल बरस सकते हैं।
2: देश में अब मॉनसून की आहट साफ सुनाई देने वाली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में जो मॉनसून है वो केरल पे दस्तक देने वाला है। काफी समय से लोगों को इंतजार था, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी और लोगों को मॉनसून ही जो है वो राहत देता, लेकिन मॉनसून में जो है वो देरी गई। हालांकि 26 मई की तारीख जो है वो मौसम विभाग द्वारा दी गई थी कि इस बार जो मॉनसून है वो केरल में कुछ दिनों पहले ही दस्तक देगा, लेकिन उसमें भी देरी गई और आखिरकार 4 जून यानी अगले 24 घंटों में जो मॉनसून है वो केरल के तट पर जो है वो दस्तक देने वाला है। और उसके साथ ही देश के अगर हम अलग अलग हिस्सों की बात करें, चाहे फिर वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों में भी जो है अच्छी खासी बारिश की जो है संभावना जताई जा रही है। 20 सेंटीमीटर के आसपास जो है बारिश होगी, लेकिन मॉनसून से जो राहत है वो लोगों को अब जो है मिलने वाली है। और इसी के साथ ही अगर हम उत्तर पश्चिमी, मध्यम और पूर्व दक्षिण की बात करें तो हर तरफ जो है अब मौसम बदलता हुआ शुरू होने वाला है।
0: यकीनन मॉनसून की केरल में एंट्री के बावजूद मैदानी इलाकों तक बारिश वाले बादलों के आने में वक्त लगेगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस दौरान एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने वाला है, जिसका असर समूचे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा।
3: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले एक वीक में नहीं हुई।
0: मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के मौसम को भी प्रभावित करेगा। धूल भरी आंधी चलेगी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, यानी मौसम कूल कूल रहने वाला है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और खुले आसमान के नीचे काम करने वालों पर भी पड़ता है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से राहत पहुंचाने वाले प्रयोग सामने आए हैं। वाराणसी में ट्रैफिक कर्मियों को एसी हेलमेट दिए गए हैं, तो वहीं दिल्ली में पक्षियों के लिए विशेष बर्ड हाउस तैयार किया गया है, जबकि सूरत के नेचर पार्क में वन्य जीवों को ठंडक और बेहतर देखभाल की सुविधा मिल रही है। प्रयास बताते हैं कि संवेदनशील सोच और छोटी पहल भी भीषण गर्मी में बड़ी राहत बन सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: आसमान जब आग उगले तो माथा गर्म हो ही जाता है, और जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक चौक चौराहों पर खड़े रहना है, सोचिए उनकी हालत क्या होगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की परेशानी कुछ कम हो, इसके लिए वाराणसी में ये नया प्रयोग है। सिर पर जो हेलमेट लगा है उसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग फैन है। ये पंखा रिचार्जेबल बैटरी से चलता है और एक बार चार्ज होने पर एक घंटा बैकअप देता है। यानी पुलिस वाले गर्मी के मौसम में जब ड्यूटी करेंगे तो उन्हें हीट स्ट्रोक का डर नहीं रहेगा, डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे। वाराणसी में पुलिस कर्मियों को ऐसे 100 एसी हेलमेट दिए गए हैं। इसके अलावा छाता और दूसरी जरूरी चीजों से भी उनको लैस किया गया है।
1: पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा निरंतर ट्रैफिक पे जोर दिया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा पैदल भ्रमण भी किया जाता है, सभी को ब्रीफ भी किया जाता है। इस ब्रीफिंग के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि जो कर्मचारी हैं वो निरंतर धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके तहत 1000 के आसपास छाते वितरित किए गए हैं, 600 सामान हेलमेट वितरित किए गए हैं, 100 हेलमेट ट्रैफिक डायरेक्टरेट से मंगवा कर जो एसी जिन में लगा है, जो सिर पर ठंडक प्रदान करते हैं, उनका वितरण किया गया है, ताकि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने ध्यान रख सके।
0: सूरज की तपिश जब धरती को झुलसाने लगे, सड़कों पर चिलचिलाती गर्मी चलने ना दे और दोपहर का हर पल कठिन परीक्षा जैसा महसूस होने लगे, तब जहन में एक ही बात आती है कि आखिर इस आग उगलते मौसम से बचा कैसे जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पारा लुढ़का है, गर्मी पर लगाम भी लगी है, लेकिन फिर भी इंसान हो या पशु पक्षी, हर जीव इस वक्त राहत की तलाश में है। मगर इस बीच देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां संवेदनशीलता और नई सोच के जरिए इस चुनौती का मुकाबला किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की इस तस्वीर ने प्रकृति प्रेमियों का ध्यान खींच लिया है। सचिवालय के पास फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खाली जगह को पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय में बदला गया है। भीषण गर्मी से बचाने के लिए ही दिल्ली सचिवालय के पास इस फ्लाईओवर के नीचे पड़ी बेकार जगह को एक बर्ड हाउस में तब्दील कर दिया गया है।
2: दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसान के साथ साथ बेजुबा पक्षी भी अब इस चिलचिलाती गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल करी है, उन्होंने पक्षियों के लिए एक अनोखा सा आशियाना बनाया। इस वक्त दिल्ली सचिवालय में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक जगह आपको नजर आ जाएगी, ऊपर आपको फ्लाईओवर का हिस्सा जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसके ठीक नीचे की अगर मैं बात करूं तो एक ये खाली पूरी जगह जो है वो रखी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा आशियाना जो है वो पक्षियों के लिए बनाया है।
0: बेतहाशा गर्मी में पक्षियों को राहत देने के लिए बड़ी संख्या में वहाँ घोंसले लगाए गए हैं, जिन्हें नारियल के रेशों से तैयार किया गया है। इसके अलावा मौसम की मार से बचाने के लिए लकड़ी से बने बर्ड हाउस भी दीवारों पर लगाए गए हैं। कुछ दूरी पर पक्षियों के दाने के लिए फीडिंग ट्रे भी टांगी गई है और उनके पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी है।
2: आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तापमान जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई जो है परेशान हो रहा है, लेकिन दिल्ली सचिवालय के परिसर में अब आपको पक्षियों के लिए एक अनोखी और संवेदनशील ये जगह जो है वो नजर आने वाली है कि गर्मी से किस तरीके से उनको राहत देने के लिए हर एक इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको ये छोटे छोटे जो घोंसले हैं वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है सभी पक्षी जो है आके आराम कर सकते हैं, किसी तरीके की जो धूप है वो यहाँ पर जो है नहीं नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको जो घोंसले हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे घर भी जो है वो नजर आ जाएंगे कि कभी पक्षियों को आराम करने का विश्राम करने का मन है तो घोंसले की जगह वो इस तरीके के छोटे छोटे घर में भी जो है जाकर जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की फीडिंग ट्रे दिख जाएगी। हालांकि अभी इसमें आपको दाने नजर नहीं आएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो जल्दी होगी। अभी ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, ट्रायल में है कि किस तरीके से ये फीडिंग ट्रे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी फीडिंग ट्रे घोंसले जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। प्रेचर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिया गया है और बात सिर्फ इस ठंडक की नहीं है बल्कि पक्षियों के रहने के लिए और भोजन की जो खास व्यवस्था की गई है हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर फीडिंग ट्रे जरूर नजर आ जाएगी के नीचे यहाँ पर इस तरीके की ट्रेस जो है लगाई गई है, मिट्टी के बर्तन जो है ये वो लगाए गए ताकि इसके अंदर साफ पानी पक्षियों के लिए जो है वो रखा जा सके। और जितने भी यहाँ पर जो पक्षी आराम करने आएंगे उनके लिए एक खास चीज और लगाई गई है, वो है इनके लिए छोटे छोटे खिलौने। अब ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आपको कुछ इस तरीके के खिलौने जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि बच्चे जो है वो खिलौने से खेलते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए भी कुछ इस तरीके के खास इंतजाम जो है वो किए गए, आप देख सकते हैं, ताकि वो इस पर बैठ के जो है यहाँ पर जितने भी पक्षी है वो आ सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे आपको जो खिलौने जैसे है झूले जो है झूले आपको जो है वो नजर आने वाले, ताकि यहाँ पर हर एक तरीके से जो भी पक्षी आए उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके।
0: भीषण गर्मी में बर्ड हाउस का तापमान कम रखने के लिए मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो पानी की बेहद ही बारीक बूंदों को कोहरे या धुंध के रूप में छिड़कती हैं। पानी की महीन फुहार से आसपास के वातावरण को ठंडा रखने में मदद भी मिल रही है।
2: साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिस्ट स्प्रे जो वाटर स्प्रे जो है मिस्ट स्प्रे जो है स्प्रिंकलर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, ताकि अच्छी खासी जो कूलिंग है वो यहाँ पर बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से हर एक इंतजाम जो है पक्षियों के लिए यहाँ पर किए गए, ताकि सुरक्षित और अच्छा एक वातावरण जो है वो उनको यहाँ मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, वाकई में इंसानों के साथ अब पक्षियाँ भी जो है वो परेशान हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक इंतजाम आपको जो है वो नजर आने वाले हैं कि किस तरीके से वाटर मिस्ट स्प्रिंकलर जो है यहाँ लगाए गए, जो लगातार हल्की फुहारे जो है छोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आसपास के तापमान में भी जो है यहाँ पर कमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि बाहर का जिस तरीके से तापमान है, मैं जिस तरीके से अभी बाहर से आई हूँ तो काफी तेज गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही ठंडक जो है वो मिलने वाली है कि किस तरीके से पक्षियों के लिए एक अच्छा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दिया गया है।
0: दिल्ली के चांदनी चौक में पक्षी अस्पताल है, जहां से घायल पक्षियों को यहां लाने की तैयारी है। खुले और हरियाली से भरपूर इस वातावरण में उनके स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए किया गया ये छोटा सा प्रयास उनके जीवन में बड़ी राहत लेकर आ सकता है। शायद यही कारण है कि ये पहल केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति हमारी संवेदना का प्रतीक बन गई है। गर्मी के उस मौसम में पक्षियों के लिए ये छोटा सा प्रयास उनके जीवन में बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऐसे में दिल्ली सचिवालय की तरफ से ये पहल काबिले तारीफ है, जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। बनारस और दिल्ली में व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन दूसरी ओर गुजरात के सूरत स्थित सरथाना नेचर पार्क में भी विशेष कोशिशें हो रही हैं। यहाँ वन्य जीवों के बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकलर और पानी से भरे टैंक लगाए गए हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे वन्य प्राणियों के लिए नियमित अंतराल पर ठंडा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। फलों में तरबूज जैसी रसदार चीजें शामिल की गई हैं। अतिरिक्त पोषक तत्व भी दिए जा रहे हैं। बड़े पक्षियों को समय समय पर स्नान कराया जाता है। वहीं छायादार ढांचे और घास से बने आवरण उन्हें सीधे ताप प्रभाव से बचाने का काम कर रहे हैं। इन तीनों मिसालों में एक बात समान है, जिम्मेदारी। कहीं तकनीक के सहारे राहत पहुंचाई जा रही है, तो कहीं संवेदनशीलता के साथ। दिल्ली से मनीषा लड्डा और बनारस से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खूब रौनक दिखाई दे रही है। कुल्लू मनाली से लेकर कश्मीर के खूबसूरत घाटियों तक लोग सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। हालांकि मौसम की मेहरबानी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। कहीं बर्फबारी सैलानियों को आकर्षित कर रही है, तो कहीं भारी बारिश और भूस्खलन सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: ये जो सड़क है गर्मी से राहत दिलाने वाली है, क्योंकि इसी रास्ते पर कुछ दूर आगे मनाली है। मैदानी इलाकों में गर्मी से जूझ रहे लोगों ने हिमाचल की ठंड वाली जगहों का रुख करना शुरू कर दिया है। स्कूल भी बंद है और पहाड़ी राज्यों में मौसम भी शानदार है, तो क्यों ना इसका लुत्फ लिया जाए। कुल्लू हो या शिमला, ये शहर सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जो पहुंच गए हैं उनकी खुशी देखने लायक है। कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है। इलाका अभी ही सैलानियों से गुलजार है।
1: देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में, तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है। और कम बश यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
0: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है, और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की। जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
2: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्री टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है, और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
3: बदलते मौसम पर हमारे इस खास पेशकश में अभी इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की जानी मानी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मदर डेयरी विशेष पहल की शुरुआत करने जा रही है। एक ऐसी नेक शुरुआत जिससे दूध के खाली पैकेट अब कचरा नहीं बनेंगे। मदर डेयरी ने भारत का पहला ऐसा दूध का पाउच लॉन्च किया है जो मिट्टी में अपने आप गल जाएगा, यानी नेचुरली डिग्रेडेबल होगा। 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली NCR में मदर डेयरी के काउ मिल्क वेरिएंट के पैकेट इसी नई पैकेजिंग में मिलेंगे। और इस नई तकनीक की खासियत यह है कि इस इस्तेमाल के बाद यह पैकेट मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को की मदद से प्राकृतिक तत्वों में तब्दील हो जाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Every game, every moment, tune in keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, non-stop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को बड़ा सम्मान, ग्रैमी अवार्ड से किया गया सम्मानित। दलाई लामा को ये पुरस्कार उनके विशेष ऑडियो एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए दिया गया, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। दलाई लामा को अवार्ड देते समय जाने माने संगीत निर्माता और लेखक कबीर गिल सहगल भी मौजूद, संगीत जगत में ऑस्कर के बराबर है ग्रैमी अवार्ड। इस खास एल्बम के निर्माण में भारतीय अमेरिकी मूल के कबीर गिल सहगल ने सह निर्माता के रूप में निभाई अहम भूमिका। पुरस्कार ग्रहण करते हुए दलाई लामा ने पूरी टीम का आभार व्यक्त किया, संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आंतरिक शांति और करुणा जगाने का एक सशक्त माध्यम करार दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ और मजबूत, देश को मिला रूस में बना S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का 4th स्क्वाड्रन। भारतीय सेना में इसे दिया गया है कोड नेम सुदर्शन चक्र, इससे और मजबूत हुई इंडियन एयरफोर्स की लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड। नवंबर 2026 में आने वाला है 5वां और आखिरी स्क्वाड्रन। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए $5.43 बिलियन का किया था सौदा। वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा गया है S-400। यह आकाश और MRSM जैसे भारत में बने सिस्टम के साथ मिलकर बनाता है एक मजबूत डिफेंस लेयर। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने निभाई थी अहम भूमिका, इसने 400 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली मिसाइलों और विमानों को बीच में ही रोक दिया था। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी केंद्र का एक्शन, पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर आधुनिक वाहनों से बदलने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजना स्वीकृत। मोदी सरकार ने गाड़ी के लोन पर 5% ब्याज छूट देने का किया फैसला, इससे पुराने वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने में मिलेगी आर्थिक मदद। हरियाणा पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल किया लॉन्च, पिछले 1 दशक में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेगी ई बसें, 1,725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है सरकार का मकसद, प्रदेश में प्रदूषण में भी आएगी कमी। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों को मिली सौगात, सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी की मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, आगरा बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से NCR जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, जल्द नो PUCC नो फ्यूल व्यवस्था लागू करेगी सरकार। बिहार सरकार की बड़ी पहल, सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में ईवी कार शामिल, पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत हुई पहल। दिल्ली पहुंची वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज, हुआ शानदार स्वागत। राष्ट्रपति भवन में लाओ पीडीआर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमविहेन का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात। पंचकूला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, अफगानिस्तान के खिलाफ चंडीगढ़ में होने वाले टिकमा टेस्ट मैच से पहले टेका माथा और टीम की सफलता की कामना की। फूलों की खुशबू से महकता है जामनगर जिले का मोखाड़ा गांव, यहां पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती को अपना रहे किसान। गांव के लगभग 50 से 60 किसान अपने खेतों में कर रहे रंग बिरंगे फूलों की खेती, कम जमीन में अधिक मुनाफा कमाने में कामयाब। खेतों में गेंदा, गुलाब और अन्य सजावटी फूलों की बड़े पैमाने पर की जा रही खेती, फूलों की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति भी हुई मजबूत। करनाल में रहने वाली सीता ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल, ड्रोन पायलट बन अब किसानों के खेतों में करती है स्प्रे, 350 रुपए प्रति एकड़ की कमाई। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर है सीता, देश भर में बनाई अपनी एक अलग पहचान। अमरावती में दिखा मलखंब का अनोखा रोमांच, हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत करतब। छात्रों के तैराकी के दौरान प्रस्तुत किए मलखंब के पारंपरिक कौशल बने आकर्षण का केंद्र, हाथों में जलती मशाल लेकर पानी के भीतर और सतह पर बनाया संतुलन, दिखाई करतब। मलखंब के अलावा लाठी काठी, मार्शल आर्ट्स और अन्य पारंपरिक खेलों की भी देखने को मिली झलक, लगभग 550 तैराकों ने सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, वाटर पोलो, वाटर मलखंब और अन्य जल क्रीड़ाओं के माध्यम से दिखाई प्रतिभा। पिछले कई सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है शानदार मलखंब शिविर, युवाओं और बच्चों में मैदानी खेलों के प्रति रुचि विकसित करना है मकसद। पैतृक गांव समस्तीपुर पहुंचे वंशी, हुआ शानदार स्वागत, बिहार विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भवके ने किया सम्मानित। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पुरुषोत्तम मास विभुवन संकष्टी चतुर्थी का पर्व की रौनक, विधि विधान से मनाया गया धार्मिक उत्सव। सिद्धिविनायक मंदिर में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बप्पा को दूर्वा, गुड़ और तिल के लड्डू अर्पित किए, हुआ गणपति बप्पा का विशेष अभिषेक। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर विशेष आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बप्पा के दर्शन के लिए मंदिर में दिन भर रही भक्तों की भारी भीड़, 3 साल में एक बार आती है विशेष तिथि। पवित्र पर्व पर बप्पा का किया गया भव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर को रिकॉर्ड चढ़ावा, दान में मिले करीब 30 लाख रुपए, डॉलर और नेपाल रुपए भी शामिल। मंदिर में 26,94,813 रुपए, 865 नेपाली नोट और 2 डॉलर का दान, कड़ी सुरक्षा में हुई नोटों की गिनती। तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे रिंकू राजगुरु, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने की श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। पुरी से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आरसीबी की जीत पर रेत से बनाई कलाकृति, विराट को दी जीत की बधाई। कांचीपुरम के वरदराजन पेरुमल मंदिर में वैकाशी ब्रह्मोत्सवम कार उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कांचीपुरम में भगवान वरदराज पेरुमल और उनकी पत्नी उनकी निकाली गई शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाया जयकारे। वैकाशी ब्रह्मोत्सवम के दौरान मंदिर में वेदों का पाठ, भजन और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सवम पर जुलूस की तैयारियां तेज, जुलूस के लिए रथ तैयार। तमिलनाडु के मंत्री एस रमेश ने पेरुमल मंदिर का लिया जायजा, जुलूस को लेकर अधिकारी को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे अधिक पहुंच रहे श्रद्धालु, आंकड़ा पहुंचा 10.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 8.5 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भक्तों का मेला, अब तक 43,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। देश के कई इलाकों में बढ़ रही प्रचंड गर्मी के बीच पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का मौसम, बांदीपोरा में बर्फबारी से खुश हुए सैलानी, कैमरों में कैद किए नजारे। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे लोग। अब तक मई महीने में करीब 70,000 वाहन कुल्लू पहुंचे, कारोबारियों के भी खिले चेहरे। गोरखपुर में सीएम योगी लगाए जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश। यूपी के कुशीनगर में पड़ने वाले फाजिल नगर का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने नाम बदलकर पावागढ़ रखने का किया ऐलान, भगवान महावीर से जुड़ी है जगह। बीसीसीआई ने इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया, इस दौरे पर 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी भारतीय टीम। 22 अक्टूबर से होगी सीरीज की शुरुआत, जबकि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगा दौरे का समापन। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का कमाल, नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। कतर के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने रचा इतिहास, फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने जमशेद। 20 साल के याकूब मेंसिक पहली बार फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंचे, चेक रिपब्लिक के 20 साल के खिलाड़ी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में बनाई जगह। डॉन 3 विवाद में रणवीर सिंह को मिली राहत, एक्टर पर से हटा बैन, तमाम सेलिब्रिटीज के विरोध के बाद फॉइस ने लिया यूटर्न। मणिपुरी फिल्म बूम में दुनिया भर में भारत का नाम किया रोशन, न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव में जीते 3 पुरस्कार। निर्देशक सुजीत मुखर्जी की फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्रीटीजर जारी, महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के चर्चित उपन्यास पाथेर दाबी की शताब्दी को समर्पित है फिल्म। आमिर खान की लगान फिर मचाएगी धमाल, 25 साल बाद 12 जून को बड़े पर्दे पर दोबारा होगी रिलीज, खास ट्रेलर जारी। आमिर खान 5 जुलाई को मूवी में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से करेंगे शादी, फिर सिर्फ करीबी लोग होंगे शामिल। उत्तर भारत में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत, केरल में कल मानसून आने की संभावना। केरल के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट तेज, हवाएं चलने की भी संभावना। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ेगा तापमान, अगले कुछ दिनों तक तीव्र लू चलने की चेतावनी। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश के आसार, प्रशासन ने की लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। फिर लौट रहा है ही मैन का जादू, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। फिल्म में ही मैन की भूमिका में नजर आएंगे निकोलस गैलेडजीन, बड़े पर्दे पर नजर आएगा इस भव्य लाइव एक्शन। करीब 1900 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी है फिल्म, VFX एक्शन सीक्वेंस और विशाल सेट्स पर हुआ है भारी खर्च। 1980 के दशक के साइकॉन को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ किया जा रहा है पेश, फिल्म में इद्रिस अल्बा, जेरेड डेटो स्केलेटर और कैमिली मेंडेस टीला जैसे कलाकार भी मौजूद। 1980 के दशक की शुरुआत में एक मेटल एक्शन फिगर के तौर पर हुई थी ही मैन की शुरुआत, बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ था ये एक्शन हीरो। अमेरिका के वर्जीनिया में नेशनल हॉकी लीग का सालाना स्टैनली पब चैरिटी इवेंट आयोजित, जिसमें दर्जनों प्यारे पपीज हुए शामिल। लोगों को देखने को मिला इन क्यूट पपीज का शानदार मैच, छोटे से प्लास्टिक के रिंग पर हॉकी से जुड़े खिलौनों के साथ खेलते दिखे NHL की सभी 32 टीमों की अगुवाई करने वाले पब्स। इस रिंग में बनाया गया था गोल पोस्ट, शरारत करने वाले पब्स के लिए एक पेनल्टी बॉक्स भी था मौजूद। स्टैनली पब इस साल का 3rd संस्करण है और इसे अप्रैल और मई में फेयरफैक्स वर्जीनिया में फिल्माया गया था। 2026 का स्टैनली कप प्लेऑफ और फाइनल के दौरान किया जाएगा इस इवेंट का प्रसारण और स्ट्रीमिंग। शंघाई में आयोजित की गई आधुनिक फायर फाइटिंग ड्रिल, इसके तहत स्मार्ट फायर फाइटिंग तकनीकों को सीरीज की गई प्रदर्शित। इस ड्रिल में रोबोट्स भी हुए शामिल, इसमें बाढ़ के मौसम के आपात स्थितियों और आग लगने के जोखिम वाले खतरों को ध्यान में रखकर किया गया अभ्यास। बाढ़ की स्थिति में ड्रोन से पानी में उतारी गई बोट, सड़कों पर भरे पानी में रेस्क्यू अभ्यास की हुई सफल प्रैक्टिस। पूरे शहर से 150 से ज्यादा फायर फाइटर ने लिया हिस्सा, ऊंची इमारतों में आग बुझाने की तकनीकों का किया गया परीक्षण। ऊंची इमारतों के मॉडल तैयार करके ड्रिल को दिया गया खास अंजाम, इस खास तौर से हाई राइज बिल्डिंग्स में आग बुझाने की ड्रिल की गई। दुबई में तेजी से लोकप्रिय हो रहा अंडर वाटर हॉकी, इस खास खेल को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे खिलाड़ी। पूल में मास्क, स्नोकर्ल और फिंस पहने खिलाड़ी छोटी छोटी स्टिक से पक को धकेलते नजर आए, हर कुछ सेकंड में हवा लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं प्लेयर्स। तैराकी, सांस रोकने की क्षमता और टीम वर्क का मेल है ये खास खेल, दुबई के यूथ्स में खासा लोकप्रिय। अगस्त 2027 में इंडोनेशिया में होने वाली CMS एशियन चैंपियनशिप अंडर वाटर हॉकी प्रतियोगिता में टीम भेजने की तैयारी में दुबई, देश के दो प्रमुख क्लब नियमित रूप से दे रहे ट्रेनिंग। 1950 में के दशक में ब्रिटेन में हुई थी अंडर वाटर हॉकी की शुरुआत, अब एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बनकर कई देशों में खेला जाता है अनोखा खेल। टाइपे में ड्रोन शो का जलवा, आसमान में शानदार ड्रोन लाइट शो ने लोगों को किया आकर्षित। ड्रोन ने रोबोट, कार और पृथ्वी जैसी आकृतियां बनाई, आधुनिक तकनीक का किया शानदार प्रदर्शन। हजारों दर्शकों ने आसमान में बनती आकृतियों का लिया आनंद, ये आयोजन एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में शामिल। इस साल कंप्यूटेक्स में 6,000 से ज्यादा प्रदर्शकों ने लिया हिस्सा, AI कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स सेक्टर की कंपनियां प्रमुख आकर्षण बनी। कंप्यूटेक्स में अगली पीढ़ी को तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि AI और रोबोटिक्स भविष्य को नई दिशा देंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
0: Good news today is really good. In this, there is a lot of news and a lot of news.
2: हैदराबाद में पानी की एक पुरानी टंकी शिक्षा की मिसाल बन गई है। इस टंकी के नीचे खाली जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। बरसों पहले कुछ बच्चों को पढ़ाई में मदद के साथ शुरू की गई ये कोशिश अब सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार चुकी है।

0: पानी की ये पुरानी टंकी अब गरीब छात्रों का भविष्य संवारने की पाठशाला बन गई है। हैदराबाद के मियापुर में बेकार पड़ी पानी की टंकी के बेहतर इस्तेमाल करने का ये आइडिया पोथुकुची श्रीनिवास का है। बरसों पहले अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर श्रीनिवास ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। साल 2008 में छात्रों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने पानी की टंकी के नीचे की जगह को एक ट्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया। अब ये पानी की टंकी गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रतीक बन गई है।
1: एक मुआयना या दौरा कर लेते हैं इस वाटर टैंक का। दिखने में बाहर से मैंने जैसे आपको बताया कि एक वाटर टैंक था, लेकिन अंदर से इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक स्कूल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, चेयर्स दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, किताबें दिखेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर टैंक का एक सिस्टम या मशीनरी होती है जो कई सदियों तक यहाँ पर यहाँ के इलाके में पानी पहुँचाता रहा, वो भी यहाँ पर इस क्लासरूम में दिखाई देगा। हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहे।
2: ये सरकारी स्कूल को कौन जा रहा है बोले तो गरीब लोग जा रहे हैं, डेली काम करने वाला और दिन भर डेली काम करने वाला और ऑटो ड्राइवर्स का ये सफाई करने वाला ऐसा पेरेंट्स का बच्चे उधर जा रहे हैं। उनको 10 क्लास होने के बाद ये ड्रॉप हो रहे हैं और पढ़े तो इंटरमीडिएट पढ़ता है, गर्ल बच्चों जल्दी जल्दी शादी हो रहे हैं। इसीलिए मैं सोच के ये क्या करना है, ये बच्चों के लिए कुछ ना कोई एडुकेशन दिया तो अच्छा होता बोल के सोच के ऐसा ये काम शुरू किया।
3: 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक।
0: इस ट्यूशन सेंटर में छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 1,500 छात्र इस पाठशाला का लाभ उठा चुके हैं। यहाँ से पढ़े कुछ छात्रों ने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली है। कुछ पूर्व छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में 20 लाख सालाना से ज्यादा के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
4: मेरा जो भी कपड़ों का नहीं तो और जो भी चीज रहते ना बोले तो बुक्स पिंस वो सब रहते ना वो सब पूरे ट्रस्ट में दिया था सर। और मेरा पॉलसेट एग्जाम लिख दिया था सर आफ्टर 10th। मेरे को JEE टॉप मोस्ट कॉलेज आया था सर, उसमें से मेरा 3 इयर्स डिप्लोमा हो गया। अभी मैं BTech पढ़ रहा हूँ सर।
0: कभी लोगों की प्यास बुझाने वाली ये पानी की टंकी अब शिक्षा के प्रसार की मिसाल बन गई है। इस पानी की टंकी के साए में कुछ बच्चों की मदद के साथ शुरू हुई ये कोशिश आज सैकड़ों छात्रों के सपनों को उड़ान दे रही है। हैदराबाद से अबुल बशीर, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: Good night.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मेरा सम्मान।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। पंडित जी, आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे अलग अलग व्यवसाय में सफलता पाई जा सकती है। अगर आप किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं या कोई और व्यापार आप करते हैं, उसमें अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, तो किन उपायों के जरिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी पंडित जी आपको देंगे। आपके सवाल भी आगे शो में हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
1: देखिए, आप जहां भी व्यापार करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, वहां पर गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती जलाइएगा और हर शुक्रवार को एक बार श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। रोज शाम को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को अपने व्यापार के स्थान पर बैठ करके माता लक्ष्मी का स्मरण करके श्री सूक्तम का अगर पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा।
0: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 जून 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर आपकी यात्रा जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, व्यवसाय के बारे में आपको बताएंगे, व्यवसाय में आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है पंडित जी से कि व्यवसाय से किस्मत और कौन कौन से ग्रहों का संबंध होता है। पंडित जी,
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस भी तरह का व्यापार करते हैं, अपने व्यापार के स्वभाव, व्यापार की प्रकृति के अनुसार कौन सा उपाय करें जिससे आपको जीवन में सफलता मिले। सबसे पहली बात, आपके व्यापार का आपके भाग्य से, ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, हर तरह के व्यापार, व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है। एक तरह का कारोबार किसी एक ग्रह से कंट्रोल होता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता है, फूलता है, और अगर वो ग्रह कमजोर है तो कारोबार या तो बंद हो जाता है या व्यापार में, कारोबार में नुकसान होता है।

0: को मजबूत करें तो आपको व्यापार में लाभ अवश्य होगा।
1: चलिए पंडित जी से सवाल लेते हैं। पंडित जी, व्यवसाय के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वस्त्रों का कोई व्यवसाय करता है, इसको बेहतर बनाना चाहता है, इसमें सफलता पाना चाहता है, तो कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे?
0: अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, वस्त्रों का व्यापार करते हैं, तो इसको कैसे बेहतर बनाएंगे? देखिए, वस्त्रों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़ों के व्यापार के स्वामी हैं शुक्र। मुख्य रूप से ये शुक्र का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में अगर आप हैं और इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें 108 बार। ओम शुं शुक्राय नमः। एक स्फटिक की सफेद माला अपने गले में धारण करें और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। जहां तक हो सके काले रंग का प्रयोग अपने जीवन में कम करें। यानी अगर आप शुक्र ग्रह को प्रबल करते हैं, शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करते हैं, तो वस्त्रों के व्यापार को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
1: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से लेंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
0: मेष राशि, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए कपड़ों के व्यापार के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दी, अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर आप खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं, उसमें अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं सफलता पाने के लिए? पंडित जी,
0: अगर आप

0: का व्यापार करते हैं, खाने पीने की चीजों के व्यापार में हैं, तो क्या उपाय करें जिससे ये व्यापार बेहतर हो? देखिए, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, इसका व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पका हुआ भोजन आम तौर पर शुक्र से संबंध रखता है, और जो लिक्विड भोजन है, लिक्विड आहार है, सूप है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, जलीय खाद्य पदार्थ के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। वैसे खाद्य पदार्थ का ओवरऑल जो बिजनेस है वो चंद्रमा से नियंत्रित होता है। हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर आप खाने पीने की चीज का व्यापार करते हैं तो रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए। अपने मस्तक पर रोज सुबह स्नान करके सफेद या पीले चंदन का तिलक लगाइए, और हमेशा अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और अगर आप खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हो तो इस व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ। और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर जिसका आपको ही इंतजार रहता है। आपके तमाम सवाल इस शो में आते हैं, तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न भावना ने राजस्थान से लिखा है। 5 मई 1999 का जन्म है। 3:30 दोपहर में कोटा राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरे बहुत प्रयास के बावजूद मेरी शादी नहीं बच पाई, तो आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा। भावना आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और धनु राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब तक ये साल खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस साल में स्वास्थ्य के हालात, पारिवारिक जीवन के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना बनती है और साल 2027 के मई के बाद से आपके दूसरे विवाह के योग हैं और आने वाले समय में आपका जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का भी रुख कर लेते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन सा है दूसरा प्रश्न। पंडित जी
0: जी आज का दूसरा प्रश्न ममता गुप्ता जी ने इंदौर से हमें लिखा है। 30 मई 1977 का जन्म है। 7:20 शाम को मथुरा उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी करियर की स्थिति कैसी रहेगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ममता जी कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और तुला राशि की है, महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए करियर के हालात सामान्य हैं, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस साल के अंत में हो सकता है, उसका समय चल रहा है कि जून के बाद और इस साल के अंत के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आपके करियर में हो। अगले एक साल में धन के हालात बेहतर होंगे, किसी प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आंखों की समस्या का, त्वचा और हड्डियों की समस्या को लेकर सतर्क रहिएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करें। विशेषकर रोज शाम को माता लक्ष्मी की अगर आरती करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई जमीन निर्माण कार्य या ठेकेदारी आदि का व्यवसाय करता है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसमें सफलता पाना चाहता है, तो कौन कौन से उपाय हैं जो आप सफलता के लिए बताएंगे।
0: अगर आप जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम करते हैं, ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, तो सफलता कैसे पाएंगे। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठेकेदारी है, इसके पीछे होता है इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह सैटर्न यानी शनि। और जब जमीन की बात होती है, प्लॉटिंग की बात होती है या जमीन से निकलने वाली चीजों की बात होती है, तब इसमें मंगल की भूमिका भी आ जाती है। यानी दो ग्रह इसके कंट्रोलर हैं, मंगल और शनि। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो जहां आपने अपना ऑफिस बनाया है, लाल रंग के हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिएगा रोज सुबह काम की शुरुआत करने के पहले उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और फिर बोल बोल कर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा रोज करना है काम की शुरुआत के पहले। और हर मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूड़ी बांटिएगा। सुबह दोपहर शाम रात जब भी संभव हो किसी भी साइट पे चले जाएं, अगर आपकी साइट है तो बड़ी अच्छी बात है, वहीं पे जाके मजदूरों में हलवा पूड़ी हर मंगलवार को बांटिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी ऐसे व्यवसाय में आप सफल होंगे।
1: और चलिए राशिफल पर वापस आते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है पंडित जी।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें। बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर कोई शख्स शिक्षा व्यवसाय करता है, सलाहकारिता का काम करता है, तो उस कार्य में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, इस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पंडित जी क्या किया जाए?
0: देखिए, अगर आप शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, आपका विद्यालय है, आपका कोचिंग सेंटर है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, आप उसका काम करते हैं, या कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, सलाहकारिता का व्यापार करते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये व्यापार बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो व्यापार हैं ये संबंध रखते हैं बृहस्पति से मेनली। अगर आप एजुकेशन का, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का व्यापार करते हैं तो इसमें सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए और इसके बाद सुबह के समय 108 बार ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिए और जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपके ऑफिस का कलर रंग अगर हल्का पीला हो या सफेद रंग हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है राशिफल के अंत की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ वापस आते हैं आप यानी दर्शकों के सवालों के ऊपर। पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न आराधना जी ने जमशेदपुर से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 2004, 7:40 शाम को, धनबाद, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में। आराधना जी, आपके पुत्र की कुंडली है सिंह लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। करियर, पढ़ाई, शिक्षा के मामले में दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सिंह लग्न के लिए शनि की महादशा को अच्छा नहीं माना जाता और यहां शनि की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि 2027-28 में इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं की समस्या से और पेट की दिक्कतों से इनको बचना चाहिए। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाएं, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करवाएं इनको और या तो ये स्वयं सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, या आप इनकी माता जी हैं इनके लिए सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के इनकी रक्षा की प्रार्थना करें।
1: और चलिए अब वक्त हो गया है आप दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में लेने का। पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया। पंडित जी
0: जी आज का अंतिम प्रश्न निखिल कर्माकर जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 मार्च 1995, 9:23 रात को, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी या उसे कोई व्यापार करना चाहिए, विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा। निखिल जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके पुत्र को टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी मिलेगी। कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर ये प्राइवेट नौकरी का प्रयत्न करें तो इनको लाभ होगा और इनका करियर अभी शुरू हो सकता है, जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में उसकी दशा चल रही है। विवाह इनका अगले साल होगा, स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की से विवाह करेंगे और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है तो जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता तब तक दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें, खान पान का बहुत ध्यान रखें। एक अपने पुत्र को ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं। और देखिए, ये तो मंत्र वगैरह जपेंगे नहीं, तो आप इनके पिताजी हैं, आप इनके लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, उससे इनकी स्थितियां बेहतर होंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 4 जून को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि से बचें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अक्टूबर के बाद से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में, यानी जब आपका वर्ष खत्म होगा जून 2027 के आसपास, किसी संपत्ति के लाभ होने के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर घर से निकलते समय रास्ते में आपको रुमाल मिल जाए कोई गिरा हुआ, या कोई बटन मिल जाए कपड़े का, तो इसका अर्थ क्या है? रास्ते में अगर रुमाल या बटन मिले तो इसको अपने पास रख लेना चाहिए, अच्छा है। ये जीवन में नए रिश्तों के शुरुआत की सूचना है। आप अगर विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसी समय रुमाल या बटन मिल गया तो आपकी शादी जल्दी तय होगी, इस बात की सूचना है।
1: चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 4 जून 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में श्री हरि भगवान विष्णु की कपूर से आरती करिएगा, आपके जीवन की पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 4 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की गुडलक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है मकर। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपका जीवन बेहतर होगा।
1: चलिए आज के शो के तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय खास उपाय क्या है?
0: जी देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हैं, अगर व्यापार में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो एक सोने का छल्ला, अगर सोना अफोर्ड नहीं कर पाते तो एक पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा और पहने रहिएगा। और हर बृहस्पतिवार को किसी

0: ऐसा निरंतर करते जाएं तो आपके व्यापार की स्थिति स्थिर बनी रहेगी।
1: तो पंडित जी, उपाय बताने के लिए और महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है, दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की अनंत यात्रा की करेंगे। एक तरफ चारधाम यात्रा जोर शोर से जारी है, तो वहीं उसी उत्साह के साथ अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज 3 जून है और आज से ठीक एक महीने के बाद यानी 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई देता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का दृश्य, जहां देवादिदेव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बस कुछ दिनों बाद श्रद्धालु कश्मीर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के साथ गुलजार है। मंदिरों से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह है। हर दिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं तैयारी अमरनाथ यात्रा की।

0: विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही है। बाबा बर्फानी के दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब के साल फिर वो घड़िया पहुँची।
1: हर महादेव हर, बम बम भोले।
0: अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और यात्रा का समापन लगभग 2 महीने बाद श्रावण पूर्णिमा रक्षा बंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। यानी आज से ठीक 1 महीने बाद बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्त कम है, लिहाजा करीब 58 दिनों तक होने वाली यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों के सुगम अनुभव और सुरक्षा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र 1 महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें जो ये यात्री निवास भवन है इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं जो अलग अलग यहां पर जो भवन है जो हॉल्स हैं यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो कश्मीर घाटी हो दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: बता दें कि यात्रा का श्री गणेश होने पर अमरनाथ की ओर यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहाँ श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1500 से ज्यादा यात्रियों को रोका जाता है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
2: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहाँ हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं वो यहाँ पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहाँ पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहाँ पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ गलियारे में क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब ही पार्किंग का इंतजाम है, इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
2: जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल

0: दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज़्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।
1: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
2: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें सैनिक बल भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो पहले की भांति है हम लोग।
1: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बेस कैंप के अलावा यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन ने भक्तों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा शिविर और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो इन तमाम तैयारियों के बीच में अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आया है। लगातार दूसरे साल अब की बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा से पहले गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। आसमान को नो फ्लाइंग जोन रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ड्रोन आज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। एजेंसीज को सुरक्षा से जुड़ा इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यात्रा और आसपास मौजूद सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश यहां ना बचे। इसके साथ ही विशेष एंटी ड्रोन स्क्वाड भी बनाए गए हैं और किसी भी ड्रोन गतिविधि को नाकाम करने के लिए उन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सीधे श्रीनगर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद।
4: लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, इसका फैसला सरकार ने किया है और एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद किया है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जो दोनों रूट हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ, चाहे गांदरबल से बालतल का रूट हो या पहलगाम से जो चंदनवाड़ी रूट है। पिछले साल भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था, पहलगाम अटैक जो बैसरन में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद अपग्रेड किया गया था अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी को। इस साल भी ड्रोन थ्रेट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों का माने तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जो भी आतंकी संगठन है उनके पास ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो प्लान कर सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने का और इसमें यात्रा या सिक्योरिटी फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी टारगेट पे हो सकती हैं। और इस इनपुट के बाद ये फैसला जो है लिया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही में ईरान यूएस वॉर में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है खासकर ईरान ने और कैसे अभी भी लेबनान में हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक नया थ्रेट इवॉल्व हुआ है ड्रोन की वजह से, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी, खासकर उन श्रद्धालुओं को, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या फिर किसी तरह से जो पैदल यात्रा या घोड़ों पर यात्रा नहीं कर सकते, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुरक्षा साफ तौर पे सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेके कोई भी जान सरकार नहीं लेना चाहती। तो एक फैसला जिससे यात्रा पे जो है जरूर असर पड़ेगा, यात्रियों के प्लान पे भी असर पड़ेगा। और तभी सरकार ने कहा है जो भी यात्रा करना चाहते हैं, जो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हैं, उसी के मुताबिक अपना जो है सफर प्लान करें। और पोनीज या फिर जो कंधा गाड़ी होती है या फिर पैदल जो है यात्रा प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगी। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
3: कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां कोई और भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंच गए।

0: हर साल अमरनाथ की वादियों के बीच इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं बाबा बर्फन। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था।

शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इस स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था।

0: महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे पंचतरणी है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बालताल का है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालताल पहुंचना होता है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालताल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात चारधाम यात्रा की। गर्मी की छुट्टियों के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों में भी बना हुआ है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जनसैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान कर रही है। चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा क्योंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहां ये नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमल नैन सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनंत आस्था की यात्रा की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो GNT देखते रहिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो GNT भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कर विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर के सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड। उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी। सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।

0: पर अध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक। जय बाबा बर्फानी के जयकारों के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की 3 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहां पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राथमिकता यही है कि जो यहां पर श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो। अगर हम बात करें यहां यात्री निवास भवन की, तो यहां पर जो कल आला अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो साफ सफाई का काम है, जो रंग रोगन का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यहां पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे शौचालयों की बात करें हम, भवनों की बात करें हम, जो ये हॉल्स हैं, यहां पर भी साफ सफाई का काम है, उसको भी यहां पर किया जा रहा है। निर्देश साफ है कि ये काम जो है जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है 15 जून के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो है कुछ समय पहले से यहां आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजामात अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा गया है। रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है, तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहां जुटने लगते हैं। ऐसे में यहां यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था है पूर्ण तरीके से चल रही है। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है और हर हरकत पर CCTV से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्सेस के साथ में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है।
3: यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाक्षुबंद रहेंगे।
0: सूत्रों के अनुसार लगातार दूसरे साल भी इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि आतंकी संगठन यात्रा और उसके आसपास सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने की भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त जैसे ही जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शोकेसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
0: हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों से संचालित की जाएगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं और इंतजार 2 जुलाई का है, जब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक अभियान की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चार धाम की जारी यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशन में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहां स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्री स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं। इस अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। कैरी मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। यूपी के संभल में विलुप्त हो चुकी इस झील को मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही तालाब और झीलों को संरक्षित करने की कार्रवाई के तहत विलुप्त हो चुकी 1100 बीघा की झील को विकसित कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारतल मदापुर गांव में इस काम का शुभारंभ SDM और नायब तहसीलदार ने पूजा अर्चना करने के साथ किया, जिसके बाद झील की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CSR फंड होने वाले झील का 225 बीघा हिस्से का काम 11 ग्रुप को दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में हुई रैली में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और झंडी दिखाई जाने के साथ ही सभी लोग साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का दल सड़क पर पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाता नजर आया। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका खास मकसद साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साल हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्र से निकाले गए नकदी को मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी गिनती की गई, जिसमें कुल 26,94,813 रुपए के अलावा 865 नेपाली नकदी और $2 मिले।
5: न्यूज पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है। उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं।
8: हम अपने साहब के पैसे दे रहे हैं आपको।
9: How are you? Today is my client is Arvind Kariksha, the baby small children. So how are you?
7: भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे।
9: I love you. Help you very hard. So is good India. So first time in India.
7: फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
9: So how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good. So it's no hard work. It's okay, but I'm help you. So what is easy for you? I love you. Help you very hard.
7: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
9: So this is the old area, the supermarket. सिल्वर स्ट्रीट ओके यू माई दोस्त यू नो दोस्त मीन्स फ्रेंड इज गुड फ्रेंड।
7: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। नींद किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस नन्ही बच्ची के पास तो खास इंतजाम है। बच्ची जब नींद में होने लगती है तो उसकी पालतू बिल्ली उसके सर को सहारा देती नजर आती है। वहीं बैठा डॉग भी मानो उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। दोनों जानवर जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते दिखाई देते हैं, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं और भावुक भी। इंसान और जानवर की ये प्यारी दोस्ती हर किसी का दिल जीत रही है। नन्ही बच्ची का दिल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बच्ची बड़े प्यार से एक एक कर गिलहरियों को खाना खिलाती नजर आती है। गिलहरियां भी बिना डरे उसके पास आती हैं और आराम से खाना खाती हैं। हर गिलहरी को पेट भरकर खिलाने के बाद बच्ची के चेहरे पर जो खुशी और संतोष दिखाई देता है, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है। उसकी मासूम मुस्कान सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।
10: न्यूज़ पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेटियों के अधिकारों को लेकर आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। कानून के अनुसार बेटियों का पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाहित या फिर अविवाहित होने से संपत्ति के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला एक अहम फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटी किसी कल्याणकारी योजना के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसकी शादीशुदा स्थिति को आधार बनाकर उसे उस योजना के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने कहा है कि ये मानना कि शादीशुदा बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता पिता पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है, संवैधानिक रूप से गलत है। इसमें ये बात नोट की गई है कि आज की सामाजिक हकीकत में कई शादीशुदा बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं या उन पर ही निर्भर रहती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली एक महिला की आवंटन अनुकंपा की अपील मंजूर कर दी। दरअसल याची महिला को उसकी मां की मौत के बाद अनुकंपा के तहत उचित मूल्य की राशन की दुकान का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, ये दलील देकर कि वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में राशन की दुकान याचिकाकर्ता की मां को आवंटित की गई थी। मार्च 2024 में मां की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी ने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो अपनी मां को दुकान चलाने में मदद करती थी और चार बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अधिकारियों और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी पर इस आधार पर खारिज कर दी कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी परिवार की परिभाषा में नहीं आती। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताया। बेंच ने फैसला सुनाया कि बेटी शब्द में शादीशुदा बेटी को भी शामिल माना जाना चाहिए, बशर्ते वो ये साबित कर दे कि वो मृतक डीलर पर निर्भर थी और स्थानीय निवास सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के भीतर याची महिला के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया जाए। जाहिर है अदालत के इस फैसले से पूरे देश में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
11: फैसले को लेकर के काफी खुश हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभार करती हूँ इतना अच्छा बेटे के पक्ष में फैसला देने के लिए। समाज कहता है कि बेटियां पराया धन है, लेकिन आज इस फैसले ने साबित कर दिया कि बेटियां, हम बेटियां कहीं भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हक पाने में हम कहीं भी कम नहीं है।
12: जब एक बेटे की शादी हो जाती है तब भी वो एक बेटा रहता है और माता पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद वो पराई क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता? सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां, चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो, अनुकंपा नियुक्ति की उतनी ही अधिकारी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कहा भी गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, जो सरकारी विभाग थे, उनमें वही पुराने नियम चलते थे और अगर बेटी का विवाह कर दिया जाता था तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सिर्फ बेटा होता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। यहाँ पे ये बात सिर्फ एक बेटी के नौकरी की नहीं, ये बात उस बेटी, उस महिला की गरिमा और सम्मान की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी महिलाओं और सभी बेटियों के लिए स्वागत योग्य।
13: जैसे कि पिता की संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हक दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकती हूँ मैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं लेकिन बेटियों को शक्ति किस तरह से प्रदान की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो परिवारों में बंटने वाली बेटी धुरी बनती है, दो परिवारों की धुरी बनती है, समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बेटी के विवाह हो जाने के बाद माता पिता और परिवार से उसका संबंध खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन वहां गुजरता है। तो मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये शानदार सा कदम आगे लिया है।
14: मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो आज का जो फैसला आया है कोर्ट के द्वारा, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समानता की ओर हमारे कदम और बढ़ा रहा है और सच्चाई तो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहे घर के बेटे को मिले या बेटी को, जिम्मेदारी उतनी ही होती है, जितना बेटा निभाता है उतनी बेटी भी निभाएगी और ये बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह के फैसले समाज में जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर अनुकंपा नियुक्ति को में बेटी का रोल नहीं रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसको लायक नहीं समझते। ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है, चाहे उनकी शादी हो जाए और या वो एक परिवार से जुड़ी हो, और परिवार को भी उन्हें अपना मानना होगा और उन्हें सामने वाले जो माता पिता है उनकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उन पे आई है। और ये एक मजबूती भरा फैसला है, आज के जमाने में सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सभी वर्ग हो।
15: अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है और परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब सबसे योग्य और जिम्मेदार सदस्य को यह अवसर मिले, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। और अगर सिर्फ वैवाहिक होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अलग रखा जा रहा था तो यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि यदि परिवार की जिम्मेदारी बेटी उठा रही है तो वही सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसे विवाहित होने के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और आज की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की देखभाल और आर्थिक सहायता कर रही हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं और समाज के इस बदलते परिवेश में उन्होंने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत अभिनंदन।
5: तिब्बत के आसमान में रहस्यमयी लाल रोशनी ने किया हैरान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: तिब्बत के आसमान में कैद हुई एक रहस्यमयी लाल रोशनी ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। पहली नजर में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे रेड स्प्राइट्स नाम की प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। ये चमक धरती से करीब 50 से 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बनती है और इसका संबंध शक्तिशाली बिजली गिरने से होता है। लाल रंग की आकृतियां कभी जेलीफिश तो कभी पेड़ की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। तिब्बत में रिकॉर्ड हुआ यह अद्भुत नजारा अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक एशियाई काले भालू ने ऐसा आतंक मचाया कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी और पुलिस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में भालू एक कर्मचारी का पीछा करते हुए उसे जमीन पर गिराता नजर आता है। इसके बाद वो फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस जाता है। अधिकारियों को आशंका है कि भालू अब भी वहीं छिपा हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में तकनीक और कल्पना का अनोखा संगम देखने को मिला, जब रात के समय आसमान में सैकड़ों ड्रोन ने शानदार लाइट शो पेश किया है। ड्रोन ने हवा में रोबोट, कार और पृथ्वी जैसी आकर्षक आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये नज़ारा एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में शामिल कंप्यूटेक्स के दौरान देखने को मिला। इस साल 6,000 से ज्यादा प्रदर्शकों ने इसमें हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जुड़ी नई तकनीकों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही तकनीकें भविष्य की दिशा तय करेंगी।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
17: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित, एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की अनंत यात्रा की करेंगे। एक तरफ चारधाम यात्रा जोर शोर से जारी है, तो वहीं उसी उत्साह के साथ अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज 3 जून है और आज से ठीक एक महीने के बाद यानी 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई देता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का दृश्य, जहां देवादिदेव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बस कुछ दिनों बाद श्रद्धालु कश्मीर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के साथ गुलजार है। मंदिरों से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह है। हर दिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं तैयारी अमरनाथ यात्रा की।

कुर्बानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदा अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही है। बाबा बर्फानी के दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त

0: सुगम अनुभव और सुरक्षा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहाँ पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहाँ पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहाँ पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो है कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: बता दें कि यात्रा का श्री गणेश होने पर अमरनाथ की ओर यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहाँ श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1,500 से ज्यादा यात्रियों को रोका जाता है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहाँ हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहाँ पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहाँ पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहाँ पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब ही पार्किंग का इंतजाम है। इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
1: जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए, इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।

0: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटे ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
1: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें सैनिक बल भारतीय सेना सभी का रोल रहता है, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो पहले की भांति हम लोग चाकसू बन रहे हैं।
0: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बेस कैंप के अलावा यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन ने भक्तों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा शिविर और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो इन तमाम तैयारियों के बीच में अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आया है। लगातार दूसरे साल अब की बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा से पहले गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये निर्णय विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। आसमान को नो फ्लाइंग जोन रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ड्रोन आज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। एजेंसीज को सुरक्षा से जुड़ा इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यात्रा और आसपास मौजूद सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश यहां ना बचे। इसके साथ ही विशेष एंटी ड्रोन स्क्वाड भी बनाए गए हैं और किसी भी ड्रोन गतिविधि को नाकाम करने के लिए उन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सीधे श्रीनगर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद।
3: लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, इसका फैसला सरकार ने किया है और एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद किया है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जो दोनों रूट है अमरनाथ यात्रा की तरफ, चाहे गांदरबल से बालतल का रूट हो या पहलगाम से जो चंदनवाड़ी रूट है। पिछले साल भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था। पहलगाम अटैक जो बैसरन में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद अपग्रेड किया गया था अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी को। इस साल भी ड्रोन थ्रेट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों का माने तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जो भी आतंकी संगठन है उनके पास ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो प्लान कर सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने का, और इसमें यात्रा या सिक्योरिटी फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी टारगेट पे हो सकती हैं। और इस इनपुट के बाद ये फैसला जो है लिया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही में ईरान यूएस वॉर में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है खासकर ईरान ने, और कैसे अभी भी लेबनान में हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक नया थ्रेट इवॉल्व हुआ है ड्रोन की वजह से, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी, खासकर उन श्रद्धालुओं को, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या फिर किसी तरह से जो पैदल यात्रा या घोड़ों पर यात्रा नहीं कर सकते, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुरक्षा साफ तौर पे सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेके कोई भी जान सरकार नहीं लेना चाहती। तो एक फैसला जिससे यात्रा पे जो है जरूर असर पड़ेगा, यात्री के प्लान पे भी असर पड़ेगा, और तभी सरकार ने कहा है जो भी यात्रा करना चाहते हैं, जो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हैं उसी के मुताबिक अपना जो है सफर प्लान करें और पोनीज या फिर जो कंधा गाड़ी होती है या फिर पैदल जो है यात्रा प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगी। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
2: कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां कोई और भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंच गए।

0: हर साल अमरनाथ की वादियों के बीच इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं बाबा बर्फन। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की, तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्तू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था।

शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इस स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था।

0: महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे पंचतरणी है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बालताल का है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालताल पहुंचना होता है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालताल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात चारधाम यात्रा की। गर्मी की छुट्टियों के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों में भी बना हुआ है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जनसैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान गढ़ रही है। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: चूँकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहाँ ये नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमल नैन सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनंत आस्था की यात्रा की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो GNT देखते रहिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो GNT भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमा कर विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा, चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर के सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की जिंदगी का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। खबर है कि आमिर खान बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से शादी के बंधन बंधने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां बॉलीवुड सितारों की शादियां अक्सर करोड़ों रुपए के भव्य समारोह और लंबी गेस्ट लिस्ट के साथ होती है, वहीं आमिर खान ने अपने अंदाज में के मुताबिक इस खास मौके को भी बेहद सादा रखने का फैसला किया है। चर्चा है कि आमिर गौरी 5 जुलाई को शादी करेंगे। इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल होंगे, ना कोई शाही वेन्यू ना ही कोई सितारों की लंबी बारात होगी। बताया जा रहा है कि शादी का पूरा कार्यक्रम बेहद निजी और सादगी भरा होगा। आमिर और गौरी करीब 1 साल से एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Good news today.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी। सलमान, शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
6: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में है। यहाँ पूरे भवन को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और यात्रियों के ठहरने लंगर मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।

0: अध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक, जय बाबा बर्फानी के जयकारों के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की 3 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहां पर जो भवन हैं, जो हॉल्स हैं, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राथमिकता यही है कि जो यहां पर श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो। अगर हम बात करें यहां यात्री निवास भवन की, तो यहां पर जो कल आला अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो साफ सफाई का काम है, जो रंग रोगन का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यहां पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे शौचालयों की बात करें हम, भवनों की बात करें हम, जो ये हॉल्स हैं यहां पर भी साफ सफाई का काम है, उसको भी यहां पर किया जा रहा है। निर्देश साफ है कि ये काम जो है जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है 15 जून के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो है कुछ समय पहले से यहां आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए। इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा गया है। रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है, तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटने लगते हैं। ऐसे में यहाँ यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था है पूर्ण तरीके से चल रही है। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है और हर हरकत पर CCTV से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्सेस के साथ में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है।
3: यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति हम लोग चौकन्न रहेंगे।
0: सूत्रों के अनुसार लगातार दूसरे साल भी इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि आतंकी संगठन यात्रा और उसके आसपास सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने की भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त जैसे ही जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शो केसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
0: हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों से संचालित की जाएगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं और इंतजार 2 जुलाई का है, जब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक अभियान की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चार धाम की जारी यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशन में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहां स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्री स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं। इस अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। कैरी मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। यूपी के संभल में विलुप्त हो चुकी इस झील को मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही तालाब और झीलों को संरक्षित करने की कार्रवाई के तहत विलुप्त हो चुकी 1100 बीघा की झील को विकसित कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारतल मदापुर गांव में इस काम का शुभारंभ SDM और नायब तहसीलदार ने पूजा अर्चना करने के साथ किया, जिसके बाद झील की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CSR फंड होने वाले झील का 225 बीघा हिस्से का काम 11 ग्रुप को दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में हुई रैली में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और झंडी दिखाई जाने के साथ ही सभी लोग साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का दल सड़क पर पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाता नजर आया। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका खास मकसद साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साल हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्र से निकाले गए नकदी को मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी गिनती की गई, जिसमें कुल 26,94,813 रुपए के अलावा 865 नेपाली नकदी और $2 मिले।
5: न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है। उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं।
8: हम अपने साहब के पैसे दे रहे हैं आपको।
9: How are you? Today is my plan is about the recharge of these small children. So how are you?
7: भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे।
9: Help you very hard. So it's good India. So first time in India.
7: फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
9: So how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good. So it's no hard work. It's okay. But I'm help you. So what easy for you? I will not even help you very hard.
7: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
9: So this is the old area, the Silver Mart, Silver Street. ओके यू माई दोस्त यू नो दोस्त मीन फ्रेंड इज गुड फ्रेंड।
7: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। नींद किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस नन्ही बच्ची के पास तो खास इंतजाम है। बच्ची जब नींद में होने लगती है तो उसकी पालतू बिल्ली उसके सर को सहारा देती नजर आती है। वहीं बैठा डॉग भी मानो उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। दोनों जानवर जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते दिखाई देते हैं, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं और भावुक भी। इंसान और जानवर की ये प्यारी दोस्ती हर किसी का दिल जीत रही है। नन्ही बच्ची का दिल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बच्ची बड़े प्यार से एक एक कर गिलहरियों को खाना खिलाती नजर आती है। गिलहरियां भी बिना डरे उसके पास आती हैं और आराम से खाना खाती हैं। हर गिलहरी को पेट भरकर खिलाने के बाद बच्ची के चेहरे पर जो खुशी और संतोष दिखाई देता है, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है। उसकी मासूम मुस्कान सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।
5: न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेटियों के अधिकारों को लेकर आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। कानून के अनुसार बेटियों का पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाहित या फिर अविवाहित होने से संपत्ति के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला एक अहम फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटी किसी कल्याणकारी योजना के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसकी शादीशुदा स्थिति को आधार बनाकर उसे उस योजना के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने कहा है कि ये मानना कि शादीशुदा बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता पिता पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है, संवैधानिक रूप से गलत है। इसमें ये बात नोट की गई है कि आज की सामाजिक हकीकत में कई शादीशुदा बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं या उन पर ही निर्भर रहती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली एक महिला की आवंटन अनुकंपा की अपील मंजूर कर ली। दरअसल याची महिला को उसकी मां की मौत के बाद अनुकंपा के तहत उचित मूल्य की राशन की दुकान का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, ये दलील देकर कि वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में राशन की दुकान याचिकाकर्ता की मां को आवंटित की गई थी। मार्च 2024 में मां की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी ने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो अपनी मां को दुकान चलाने में मदद करती थी और चार बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अधिकारियों और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी पर इस आधार पर खारिज कर दी कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी परिवार की परिभाषा में नहीं आती। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताया। बेंच ने फैसला सुनाया कि बेटी शब्द में शादीशुदा बेटी को भी शामिल माना जाना चाहिए, बशर्ते वो ये साबित कर दे कि वो मृतक डीलर पर निर्भर थी और स्थानीय निवास सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के भीतर याची महिला के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया जाए। जाहिर है अदालत के इस फैसले से पूरे देश में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: फैसले को लेकर के काफी खुश हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभार करती हूँ इतना अच्छा बेटे के पक्ष में फैसला देने के लिए। समाज कहता है कि बेटियां पराया धन है, लेकिन आज इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम बेटियां कहीं भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हक पाने में हम कहीं भी कम नहीं है।
11: जब एक बेटे की शादी हो जाती है तब भी वो एक बेटा रहता है और माता पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद वो पराई क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता? सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां, चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो, माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां, चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो, अनुकंपा नियुक्ति की उतनी ही अधिकारी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कहा भी गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, जो सरकारी विभाग थे, उनमें वही पुराने नियम चलते थे और अगर बेटी का विवाह कर दिया जाता था तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सिर्फ बेटा होता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। यहाँ पे ये बात सिर्फ एक बेटी के नौकरी की नहीं, ये बात उस बेटी, उस महिला की गरिमा और सम्मान की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी महिलाओं और सभी बेटियों के लिए स्वागत है।
12: जैसे कि पिता की संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हक दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकती हूँ मैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं लेकिन बेटियों को शक्ति किस तरह से प्रदान की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो परिवारों में बंटने वाली बेटी धुरी बनती है, दो परिवारों की धुरी बनती है, समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बेटी के विवाह हो जाने के बाद माता पिता और परिवार से उसका संबंध खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन वहां गुजरता है। तो मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये शानदार सा कदम आगे लिया है।
13: मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो आज का जो फैसला आया कोर्ट के द्वारा, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समानता की ओर हमारे कदम और बढ़ा रहा है और सच्चाई तो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहे घर के बेटे को मिले या बेटी को, जिम्मेदारी उतनी ही होती है, जितना बेटा निभाता है उतनी बेटी भी निभाएगी और ये बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह के फैसले समाज में जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर अनुकंपा नियुक्ति को में बेटी का रोल नहीं रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसको लायक नहीं समझते। ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है, चाहे उनकी शादी हो जाए और या वो एक परिवार से जुड़ी हो, और परिवार को भी उन्हें अपना मानना होगा और उन्हें सामने वाले जो माता पिता हैं उनकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उन पर आई है। और ये एक मजबूती भरा फैसला है, आज के जमाने में सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सभी वर्ग हो।
14: अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है और परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब सबसे योग्य और जिम्मेदार सदस्य को यह अवसर मिले, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। और अगर सिर्फ वैवाहिक होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अलग रखा जा रहा था तो यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि यदि परिवार की जिम्मेदारी बेटी उठा रही है तो वही सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसे वैवाहिक होने के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और आज की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की देखभाल और आर्थिक सहायता कर रही हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं और समाज के इस बदलते परिवेश में उन्होंने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत अभिनंदन।
5: तिब्बत के आसमान में रहस्यमयी लाल रोशनी ने किया हैरान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: तिब्बत के आसमान में कैद हुई एक रहस्यमयी लाल रोशनी ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। पहली नजर में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे रेड स्प्राइट्स नाम की प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। ये चमक धरती से करीब 50 से 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बनती है और इसका संबंध शक्तिशाली बिजली गिरने से होता है। लाल रंग की आकृतियां कभी जेलीफिश तो कभी पेड़ की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। तिब्बत में रिकॉर्ड हुआ यह अद्भुत नजारा अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक एशियाई काले भालू ने ऐसा आतंक मचाया कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी और पुलिस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में भालू एक कर्मचारी का पीछा करते हुए उसे जमीन पर गिराता नजर आता है। इसके बाद वो फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस जाता है। अधिकारियों को आशंका है कि भालू अब भी वहीं छिपा हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में तकनीक और कल्पना का अनोखा संगम देखने को मिला, जब रात के समय आसमान में सैकड़ों ड्रोन ने शानदार लाइट शो पेश किया है। ड्रोन ने हवा में रोबोट, कार और पृथ्वी जैसी आकर्षक आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये नजारा एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में शामिल कंप्यूटेक्स के दौरान देखने को मिला। इस साल 6,000 से ज्यादा प्रदर्शकों ने इसमें हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जुड़ी नई तकनीकों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही तकनीकें भविष्य की दिशा तय करेंगी।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
16: Take it easy with soft hits. Soft hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज
18: तस्वीर खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है।
17: मुझे तकरीबन ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा। अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड। उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1,725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी। सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की अनंत यात्रा की करेंगे। एक तरफ चारधाम यात्रा जोर शोर से जारी है, तो वहीं उसी उत्साह के साथ अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज 3 जून है और आज से ठीक एक महीने के बाद यानी 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई देता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का दृश्य, जहां देवादिदेव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बस कुछ दिनों बाद श्रद्धालु कश्मीर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के साथ गुलजार है। मंदिरों से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह है। हर दिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं तैयारी अमरनाथ यात्रा की।

इरफानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदा अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से

0: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहाँ पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहाँ पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहाँ पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
1: बता दें कि यात्रा का श्री गणेश होने पर अमरनाथ की ओर यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहां श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1500 से ज्यादा यात्रियों को रोका जाता है, इसलिए यहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
0: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहाँ हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम्स भी यहाँ अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहाँ पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहाँ पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहाँ पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ गलियारे में, क्योंकि हॉल अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
1: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब ही पार्किंग का इंतजाम है, इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
0: जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नई बिछाई जा रही है, कुछ ज्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।
1: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

0: मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
1: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेगी और इसमें टोटल सैनिक बल भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाकचौ बन रहे।
0: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बेस कैंप के अलावा यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन ने भक्तों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा शिविर और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो इन तमाम तैयारियों के बीच में अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आया है। लगातार दूसरे साल अब की बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा से पहले गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये निर्णय विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। आसमान को नो फ्लाइंग जोन रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ड्रोन आज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। एजेंसीज को सुरक्षा से जुड़ा इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यात्रा और आसपास मौजूद सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश यहां ना बचे। इसके साथ ही विशेष एंटी ड्रोन स्क्वाड भी बनाए गए हैं और किसी भी ड्रोन गतिविधि को नाकाम करने के लिए उन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सीधे श्रीनगर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद।
3: लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, इसका फैसला सरकार ने किया है और एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद किया है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जो दोनों रूट हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ, चाहे गांदरबल से बालतल का रूट हो या पहलगाम से जो चंदनवाड़ी रूट है। पिछले साल भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था। पहलगाम अटैक जो बैसरन में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद अपग्रेड किया गया था अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी को। इस साल भी ड्रोन थ्रेट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों का माने तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जो भी आतंकी संगठन है उनके पास ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो प्लान कर सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने का, और इसमें यात्रा या सिक्योरिटी फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी टारगेट पे हो सकती हैं। और इस इनपुट के बाद ये फैसला जो है लिया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही में ईरान यूएस वॉर में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है खासकर ईरान ने, और कैसे अभी भी लेबनान में हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक नया थ्रेट इवॉल्व हुआ है ड्रोन की वजह से, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी खासकर उन श्रद्धालुओं को, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या फिर किसी तरह से जो पैदल यात्रा या घोड़ों पर यात्रा नहीं कर सकते वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुरक्षा साफ तौर पे सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेके कोई भी चांस सरकार नहीं लेना चाहती। तो एक फैसला जिससे यात्रा पे जो है जरूर असर पड़ेगा, यात्रियों के प्लान पे भी असर पड़ेगा, और तभी सरकार ने कहा है जो भी यात्रा करना चाहते हैं, जो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हैं उसी के मुताबिक अपना जो है सफर प्लान करें, और पोनीज या फिर जो कंधा गाड़ी होती है या फिर पैदल जो है यात्रा प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगी। कैंपसन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
2: कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां कोई और भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंच गए।

0: हर साल अमरनाथ की वादियों के बीच इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्तू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था।

कृष्णाक से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इस स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था।

0: महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे पंचतरणी है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बालताल का है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालताल पहुंचना होता है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालताल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात चारधाम यात्रा की। गर्मी की छुट्टियों के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों में भी बना हुआ है।

0: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जनसैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान कर रही है। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा क्योंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहाँ यह नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमलनंद सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनंत आस्था की यात्रा की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो GNT देखते रहिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो GNT भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर के सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
10: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में है। यहाँ पूरे भवन को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और यात्रियों के ठहरने लंगर मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।

0: अध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक, जय बाबा बर्फानी के जयकारों के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की 3 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र है, जो अलग अलग यहां पर जो भवन है, जो हॉल्स है, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राथमिकता यही है कि जो यहां पर श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो। अगर हम बात करें यहां यात्री निवास भवन की, तो यहां पर जो कल आला अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो साफ सफाई का काम है, जो रंग रोगन का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यहां पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे शौचालयों की बात करें हम, भवनों की बात करें हम, जो ये हॉल्स हैं यहां पर भी साफ सफाई का काम है, उसको भी यहां पर किया जा रहा है। निर्देश साफ है कि ये काम जो है जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है 15 जून के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए। इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा गया है। रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है, तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटने लगते हैं। ऐसे में यहाँ यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था है पूर्ण तरीके से चल रही है। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है और हर हरकत पर CCTV से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्सेस के साथ में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है।
3: यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चौकस रहेंगे।
0: सूत्रों के अनुसार लगातार दूसरे साल भी इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि आतंकी संगठन यात्रा और उसके आसपास सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने की भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त जैसे ही जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शो केसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
0: हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों से संचालित की जाएगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं और इंतजार 2 जुलाई का है, जब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक अभियान की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रहे हैं आपका इंतजार।
6: चार धाम की जारी यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशन में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहां स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्री स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं। इस अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। कैरी मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। यूपी के संभल में विलुप्त हो चुकी इस झील को मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही तालाब और झीलों को संरक्षित करने की कार्रवाई के तहत विलुप्त हो चुकी 1100 बीघा की झील को विकसित कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारतल मदापुर गांव में इस काम का शुभारंभ SDM और नायब तहसीलदार ने पूजा अर्चना करने के साथ किया, जिसके बाद झील की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CSR फंड होने वाले झील का 225 बीघा हिस्से का काम यारा ग्रुप को दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में हुई रैली में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और झंडी दिखाए जाने के साथ ही सभी लोग साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का दल सड़क पर पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाता नजर आया। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका खास मकसद साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साल हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्र से निकाले गए नकदी को मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी गिनती की गई, जिसमें कुल 26,94,813 रुपए के अलावा 865 नेपाली नकदी और $2 मिले।
5: न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है। उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं।
8: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
9: How are you? Today is my client is Advaith Pariksha, the baby small children. So how are you?
7: भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे।
9: Help you very hard. So it's good India. So first time in India.
7: फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
9: So how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good. So it's no hard work. It's okay. But I'm help you. So very easy for you. I love you. Help you very hard.
7: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
9: So this is the old area, the supermarket. सिल्वर स्ट्रीट ओके यू माय दोस्त यू नो दोस्त मीन फ्रेंड इज गुड फ्रेंड।
7: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देख कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। नींद किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस नन्ही बच्ची के पास तो खास इंतजाम है। बच्ची जब नींद में होने लगती है तो उसकी पालतू बिल्ली उसके सर को सहारा देती नजर आती है। वहीं बैठा डॉग भी मानो उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। दोनों जानवर जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते दिखाई देते हैं, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं और भावुक भी। इंसान और जानवर की ये प्यारी दोस्ती हर किसी का दिल जीत रही है। नन्ही बच्ची का दिल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बच्ची बड़े प्यार से एक एक कर गिलहरियों को खाना खिलाती नजर आती है। गिलहरियां भी बिना डरे उसके पास आती हैं और आराम से खाना खाती हैं। हर गिलहरी को पेट भरकर खिलाने के बाद बच्ची के चेहरे पर जो खुशी और संतोष दिखाई देता है, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है। उसकी मासूम मुस्कान सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।
5: न्यूज़ पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेटियों के अधिकारों को लेकर आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। कानून के अनुसार बेटियों का पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाहित या फिर अविवाहित होने से संपत्ति के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला एक अहम फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटी किसी कल्याणकारी योजना के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसकी शादीशुदा स्थिति को आधार बनाकर उसे उस योजना के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने कहा है कि ये मानना कि शादीशुदा बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता पिता पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है संवैधानिक रूप से गलत है। इसमें ये बात नोट की गई है कि आज की सामाजिक हकीकत में कई शादीशुदा बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं या उन पर ही निर्भर रहती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली एक महिला की आवंटन अनुकंपा की अपील मंजूर कर दी। दरअसल याची महिला को उसकी मां की मौत के बाद अनुकंपा के तहत उचित मूल्य की राशन की दुकान का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, ये दलील देकर कि वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में राशन की दुकान याचिकाकर्ता की मां को आवंटित की गई थी। मार्च 2024 में मां की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी ने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो अपनी मां को दुकान चलाने में मदद करती थी और चार बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अधिकारियों और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी पर इस आधार पर खारिज कर दी कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी परिवार की परिभाषा में नहीं आती। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताया। बेंच ने फैसला सुनाया कि बेटी शब्द में शादीशुदा बेटी को भी शामिल माना जाना चाहिए, बशर्ते वो ये साबित कर दे कि वो मृतक डीलर पर निर्भर थी और स्थानीय निवास सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के भीतर याची महिला के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया जाए। जाहिर है अदालत के इस फैसले से पूरे देश में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: फैसले को लेकर के काफी खुश हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभार करती हूँ इतना अच्छा बेटे के पक्ष में फैसला लेने के लिए। समाज कहता है कि बेटियाँ पराया धन है, लेकिन आज इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम बेटियाँ कहीं भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हक पाने में हम कहीं भी कम नहीं है।
11: जब एक बेटे की शादी हो जाती है तब भी वो एक बेटा रहता है और माता पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद वो पराई क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता? सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो, अनुकंपा नियुक्ति की उतनी ही अधिकारी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कहा भी गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, जो सरकारी विभाग थे, उनमें वही पुराने नियम चलते थे और अगर बेटी का विवाह कर दिया जाता था तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सिर्फ बेटा होता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। यहाँ पे ये बात सिर्फ एक बेटी के नौकरी की नहीं, ये बात उस बेटी उस महिला की गरिमा और सम्मान की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी महिलाओं और सभी बेटियों के लिए स्वागत योग्य।
12: जैसे कि पिता की संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हक दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकती हूँ मैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं लेकिन बेटियों को शक्ति किस तरह से प्रदान की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो परिवारों में बटने वाली बेटी धुरी बनती है, दो परिवारों की धुरी बनती है, समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बेटी के विवाह हो जाने के बाद माता पिता और परिवार उसका संबंध खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन वहां गुजरता है। तो मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये शानदार सा कदम आगे लिया है।
13: मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो आज का जो फैसला आया कोर्ट के द्वारा, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समानता की ओर हमारे कदम और बढ़ा रहा है और सच्चाई तो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहे घर के बेटे को मिले या बेटी को, जिम्मेदारी उतनी ही होती है, जितना बेटा निभाता है उतनी बेटी भी निभाएगी और ये बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह के फैसले समाज में जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर अनुकंपा नियुक्ति को में बेटी का रोल नहीं रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आप उसको लायक नहीं समझते। ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है, चाहे उनकी शादी हो जाए और या वो एक परिवार से जुड़ी हो, और परिवार को भी उन्हें अपना मानना होगा और उन्हें सामने वाले जो माता पिता है उनकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उन पे आई है। और ये एक मजबूती भरा फैसला है, आज के जमाने में सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सभी वर्ग हो।
14: अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है और परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब सबसे योग्य और जिम्मेदार सदस्य को यह अवसर मिले, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। और अगर सिर्फ वैवाहिक होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अलग रखा जा रहा था तो यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि यदि परिवार की जिम्मेदारी बेटी उठा रही है तो वही सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसे विवाहित होने के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और आज की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की देखभाल और आर्थिक सहायता कर रही हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं और समाज के इस बदलते परिवेश में उन्होंने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत अभिनंदन।
5: तिब्बत के आसमान में रहस्यमयी लाल रोशनी ने किया हैरान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: तिब्बत के आसमान में कैद हुई एक रहस्यमयी लाल रोशनी ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। पहली नजर में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे रेड स्प्राइट्स नाम की प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। ये चमक धरती से करीब 50 से 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बनती है और इसका संबंध शक्तिशाली बिजली गिरने से होता है। लाल रंग की आकृतियां कभी जेलीफिश तो कभी पेड़ की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। तिब्बत में रिकॉर्ड हुआ यह अद्भुत नजारा अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक एशियाई काले भालू ने ऐसा आतंक मचाया कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी और पुलिस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में भालू एक कर्मचारी का पीछा करते हुए उसे जमीन पर गिराता नजर आता है। इसके बाद वो फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस जाता है। अधिकारियों को आशंका है कि भालू अब भी वहीं छिपा हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में तकनीक और कल्पना का अनोखा संगम देखने को मिला, जब रात के समय आसमान में सैकड़ों ड्रोन ने शानदार लाइट शो पेश किया है। ड्रोन ने हवा में रोबोट, कार और पृथ्वी जैसी आकर्षक आकृतियां बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये नज़ारा एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में शामिल कंप्यूटेक्स के दौरान देखने को मिला। इस साल 6,000 से ज्यादा प्रदर्शकों ने इसमें हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जुड़ी नई तकनीकों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही तकनीकें भविष्य की दिशा तय करेंगी।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
16: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
17: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
18: Keep it on smooth jazz.
19: This is Roots Reggae
20: exclusively on TuneIn.
21: This is classic hip hop
22: exclusively on TuneIn.
16: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें, 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट से मुंबई में करेंगे शादी, सलमान शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था की अनंत यात्रा की करेंगे। एक तरफ चारधाम यात्रा जोर शोर से जारी है, तो वहीं उसी उत्साह के साथ अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज 3 जून है और आज से ठीक एक महीने के बाद यानी 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखाई देता है और उससे भी अनोखा होता है उस पावन गुफा का दृश्य, जहां देवादिदेव भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बस कुछ दिनों बाद श्रद्धालु कश्मीर में इस दृश्य के साक्षी बनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के साथ गुलजार है। मंदिरों से लेकर यात्रा मार्ग तक भक्तों में अलग ही उत्साह है। हर दिन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू और दिखाते हैं तैयारी अमरनाथ यात्रा की।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदा अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही है। बाबा बर्फानी के दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब के साल फिर वो घड़िया पहुँची।
1: हर महादेव हर, बम बम भोले।
0: अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और यात्रा का समापन लगभग 2 महीने बाद श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। यानी आज से ठीक 1 महीने बाद बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वक्त कम है लिहाजा करीब 58 दिनों तक होने वाली यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों के सुगम अनुभव और सुरक्षा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में जोर शोर से इंतजामों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र 1 महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है यहाँ पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें जो तो ये यात्री निवास भवन है इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं जो अलग अलग यहाँ पर जो भवन है जो हॉल्स हैं यहाँ पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी लेकिन श्रद्धालु जो है कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए। इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो कश्मीर घाटी हो दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।

0: भी यहां पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
1: बता दें कि यात्रा का श्री गणेश होने पर अमरनाथ की ओर यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर से यहाँ श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाएंगे। इस यात्री निवास में 1500 से ज्यादा यात्रियों को रोका जाता है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
0: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रुकते हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है। तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
1: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के करीब ही पार्किंग का इंतजाम है। इस पार्किंग एरिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है, गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को यहां पार्क किया जा सके।
0: जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस स्थान की बात करूं, यहीं पर मेरी दाईं ओर जो ये आप ये स्थान देख रहे हैं, दरअसल ये पार्किंग स्पेस है और यहीं से प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहीं से सुबह सुबह जो है यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। देखिए इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है तड़के 2 जुलाई को यहीं से रवाना होगा। ये दरअसल पार्किंग स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सड़क देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर बसें रहती हैं, कैब्स रहती हैं, दूसरी प्रकार के वाहन रहते हैं और उन्हीं वाहनों में बैठकर श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मरम्मत का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बिछाई जा रही है, कुछ ज्यादा स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क हो सके।
1: देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और IGP जम्मू भीमसेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
2: सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और इसमें सैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रुप जो है वो पहले की भांति है हम लोग।
1: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले

0: दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बेस कैंप के अलावा यात्रा मार्ग पर भी प्रशासन ने भक्तों के लिए सुरक्षा, चिकित्सा शिविर और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो इन तमाम तैयारियों के बीच में अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आया है। लगातार दूसरे साल अब की बार भी अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा से पहले गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये निर्णय विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। आसमान को नो फ्लाइंग जोन रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ड्रोन आज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। एजेंसीज को सुरक्षा से जुड़ा इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन यात्रा और आसपास मौजूद सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला किया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश यहां ना बचे। इसके साथ ही विशेष एंटी ड्रोन स्क्वाड भी बनाए गए हैं और किसी भी ड्रोन गतिविधि को नाकाम करने के लिए उन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सीधे श्रीनगर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद।
2: लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, इसका फैसला सरकार ने किया है और एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद किया है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जो दोनों रूट हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ, चाहे गांदरबल से बालतल का रूट हो या पहलगाम से जो चंदनवाड़ी रूट है। पिछले साल भी ऐसा ही डिसीजन लिया गया था। पहलगाम अटैक जो बैसरन में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद अपग्रेड किया गया था अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी को। इस साल भी ड्रोन थ्रेट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों का माने तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि जो भी आतंकी संगठन है उनके पास ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो प्लान कर सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने का, और इसमें यात्रा या सिक्योरिटी फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी टारगेट पे हो सकती हैं। और इस इनपुट के बाद ये फैसला जो है लिया गया है। ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही में ईरान यूएस वॉर में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है खासकर ईरान ने, और कैसे अभी भी लेबनान में हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक नया थ्रेट इवॉल्व हुआ है ड्रोन की वजह से, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी, खासकर उन श्रद्धालुओं को, वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या फिर किसी तरह से जो पैदल यात्रा या घोड़ों पर यात्रा नहीं कर सकते, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुरक्षा साफ तौर पे सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेके कोई भी जान सरकार नहीं लेना चाहती। तो एक फैसला जिससे यात्रा पे जो है जरूर असर पड़ेगा, यात्री के प्लान पे भी असर पड़ेगा, और तभी सरकार ने कहा है जो भी यात्रा करना चाहते हैं, जो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस निकली हैं उसी के मुताबिक अपना जो है सफर प्लान करें। और पोनीज या फिर जो कंधा गाड़ी होती है या फिर पैदल जो है यात्रा प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगी। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
1: कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां कोई और भी जीवित प्राणी उनकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंच गए।

0: हर साल अमरनाथ की वादियों के बीच इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था।
1: एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
0: पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव किस्तू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था।

आज से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इस स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था।

0: महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे पंचतरणी है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बालताल का है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालताल पहुंचना होता है। बालताल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालताल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात चारधाम यात्रा की। गर्मी की छुट्टियों के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धामों में भी बना हुआ है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की रौनक है। जिस तरफ नजर फेरिए तीर्थयात्रियों का जनसैलाब नजर आता है। यमुनोत्री हो या गंगोत्री, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आस्था की नई पहचान कर रही है। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालु धामों में ज्यादा पहुंचे हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 26.34 लाख था। बढ़ती गर्मी के साथ धामों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है और मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। सीएम धामी ने मंगलवार को इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई और चार धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत SOP बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: चूँकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है।
0: विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में उमड़ रहे हुजूम के बीच कैरी मी बैग नीति शुरू की गई है। इसके तहत यात्री स्वेच्छा से सूखा कूड़ा गौरीकुंड तक लाकर धाम को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत की है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने। प्रशासन की इस पहल को यात्रियों का भी सहयोग मिल रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बद्री विशाल के दरबार में जाने के लिए लोगों का लंबा तांता लगा है। यहाँ यह नजारा हर दिन कुछ ऐसा ही नजर आता है, तीर्थयात्रियों से भरपूर। जानकारी के मुताबिक जून का महीना शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार कर गई है। बद्रीनाथ में मंदिर प्रांगण के अलावा तप्त कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग पूरे समर्पण के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
2: 40 दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 8 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को इस बार बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले थे और अब जून की 1 तारीख की यात्रा पूरी हो चुकी है और बद्रीनाथ यात्रा के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां मौसम इस समय बेहतर, बहुत ही सुहावना जून का महीना लगने के साथ ही पहाड़ों में हो चुका है, वहीं लगातार बद्रीनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब जून का महीना शुरू हो रहा है और 8 लाख की संख्या बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पूरी हो चुकी है।
0: भगवान बद्री विशाल के कपाट नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। ऐसे में इस वर्ष यात्रा का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। चमोली से कमलनंद सलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनंत आस्था की यात्रा की ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो GNT देखते रहिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पीएम मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो GNT भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर के सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
5: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
6: Learn more at APGE.com.
7: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 29 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड। उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला सम्मान। नोएडा समेत यूपी के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर। तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से मुंबई में करेंगे शादी। सलमान, शाहरुख समेत करीबी दोस्त समारोह में करेंगे शिरकत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अगले महीने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लिहाजा इस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा जा रहा है, रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।

0: और अध्यात्म की धरोहर, तपस्या और सनातन संस्कृति की अद्वितीय झलक, जय बाबा बर्फानी के जयकारों के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में एक अमरनाथ यात्रा की 3 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। एक बार फिर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब वो तारीख दूर नहीं जब पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ठीक एक महीने बाद 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अब मात्र एक महीना शेष है यात्रा की शुरुआत के लिए, और उससे पहले अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन में, जो कि जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो यात्री निवास भवन है, यहां पर लगातार साफ सफाई चल रही है और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें, जो ये यात्री निवास भवन है, इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग यहां पर जो भवन है, जो हॉल्स हैं, यहां पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है और मजदूर लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्राथमिकता यही है कि जो यहां पर श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो। अगर हम बात करें यहां यात्री निवास भवन की, तो यहां पर जो कल आला अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो साफ सफाई का काम है, जो रंग रोगन का काम है, वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यहां पर जो श्रद्धालु आए उनको कोई यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चाहे शौचालयों की बात करें हम, भवनों की बात करें हम, जो ये हॉल्स हैं, यहां पर भी साफ सफाई का काम है, उसको भी यहां पर किया जा रहा है। निर्देश साफ है कि ये काम जो है जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है 15 जून के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक ये चलेगी, लेकिन श्रद्धालु जो हैं कुछ समय पहले से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रयास है वो यही है कि श्रद्धालुओं के आने से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी की जाए। इसीलिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में जो है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। तैयारियों का तो जायजा लिया ही जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में इंतजाम अपने अंतिम दौर में हैं। यहां पूरे भवन को सजाया संवारा गया है। रंग रोगन, पुताई और सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान यहाँ जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। खासतौर पर अगर हम यात्री निवास भवनों की बात करें तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना उठानी पड़े। अगर हम बात करें जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह जो है यहीं से यात्रियों का जत्था जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में हैं, ठहरते हैं, उनकी सभी सुविधाओं का यहां ध्यान रखा जाता है। और हमने आपको यहां हॉल्स भी दिखाए कि किस प्रकार वहां मरम्मत का काम चल रहा है, साफ सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है। तो यहां पर क्लॉक रूम्स भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि श्रद्धालुओं के पास जो अपना सामान है, उनके पास जो अपने बैग्स हैं, वो यहां पर वो जमा कर सकते हैं और उनका सामान यहां पर वो अपना वो रख सकते हैं, सुरक्षित उनका यहां पर सामान रह सकता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहां गलियारे में, क्योंकि हॉल्स अंदर है, हॉल्स जो है पहली मंजिल पर भी है, लेकिन गलियारों में भी पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि इस समय जम्मू शहर में काफी ज्यादा गर्मी होती है और श्रद्धालुओं को पहले जम्मू ही आना होता है और यहीं से फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी जो है खासा व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर आप देखिए ये लंगर हॉल्स है, इस प्रकार के लंगर हॉल्स यहाँ रहते हैं और यहाँ श्रद्धालु जो है अपना भोजन करते हैं, यहाँ उनको भोजन दिया जाता है, तो सभी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पीने का, यहाँ पर साफ पानी भी यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है, ठंडा पानी भी रहता है, यहाँ पर कई वाटर कूलर्स भी लगे हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से भी राहत लगातार मिलती रहे।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुटने लगते हैं। ऐसे में यहाँ यात्रियों के ठहरने, लंगर, मेडिकल समेत तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप से ही तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा।
2: यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो देखा गया, पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन की, RFID की, हेल्थ फैसिलिटीज की, सैनिटेशन की, लंगर की, ट्रांसपोर्ट की, जो व्यवस्था पूर्ण तरीके से चल रही है यात्रा के लिए, पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें।
0: इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी अहम है, जिसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है और हर हरकत पर CCTV से नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्सेस के साथ में डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है।
3: यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं, उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाकचौबंद रहेंगे।
0: सूत्रों के अनुसार लगातार दूसरे साल भी इस यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि आतंकी संगठन यात्रा और उसके आसपास सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने की भी खास तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर की दीवारों को खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है। इन दीवारों पर डोगरा कला और संस्कृति को समेटे 3D वॉल म्यूरल बनाए जा रहे हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त जैसे ही जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे, उन्हें यहाँ की समृद्ध डोगरा संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी।
4: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शो केसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
0: हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार श्रद्धालुओं को अनूठा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलने जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों से संचालित की जाएगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने घाटी पहुंचेंगे। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तादाद और बढ़ेगी। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं और इंतजार 2 जुलाई का है, जब इस पवित्र यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक अभियान की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: चार धाम की जारी यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देशन में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहां स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें यात्री स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर स्वच्छता अभियान में भागीदार बन रहे हैं। इस अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। कैरी मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। यूपी के संभल में विलुप्त हो चुकी इस झील को मूल स्वरूप में लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही तालाब और झीलों को संरक्षित करने की कार्रवाई के तहत विलुप्त हो चुकी 1100 बीघा की झील को विकसित कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भारतल मदापुर गांव में इस काम का शुभारंभ SDM और नायब तहसीलदार ने पूजा अर्चना करने के साथ किया, जिसके बाद झील की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CSR फंड होने वाले झील का 225 बीघा हिस्से का काम 11 ग्रुप को दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में हुई रैली में युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और झंडी दिखाई जाने के साथ ही सभी लोग साइकिल चलाते हुए आगे निकल गए। गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का दल सड़क पर पूरे उत्साह के साथ साइकिल चलाता नजर आया। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका खास मकसद साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साल हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना थीम के साथ विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। दान पात्र से निकाले गए नकदी को मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी गिनती की गई, जिसमें कुल 26,94,813 रुपए के अलावा 865 नेपाली नकदी और $2 मिले।
5: न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है। उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं।
8: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
9: How are you? Today is Mike Mandy's award for the smart children. So, how are you?
7: भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे।
9: Help you very hard. So, is good India? So, first time in India?
7: फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
9: So, how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good? So, it's no hard work? It's okay, but I'm help you. So very easy for you. I not help you very hard.
7: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
9: So this is the old area, the Silver Mart, Silver Street. ओके यू माई दोस्त यू नो दोस्त मीन्स फ्रेंड इज गुड फ्रेंड।
7: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देख कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। नींद किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस नन्ही बच्ची के पास तो खास इंतजाम है। बच्ची जब नींद में होने लगती है तो उसकी पालतू बिल्ली उसके सर को सहारा देती नजर आती है। वहीं बैठा डॉग भी मानो उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। दोनों जानवर जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते दिखाई देते हैं, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं और भावुक भी। इंसान और जानवर की ये प्यारी दोस्ती हर किसी का दिल जीत रही है। नन्ही बच्ची का दिल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बच्ची बड़े प्यार से एक एक कर गिलहरियों को खाना खिलाती नजर आती है। गिलहरियां भी बिना डरे उसके पास आती हैं और आराम से खाना खाती हैं। हर गिलहरी को पेट भरकर खिलाने के बाद बच्ची के चेहरे पर जो खुशी और संतोष दिखाई देता है, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है। उसकी मासूम मुस्कान सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।
5: न्यूज़पत के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेटियों के अधिकारों को लेकर आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। कानून के अनुसार बेटियों का पिता की संपत्ति पर बेटे के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार है। विवाहित या फिर अविवाहित होने से संपत्ति के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला एक अहम फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटी किसी कल्याणकारी योजना के लिए सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसकी शादीशुदा स्थिति को आधार बनाकर उसे उस योजना के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने कहा है कि ये मानना कि शादीशुदा बेटी अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती या अपने माता पिता पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है संवैधानिक रूप से गलत है। इसमें ये बात नोट की गई है कि आज की सामाजिक हकीकत में कई शादीशुदा बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं या उन पर ही निर्भर रहती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली एक महिला की आवंटन अनुकंपा की अपील मंजूर कर दी। दरअसल याची महिला को उसकी मां की मौत के बाद अनुकंपा के तहत उचित मूल्य की राशन की दुकान का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था, ये दलील देकर कि वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में राशन की दुकान याचिकाकर्ता की मां को आवंटित की गई थी। मार्च 2024 में मां की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी ने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, क्योंकि वो अपनी मां को दुकान चलाने में मदद करती थी और चार बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अधिकारियों और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी पर इस आधार पर खारिज कर दी कि संबंधित सरकारी आदेश के तहत शादीशुदा बेटी परिवार की परिभाषा में नहीं आती। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताया। बेंच ने फैसला सुनाया कि बेटी शब्द में शादीशुदा बेटी को भी शामिल माना जाना चाहिए, बशर्ते वो ये साबित कर दे कि वो मृतक डीलर पर निर्भर थी और स्थानीय निवास सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के भीतर याची महिला के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया जाए। जाहिर है अदालत के इस फैसले से पूरे देश में महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: फैसले को लेकर के काफी खुश हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से आभार करती हूँ इतना अच्छा बेटे के पक्ष में फैसला देने के लिए। समाज कहता है कि बेटियां पराया धन है, लेकिन आज इस फैसले ने साबित कर दिया है कि बेटियां, हम बेटियां कहीं भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हक पाने में हम कहीं भी कम नहीं है।
11: जब एक बेटे की शादी हो जाती है तब भी वो एक बेटा रहता है और माता पिता की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद वो पराई क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता का अपनी बेटी पे और बेटी का अपने माता पिता पे कोई अधिकार नहीं रहता? सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में इस पितृसत्तात्मक सोच को असंवैधानिक माना है। उन्होंने माना है कि बेटियां, चाहे उनका विवाह हो चाहे वो अविवाहित हो, अनुकंपा नियुक्ति की उतनी ही अधिकारी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कहा भी गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, जो सरकारी विभाग थे, उनमें वही पुराने नियम चलते थे और अगर बेटी का विवाह कर दिया जाता था तो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सिर्फ बेटा होता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। यहाँ पे ये बात सिर्फ एक बेटी के नौकरी की नहीं, ये बात उस बेटी, उस महिला की गरिमा और सम्मान की है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी महिलाओं और सभी बेटियों के लिए स्वागत योग्य।
12: जैसे कि पिता की संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले हक दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मान सकती हूँ मैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बेटियों को शक्ति किस तरह से प्रदान की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दो परिवारों में बंटने वाली बेटी धुरी बनती है, दो परिवारों की धुरी बनती है, समाज में नई दिशा और दशा प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बेटी के विवाह हो जाने के बाद माता पिता और परिवार से उसका संबंध खत्म नहीं हो जाता, उसका जीवन वहां गुजरता है। तो मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ये शानदार सा कदम आगे लिया है।
13: मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो आज का जो फैसला आया कोर्ट के द्वारा, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समानता की ओर हमारे कदम और बढ़ा रहा है और सच्चाई तो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति चाहे घर के बेटे को मिले या बेटी को, जिम्मेदारी उतनी ही होती है, जितना बेटा निभाता है उतनी बेटी भी निभाएगी और ये बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह के फैसले समाज में जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर अनुकंपा नियुक्ति को में बेटी का रोल नहीं रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसको लायक नहीं समझते। ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इससे एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है कि महिलाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है, चाहे उनकी शादी हो जाए और या वो एक परिवार से जुड़ी हो, और परिवार को भी उन्हें अपना मानना होगा और उन्हें सामने वाले जो माता पिता है उनकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी उन पे आई है। और ये एक मजबूती भरा फैसला है, आज के जमाने में सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है और मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सभी वर्ग हो।
14: अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से बचाना होता है और परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब सबसे योग्य और जिम्मेदार सदस्य को यह अवसर मिले, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। और अगर सिर्फ वैवाहिक होने के आधार पर बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से अलग रखा जा रहा था तो यह कहीं भी तर्कसंगत नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि यदि परिवार की जिम्मेदारी बेटी उठा रही है तो वही सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसे वैवाहिक होने के कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और आज की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की देखभाल और आर्थिक सहायता कर रही हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं और समाज के इस बदलते परिवेश में उन्होंने महिलाओं को जो समानता का अधिकार दिया है और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत अभिनंदन।
5: तिब्बत के आसमान में रहस्यमयी लाल रोशनी ने किया हैरान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
6: तिब्बत के आसमान में कैद हुई एक रहस्यमयी लाल रोशनी ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है। पहली नजर में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे रेड स्प्राइट्स नाम की प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। ये चमक धरती से करीब 50 से 90 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बनती है और इसका संबंध शक्तिशाली बिजली गिरने से होता है। लाल रंग की आकृतियां कभी जेलीफिश तो कभी पेड़ की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। तिब्बत में रिकॉर्ड हुआ यह अद्भुत नजारा अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक एशियाई काले भालू ने ऐसा आतंक मचाया कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी और पुलिस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में भालू एक कर्मचारी का पीछा करते हुए उसे जमीन पर गिराता नजर आता है। इसके बाद वो फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस जाता है। अधिकारियों को आशंका है कि भालू अब भी वहीं छिपा हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
16: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से